और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछ गछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहां होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। उस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और न उनके मुताल्लक किसी से कुछ पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा।

0: وعدني الذي وعدته.
1: FM 107 पर पैगाम.
2: कामयाब और खुशगवार जिंदगी गुजारने के लिए इंसान को चाहिए कि वो देने की आदत डाले, देना शुरू कर दे. असल में जो देने की सिफत है ये इंसान की नहीं, ये अल्लाह ताला की सिफत है. वो देता है लेता नहीं. ये जो बांटने की सिफत है ये बहुत बड़ी है. जो कुछ भी आप दे सकते हैं जरूरतमंदों को दीजिए.
1: पैगाम ऑन FM 107.
0: FM 107 पर रेडियो कतर की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है. समीन, अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बंदे अगर तुमसे मेरे मुतालिक पूछें तो मैं तो उनसे करीब ही हूँ. पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूँ और जवाब देता हूँ. इसलिए उन्हें चाहिए कि मेरी दावत पर लब्बैक कहें और मुझ पर ईमान लाएं. ये बात तुम उन्हें सुना दो, शायद कि वो राह रास्त पा लें. सामीन, मौलाना इदरीस अबकर साहब दुआगो हैं अल्लाह ताला के हुजूर. आइए हम भी इन दुआओं में शरीक हो जाएं. ऐ अल्लाह, तू हमारी सब दुआएं कबूल फरमा ले.

يهديك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर। बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल रियल लाइफ। सुनिए प्रोग्राम मनी नेविगेटर, मनी नेविगेटर, एवरी मंडे 10 AM ऑनवर्ड्स, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। योर गाइड फॉर स्मार्टर स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन। सिर्फ सुनना ही नहीं, समझना भी शुरू कीजिए।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सपा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर। साथियों, से पहले कि मैं आपसे कुछ भी किसी भी बारे में बात शुरू करूं, मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। देखिए, जरा सोचिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए सही, आप जरा ये सोचें कि जनवरी 2026 का वक्त है, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ना ही कोई पोर्टफोलियो, ना ही स्टॉक्स, ना म्यूचुअल फंड्स, बस एक बिल्कुल खाली सफा, एक क्लीन स्लेट। लेकिन इस दफा ना कहानी यही खत्म नहीं होती। इस दफा आपके पास वो चीज है जो अक्सर लोग शुरू में नहीं करते, यानी कि आपके पास मौजूद है तजुर्बा, वो एक्सपीरियंस जो ये बताता है कि कौन सी राह आसान लगती है मगर महंगी होती है, और कौन सा फैसला आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए भी आखिरकार सुकून देता है। आप जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो ये काम कर जाती है? अच्छा, बात यह है कि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या काम करता है, और ये भी जानते हैं कि कौन सी गलतियां वक्त, पैसा और मेंटल पीस छीन लेती हैं। आपने मार्केट का शोर सुना है, जल्दी पैसा बनाओ के दीवाने देखे हैं, और ये भी महसूस किया है कि गलत डिसीजन सिर्फ लॉस ही नहीं बल्कि भरोसा भी तोड़ देता है। आप ये सोच रहे हैं कि अगर 2026 में कतर में रहते हुए मैं अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा से शुरू कर रहा होता तो मैं बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से शुरू करता, ना जल्दबाजी में, ना फ्लैशी रिटर्न्स के पीछे भागते हुए, और ना ही हर नए ट्रेंड पर पैसा लगाकर। आप ये सोचते कि भाई मैं शुरू करता हूँ सुकून के साथ, सोच समझकर और पूरे यकीन के साथ, क्योंकि इन्वेस्टिंग असल में नंबर्स का खेल नहीं होता साथियों, ये जज्बात को कंट्रोल करने का खेल होता है। इसकी सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये आपको इंतजार करना सिखाता है, ये डिसिप्लिन मांगता है, और सबसे बढ़कर ये वक्त से दोस्ती करना सिखाता है। भाई, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इन्वेस्टिंग का मतलब क्लेवर होना होता है, मार्केट को बीट करना होता है, परफेक्ट टाइमिंग पकड़नी होती है, लेकिन असल सच पता है क्या है? असल सच ये है कि इन्वेस्टिंग का मतलब होता है इतनी देर तक गेम में रहना कि वक्त खुद आपके हक में काम करने लग जाए। साथियों, आज का ये एपिसोड उन लोगों के लिए है जो शुरू तो करना चाहते हैं लेकिन गलत जगह से नहीं शुरू करना चाहते। ये उन बिगिनर्स के लिए है जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। इस सफर में हम बात करेंगे उन बुनियादी प्रिंसिपल्स की जो अक्सर लोग इग्नोर कर जाते हैं। भाई, उन छोटी छोटी चीजों की जो आज स्लो लगती हैं लेकिन कल यानी कि फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती हैं। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल भी पैदा होता है साथियों, सोचिए अगर आप आज दोबारा शुरू कर रहे हो तो आप किस चीज को प्रायोरिटी देंगे, स्पीड को या स्टेबिलिटी को? भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब ही ये तय करेगा कि आप इन्वेस्टिंग को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट बनाते हैं या एक मुस्तहकम लंबा सफर। भाई, ये एपिसोड ये याद दिलाता है कि आहिस्ता चलना कमजोरी नहीं होता, सबर बोरिंग नहीं होता, और स्टेबिलिटी कभी आउटडेटेड हो ही नहीं सकती। ये सफर पैसों से जरूर शुरू होता है मगर आखिरकार ये सोच को बदल कर रख देता है। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107।

0: साथियों आपको अगर सच बताऊं तो हर इन्वेस्टमेंट जर्नी का असल स्टार्ट स्टॉक मार्केट में ही होता, ना किसी ऐप से, ना ही किसी हॉट टिप से। असल स्टार्ट होता है स्टेबिलिटी से भाई, सीधी सी बात है। इसीलिए सबसे पहला रूल ये होता है कि ग्रोथ से पहले स्टेबिलिटी, यानी कि गेट योर फाइनेंशियल हाउस इन ऑर्डर। साथियों ये एक तल्ख हकीकत है लेकिन जरूरी है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो इन्वेस्टिंग बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, बहुत देर से नहीं, बहुत जल्दी। वो समझते हैं कि अगर उन्होंने आज पैसा मार्केट में नहीं डाला तो मौका हाथ से निकल जाएगा। और इस जल्दबाजी के पीछे कुछ कॉमन वजहें भी होती हैं। दोस्त पहले से इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर हर दूसरा बंदा प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स डालता हुआ नजर आ रहा होता है, लगता है जैसे सब के सब पैसा बना रहे हैं, सिर्फ हम ही हैं जो पीछे रह गए हैं और हमारे हाथ कुछ भी नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ एक हकीकत समझना बहुत जरूरी है साथियों, कमजोर फाइनेंशियल फाउंडेशन के साथ इन्वेस्टिंग करना ऐसा है जैसे रेत पर इमारत बनाना। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, जाहिरी बात है, लेकिन जरा सा झटका और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका गिर जाता है। देखिए मैं सीधी सी बात है, कतर में ना जिंदगी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन साथ साथ याद रखने की बात यह है साथियों कि जिंदगी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट अचानक एंड हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, वीजा इश्यूज आ सकते हैं और घर से पाकिस्तान या आपके मुल्क फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अचानक सामने आ जाती हैं। और अगर ऐसे वक्त में आपके पास कैश नहीं होता ना तो आप मजबूर हो जाते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट्स सबसे गलत वक्त पर बेचते हैं, यानी लॉस के साथ, स्ट्रेस के साथ और रिग्रेट के साथ। तो भाई आपको याद दिला दूं कि इन्वेस्टिंग से पहले तीन बुनियादी काम जरूरी होते हैं। पहला कदम होता है हाई इन्वेस्ट कर्ज खत्म करना। देखिए क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और वो तमाम कर्ज जो डबल डिजिट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये सबसे डेंजरस चीजें होती हैं साथियों। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि भाई मार्केट के रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। भाई देखिए पहला कदम ये है कि हाई इंटरेस्ट कर्ज खत्म करना। देखिए क्रेडिट कार्ड्स, पर्सनल लोन्स और वो तमाम कर्ज जो डबल डिजिट इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ये सबसे डेंजरस चीजें होती हैं साथियों, सबसे डेंजरस। लोग अक्सर ये सोचकर इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि मार्केट का रिटर्न लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा होगा। थ्योरी अच्छी लगती है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, दोस्तों के साथ चाय की टेबल बैठे तो सुनने में ये थ्योरी बहुत अच्छी लगती है। रियलिटी महंगी होती है साथियों, रियलिटी ऐसी नहीं होती कि आपने चाय की टेबल बैठकर जितने भी फिगर्स डिस्कस किए वो सही होंगे। नो। देखिए हाई इंटरेस्ट डेट के साथ इन्वेस्ट करना बिल्कुल ऐसा है जैसे अपने पैरों से वजन बांधकर पहाड़ चढ़ना। आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं भाई लेकिन असल में आगे नहीं बढ़ रहे होते। देखिए क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट गारंटीड होता है ना, मार्केट रिटर्न गारंटीड नहीं होते साथियों। इसीलिए पहले कर्ज खत्म करना असल में एक रिस्क फ्री रिटर्न होता है। जब कर्ज उतर जाता है तो भाई सिर्फ पैसा ही फ्री नहीं होता, आपका दिमाग भी हल्का हो जाता है। तो भाई सबसे पहले तो आपने काम ये करना है कि हाई इंटरेस्ट कर्ज खत्म करना है। फिर भाई दूसरा कदम आता है इमरजेंसी फंड्स का, यानी कि इमरजेंसी फंड्स बनाना। भाई देखिए सीधी सी बात है, ये वो पैसा है जो इन्वेस्टमेंट नहीं होता, ये प्रॉफिट के लिए नहीं होता, ये सुकून के लिए होता है। कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107।
1: साथियों जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: यानी कि कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चे, इसमें आ जाता है अपना क्या क्या चीजें आ जाती हैं, रेंट, खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, इंटरनेट, जरूरी चीजें हैं ना, जरूरी नीड्स हैं हमारी। भाई देखें ये पैसा आपको इस बात की आजादी देता है कि जब आपकी जिंदगी कोई अनएक्सपेक्टेड सा मोड़ लेना तो आप घबरा कर गलत फैसले ना करें। इमरजेंसी फंड्स का असल फायदा ये है कि जब मार्केट नीचे जाए तो आप मजबूरी में सेल नहीं करते, आप आराम से सुकून से वेट कर सकते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है स्लीप एट नाइट मनी। भाई आगे बढ़े तो बात करते हैं तीसरे कदम की, जो कि है इनकम और एक्सपेंसेस को स्टेबल बनाना। देखें इन्वेस्टिंग से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है और कितना पैसा आप बिना स्ट्रेस के इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हर महीने पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप टेंशन में रहते हैं तो ये स्ट्रेटेजी गलत है साथी। भाई देखें सीधी सी बात है, जब इनकम और एक्सपेंसेस क्लियर हो जाते हैं ना तो इन्वेस्टिंग एक इमोशनल डिसीजन नहीं रहता, ये काम सा प्रोसेस बन जाता है। और जब फाइनेंशियल घर स्टेबल हो जाता है तब इन्वेस्टिंग आपको डराती नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंट बनाती है। भाई ये तो थी बातें कुछ फर्स्ट स्टेप की, ठीक है अब चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि होता है अपने गोल्स और टाइम होराइजन डिफाइन करना। देखिए यहाँ पर आकर ना लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट तो कर लेते हैं बहुत आराम से लेकिन उन्हें ये ही नहीं पता होता कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की क्यों है। देखिए मामला ये कि आपने ऐप डाउनलोड की, कोई ट्रेंड स्टॉक किया, फंड देखा और पैसा लगा दिया, फिर दुआ के भरोसे छोड़ देते हैं। आपको पता ही नहीं होता कि वो पैसा आपने लगाया क्यों है। ये इन्वेस्टिंग नहीं होती, ये अंदाजा लगाना होता है। अगर मैं दोबारा शुरू करता तो भाई पैसा इन्वेस्ट करने से पहले मुझसे एक सवाल पूछता ना, ये पैसा किस लिए है? रिटायरमेंट के लिए है, घर खरीदने के लिए है, बच्चों की एजुकेशन के लिए है या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए है? आपका गोल ही डिसाइड करता है साथियों कि कितना रिस्क लेना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितनी देर तक इन्वेस्टेड रहना है। देखिए शॉर्ट टर्म गोल्स ना 5 साल से कम नहीं होते। देखिए साथियों अगर आपको पैसा जल्दी चाहिए ना तो उसे मार्केट के हवाले करना तो बहुत खतरनाक हो सकता है। मार्केट्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। शॉर्ट टाइम वोलेटिलिटी रिस्क को बढ़ा देती है, इसीलिए शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कैश या लो रिस्क ऑप्शंस बेहतर होते हैं। यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स भाई 5 साल के अंदर अंदर जो हो ना उनके लिए यही मामला सही है। अच्छा अब बात करते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्स की, यानी कि आप कह लें कि 5 साल या ज्यादा। देखें यहीं पर इन्वेस्टमेंट का जादू काम करता है, जितना ज्यादा वक्त उतना कम रिस्क। टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है ये आपने बचपन से ही सुना होगा। वक्त अप्स एंड डाउन्स को स्मूथ कर देता है साथियों और कंपाउंडिंग को कम करने का मौका देता है। देखें ये एपिसोड आपको ये याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट ना मार्केट टाइमिंग नहीं है, टाइम इन द मार्केट है। जब गोल्स क्लियर होते हैं तो पैनिक कम होता है, नॉइज का असर कम हो जाता है और डिसीजन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहीं से इन्वेस्टिंग पैसे का सफर नहीं रहती सिर्फ, ये सोच का सफर बन जाती है। साथियों अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की, यानी कि सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इंतखाब, यानी कि चूज द राइट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ आकर बहुत से लोग रुक से जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ऑप्शंस इतने ज्यादा होते हैं कि डिसीजन लेना मुश्किल लगता है। एप्स, प्लेटफॉर्म्स, ब्रोकर्स, अकाउंट्स, हर तरफ इंफॉर्मेशन का शोर होता है साथियों। और इसी शोर में एक गलत फहमी पैदा होती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सपर्ट बनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सच ये है कि इन्वेस्टमेंट को एक्सपर्टीज से ज्यादा एक्शन चाहिए होता है। अगर आप हर चीज परफेक्ट होने का इंतजार कर रहे हैं तो शायद आप कभी भी शुरू ही ना कर पाए। सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट की चॉइस 3 चीजों पर डिपेंड करती है भाई, आप कहाँ रहते हैं, आप एम्प्लॉयड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और आपका टाइम होराइजन क्या है। देखिए कतर में रहने वालों के लिए ये एक फायदा है कि यहाँ टैक्स का प्रेशर बहुत कम है भाई, ये ऑलरेडी एक एडवांटेज है, लेकिन सिर्फ तब तक जब आप इसे समझ कर यूज करें। अगर एम्प्लॉयर रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है तो भाई उसे इग्नोर करना अपने ही नुकसान के बराबर है। ये अक्सर फ्री मनी होती है जो लोग सिर्फ लापरवाही की वजह से छोड़ देते हैं। देखिए कतर में फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग से ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अकाउंट्स मैटर करते हैं। रोज रोज बाय सेल करना इन्वेस्टिंग नहीं होती साथियों, ये स्ट्रेस का नया सोर्स बन जाती है। इस कदम पर रूल बहुत सिंपल होता है, अकाउंट खोलें, पैसा डालें और शुरू करें। परफेक्ट प्लान का इंतजार ना करें बिकॉज देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट, क्योंकि इन्वेस्टिंग में मोमेंटम परफेक्शन से ज्यादा कीमती होता है। भाई अब बात करते हैं चौथे स्टेप की, तो भाई अगर चौथे स्टेप के बारे में बात करें तो क्या कहा जा सकता है? देखिए छोटा शुरू करें,

0: मुस्तकिल नहीं, स्टार्ट स्मॉल एंड स्टे कंसिस्टेंट। देखिए यहाँ एक ऐसा सच है जो अक्सर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनको इस बात के बारे में बात ही नहीं करनी। देखिए वेल्थ बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए साथियों, वेल्थ बनाने के लिए वक्त और कंसिस्टेंसी चाहिए। अक्सर लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब इन्वेस्ट करेंगे, और फिर वो वक्त कभी भी नहीं आता। हकीकत ये है कि चाहे छोटी सी मंथली इन्वेस्टमेंट हो, अगर वो रेगुलर हो तो वो वक्त के साथ साथ कुछ बहुत मीनिंगफुल बन सकती है। इसका राज है कंपाउंडिंग। कहीं मत जाइएगा, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं मनी नेविगेटर ऑन FM 107।
1: साथियों, जिंदगी के सफर के लिए एक सही डायरेक्शन चाहिए, और जब बात हो पैसे की तो सही गाइडेंस भी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सेविंग, बजटिंग, फ्यूचर प्लानिंग या स्मार्ट इन्वेस्टिंग, इंट्रोड्यूसिंग प्रोग्राम मनी नेविगेटर, एक ऐसा गाइड जो आपको लेके जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस के सफर पर।
0: देखिए पैसा रिटर्न कमाता है, फिर वो रिटर्न भी रिटर्न कमाता है, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ एक्सेलरेट होती चली जाती है। ये प्रोसेस लाउड नहीं होता, बड़े खामोशी से होता है, ये हेडलाइंस में नहीं आता, ये क्विकली काम नहीं करता। तो मैं आपको किसी चने के झाड़ पे नहीं चढ़ाऊंगी कि आप रातों रात मशहूर हो जाएंगे। देखिए ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि कंपाउंडिंग काम नहीं करती, लोग इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बीच में रुक जाते हैं। कभी मार्केट गिरती है, कभी पर्सनल एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, कभी मोटिवेशन कम हो जाती है। इसीलिए रूल सिंपल है, छोटा शुरू करें लेकिन रुकना नहीं है, कंसिस्टेंट रहना है, वक्त को अपना काम करने दें, और फिर बाद में हैवी लिफ्टिंग आपके लिए वक्त खुद करेगा। भाई अब बात करते हैं पांचवें स्टेप की, यानी के डाइवर्सिफाई करें। भाई बेट ना लगाएं। इन्वेस्टिंग को अगर एक लफ्ज में समझाना होना साथियों तो वो लफ्ज है बैलेंस। देखिए मैं इसे न्यूट्रिशन की मिसाल से समझें। अगर आप सिर्फ एक चीज खाएंगे तो सेहत खराब हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इन्वेस्टिंग भी बिल्कुल ऐसी ही होती है। अगर आप अपना सारा पैसा सिर्फ एक स्टॉक में, सिर्फ एक इंडस्ट्री में, सिर्फ एक आइडिया पर लगा देते हैं तो आप रिस्क को दावत दे रहे होते हैं आंखें बंद कर। ये इन्वेस्टिंग नहीं होती, ये बेट लगाना होता है। देखिए डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है रिस्क को फैला देना। जब एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रगल कर रही होती है ना तो दूसरी उसे बैलेंस कर लेती है, और फिर भाई इस तरह आप विनर्स गेस करने के बजाय पूरी मार्केट के मालिक बन जाते हैं। बैलेंस ही रेजिलियंस पैदा करता है साथियों, और रेजिलियंस ही लॉन्ग टर्म सर्वाइवल की गारंटी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप नंबर 6 के बारे में, यानी के ऑटोमेट करें और सिंपल रखें। साथियों देखिए यहाँ एक राज है जो ज्यादातर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स शेयर करते हैं। देखिए भाई वो राज बड़ा सिंपल सा है, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो रोज इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते ही नहीं है, वो इसे ऑटोमेट कर देते हैं। मतलब ये कि हर मशीन एक ही तारीख पर एक ही अमाउंट, ना एक्साइटमेंट, ना फियर, ना ओवरथिंकिंग। देखिए सीधी सी बात है, ऑटोमेशन इमोशन को डिसीजन से निकाल देती है, और इमोशन ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि आप इमोशनली कमजोर हैं, पैसे के मामले में इमोशन काम नहीं करते भाई। जब मार्केट ऊपर होती है तो लालच डिसीजन खराब करता है, जब मार्केट नीचे होती है तो डर डिसीजन खराब करता है। देखिए ऑटोमेशन आपको आपसे ही प्रोटेक्ट करता है। इस सफर का मकसद मार्केट को बीट करना नहीं है साथियों, इस सफर का मकसद है हर हाल में इन्वेस्ट करना। अब बारी आती है भाई स्टेप नंबर 7 की, यानी कि मार्केट गिरे तो पुरसकून रहें। बात सुनने में बहुत हैवी लग रही है। देखिए भाई मार्केट क्रैशेस ना थ्योरी में बहुत सिंपल लगते हैं, लेकिन रियलिटी में ये बहुत ड्रॉनी होती हैं। बैलेंसेस नीचे आ जाते हैं, हेडलाइंस चीखने लगती हैं, और दिमाग में डाउट घुस जाता है, लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। मार्केट्स गिरती हैं, लाजिम गिरती हैं, मार्केट्स रिकवर भी करती हैं, लाजिम करती हैं, और फिर मार्केट्स ग्रो भी करती हैं। देखिए भाई मामला ये है कि जब मार्केट क्रैश करती है ना तो उस वक्त आपको हर चीज दी एंड ही लग रही होती है, लेकिन कोई भी असल में दी एंड नहीं होती। जो इन्वेस्टर्स कामयाब होते हैं ना वो सबसे तेज नहीं होते, वो सबसे ज्यादा काम होते हैं। प्रेडिक्शन नहीं साथियों।

कंसिस्टेंसी हर दफा टाइमिंग को हरा देती है साथियों। तो भाई बारी आ गई मनी मूव नंबर 4 की। सिंपल रखें। देखिए भाई, इंडेक्स स्टाइल इन्वेस्टिंग ट्रेंड्स चेस करने से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। और भाई मनी मूव नंबर 5 यानी कि लॉन्ग टर्म सोचें। शॉर्ट टर्म सोच वक्त के साथ गायब हो जाती है। तो भाई ये एपिसोड याद दिलाता है कि इन्वेस्टिंग कोई रेस नहीं है साथियों, ये एक सबर का सफर है और जो इस सफर में काम रहता है वो ही आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो भाई आज की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट टिप ये है कि बेस्ट इन्वेस्ट स्ट्रेटजी वो होती है जिसको आप लंबे अरसे तक फॉलो कर सकें, ना कि वो जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, ना वो जो सुनने में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग हो, और ना ही वो जिसे आपका दोस्त फखर से सबको बता रहा हो। असल स्ट्रेटजी वो होती है साथियों जो आपकी जिंदगी के साथ फिट बैठती हो, भाई वो आपकी इनकम के मुताबिक हो ना, और आपके टाइम लाइन को समझती हो। देखिए अगर आप अनसर्टेनिटी के दौर में भी इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो यकीन मानिए आप पहले ही ज्यादातर लोगों से कहीं आगे हैं। तो भाई ये जान लें कि मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप 2026 में यही कतर में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी दोबारा शुरू करते हैं तो भाई मैं कहती हूँ पहले अपनी फाइनेंसेस को स्टेबल करें, फिर अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करें, सही इन्वेस्टमेंट अकाउंट चूज करें, छोटा शुरू करें लेकिन रुकना नहीं है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें और मार्केट के उतार चढ़ाव में पुरसकून रहें। क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब फियरलेस होना नहीं होता साथियों, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है तैयार रहना। इस इन्वेस्टिंग के प्रोसेस के लिए ना आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, डिग्री शिग्री की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज और वो है मुस्तकिल रहना। तो भाई उम्मीद करती हूँ कि आज का ये एपिसोड आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे मनी नेविगेटर ऑन FM 107। चलिए भाई मुझे अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और आपको जरूर बताऊंगी कि आपके मनी को नेविगेट कैसे किया जाए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी। अल्लाह हाफिज़।

0: डायरेक्शन में जा रहे हैं।
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: FM 107. Time check.
1: Time check. Time check. मैं भी time check बता रहा हूँ ना. रोने की कोई जरूरत नहीं है. पता मेरे को बोल रहा है कि अभी ये कहाँ खुली नहीं है पूरी. मैं मैसेज कैसे कर दूँ? मैसेज करना पड़ेगा भाई. 6 बज गए मतलब मैसेज व्हाट्सएप पे आना चाहिए. आप नहीं करना है. मैं मेरे दूर हटो. शो करना तो मेरे को. हाँ नहीं तो आप भी मैसेज कर दिया करो व्हाट्सएप पे सुबह सुबह ना. वो मऊ आ जाएगा. मऊ हाँ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करो. मऊ आ जाएगा.

वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं जी दो हवाला कभी रहे फोन 7 पे 6:02 दो मिनट हो गए आपके एंटरटेनमेंट का। सिक्योरिटी गार्ड आज जी क्या हाल है? बढ़िया। और जैसे मैंने कहा ना सवेरे सवेरे भाई मैसेज कर दो ना मऊ आ जाएगा। पहले हमें कहा जाता, मैंने कहा आज मैं यूज करूंगा यही वर्ड डराने के लिए जैसे पहले बच्चों को बोलते थे, आज मैं आपको बोलूँ मऊ आ जाएगा मैसेज कर दो। तो 666-22107 पर मैसेज कीजिएगा जरूर, 666-22107 पर। जो बच्चे भी तैयार हो रहे हैं और स्कूल के लिए और जो बड़े बच्चे तैयार हो रहे हैं ऑफिस के लिए निकल चुके हैं उन सबको मेरा सलाम प्यार। बहुत बहुत बहुत बहुत तकलीफ होती है सुबह सुबह उठने में, एटलीस्ट मेरे जैसे लोगों को, मगर जो लोग फ्रेश माइंड से उठते हैं उनको मेरा सलूट सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैसेजेस की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद में थोड़ा सा बताऊंगा कि आज क्या है आपके लिए। भाई साहब मजा आ जाएंगे आपको मैं बताऊंगा जब। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग भाई अब्दुल जब्बार, भाई जब्बार भाई क्या हाल है भाई। और एक मैसेज क्या है भाई, हाजिरी लगा दो आसिफ भाई की, हाजिरी लगा दो। इनके ये अंगूठा पकड़ के दबा देना कागज पे, इनके प्रॉपर्टी के पेपर है हमारे पास, उस पर आसिफ भाई का ले लेना है। आसिफ भाई इधर अटेंडेंस लगा दो। वालेकुम सलाम। वसीफ भाई कहते हैं सलाम वालेकुम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वापस सुबह के शो पे आने के लिए, एक शेर आपकी तरफ मैं अर्ज करता हूँ मेरा। हाय वसीफ भाई, बहुत क्यूट ही आदमी है, बहुत क्यूट आदमी है। इनके जो शेर है वो लिखते हैं, कुछ आवाज़ें बस कानों तक नहीं जाती सीधे दिल में उतर जाती हैं, कुछ आवाज़ें बस कानों तक नहीं जाती सीधे दिल में उतर जाती हैं। आरजे कबीर आपकी आवाज़ में उन्हीं आवाज़ों, आपकी आवाज़ उन्हीं आवाज़ों में से एक है, आपके लफ्ज़ों में एक अलग सा सुकून है, आपकी बातों में अलग सा जादू है, और शायद इसी वजह से हज़ारों आवाज़ों के बीच भी दिल को बस आपकी आवाज़ ही पसंद आती है। अरे मेरा भाई, एक झप्पी झप्पी भेजो वसीफ भाई को, हाँ झप्पी भेजो वसीफ भाई, मैं झप्पी भेज रहा हूँ, प्लीज़ कबूल फरमाएं। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसा सो स्वीट ऑफ यू वसीफ भाई, आप भी मॉर्निंग में, आज बहुत टाइम बाद मिले। सलमान भाई वालेकुम अस्सलाम, प्रेजेंट लगी है आपकी। और आसिफ भाई एक और हैं हमारे, इन्होंने मैसेज किया है, आसिफ आलम भाई ने लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। और एक भाई हमारे, गुड मॉर्निंग कहानियों वाले बाबा जी स्वागत है आपका। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कि बढ़िया चल रहा है सुभाष भाई, कहानी तो सुनाएंगे भाई, एकदम मौज करा देंगे आपको, टेंशन को नहीं। खलील पराचा साहब ने मैसेज किया है, सलाम कबीर भाई, आई एम इन पाकिस्तान, प्लीज़ सेंड मी स्टोरी डेली। हाँ जी, मैं तो डाकिया हूँ जी, डाकिया डाक लाया डाकिया। अच्छा पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, सुन के आपको मजा आ जाएंगे, ठीक है। तो आज जो मैं 7:30 बजे आपको कहानी सुनाऊंगा ना भाई साहब, ये यूँ समझ लीजिए कि अभी तक की मैंने जितनी भी कहानी सुनाई है, पता नहीं 1000 के आसपास हो गई होंगी, चलो 500-600 तो हो ही गई होंगी, डेफिनेटली हो गई होंगी। उन तमाम कहानियों में से

0: भाई गिनने बैठे हुए हैं। आसिफ भाई का कुछ करो, उठवा ले इन्हें, वैन पे जाओ लाल वाली। आसिफ भाई वहीं पे जहाँ पे हो वहीं पे रहना। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जितने भी बच्चे ऑफकोर्स जो स्कूल की तरफ जा रहे हैं, भाई मुझे फोटो आया है यूनिफॉर्म में, एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो सो गया है यूनिफॉर्म पहन के। ये वाली नींद बहुत खास होती है। एक मैसेज आसिफ वाले साहब को लिखते हैं, भाई हम लोगों को जैसे स्टोरी सुनाते हैं आपकी लाइफ में फ्यूचर पर बहुत फ़ायदा देगा, क्योंकि कहानी सुनाने सुना के आपकी बीवी को जैसे तैसे मना लोगे। मानती को नहीं भाई वो मुझसे बड़े बड़े कथाकार बैठे हैं भाई, पता नहीं आपको मेरे घर पे बहुत डेंजर लोग हैं भाई। ठीक है, तो मिलते हैं फिर तला भाई की आवाज़ के बाद सुबह के अधिकार इंशाल्लाह, और उसके बाद आपसे मुलाकात होगी 10 मिनट और 33 सेकंड के बाद। मैं सही बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, आज की कहानी अगर आपने लाइव नहीं सुनी भाई रिग्रेट होगा भाई, रिग्रेट। ठीक है, जाना किधर नहीं भाई, मिलते हैं कुछ देर में। और जैसे मैंने कहा, व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं करोगे तो मऊ आ जाएगा, मऊ हाँ उठा के ले जाएगा।
1: एक पुरसुकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है। इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं। इरशादे खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिक बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो। और अब समाज फरमाइए सुबह के अज़कार FM 107 पर।

0: बहुत ही रेयरली मैंने किसी को सुना होगा कि मेरी पर्सनैलिटी और कद्दू की पर्सनैलिटी एकदम सेम है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? मैं बहरीन से, आपको बहरीन से सुन रहा हूँ. अच्छा, थैंक यू सो मच भाई बहरीन से सुनने के लिए. जुल्फिकर अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन. एक मैसेज आया, आई मेड दिस स्टिकर लास्ट मंथ. अलीना, बहुत बढ़िया स्टिकर है, यू कैन यूज़ इट इन द फैमिली ग्रुप इफ़ यू हैव इट, वरना तो कहीं पर भी चलेगा ये स्टिकर. बच्चे बहुत बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह. और एक मैसेज है, अच्छा मैं एक और कमेंट कर दूं अलीना को. अलीना, ये वैसा लग रहा है भाई, सो सीरियस मगर विद तरबूज. एक गुड मॉर्निंग कबीर भाई, अगर सुबह सुबह फ्रेश दूध की चाय और एक परोठा मिल जाए तो. ये छोटे, इनका नाम है, हाँ यासिर भाई हैं, इनको एक चाय में ना डुबो के देते बेटा, पराठा डुबो के देते यासिर भाई, चलेगा आपको बेटा, इन तक पहुँचा देना ठीक है, और 10 रियाल टैक्स लेना इनसे. यासिर भाई भी पहुँचवा रहा हूँ मैं, ठीक है मेरा भाई, टेंशन नहीं लो आप. और मैं सवाल दोहरा देता हूँ जब तक. सो मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा, मैंने दो एग्जांपल दिए आपको जिसकी वजह से मैंने ये सवाल पूछा है. तो कहा जाता है कि जैसा अन वैसा मन, और मैं चाहता नहीं कि आप सुबह ज़्यादा दिमाग लगाएं. तो हम चाहते हैं कि सुबह सुबह लोग खुशी से हंसते मुस्कुराते हुए अपने ऑफिस या स्कूल की तरफ जाएं या कॉलेज, व्हाटएवर. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप अपने आप को कौन सी सब्जी से रिलेट कर पाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस सब्जी की तरह है. एक मेरे पास मैसेज आया है बहुत प्यारा मैसेज है ये, इस तरह हमारी बहन, उन्होंने मैसेज किया, लिखती हैं, आई एम बैंगन और बैंगन की थाली, ना इधर का ना उधर का. अच्छा वैसा क्या, बट यू कैन ओनली बी अ बैंगन और अ थाली, बैंगन की थाली, यू कांट बी बोथ. मतलब ये नहीं चलेगा, चीटिंग है ये तो. या तो पर बैंगन से क्यों रिलेट किया आपने आपको अपने, बिकॉज ऑफ द थाली फैक्टर ओनली या फिर कुछ खास बात है, मुझे भी बताइएगा. एक भाई ने मैसेज किया है ये भाई, मेरे पास आज मैसेज तीन आरिफ और तीन आसिफ भाई के आ चुके हैं. एक तीसरे आसिफ भाई हैं, कह रहे हैं कबीर भाई मैं अपने आप को करेले की तरह मानता हूँ. कह रहे हैं कि मैं वैसे तो बहुत कड़वा हूँ, लेकिन अगर भरा हुआ हो जाऊँ खुशी से तो बहुत टेस्टी हो जाता हूँ. वाह, अपने सुबह सुबह जो दिमाग लगाया है माशाल्लाह. ये तीसरे आसिफ भाई, आपको सलाम भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेक्स्टिंग. ज़ीशान अहमद साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. एक और मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? भाई आपका ये सवाल ज़रूरी है, आपके सवाल ज़रूरी होते हैं, सुबह थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और मैं समझता हूँ कि मैं टमाटर की तरह हूँ. टमाटर की तरह क्यों है यार, आज पहली मरतबा किसी ने बोला टमाटर की तरह. आलू तो लोग बहुत बोलते हैं. एक और भाई ने टमाटर की तरह बोला, भाई हाय दिस इज़ कमकम खान. अच्छा पोटैटो बोला ना, टोमेटो नहीं बोला, सॉरी. और वो भी एक्सेंट के साथ अलग, आजकल बच्चे बोलते हैं टमाटो, नहीं टमाटो, क्या बोलते हैं टमाटो, टमेटो, टमेटो एंड टमाटो, दोनों भाई वही है. एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई क्या लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई मैच विद अनियन लीव्स, वेरी वेरी अंडररेटेड. अरे क्या बात है बहुत बढ़िया. सैयद ख्वाजा साहब ने मैसेज किया वगैरह, भाई मैं अनियन लीव्स की तरह हूँ, प्याज का पत्ता, वेरी वेरी अंडररेटेड. ये बहुत क्रिएटिव रिप्लाई था, आई लाइक्ड इट. वन लाइक मैं आपको देता हूँ, बहुत बढ़िया. एक मैसेज है, अच्छा राउंड वर्ल्ड, कमकम खान साहब कह रहे हैं कि मैं अपने आप को आलू की तरह मानता हूँ क्योंकि मेरी दुनिया एकदम गोल है. हमारी कौन सी त्रिकोण है मेरा भाई तो मैं सवाल एक बार फिर से बता दूं आपको. सवाल ये है सवेरे सवेरे का, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े. ये बताइए कि आप कौन सी सब्जी की तरह हैं, मतलब आपकी पर्सनैलिटी कौन सी सब्जी से ज़्यादा मैच होती है. लोग कहते रहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, मतलब जैसा खाना आप खाते हैं वैसा आपका मन हो जाता है. तो वाई नॉट आस्क यू दिस, कौन से सब्जी को आप समझते हैं कि भाई मेरी पर्सनैलिटी इसकी तरह है. मुझे तो लगता है भाई मेरी पर्सनैलिटी बिल्कुल शिमला मिर्च की तरह है. आई कैन गो विद चाइनीज ऑल्सो, आई कैन गो विद गोश्त ऑल्सो, आई कैन गो विद एनी थिंग यू वॉन्ट. सालन नहीं भी होएगा तो मैं चावल के साथ भी चला जाएगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है. बड़ा ही स्टेबिलिटी है मेरे साथ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ शिमला मिर्च के साथ. एंड आई कम इन ऑल कलर्स, यू कैन गेट ग्रीन, येलो, रेड, एंड मोस्टली पीपल लव मी. ऐसा लग रहा है, ऐसे लिख रहा हूँ शिमला मिर्च पर. एक मैं सलाम कबीर भाई, आई एम ओनली बंद गोभी. लिखते हैं बाहर से जैसा अंदर वैसा. मेरा भाई भाई लूट लेगा आज, लूट लेगा आज आप आसिम भाई, बहुत बढ़िया. आसिम भाई बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई दिया, कह रहे मेरी पर्सनैलिटी बंद गोभी की तरह भाई, बाहर से जैसा अंदर ही वैसा. भाई क्या बात है यार, मैं तालियां बजाना चाहूँगा. सुबह सुबह भाई ने क्रिएटिविटी निकाली, आसिम भाई सो प्राउड ऑफ यू. एक मैसेज आया मेरे पास, मिंट लीव्स की तरह. कामरान भाई कहते हैं मिंट लीव्स की तरह आई एम काम एंड कूल. क्या बात है, काश मैं भी ये कह पाता कि मैं मिंट लीव्स की तरह हूँ, बट कामरान भाई लव्ड योर रिप्लाई भाई, क्या बात। मैंने सोचा नहीं था कि कोई मिंट लीव्स बोलेगा, मुझे लगा वही वाले रिप्लाई आएंगे, मैं आलू की तरह हूँ कहीं भी चला जा। आई लाइक इट, समथिंग न्यू, बहुत बढ़िया भाई। एक और मैसेज है ये कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अपने आप को करेली की तरह समझता हूँ, मैं इतना कड़वा हूँ कि लोग मुझसे दूर रहते हैं। रियाज भाई ने मैसेज किया है। करेला वैसे अच्छा होता है यार, मुझे पसंद है करेला। रियाज भाई ऐसी कैसी बात कर दी भाई, ये आपने ना ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर थोड़ा सा कम करो, बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि आजकल लोगों को कूल लगने लगा है अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर के साथ कैरी ऑन करना। कुछ लोग कहते हैं मेरा गुस्सा इतना खराब है, लोग मुझसे बात नहीं करते, ये कूल नहीं लगता भाई, बुरी बात है, ठीक करो इसको, रिपेयर करो, इसमें कोई प्राउड वाली बात नहीं है। अच्छा एनीवे, बट आई लाइक द रिस्पॉन्स, एटलीस्ट यू पार्टिसिपेटेड भाई। फराज भाई कह रहे हैं सलाम भाई, वालेकुम असलम फराज भाई, क्या हाल है भाई के। एक और मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं अपने आप को हैं क्या म्यूजिक रुको कटहल की तरह ये क्या बात है ये अमृत भाई कह रहे हैं मैं अपने आप को कटहल की तरह समझता हूँ। कटहल की तरह क्यों यार, कटहल की पर्सनैलिटी कैसे होती है, मैं तो कटहल की शक्ल भी भूल गया। बताना मुझे, एक्सप्लेन करना, क्योंकि आपने एक्सप्लेन नहीं किया है। एक मैसेज है, मैं जलेबी भाई, जलेबी सब्जी थोड़ी है फराज भाई, सब्जी की बात हो रही है कह रहा मैं जलेबी इधर ना ना ना फराज भाई, यू हैव टू रिलेट योर सेल्फ टू अ वेजिटेबल नॉट मिठाइयाँ, ओके मिठाइयाँ, सब्जी भाई, सब्जी की बात हो रही है। पर ये इन्होंने अमृत भाई ने कन्फ्यूज़ कर दिया, कह रहा मैं तो कटहल की तरह हूँ पर क्यों अमृत भाई प्लीज़। अब ये कह रहे हैं कटहल क्या होती है, अरे भाई साहब मैं यहाँ फंस जाता हूँ, बताए एक तो हमारे डाइवर्सिटी इतनी ना माशाल्लाह, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश हर किसी को भाई। अब मैं कटहल कहे समझाऊँ आपको, एक सेकंड रुको यार, पाकिस्तान में कटहल को क्या कहते भाई, कोई पाकिस्तानी भाई आओ मुझे बताओ कटहल को क्या कहते हैं। पाकिस्तान से हैं मोहसिन भाई, कहाँ से हैं पहले मुझे बताएं, क्योंकि मैं कटहल बताना चाहता हूँ। अच्छा जैक फ्रूट इज कटहल सही में क्या, हाँ तो कोई पाकिस्तान में क्या कहते हैं कटहल को भाई, कोई मुझे समझाना, बिकॉज भाई आई डोंट नो कटहल कैसे समझाऊं आपको। अगर मैं टाइप भी करता हूँ एक सेकेंड, लेट मी ट्राई दिस आउट, हाँ कटहल इन उर्दू क्या नाम है इसका कटहल का, एक सेकेंड मुझे देखने दो भाई, लोड हो रहा है आज, क्या हो गया इंटरनेट को भाई, सुबह सुबह जब मुझे इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। व्हाट इज दिस, कटहल इज जैक फ्रूट ओनली, थैंक यू सो मच यार, ये मुझे जो मदद की है इन्होंने, जवाब दिखे, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद ख्वाजा मोहिद्दीन साहब। मुझे नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मैं मात खा जाता हूँ, तो इसे भाई साहब जैक फ्रूट कहते हैं, है ठीक है, क्लियर हो गया मोहसिन भाई, तो वो अपने आप को कटहल बता रहे हैं कमाल के, पर उन्होंने अभी तक रीज़न वीज़न नहीं दिया भाई कि अपने कटहल क्यों कह रहे हैं वो बस कह के निकल गए वो। तो मैं ये सवाल कर रहा था कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी सब्जी की तरह है, ये आपको बताना है। एक भाई ने मैसेज किया है, कह रहे हैं कि मेरी पर्सनैलिटी घे की, अब ये मत कहना मैं घिया नहीं पता, मैं घिया समझाने मेरी ऐसी ऐसी हो जाएगी चश्मा उतार देता हूँ भाई मेरा घिया तो पता होगा, लौकी घिया ये तो सुना होगा पब्लिक ने मोस्टली, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए मुझे नहीं लगता। इसमें नए नई जनरेशन को दिक्कत हो सकती है जो यहाँ पे पले बढ़े हैं, लेकिन जो बाकी देसी जनता है उनको तो नहीं होनी चाहिए, पता है ना पता चला क्योंकि ये समझाने बैठा तो भाई आज शाम का शो भी मैं ही कर रहा हूँगा बट आई होप सो पता हो। एक भाई ने मैसेज किया है कि क्या नाम है इनका, सर नाम बताया अपना, अच्छा माजिद भाई कह रहे हैं कि भाई मेरी पर्सनैलिटी अरवी की तरह है, मैं बहुत रेयर हूँ। अरवी रेयर है क्या, पता नहीं मैं, आई डाउट अरवी गोश्त तो हाँ ठीक है मैं मान सकता हूँ, पर्सनली मेरे को अरवी पसंद नहीं है, पर आप तो अच्छे आदमी लग रहे हैं भाई। एक मैसेज है तौकीर अहमद भट्ट साहब का, लिखते हैं गुड मॉर्निंग कबीर जानी, करेले की तरह, तौकीर साहब आप करेले की तरह तो नहीं लगते यार, अभी तक आपने कोई कड़वी बात तो करी नहीं। किसी दिन आप मेरे से कॉल पर लड़ो तौकीर भाई, आप एक दिन कॉल करो और खामखा मेरे से भिड़ जाओ, एक दिन बैठ जाओ फिर मैं आपको टाइटल जरूर दे दूंगा। एक मैसेज है, आई एम हरी मिर्ची जो लोग एवं फिजूल जलते हैं आई थिंक इस तरह मैंने करी साफ सीधी बात, मैं हूँ जी हरी मिर्ची, खामखा लोग जल जाते हैं ये अच्छा था गुरु। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम तनवीर अहमद साहब, क्या हाल है भाई तनवीर के बाद मैसेज किया फरद भाई ने, फरद भाई भी हंसने हैं। और एक भाई कह रहे हैं घिया क्या होता है, अरे यार ये चाय का थर्मस मेरे सर पे मार दो यार, मैं नहीं समझा पाऊंगा भाई घिया क्या होता है। मेरे से मत पूछो, सही में बता रहा हूँ। ये एक तो नाम ऐसे ऐसे है ना भाई, हर किसी की भाषा और रीजन की तरफ चेंज हो जाता है कि बताना मुश्किल है। एक भाई ने मैसेज किया है, क्या कह रहे हैं ये, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो आलू जैसा हूँ, हर किसी के साथ फिट हो जाता हूँ, बच के रहो, ये दुनिया फिट होने वाली है नहीं। इरशादुल्ला यूसुफ रई साहब, मैं बताऊँ आपको, कहें अरवी रेयर है क्योंकि कोई खाता नहीं। भाई ने मैसेज में रोस्ट कर दिया खाजा भाई ने, कह रहे हाँ रेयर ही तो हो तुम, खाता कौन है तुम्हें। ये भी सही है। और एक मैसेज आया, भाई ने बड़ा प्यार से इंट्रोड्यूस किया, सलमान भाई ने कह रहे हैं मीट मी माई सेल्फ स्वीट पोटैटो। यार ये तो मैंने सोचा नहीं था, बट वेरी नाइस, यू आर स्वीट पोटैटो, वेरी नाइस स्वीट पोटैटो, हाउ आर यू, दिस इज शिमला मिर्च, हाउ आर यू डूइंग टुडे। मैं तो भाई अपना वो शिमला मिर्च मान लो, सही बता रहा हूँ, हर कलर में मिल जाऊंगा आपको, ठीक है, और मुझे ग्रेवी में, चावल में, कहीं भी गाल दो भाई, बढ़िया टेस्ट आएगा भाई, और जिन्हें नहीं पसंद उन्हें मैं बिल्कुल नहीं पसंद। साफ सीधी बात है, तो आई रिलेट मोर टू शिमला मिर्च, आई थिंक सो, क्योंकि उसके सारे पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने देखे तो मेरे से एकदम मैच से खाते हैं भाई। एक मैसेज है, कबीर भाई आई रिलेट माई सेल्फ टू सूरन की सब्जी, आपको हम स्टोरी क्यों नहीं भेज रहे हैं। पहले आया, आई रिलेट माई सेल्फ टू दिस, आप मुझे स्टोरी क्यों नहीं भेज रहे, पहले मैं स्टोरी अब भेजूंगा आपको। तनवीर भाई पहले मुझे बताओ ये सूरन की सब्जी क्या है। या अल्लाह। भाई अब ये कौन सी सब्जी है, सूरन की सब्जी मैंने आज तक नहीं सुनी है, हो सकता है कि मेरी तरफ इसे कुछ और कहते हो, किसी को पता है तो बताना भाई, या मुझे नहीं पता भाई, पहले बताओ कहानी भेज दूंगा, वो टेंशन फ्री रहो आप। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम मिसेस अहमद हेयर, और वो बहन कहती हैं कि मैं, मुझे लगता है कि प्याज की तरह हूँ, कोई यूज़ करता है अपने मुफाद के लिए। अच्छा, अरे क्या क्या बात, मतलब इतनी इतना गहरा थीसिस लिखा है इस पे, माशाल्लाह। जितनी भी बहनें हैं जिन्होंने आज मैसेज किया है, उनके रिप्लाई ऐसे तगड़े हैं ना, क्रिएटिव है माशाल्लाह, वेरी गुड बहन, हाई फाइव दूर से आपको। फरहत भाई कह रहे हैं ओ माई गुडनेस, अरे गुडनेस, हरा धनिया कहते हैं, हरा धनिया को क्या कहते हैं, है सूरन की सब्जी, नहीं कुछ और होता होगा। यूसुफ भाई आप अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना, मुझे नहीं पता क्योंकि सूरन की सब्जी क्या होती है। भाई मैं कंफ्यूज हुआ, ऐसा लग रहा है क्रिस्टोफर नोलन की पिक्चर चल रही है, कौन क्या कह रहा है। यूसुफ भाई अपने आप को हरे धनिया की तरह मानते हैं, पर आप याद रखिएगा हरा धनिया फ्री फंड में भी मिल जाया करता था भाई एक ज़माने में। यूसुफ भाई बहुत ज़्यादा आम बना रहे हैं अपने आप को आप। और क्या कह रहे हैं, सुरंग सिमिलर अरबी है क्या, अब मेरे को और कन्फ्यूज़ कर दो सुभाष भाई, मैं मतलब टेबल पर सर मार लूँ दो तीन बार। हरा धनिया इज कोरिएंडर, हाँ वो तो हरा धनिया तो मेरे, ओ माय गॉड फराज भाई आपको क्यों लगा मुझे हरा धनिया नहीं बताओगा। एक मैसेज है, ये सब सब्जी कैरेक्टर्स को आलू मटर की स्टोरी में डाल दें, इमेजिन करो बहुत बढ़िया गाने बनेगी सदर बहन। मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ये मैं बताऊँ, जितने लोग भी अपना नाम बता रहे हैं ना, मैं एक काम करूंगा, मैं AI से स्टोरी बनाऊंगा, जिसने अपने आप को बोला है ना कि मैं अरवी की तरह हूं, तो मैं उसे अरवी की तरह ही उसका AI से बनाऊंगा। एक भाई जो कह रहे हैं ना मैं बिल्कुल आलू की तरह, उनको आलू ही बनाऊंगा मैं आलू हूं रे, देखते हैं वो स्टोरी। सुमुल मैंने मैसेज किया है, क्या है, याम बोलते हैं सूरन को, अब याम क्या है ये, जिमलीखंड अपने एरिया में मुंडा भी बोलते हैं ये, मैं जाऊं गाना चला तो मैं जाऊं, मेरी जरूरत लग नहीं रही मुझे, ये क्या चीज है ये। एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, टिंडे की तरह हूं, सबको पसंद नहीं आता मेरा, भाई माइक ड्रॉप मोमेंट, भाई माइक ड्रॉप मोमेंट, ओ बहुत बढ़िया फराज भाई, फराज भाई कह रहे हैं मैं भाई टिंडे की तरह हूं, हर किसी के समझ में नहीं आता भाई। और एक मैसेज है, ज़ुल्केफ़ खान साहब को लिखते हैं टमाटो, ओ माय गॉड आप टमाटो की तरह कैसे हैं, मुझे एक्सप्लेन करें प्लीज। एक और मैसेज आया है, मैं तो पलवल की तरह हूँ भाई। बहुत कम मिलता हूँ पलवल, एक्चुअली में कम मिलता है भाई। ये आपने बहुत सोच विचार कर रिप्लाई दिया भाई, आई लाइक इट, क्या बात है भाई, बहुत इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव। और ये जो मुझे पलवल वाला मैसेज किया है ना, एक सेकेंड ना, व्हाट्सएप को क्या हो गया, व्हाट्सएप भी झूम गया आपका रिप्लाई सुन के। ये जो है मुझे मैसेज किया आसिर भाई, आसिर भाई एक नंबर भाई, एक नंबर भाई, जबरदस्त रिस्पांस भाई। एक कॉल डालूं जरा मैं, एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम
1: भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई।
0: अरे भाई साहब क्या हाल है आपके, हाय कैसे हैं आप, इतने टाइम बाद आपने मुझे याद किया। कैसे हैं?
1: वही हड्डी वही खान है, सर में लंबे लंबे बाल है, आप सुनाए आप कैसे?
0: क्या बात है ब्रो, क्या रैप किया है तो प्रिंस भाई मैं तो बढ़िया।

0: भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। ये जो है सवेरे सवेरे आज हमने कहा तो लोगों थोड़े मजे कराते हैं भाई, हंसते मुस्कुराते लोग जाएं अपने ऑफिस को।
1: मैंने सुना इसीलिए ज्वाइन किया आज अर्ली मॉर्निंग।
0: तो बताइए आपकी पर्सनालिटी कौन सी सब्जी की तरह है प्रिंस भाई, किससे रिलेट करती हैं आप?
1: मेरी पर्सनालिटी भाई वो सब्जी में आता है या नहीं आता है आई डोंट नो अबाउट।
0: भाई आना चाहिए नहीं, जवाब मैं खारिज कर दूंगा। हाँ
1: अच्छा, मैं हूँ जंजबीर की तरह।
0: ये क्या है?
1: जंजबीर जिंजर।
0: अच्छा जिंजर की तरह है। हाँ ठीक है, सब्जी में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है आई इंक्लूड, पर जिंजर की तरह क्यों मानते हैं अपने आपको आप?
1: क्योंकि भाई कोई मुझे पसंद करता नहीं और मेरे बिना कोई रह नहीं सकता।
0: ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जिंजर तो मतलब बहुत पसंद किया जाता है, ऐसा भी है कि कोई जिंजर पसंद नहीं करता? क्या बात कर रहे हो यार, जिंजर गार्लिक ब्रेड
1: जिंजर को कोई नहीं पसंद करता, उसको किसी ना किसी चीज में डाल के इस्तेमाल करना पड़ता है।
0: ओहो तो आप जो है सिंगल नहीं जा पाते हैं कहीं? आपको अच्छा,
1: लोग मुझे सिंगल ही अफोर्ड नहीं कर पाते।
0: माइक ड्रॉप मोमेंट भाई, माइक ड्रॉप। बहुत बढ़िया प्रिंस भाई, एक नंबर भाई। ये अच्छा बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और प्रिंस भाई क्या चल रहा है सवेरे सवेरे?
1: मेरे बिना रह भी नहीं पाते,
0: रह भी नहीं पाओगे,
1: स्वाद नहीं आता ना।
0: हाँ बात तो सही है, जिंजर मैंने सोचा नहीं था कोई बोलेगा, पर प्रिंस भाई ऑन पॉइंट भाई, यू नेल्ड इट ब्रो, बहुत बढ़िया बात थी। और बताइए आज ये सुबह सुबह इतना जोश जो है माशाल्लाह, मुझे अच्छा लग रहा है। किधर जा रहे हैं आप प्रिंस भाई, काम पे निकले हैं अभी सुबह सुबह?
1: भाई मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ।
0: अरे बहुत बढ़िया, पर मुझे अच्छा लगा आज आपने कॉल करी प्रिंस भाई, काफी टाइम बाद सुबह सवेरे बात हो रही है। रियली हैप्पी, आई होप आपको मजा आ रहा है।
1: टॉपिक बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने सोचा चलो हम भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर देते हैं।
0: हमें तो समूल मैंने मैसेज किया सुबह सुबह सब्जी मंडी खोल दी, आलू लिए भिंडी।
1: सही है भाई, सही है।
0: ठीक है प्रिंस भाई, बहुत शुक्रिया भाई, और बस दुआएं आपके लिए भाई, दिन बढ़िया जाए आपका भाई।
1: ओके ब्रदर, ठीक है,
0: ख्याल रखिए भाई।
1: कल की तरह डिबेट मत शुरू कर देना भाई।
0: ना ना छोटे के चक्कर में ना कोई दिमाग नहीं लगा भाई, इसलिए मैंने ये पूछ लिया भाई, मजे इसी में आते हैं भाई। जिंदगी में टेंशन बहुत है भाई, वैसे ही है ना,
1: इतनी सारी बातें सुनने के बाद मैंने सोचा आज फोन करना मेरा बनता नहीं है।
0: अरे क्यों,
1: कल मैंने फोन ही नहीं किया
0: आपके साथ,
1: डिबेट थोड़ी ना करनी थी टॉपिक पे।
0: मैं आपके साथ हूँ भाई, आई कम्प्लीटली अंडरस्टूड द पॉइंट, दैट्स व्हाई आज मैंने टॉपिक के ही बिल्कुल गर्दन मरोड़ दी भाई। ठीक है,
1: बढ़िया बढ़िया,
0: थैंक यू भाई। ख्याल रखिए प्रिंस भाई अपना,
1: आप भी अपना ख्याल रखिए और सारे लिसनर्स भी। थैंक यू भाई,
0: बहुत बहुत शुक्रिया भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा मैं सवाल दोहरा देता हूँ, सवाल मेरा ये है कि आप किस सब्जी की तरह आपकी पर्सनालिटी ही बताइए। तो मोहम्मद वकास इकबाल साहब लिखते हैं, सलाम अलैकुम कबीर भाई, वालेकुम सलाम मेरी जान, लिखते हैं आज प्याज का क्या भाव है? प्याज का भाव तो मुझे सच में नहीं पता है, विच इज नॉट गुड, क्योंकि मेरे घर वाले अगर ये सुन रहे हैं तो मैं उनको बहुत धोखा देता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे पता है, पर मुझे नहीं पता है। एक मजे, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं, मैं आपके बारे में बताऊँ तो मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं उस मटर की फली की तरह हूँ सीजन में। एक सेकंड, बहुत गहरी बात लिखी है भाई आपने, व्हाट्सएप मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, एक सेकंड, अरे पढ़ने दो यार। हाँ क्या लिखा है, मैं उस मटर की फली की तरह हूँ, सीजन में ही मिलता हूँ और मिलने के बाद लोग मेरे मटर निकाल के फ्री में जमा लेते हैं, ज़रूरत जब लगती है तभी इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ऐसे हमारी महंगाई उन्हें मार डालती है। मेरा भाई, अरे भाई साहब मुदस्सर भाई कहाँ तक चले गए यार। तालियां तालियां भाई, मुदस्सर भाई नेल्ड इट भाई, नेल्ड इट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या बात है, मैंने इतना गहरा नहीं सोचा था भाई, तो बिल्कुल भाई साहब हाईवे पे चले गए तो कमाल है। इनके बाद जो है एक मैसेज आया, अहमद हेयर, मैं शिमला मिर्च हूँ क्योंकि मैं आसानी से चालाक हो जाता हूँ। बेटे इसका क्या मतलब, चालाक कब हो रही है शिमला मिर्च? कमालुद्दीन शेख साहब 4 रियाल बता रहे हैं प्याज का दाम। ये बहुत सही कर रहे हैं आप। फरहत भाई कह रहे हैं सुबह सुबह मार्केट खोल दी भाई, आज यही करना था। एक मैसेज आया, भाई को बोलो कि अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन कुछ लोग कूट कूट कर डालते। इरशादुल्लाह यूसुफ़ साहब कह रहे हैं कि आपने आपको जिंजर जो प्रिंस भाई ने बताया बोल रहे हैं वो सब तो ठीक है जो आपने बोला, लेकिन कुछ लोग कूट कूट कर डालते हैं भाई, ये भी याद रखना। ये अच्छा रिप्लाई अच्छा था भाई, लाइक्ड इट। और मैसेज क्या है मुझे, ये हमारे जो है विनेश भाई कैसे मेरे भाई, कह रहे हैं गुड मॉर्निंग कबीर भाई, विनेश शेयर, दिस इज सूरन। ये है सूरन, ये है क्या चीज़, आपने मुझे सूरन वेजिटेबल भेज तो दिया विनेश भाई, ये मैं पक्का शुरू आपको भी नहीं समझ में आ रहा क्या ये। भाई ने मुझे निकाल के इंटरनेट से भेज तो दिया, पता भी नहीं इस भाई को भी नहीं।

0: मैं पक्का जोरू भाई। गणेश भाई सच्ची बताना, आसिफ भाई कह रहे हैं अवाकाडो किधर है, ये तो कोई रईस आदमी बताएगा भाई। कोई रईस अल्लाह के रहमो करम से बहुत दौलत वाला हो कॉल कर लो, आप हैं अवाकाडो। अभी तक कोई अवाकाडो नहीं है भाई जनता में, सब आलू टमाटर भिंडी से रिलेट कर पा रहे हैं, कोई अवाकाडो नहीं मिला मेरे को अभी तक। एक मैसेज, नो भाई इट्स वन ऑफ माय फेवरेट वेजी ब्रो। वनीश भाई लेकिन अब इसको कोई और नाम है क्या, बिकॉज मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया, क्या चीज़ है मेरे को पता नहीं है, समझ रहे हैं आप। मुझे भी सेंड करो मैं भी देखूँ, ऐसा लग रहा है बहुत ही नायाब चीज़ है कोई, क्योंकि मुझे भी नहीं पता भाई ये, मुझे भी नहीं पता। तो माज भाई सवाल ये है कि आप किस सब्जी की तरह है, मतलब आपकी पर्सनालिटी कौन सी सब्जी की तरह है, ये सवाल है आज का। हमने सुबह सुबह आज मंडी खोल दी भाई, तो मैंने तो बता दिया मैं तो शिमला मिर्च की तरह हूँ भाई। आप मुझे ग्रेवी में, चावल में, किधर भी गाल दो भाई बढ़िया करके, और आप चाइनीज बनाओ कुछ भी बनाओ, मैं हर जगह सेट हो जाता हूँ और अलग अलग रंगों में भी आता हूँ और थोड़ा सा दूर से महंगा भी लगता हूँ भाई। तो आप किस सब्जी की तरह खुद को रिलेट करवाते हैं। फरद भाई कह रहे हैं भाई दूसरे को रोस्ट क्यों कर रहे हैं, सुबह सुबह लोग खुल जाते हैं भाई एकदम। एक मैसेज है, जमीन कंद बोलते हैं सुनन को। अब जमीन कंद क्या है, एक तो ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही है इस फल की भाई और सब्जी की। पहले किसी ने बोला कि सूरन है, फिर बोला कि सूरन को ये कहते हैं, फिर बोला कि जमीन कंद बोलते हैं, ये है क्या चीज़, हम दिल्ली वालों तक तो क्यों नहीं पहुँचती हैं चीज़ें। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या सुबह सुबह सब्जी मंडी खोल ली। जी भाई उसमें भाई मेरा ठेला लगा हुआ है मंसूरा के पास में, शीशे वाली बिल्डिंग है ना वहाँ पे, तो आलू ले भिंडी ले अदरक सब मिलेगा आपको, उधर आ जाना। एक मैसेज है, माज अदरक कहीं से भी बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारी मोना बहन ने मैसेज किया है माज भाई को, आई डोंट थिंक इसके बाद माज भाई अपने आप कुछ रिप्लाई कर पाएंगे। माज भाई यू कैन स्टे इन साइलेंट, यहाँ कोने में बैठ जाइए प्लीज़, ये कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, बस बैठ रहे दो माज भाई इधर आ जाओ। इनके मैसेज है नदीम भाई का, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। नदीमा कह रहे हैं भाई मैं तो ड्रमस्टिक हूँ, बाहर से कड़क अंदर से नरम और स्वीट, मेरा भाई क्या चूज किया भाई। अपनी जनता है तो क्रिएटिव भाई, माशाल्लाह। अभी एक और भाई ने, ख्वाजा साहब ने मैसेज किया मुझे, हाँ सैयद ख्वाजा साहब मैसेज करके मुझे बता रहे हैं, सूरन इज लाइक दिस, इसके लीव्स पर। मुझे ख्वाजा भाई मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सूरन की सब्ज़ी नहीं खाई है, मुझे कसम से नहीं पता, इसको देख के भी मैं जानता हूं कि मैंने इसको कहीं नहीं देखा, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मुझ तक पहुंच ही नहीं भाई ये। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम बब्बर शेर मेरा भाई, कहता क्या मुझे सेंड करो मैं देखता हूं, सूरन टाइप करो सूरन की सब्ज़ी। यूसुफ भाई कह रहे हैं कभी नहीं क्या सब्ज़ी है, मुझे कुछ नाम समझ नहीं आ रहे। यूसुफ भाई हाई फाइव भाई, हाथ में लाइए, हाथ में लाइए जी, ऐसा ही है भाई। एक मैसेज है रियाज भाई का, कह रहे हैं भाई मैं तो गाजर हूं, लोगों की आंखें खोलता हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या कह रहे हैं, मैं गाजर हूं जिनकी नजर कमजोर है उनकी आंखें खोलता हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई।
0: अरे मालिक क्या हाल है, कमाल भाई सब बढ़िया
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: भाई। जी कमाल भाई, आप कुछ को खुद को किस पर्सनालिटी से मैच करते हैं, कौन सी सब्जी आपको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी की तरह है भाई।
1: भाई हमारी पर्सनालिटी तो आलू की तरह है, जब कुछ भी नहीं मिले तो इस्तेमाल कर लो और सब्जी में मिला लो,
0: कतलियां बना लो, आलू गोश्त में डाल दो, चावलों में डाल दो, बिरयानी में डाल दो, ऐसा सीन है आपके साथ है।
1: ऐसा सीन है। और भाई जो आप सूरन की बात कर रहे हैं, तो सूरन खाने में बड़ा टेस्टी है, बस उसके अंदर बिना खटाई के आप नहीं खा सकते हो, खटाई डाल के पकाया जाता है।
0: यार कमाल भाई मुझे ये बताइए, ये हम तक क्यों नहीं पहुंची, मैं तो पहली मर्तबा सुन रहा हूँ भाई, ये
1: क्या बात कर रहे हैं कभी
0: भाई, भाई।
1: में क्या यहाँ पे भी मिलते हैं, हर जगह मिलता है भाई, देखिए सूरन हो गया, बंडा हो गया, और दूसरा क्या,
0: बंडा क्या है,
1: अरवी हो गई, बंडा भी उसी की नस्ल का है।
0: यार मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या,
1: अच्छा
0: ऐसा भी है, ओके आज मेरी आंखें खुली भाई, 30 साल का बुरा घोड़ा होने का समझ में आ रहा है मुझे, ऐसे भी कोई चीजें दुनिया में, मेरी आंखें खोलने के लिए शुक्रिया। अच्छा मैंने कभी
1: में मिलता है पूरे, हाँ हर जगह मिलता है,
0: कभी नहीं खाया भाई मैंने, सीरियसली मैंने कभी नहीं खाई, बट ट्राई जरूर करूंगा कमाल भाई। थैंक यू।
1: और बनाने वाला चीज़ भाई, उसको बनाने के लिए जो है,
0: हाँ हाँ बनवा लेंगे, लेकिन
1: कोई नहीं बनाने वाला है, नया कोई बनाने वाला है तो फिर समझ लो कि आप छीलोगे तो भी आपका हाथ में खुजली होगी
0: हाँ।
1: और खाओगे तो गले में खुजली होगी, ये हाल है।
0: रहन दो भाई फिर कोई दिक्कत नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद। पर आज की कहानी सुनिएगा कमल भाई, आपको सच में मजा ही आ जाएगा। आज टॉप थ्री लेवल की कहानी है आज की।
1: ठीक है भाई, हम तो आपके साथ हैं भाई।
0: डन मेरा भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मॉर्निंग में हमेशा साथ रहेंगे।
0: थैंक यू भाई, बिल्कुल मैं मॉर्निंग में जब तक साथ रही मेरे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज। और कमाल भाई के बाद मैं सवाल दोहरा दूं कि मैंने सवाल पूछा है कि आपकी पर्सनालिटी कौन सी सब्जी से मैच खाती है। तो एक मैसेज आया है मेरे पास और ये हमारी बहन समीरा अजीज जी ने मैसेज किया, वो लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम, आई कंसीडर माई सेल्फ करेला, मैं खुद को बहुत पसंद हूँ बट दूसरों को नहीं। ये बढ़िया बता दो, आज जितनी खवातीन हमारी बहनें जिन्होंने मैसेज किया है, भाई साहब कतई क्रिएटिव मैसेज है, कतई क्रिएटिव। अच्छा एक और मैसेज है, क्या है ये सब, आंखें खोलो बेटे, अभी अभी ज्वाइन किया आपने बेटे, तला इनकी आगे चेक करो, इनकी आंखों की पुतलियां इधर उधर भागनी है। तला भाई सीधे बैठो, अभी आंख चेक कर रहे हूँ आपकी। ये मैसेज किया है, ये स्टोर्स में कोने में पड़ा रहता काजा साहब कह रहे हैं सूरन की सब्जी के बारे में, कह रहे हैं स्टोर में पड़ा रहता कोने में, कोई नहीं पूछता, सर पोड़ने वाला पत्थर है। इतना खतरनाक रोस्ट किया है इन्होंने सब्जी को। नदीमा कह रहे हैं सूरन इस कद्दू देख के तो ऐसे ही लग रहा है भाई, मेरे समझ में नहीं आया सूरन क्या है। बट एनी वे एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, करेले की तरह अपने आप को बताया गया है दोबारा से, नाम नहीं बताया इन्होंने। और मैसेज है, मैं सब्जी बेचने वाला हूँ, क्या बेच, क्यों बेचने वाले भाई, व्हाट इज रॉन्ग। एक मैसेज है, इन सब सूरन वालों से कहें कि पक्का पकाकर खिलाएं और समझाएं। ताहिर भाई मैं आपके साथ हूँ, थैंक यू सो मच, ये मैं कह नहीं पा रहा था क्योंकि नाम से पहले आरजे लगा था, पर आपने ये बहुत ही रूट बात बहुत प्यार से बोल दी कि सूरन वालों पहले खिलाओ मना के फिर बात करेंगे। और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ग्रोन अंडरग्राउंड, क्या है ये, अच्छा ओ अंडरग्राउंड बनती भाई। विनेश भाई आपको खिलानी पड़ेगी, विनेश भाई अब आपने बोल तो दिया है। एक मैसेज है, आई थिंक एवोकाडो सूट्स में ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती, जिनको आती हूँ तो इन्जॉय माई कंपनी, और कब अच्छी हूँ कब बिगड़ गई वो हमेशा मिस्ट्री रहती है। सिद्धराबेन कह रही है, मैं तो देखो साफ सीधी बात है, मैं हूँ एवोकाडो की तरह, समझ में को नहीं आती हर किसी को भाई। एक मैसेज कॉल आ रही है, सॉरी कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। क्या सब्जी मंडी लेके बैठे
0: भाई? हां मंडी ले भाई साहब, हाथ दूर रखो, ये फ्री का हरा धनिया, फ्री का हरा धनिया मत ले जाओ ठीक है। जैस भाई क्या कर रहे हो,
1: टिंडे का क्या भाव है भाई साहब?
0: टिंडे टिंडे खाते हो आप? सीरियसली बताओ पहले तो।
1: नहीं भाव पूछना बस
0: भाई, जो जिस शख्स को टिंडे नहीं पसंद मैं उसे देता ही नहीं, टिंडा इज माय फेवरेट भाई, मैं नहीं दे सकता।
1: ना ना भाव बताओ,
0: मैं अगली दुकान में जाओ भाई, वो ये सरवर मिर्ज़ा की दुकान है अगली, उन पर जाके टिंडे लो। भाई साहब 50 रियाल किलो चल रहा है, बहुत महंगा है, हमारे यहाँ सोने का वरख चढ़ा के देते हैं हम लोग, क्यों हवा निकल गई
1: भाई,
0: दिया। और बताओ जैस भाई आपकी पर्सनालिटी भाई किससे मैच हो रही है, कौन सी सब्जी से मैच हो पा रही है?
1: अरे कौन कौन सी सब्जी से मैच करेंगे, सब में मिक्स हो जाना।
0: अरे कोई तो होगी सब्जी से रिलेट कर पाते हो, एक जैसे मैंने कहा भाई मैं तो बिल्कुल शिमला मिर्च मानता हूँ अपने आपको भाई एकदम।
1: हाँ भाई,
0: हाँ
1: हाँ भाई साहब, लो बजट वाले आलू कहीं भी,
0: वो तो छोटे छोटे से आते हैं।
1: हाँ जी भाई साहब।
0: अच्छा बिरयानी में आप ही मिलते हैं इसका मतलब?
1: हाँ।
0: अच्छा फिर ठीक है।
1: क्या टॉपिक लेगा मैडम आज, सबकी जो है सबकी
0: भाई। लेकिन बताऊं अभी ये रियाज भाई का मैसेज मुझे बड़ा क्रिएटिव लगा, रियाज भाई कह रहे हैं भाई मैं गाजर की तरह हूँ, जिनके जिनकी आंखें खराब है आंखें खोल देता हूँ मैं। देख रहे हैं आप ओरा फार्मिंग,
1: और भी कुछ खोल देते होंगे
0: भाई, ओरा फार्मिंग है ये, और है भाई
1: जबरदस्त।
0: तो भाई ये चल रहा है सुबह सुबह, मैंने कहा कहां
1: आ गए देखो, क्रिएटिविटी निकल के आएगी भाई, जबरदस्त जबरदस्त,
0: बिल्कुल भाई बिल्कुल। देखते जाओ सवेरे सवेरे क्या करते हैं हम इंशाल्लाह। जैस भाई और आज की कहानी,
1: हम भी कंफ्यूज हो गए कि सूरन क्या है ये, देखा तो लगने में तो अरबी जैसा लग रहा था भाई,
0: वैसा ही कुछ है भाई, वैसा ही कुछ है पर खाया नहीं।
1: जैसे हमारे इंग्लिश में कि एलिफेंट फूड, अरे भाई हाथी का पैर इतना बड़ा।
0: रहन दो भाई आप आलू ही खाओ। रहने दो ये सब, इस तरह जिस रास्ते जाना नहीं मांगा पता क्यों पूछना, साफ सीधी बात है।
1: और भाई ने एक ने तो ये बता दिया, हाथों में भी कुछ ली होगी, गले में भी कुछ ली होगी।
0: हाँ तो फिर
1: दे दो भाई इसको, तो
0: रहने दो भाई, हम देसी आदमी भाई, हम चटनी खा लेंगे रोटी के साथ, कोई टेंशन नहीं।
1: जाए बिल्कुल भाई साहब,
0: ठीक है भाई,
1: चलो ठीक है, देखते हैं भाई
0: कैसे डन है भाई। ख्याल रखो भाई, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तो मैसेज क्या है, माज भाई ने लिखते हैं, मैं आलू हूँ रे, सबके साथ चला जाता हूँ, चिकन मटन बिरयानी पालक भिंडी एक्सेट्रा, किसी का भी साथ मिला दो सपोर्ट कर देता हूँ, कह रहे हैं बट इज़ नॉट अरवी और रतालू। भाई देखो माज भाई, मेरे को कन्फ्यूज हूँ, ऑलरेडी कन्फ्यूज हूँ भाई मैं, प्लीज़। एक मैसेज है, मैं मशरूम की तरह हूँ जो कि क्या दूर करता है, शायद भाई मैं समझा नहीं, क्या दूर करता है मशरूम। एक मैसेज है, कोई कबीर भाई को सूरन का सालन पार्सल करो, ये इसका सालन भी है। अच्छा विनेश भाई ने मुझे फोटो भेजा है, ये नहीं पता था मुझे। एक मैसेज है, चलें कबीर भाई, मेरा एक दोस्त है जायद नाम है, वो गोभी की तरह है, पेट में गैस बना देता है। लोग अपने अपने दोस्तों को रोस्ट कर रहे हैं भाई इस शो के माध्यम से, समझ रहे हैं आप कहाँ पहुँच चुके हैं हमारा लेवल शो का। 5 साल हो गए मुझे शो करते करते यहाँ पे, अब लोग मेरे शो के जरिए अपने वालों को रोस्ट कर रहे हैं। इरशाद यूसुफ उल्ला जही साहब कह रहे हैं, मेरा एक दोस्त है जायद, गोभी की तरह है भाई, पेट खराब कर देता। ये क्या बात है। एक मैसेज है, भाई अपन सैलरी आए तो एस्फेरगस, पैसे खत्म हो तो मोरिंगा। भाई बहुत क्रिएटिव था भाई ये, बहुत भारी रिप्लाई था ये, बहुत भारी रिप्लाई था भाई। ये मैसेज क्या है, मोइन अहमद साहब ने कह रहे हैं, भाई देखो जब मेरे जेब में होते हैं पैसे, सैलरी आई होती है ना, उस टाइम पे होता हूँ मैं एस्फेरगस, और जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो मैं मोरिंगा हूँ। सेम सेम बट डिफरेंट। एक नंबर भाई, एक नंबर रिप्लाई था ये। और एक मैसेज क्या है, तला भाई कह रहे हैं, मैं बैंगन हूँ रे, हैदराबादी, हर जगह फिट्टा। एक मैसेज है, अच्छा पेन मशरूम से जाता है, शायद भाई कह रहे हैं मशरूम की तरह हूँ मैं, दर्द दूर कर देता हूँ। ये मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ, ऐसा होता है क्या। एक मैसेज है, फर्स्ट टाइम हर्ड अबाउट सूरन वॉज वेन राजेश खन्ना मेड उसके कबाब इन बावर्ची मूवी। क्या बात कर रहे हो, इसे कबाब ही बने कासिम भाई, मैंने नहीं सुना भाई। एक मैसेज है, भाई मैं स्प्रिंग अनियन की तरह हूँ, कन्फ्यूज सा हूँ कहाँ सेट होना है। हुसाम भाई कह रहे हैं, मैं हूँ जी स्प्रिंग अनियन, मुझे पता कौन नहीं भाई कहाँ जाना है, कहीं भी गाल दो भाई। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई, वेरी वेरी मुश्किल सवाल, मैं शुद्ध मांसाहारी हूँ। हिदायत भाई वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी। एक मैसेज है, आई विल डेफिनेटली कुक एंड गिव इट टू यू, जस्ट सेंड मी लोकेशन, वेन एवर वी कुक वी विल डिलीवर। भाई विनेश भाई, कॉन्टेक्टिंग यू सून भाई, ये तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ। यासिन मोरेसा, वालेकुम सलाम। और एक मैसेज है, भाई कबीर आज तो पक्का सब्जी के रेट महंगे होंगे भाई, आज देखो मार्केट एकदम रॉकेट करा देंगे। एक मैसेज है, कादर अब्दुल आदि भाई के लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, बंडा क्या कहते थे, पत्थर, करेला मेरी फेवरेट वेजिटेबल, आई ऑल्सो लव करेला, नो डाउट अबाउट इट। एक मैसेज है, चिबूड सिर्फ गोवा में मिलता है, ये क्या है, चिबूड कहते हैं इसको, चिबूड ये फ्रूट है, क्या क्या है दुनिया में भाई। एक मैसेज है, भाई हमारी पर्सनालिटी तो अरवी की तरह, पहले तो कोई पसंद नहीं करेगा, और पसंद करेगा तो फिर हफ्ते में 2 बार खाने की इच्छा करेगा। अरे क्या बात है, स्वैग है भाई, स्वैग है लोगों का। शहदा सलीम कहते हैं, कबीर भाई मैं तो मिक्स सैलेड हूँ, मेरे बगैर दस्तरखान अधूरा है, दस्तरखान पर मुझे स्पेशल जगह मिलती है। शेखू ज़्यादा मत फैलो वरना चुनवा दिया, नहीं वरना प्रेशर कुकर में घाल दिया जाएगा। एक मैसेज है, मैं मटर के साथ है क्या, अबू अहमद साहब सब क्रिएटिव हो रहे हैं भाई, कुछ के रिस्पॉन्स तो पढ़ भी नहीं सकता मैं। माज भाई कह रहे हैं, ऐसा तो मेरे बॉस करेले की तरह एकदम कड़वा है, लेकिन गुड फॉर हेल्थ क्योंकि सैलरी आती है। और कह रहे हैं विनीत को, बोलो दावत रखे फॉर केबोर, मेरा नाम गलत पढ़ दिया है, कह रहे हैं दावत रखो फॉर केबोर। माज भाई मिलना पड़ेगा आपको, ठीक करना पड़ेगा ये जो आपने मुझे सबलिमिनल डिस किया है। एक मैसेज है, मैं भाई टैमरिंड हूँ, मैं टैमरिंड हूँ रे, क्या देखना साथ साथ में मुंह में पानी आ जाता है। भाई कह रहे हैं मैं तो इमली की तरह हूँ भाई, आज वाला मैं कह रहे हैं देख के सीधा भाई इमली चाहिए। एक मैसेज है, सूरन के कबाब कह के कबाब के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। ख्वाजा साहब मैं अपने आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कुछ ट्राई करने के लिए, आप डीमोटिवेट कर दे रहे हैं फौरन। रास लफान में फॉग है, ये मैसेज क्या है अजहर हुसैनी साहब ने। और एक मैसेज है भाई, सब्जी की बात हो रही है, आपका रिस्पॉन्स नॉट टेकन चाहिद साहब, ओनली सब्जी से रिलेट कर पाना है।

0: तो ये मुझे बताइए आप, 666-22107 नंबर है। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि आज हमने सवेरे सवेरे मार्केट खोल दी है, तो आपको ये बताना है कि आपकी पर्सनैलिटी कौन सी सब्जी से मैच होती है, किस सब्जी से आप रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि क्या जैसे कहते हैं ना, जैसा जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन, वैसे ही वाला सीन है। तो आप मुझे बताइए किस सब्जी से आप रिलेट कर पाते हैं। शाहिद भाई कह रहे हैं मैं तो आलू की तरह हूँ भाई, ठीक है भाई। इरफान भाई कह रहे हैं सलाम KBR 500 MG, हाउ आर यू, मैं करेला हूँ, सबको मेरी बातें कड़वी लगती हैं। इरफान भाई लेकिन करेला जब पसंद आ जाए ना भाई साहब तो मौज में आ जाते हैं। ये भी है ऑन दी अदर साइड, फ्लिप साइड, एक मैसेज है आज जरूर मार्केट में सूरन के रेट बढ़ने वाले हैं। पहली बात तो भाई जिन्होंने सूरन देखा नहीं वो ढूंढेंगे ये है कहाँ पे, उसके बाद रेट बढ़ेंगे। और आगे लिखा है इन्होंने क्या, गवर, गवर कहते हैं, गवर मींस क्लस्टर बीन्स, ज्यादा लोग मुझे पहचानते नहीं है और जो पहचानते हैं उन्हें पता है मुझसे बढ़िया कुछ नहीं। क्या बात करो, ये क्या चीज़ है। सुभाष भाई कह रही है गवर की तरह है क्लस्टर बीन्स, ये क्या होता है यार, पता है मुझे ना, मैं 30 साल से ऊपर का हो गया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें मुझे पता लग रही है, मुझे लग रहा है मेरी पूरी ज़िंदगी झूठ थी, मुझे कुछ पता ही नहीं था क्या इतना ज़्यादा। एक मैसेज है आई लव करेला गोर उर्दू, अरे ये क्लस्टर बीन्स क्या है इरफान भाई, वो तो मैं समझ गया, गवार की फली, अच्छा ओहो मैं ही गलत पढ़ रहा था। वही कहूँ मैंने कहा माई होल लाइफ वॉज अ लाई। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई क्या हाल है आपके?
0: भाई साहब एकदम बढ़िया चल रहा है भाई।
1: भाई क्या क्या भेज रहा है सुबह सुबह तू?
0: आलू रे भिंडी रे चुकंदर ले।
1: मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिला तो तुमने ये खोल लिया है
0: भाई, ऐसी है हमारी क्रिएटिविटी भाई।
1: अरे यहाँ पे मैं कद्दू आ रहा था बीच में मेरे
0: भाई, मेरे गैल कद्दू बहुत सारे हैं। आप सुनाओ तला भाई, आप किससे रिलेट कर रहे थे, एक सेकंड आपका मैसेज किधर गया। आप बैंगन क्यों है भाई?
1: बैंगन से भाई।
0: क्यों?
1: वो भी हैदराबादी।
0: वो भी हैदराबादी
1: बगैर सुर पैर के। हाला भाई हैदराबादी लगाते हर चीज में बैंगन।
0: हाँ।
1: क्या बात कर रहा हूँ बैंगन।
0: हाँ।
1: ऐसा लग रहा हूँ बैंगन।
0: हाँ।
1: मतलब अपन वो
0: है तो
1: दूसरा अपन वो है मिंकली से अपन मिंकली।
0: ओहो कूल। अच्छा था गुरु, मुझे लग रहा है आपने बैंगन इसलिए चूज किया होगा ना, बहुत रेलेवेंट है, काफी रेलेवेंसी है उसकी, एटलीस्ट हैदराबाद में तो बहुत रेलेवेंसी है।
1: बस हम दोनों एक कैसे है ना भाई मेरे।
0: अच्छा
1: और ये बात बताओ, ये 30-30 लगाया हुआ तुमने, 30 साल अभी तू मिला के 30 साल निकाल के बात कर रहे हो तुम
0: भाई। देखिए क्या है, जलन का ना इस दुनिया में कोई उपाय है नहीं तला भाई, मैं आपको बताऊं, जलने से छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जलना छोड़ दो तला भाई, सेहत पे असर पड़ता है पता है।
1: बड़ा मजा आ रहा है कि तो जलने में जो मजा है ना वो नॉर्मल चीजों में ही नहीं, और अपनों से जलने का तो अपना ही मजा है।
0: वही तो है असली, वही है असली मजा, ही छुपा हुआ है। है?
1: ये मेरा मैं कूड़ रहा हूँ इससे, लेकिन है अल्लाह ताला तो कामयाबी दे, लेकिन मैं कूड़ रहा हूँ इससे, मैं चल रहा हूँ इससे।
0: एक भाई ने मैसेज किया है कि तला भाई को तो अपने आप को करेला मानना चाहिए था, वो करेले की तरह है, समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, वरना तो काफी कड़वे भी हो सकते हैं। ये मैसेज किया आपके लिए, इनका नाम नहीं लिखा इन्होंने पर मैसेज किया।
1: कौन है इसको भरे हुए करेले खिलाएंगे हम, कौन है?
0: इनका नाम है, क्या नाम है भाई इनका, इन्होंने निशु लिखा हुआ है अपना नाम, पर मुझे इनका नाम नहीं पता, इन्होंने रियल नाम नहीं लिखा हुआ।
1: नाम
0: करेले,
1: करेला
0: बोल
1: दो भाई
0: सीधा
1: करेला।
0: दुनिया पे एहसान कर रहे हैं, मिंटली बोल गया हमने आपको, दुनिया मुझसे बनता है मोहितो, ये तो है, ये तो है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है यहाँ माशाल्लाह, लेकिन लोग आपको मान नहीं रहे हैं, लोग आपको करेला ही बोल रहे हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। लोगों को मौका मिला ना आज रोस्ट करने का, तो एक दूसरे को रोस्ट कर रहे हैं। मैंने तो शो के स्टार्टिंग में बताया, मैं तो अपने आपको शिमला मिर्च मानता हूँ भाई।
1: काहे का शिमला मिर्च भाई, कहाँ
0: मैं फिर से कहूंगा ये जलने से सेहत खराब

0: होती है भाई, इतना नहीं जला करो। देखो ज्यादा बोलने पे ना मऊ हो जाती है, मऊ ले जाती है बच्चों को।
1: कौन सा सूर है वो, कौन सा पत्थर है?
0: सूरन, सूरन।
1: कौन सा पत्थर कबाब बना
0: रहा है? सूरन।
1: हाँ, वो सूरन तुम्हारे सूरत पे सूरत तो मार दिया जाएगा, बता रहा हूँ।
0: लेकिन तला भाई, मैसेज तो आपके लिए बहुत सारे आए माशाल्लाह, और एक अग्री भी करते हैं कि आप बैंगन की तरह रेलेवेंट है भाई। तो एक ने आपको प्यार भी दिया है, ये मिस्टर अमित हैं फ्रॉम दिल्ली। नहीं क्या क्या देख के फिर तो भाई मैं कुछ और ही सब्जी चूज करता। पर
1: ये
0: लोगों की इंसानियत है, देयर बीइंग नाइस टू यू, ले लो ना उनकी नाइसनेस, दिक्कत क्या है? जबरदस्ती बताइए।
1: तो गले
0: नहीं, पर बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी में हो रहे साथ दो भाई, आप भी साथ देते रहो, ये बोलना बड़ा जरूरी होता है। जंगल का टाइम हो रहा है, कहानी सुनिएगा आप।
1: बिल्कुल
0: भाई, ठीक है भाई, चलो
1: भाई, साथ
0: दो, जिंगल भी भाई। ओके मेरा भाई, चलो अल्लाह हाफिज। और अरसलान भट्ट साहब के मैसेज के बाद मैं तुरंत जिंगल चला रहा हूँ। भाई कह रहे हैं मैं चुकंदर बीट रूट हूँ, मैं मेरा बॉस अपनी सेहत के लिए मेरा जूस निकाल कर पीता है। अरे भाई साहब, जिंगल चलाओ।

0: FM 107. Time check.
1: भाई साहब गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। मैं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, और एक मैसेज आया मेरे पास मेहर साहब का, लिखते हैं भाई बचपन से रेडियो सुन रहा हूँ, ऐसे आइडियाज कोई भी नहीं ला सकता, आप किधर से ढूंढ कर लाते हैं। बस मेरा देखो, ऐसे आइडियाज के लिए आपका दिमाग का एक स्क्रू ढीला होना चाहिए, मेरे 3-4 ढीले हैं भाई, इसीलिए बस। गुड मॉर्निंग।

सात बज गए 5 मिनट और 7:02 हो चुके हैं, तो अभी मेरे साथ देते रहिए, यही चलता रहेगा तो बढ़िया रहेगा। एक मैसेज है इश्तियाक उस्मानी साहब को, लिखते हैं सलाम भाई, मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रहा हूँ वेजिटेरियन बनने की, हो नहीं पा रहा, जब भी खाता हूँ तबीयत खराब हो जाती है। रात में मैंने जो है कोशिश करी थी खाने की मिक्स वेज, आज तबीयत खराब हो गई। और आगे लिखा उन्होंने कन्फर्म करते हुए, कह रहे मजाक से हटके रिली, भाई खाने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ किस सब्जी से रिलेट कर पाएंगे आप। एक मैसेज है अस्सलाम वालेकुम, काशिफ भाई कह रहे हैं कि कल रात को तो एफएम था, अभी ये सब्जी मंडी कैसे मेरी चलती है भाई सुबह सुबह, पता नहीं गया। एक मैसेज है कबीर भाई, मैं इसी इंतजार में था कि कोई लड़की मैसेज करेगी तो मैं भिंडी की तरह लुब्रिकेटेड। वाह वाह वाह वाह वाह वाह अली भाई, मुबारक हो, बहुत आगे जाएंगे आप। फराज भाई ने मैसेज किया है, सूरन की जान छोड़ दो, छोड़ दी आपने।

0: एक मैसेज, कल का टॉपिक व्हाट फ्लेवर ऑफ पिज्जा। अच्छा, ये मोना जी ने मैसेज किया। मुझे बहन फिर वो मैसेज आएंगे, वो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो पाइनएप्पल जो डालते हैं वो वाले आ जाएंगे। एक मैसेज है, आई एम लाइक जूट लीव्स, बिटर टू ईट बट गुड फॉर योर हेल्थ। मैं क्या हर सब्जी हूं जिसका क्या बंदर भरता बनाया जाता है। अबू अहमद साहब ने मैसेज किया ये। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम कबीर भाई, मैं वो काली मिर्च हूँ जो बिरयानी में पड़े तो महक देता है, देता हूँ, और दांत के नीचे आ जाऊँ तो मुंह का स्वाद बिगाड़ दूँ। मेरा भाई क्या रिप्लाई गया भाई, क्या भाई अब नाम तो बता दो अपना, इतने बढ़िया रिस्पॉन्स दे गया, अब नाम नहीं बता रहे। एक मैसेज है, नॉर्थ में इसी को रथ आलू कहते हैं। अच्छा, रथ आलू। इस सुन तो ये मिस्ट्री सुबह से पहले अभी सॉल्व कर देते हैं ना। एक मैसेज है, रियाज भाई कह रहे हैं, जो लोग खुद को ज़्यादा आलू बोल रहे हैं ना, वो नाना पाटेकर की आवाज़ निकालें। अच्छा, वो आलू ले लो। माज भाई क्या कह रहे हैं, डी डी मीन इलायची भाई, ही रोट मिर्ची, लिटरली ही रोट मिर्ची, एंड ही रोट टू टाइम्स। तो माज भाई ज़्यादा दिमाग लगाने का सुबह के शो में, चलते रहने का, चाय पीने का। और बाकी अगर आपको दिमाग लगाना है तो शब्बीर का नंबर दूं, हैं, बात करोगे?
1: शब्बीर को कॉल लगाके तूने
0: बात करोगे? एक मैसेज है, जामिया वाले अनिस भाई कह रहे, भाई सलाम, टॉपिक क्या है? अनिस भाई टॉपिक ये है कि आप किस सब्जी से रिलेट कर पाते हैं, आपकी पर्सनालिटी किस सब्जी की तरह है, ये आपको बताना है, किस से रिलेट कर पाते हैं। एक मैसेज है, आलू ले लो। ये क्या फराज भाई, ये क्या लिखा है? ये मैं गलत ना पढ़ दूं क्योंकि मेरी भाषा थोड़ी सी खड़ी जुबान है, इसलिए। जावेद साहब वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बढ़िया। और एक मैसेज आया, सलाम कबीर भाई, मैं है? ये भाई अरसलान भाई का रिप्लाई बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने लिखा ना, कह रहा मैं चुकंदर की तरह हूँ, चुकंदर की तरह। मेरा बॉस जो है अपनी सेहत बढ़ाने के लिए मेरा जूस निकालता रहता है, माने को नहीं भाई ये। एक मैसेज है, अच्छा आप समझा। एक मैसेज है, प्रिंस भाई कहते हैं, भाई मुझे रोस्ट करने के लिए मेरा रिप्लाई है कि मिर्ची मुंह की जगह। प्रिंस भाई सलाम अलैकुम। कादर अब्दुलाती भाई कह रहे हैं, कबीर भाई आपकी मंडी में एक किलो प्याज का दाम क्या है?
1: छोटे इनके लिए
0: सफ़ेद वाली चाहिए, कौन सी वाली चाहिए? सफ़ेद वाली चाहिए तो बताओ, सफ़ेद वाली इज माई फेवरेट प्याज, इफ़ यू वॉन्ट दैट आई कैन गिव इट टू यू। 4 कतरे रियाल पर किलो है, ऐसा मेरे को सुबह बताया किसी ने, कमाल भाई थे वो तो उन्होंने बताया भाई मेरे को, आई डोंट नो। अच्छा, तो इसलिए मैंने सवाल जो पूछा उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने खामा खानी पूछा ये। तो मैं रस्ते में भी, और इनफैक्ट कल मैं एक वीडियो दिख रहा था, उसमें पूरे टाइम ये बात हो रही थी कि जैसा अन्न वैसा मन वैसा तन। तो मैंने कहा क्यों ना इससे जुड़ा हुआ सवाल पूछें। और बेसिकली एक्टिंग में भी क्या होता है कि कहा जाता है कि जब किसी से आप बात करें तो आपको उसे किसी किस्म का ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जब एक्टिंग का एक मेथड ये भी होता है कि जब आपको किसी पर गुस्सा निकालना है ना, तो आप मान लीजिए आपने कागज़ उठाया, आप सामने बंदा खड़ा हुआ है, आप उसको पीट नहीं सकते, लेकिन आप कागज़ को ऐसे मरोड़ते हैं कि जैसे आप उसको मारने वाले, तो यू आर कंसिडरिंग दिस एज एन ऑब्जेक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि आपकी पर्सनैलिटी किस सब्जी से जुड़ी हुई है। मैं तो भाई अपने आप को शिमला मिर्च मानता हूँ, मैं तो डीपी भी बदल दूँ आज के दिन। एक मैसेज है, मैं कड़ी पत्ता हूँ, लोगों की लाइफ में तड़का लगाती रहती हूँ। ये आई लाइक द कॉन्फिडेंस मोना बहन, आई लाइक द कॉन्फिडेंस। एक मैसेज है, पर मोना बहन एक कॉल शब्बीर की, साफ कुछ धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। एक मैसेज है तबसुम बहन का, वो लिखती हैं, टोटली फ्रेशनड अप कबीर भाई, मोस्ट इंटरेस्टिंग आंसर वो कैरेट, आके खोल देता हूँ, और अदरक कूट कूट के यूज होता है। मुझे भी रियाज भाई का रिप्लाई बहुत ज़बरदस्त लगा। रियाज भाई बोले, भाई साफ सीधी बात है, मैं भाई गाजर माफिक हूँ क्या, जिनकी नज़रें ख़राब है ना भाई, नज़रें खोल देता हूँ एकदम। आई लाइक दैट, आई लाइक दैट। ऑरा फार्मिंग हो रही है इधर। आसिफ आलम साहब कहते हैं, भाई आज की स्टोरी में वेजिटेबल का रोल है क्या? आज की कहानी अभी आपको बता दो, रुको। इरफान अली साहब वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कबीर भाई, होप यू वेल। हम तो पुदीना है जी, आपका अपना भाई इरफान। पुदीना क्यों बोला आपने, आई वंडर। एक मैसेज है, भाई हम तो हैं, क्या नमक है? अच्छा, लिमिट में रहोगे तो स्वाद बना। नमक सब्जी थोड़ी है भाई, ज़्यादा पंगे लो तो नहीं, नहीं नहीं, नमक सब्जी थोड़ी है भाई। कह रहे हैं, मैं भिंडी हूँ क्या हो जाता हूँ? मैं भिंडी हूँ लेस हो जाता? नो ही भाई, मैं एक तो मुझे डर लगता है, मैं कुछ और ना मुझे बताओ, ये एक्सप्लेन करो प्लीज़। एक मैसेज है, ऑल मिलेनियल्स आर लाइक आलू, केम हेयर इन दिस वर्ल्ड जस्ट टू एडजस्ट। ताहिर भाई कह रहे हैं, उन्होंने सबको रोस्ट कर दिया, तुम सब के सब आलू हो, एडजस्ट होने आए हो इस दुनिया में, बात करते हैं ताहिर भाई इतना।

0: उससे सुबह सुबह एक कॉल आ रही है, रुकिए। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, हाल है?
0: बढ़िया भाई, एकदम खतरनाक। आप सुनाइए क्या हाल है?
1: बस बढ़िया है, आज का टॉपिक बहुत बढ़िया है।
0: थैंक यू भाई। तो आप भी बताएं भाई, किस सब्जी की तरह हैं आप?
1: सब्जी वाले बन गए क्या आप?
0: जी भाई, मैं तो आपको बताइए, डेली मैं अपने किरदार बदलता रहता हूँ, आप बताइए आपकी सब्जी की तरह।
1: सही, सही बात।
0: हाँ तो
1: मैं तो बोलता हूँ, मैं तो धनिया हूँ, धनिया, हरा धनिया।
0: क्यों भाई, क्यों धनिया क्यों आप, उससे क्यों रिलेटेड?
1: धनिया जिसमें डालते हैं स्वाद बदल जाता है ना हर चीज का।
0: फ्री में भी मिलता तो भाई,
1: जिधर से निकलते हैं ऐसे ही स्वाद है।
0: फ्री में भी मिलता था धनिया एक टाइम पे, फ्री में लोग ले जाते हैं ऐसी।
1: हाँ वो अपने इंडिया में होता था ना, जब धनिया और ये अपना प्याज नहीं हरा, वो थोड़ा उठा के सब्जी के साथ फ्री दे देते थे।
0: हाँ तो फिर सोच लो आप भी ऐसे ही हो गया, फ्री में ले जाते लोग, हल्के में ले रहे।
1: प्यार से बोलेंगे तो फ्री में भी चले जाएंगे कबीर भाई। हम लोग तो ऐसे
0: ये पंच मारा भाई, इसी का तो वेट कर रहा था। वेरी गुड। और बताओ भाई क्या चल रहा है सवेरे सवेरे?
1: बस अभी स्टार्ट किए हैं। सलाम
0: है क्या?
1: बोला चलो बात कर लेते।
0: हाँ नहीं, आप आज भाई, आज आपको मजे भी आएंगे, आज की कहानी भी लंबी चौड़ी कहानी लेके आया हूँ मैं तो, मजा आ जाएंगे आपको, सुनते रहो बस आप भाई। हेलो, वैसे भी उनकी कॉल कट गई, बग गए हो भाई हो सीधा। एक कॉल और है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी जनाब, आपका नाम?
2: ये आसिफ अंसारी।
0: आसिफ अंसारी साहब, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप सुनाइए। आज मैंने ये ठीला लगा लिया सवेरे सवेरे, मंसूरा से लेके आया हूँ यहाँ पे, अभी बिन उमरान में बेच रहा हूँ, आपको क्या चाहिए?
2: बहुत अच्छी चीज बात।
0: जी
2: जी, बहुत अच्छा लगा आपकी।
0: थैंक यू।
2: आपका जो है ये जो नया बिजनेस शुरू करा है पेंटे,
0: करना पड़ता है, महंगाई है।
2: महंगाई है, डबल इनकम होनी चाहिए।
0: होनी चाहिए और क्या। तो आप किस सब्जी से रिलेट कर पाते हैं, कौन सी सब्जी जैसी पर्सनालिटी आप मानते हैं आपकी है?
2: नहीं, मैं वो सब्जी वाला हूँ जो यहाँ पे लगी हुई
0: है। क्या?
2: मैं किसी सब्जी में नहीं आता हूँ, मैं सब्जी वाला हूँ।
0: वेरी गुड। तो आप मतलब ठीक है ठीक है, तो आज सुबह हो गई भाई, दुकान खोल के आप भी साइड में आ जाओ। ठीक है, बढ़िया।
2: फर्स्ट टाइम आपके, फर्स्ट टाइम कॉल किया आपको?
0: नहीं, आई एम रियली हैप्पी कि आपने पहली बार तो कॉल करी। वैसे
2: इत्तेफाक से जो है कनेक्ट भी हो गए। जी
0: नहीं, आप कभी मैसेज कर सकते हैं भाई, आप कभी बोलेंगे मैं कॉल कर लूंगा, मैं तो कर लेता हूँ भाई। ठीक है, पर आपको शो कैसा लगता है, आप फीडबैक दे सकते हैं आपने?
2: नहीं, बहुत अच्छा शो है।
0: थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा भाई।
2: मैं अभी दो तीन दिन से तो रेगुलर जो है किसी टाइम पे सुन लेता हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी उठ नहीं पाता हूँ ना सर।
0: नहीं भाई, कोई
2: दिक्कत
0: नहीं,
2: आज उठ गया।
0: आप जब भी आए इधर ही आइएगा, यही बढ़िया जगह है, मैं तो खुद यही सुनता हूँ भाई। ठीक है,
2: बहुत अच्छा लगा,
0: ख्याल रखिए भाई जान, मुझे बहुत अच्छा लगा।
2: जज़ाक अल्लाह, ओके शुक्रिया,
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो भाई की बात जो है, मैसेज किया फरद भाई, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आज दुग्गल साहब वेज मार्केट खोली है। जी भाई, आज बढ़िया है एकदम, सब्जी वाली मार्केट है। एक वॉइस नोट आया हमें भाई, अभी सुनता हूँ जीशान भाई। मैं एक मैसेज है, मैं खीरा हूँ, लोग खाते ही खीरा बन जाते हैं। सलमान भाई कॉल उठा लो, सोच में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम कबीर भाई, हम भागने वाले कौन है भाई? कबीर भाई पता नहीं कैसे।
0: भाई पता नहीं भाई, अच्छा हाँ तो बात हाँ, कहाँ पे थी हम, कहाँ पे थे? नहीं भाई, मैं ये कह रहा था कि एक तो है आज की जो है ना स्टोरी भी बड़ी खास है, तो आज मजे करा देंगे भाई। भाई वो तो किसी ने सोची नहीं है ऐसी कहानी है, भाई किसी ने सोची ही नहीं होगी ऐसी कहानी है, मजे आ जाएंगे आज। हाँ तो लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि आप कॉल करते हैं और मेरा पैगाम पहुंचा दीजिएगा। आज सुबह सुबह हमने सरोवर भाई का भी जिक्र किया है, तो उनको भी हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। ठीक है मेरा भाई, ओके मेरा भाई, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और भाई के बाद जो एक मैसेज है, कबीर भाई आप कुटने के बाद ऐसे लगोगे। आतिफ भाई ने मुझे जो है एक पूरा कटा हुआ शिमला मिर्च भेजा, कह रहा तुम ही कह रहे थे ना शिमला मिर्च की तरह होती है, लोग कटा हुआ शिमला मिर्च भेजा, ये क्या? मुझे रोस्ट कर दिया आतिफ भाई ने सुबह सुबह। एक मैसेज है, कबीर भाई अगर कोई सब्जी मेरे अंदर डाइजेस्ट हो तभी मैं उससे रिलेट कर पाऊंगा। कबीर भाई मैं उमसलाल साइड के लिए निकला था, मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और मैं अभी क्या के आगे बताओ, मेरा पेट्रोल का पैसा कौन देगा? ये क्या बात हुई,

ये क्या बदतमीजी ये कह रहे हैं बताओ मेरे पेट्रोल का पैसा कौन देगा, ये क्या बात हुई मुझसे क्यों मांग रहे हो भाई एक मैसेज है, कोई मूली के जैसा क्यों नहीं है? ये सवाल आप खुद से पूछिए मेहर अजीज भाई, ये सवाल आप खुद से पूछिए, जवाब आएगा, मैं सही बता रहा हूँ। माजिद हुसैन साहब वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। एक मैसेज है, कबीर भाई आप शाम में भी प्रोग्राम किया करो, सुबह में सब्जियां रात में फ्रूट्स, आपका प्रोग्राम सुन के दिन की शुरुआत अच्छे मूड से होती है। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट बनाते सोचती हूँ कि आज कबीर भाई ने क्या टॉपिक रखा होगा। जज़ाकअल्लाह बहन, बहुत बहुत शुक्रिया उसमें बहन, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, मीन्स अ लॉट टू मी। और एक मैसेज है भाई का, इन्होंने कह भाई हकीम भाई ने कह रहे हैं मैं तो तुरई की तरह हूँ हकीम भाई, अरे मेरा भाई कह रहे मैं हूँ तुरई की तरह, मूड अच्छा है सबको अच्छा लगता हूँ, मूड ख़राब निकला तो सब्ज़ी मज़ा ख़राब कर देता हूँ। हकीम भाई मुझे तुरई बेहद पसंद है भाई, मतलब मैं फ़ैन हूँ भाई तुरई का, यूँ समझ लो आप। एक मैसेज, अस्सलाम वालेकुम भाई मैं हूँ ग्रीन चिली, जिसके बिना कोई भी सब्ज़ी जायका नहीं दे सकती। धमकी दे रहे हो गए सब मिर्ची बन के आलम सिद्दीकी साहब एक मैसेज, रथ आलू इज पर्पल यम। अब पर्पल यम ढूंढना पड़ेगा मुझे गूगल पे, कहाँ कहाँ भेजोगे मुझे सुबह सुबह हैरी पुत्र साहब। एक मैसेज, सूर्य नोन एज जिमली कंद, जिमी कंद मुझे नहीं ढूंढना, मुझे खाना ही नहीं भाई। एक मैसेज, कबीर भाई जो लोग मेरी तरह आलू जैसे हैं हर जगह फिट होते हैं लेकिन अक्सर ऑफर में मिलते हैं ये भी सही है। इरशादुल्ला भाई एक मैसेज है, धनिया धनिया है हर कोई बो देता है कहता मैं धनिया हूँ हर कोई बो देता है ये क्या बात है और इनके बाद एक और मैसेज था मुझसे मिस ना हो जाए, ये कह रहे हैं कि मैं भिंडी की तरह चिपकू हूँ ये नो भी भाई नहीं लोग अपने आप को भी रोस्ट कर रहे हैं भाई, मज़ा इस बात का है। एक मैसेज है, मैं अदरक हूँ रे, लोग कूट कूट के इस्तेमाल करते हैं दी। ये आलिम सामने मैसेज, ये आलिम भाई बहुत बढ़िया भाई, मत बनो ना ये। फरहत भाई कह रहे हैं बचाओ वाला, अरे भाई फरहत भाई ये क्या है। और एक मैसेज है अरसलान भट्ट साहब का, लिखते हैं अगर आप मूली हैं तो लोग आपके जख्मों पे नमक लगा कर खाएं। भाई आप आज क्रिएटिव हो रहे हैं अरसलान भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं आज भाई ने ओपन माइक समझ लिया आज तुम एक मैसेज है फराज भाई का, अजीज भाई को अपना क्या टर्मिनल चाहिए मूली का, क्या हो रहा है ये मार्केट में। इरफान अली साहब लिखते हैं कबीर भाई बेगम पूछ रही है फ्रेश मटर है ठेले में आज, मटर वाले चावल पकाने हैं साथ में थोड़ी 100 रुपए की मिर्ची धनिया और पुदीना भी डाल देना। ये इरफान भाई इनको कुछ मत देना, ये पहले की उधारी है इनकी, हाँ पहले की उधारी 500 रुपए चढ़े हुए इनके, पहले के 500 उतारो, ये छोटे को आपने ये 500 उधार चढ़ा के गए, पहले वो उतारो, धनिया मिर्ची पाउडर चाहिए नहीं बताओ ये कोई बात होती है, है? ऐसी ये दो दो नहीं वो दे दो, पहले का उधार उतारो भाई, ये सब नहीं चलता हमारे यहाँ। मलिक वकास साहब क्या हाल है भाई, हैं गाने के बाद मिलते मजा ही आ गया भाई, आज डांडा भाई आ गए आके सीने ला जा रे तू, माँ का जी सुनो मैसेज कर देना, मऊ आ जाएगी, मऊ उठा के ले जाती है जो मैसेज नहीं करते बच्चे,

0: डांडा न्यूली वाला दिस साइड और मैं दूहा वाला कभी रेफ 107 पे गुड मॉर्निंग लेट्स गो। अच्छा भाई ने जो एक्सप्लेन कर दिया है मुझे उनका मैसेज जो कंफ्यूजिंग हो रहा था ये हमारे इश्तियाक उस्मानी साहब हैं वो आगे लिखते हैं। एक्चुअली मैं माइक ऑन करके टाइपिंग कर रहा था तो सही से टाइप नहीं हो रहा था। एक्चुअली मैं उम्सलाल से निकला था और मैं आपका प्रोग्राम सुनते सुनते क्या था? अच्छा अलग ही जगह पहुँच गए। मेरे पेट्रोल का वैसा कौन देगा, ऐसे इंगेजिंग प्रोग्राम करोगे तो आदमी भूल ही जाएगा कि जाना कहाँ है। मैं अपनी गाड़ी साइड में लगाकर मैसेज टाइप कर रहा हूँ भाई, बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच, दिस इज़ लव भाई। मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिल भेज रहा हूँ भाई, कबूल फरमाइए। इश्तियाक भाई, मलिक वकास साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, गुड मॉर्निंग, मस्त शो चल रहा है भाई, मस्त टॉपिक चल रहा है, बाकी कल वाली स्टोरी का क्या ही कहने कबीर भाई। अच्छा वो रैप हिप हॉप वाली कबीर भाई कहें आप सॉन्ग्स रैप करते हैं भावनाओं में, नहीं मैं भावनाओं में बहने के पूरे चांसेस हैं मलिक भाई। और इरफान भाई के लिए मैसेज किया इन्होंने, ये हमारे मुजाहिद बुखारी साहब हैं, ये वाले इरफान भाई नहीं मुजाहिद भाई जिनके लिए आप उधारी पे करने के लिए तैयार हैं, ये दूसरे वाले हैं, कह रहे हैं इधर जहर खाने को पैसे नहीं है। ये इरफान अली ने मैसेज किया है। अरे भाई एक मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, समीर भाई ने मैसेज किया है और इनके बाद एक भाई ने अपने आप को करेक्शन दिया है, सलमान भाई कह रहे हैं मैंने ये नहीं बोला था कि मैं खीरा हूँ, लोग खाते ही खीरा हो जाते हैं, मैं कहना चाह रहा था लोग हीरा हो जाते हैं, अभी ठीक है। एक मैसेज, गुड मॉर्निंग उमर अफरीदी की तरफ से सलाम कबीर भाई, वालेकुम अस्सलाम उमर भाई को बहुत सारा प्यार। कोई मैसेज तो मिस नहीं होगा, कोई मैसेज लग तो नहीं रहा। जिशान, अरे जिशान भाई का वॉइस नोट रह गया, जिशान भाई आई एम लाइक पोटैटो, ईजी गोइंग विद एवरीवन एक्सेप्ट कर लिया, ये मैंने बड़ा दूसरा वाला आपका सुनना भूल गया। मैं एक कॉल उठा ली जाए क्या, आप पहले कॉल उठाते हैं। अस्सलाम वालेकुम,
1: सलाम, क्या हाल है?
0: अरे मेरा भाई बढ़िया भाई, एकदम जमा जैज बना रखा भाई, सो को आप सराई का लेंगे अब्बा जी
1: सब भाई बढ़िया। मेरा भाई भी किसे हीरे से कम नहीं है भाई।
0: भाई बहुत प्रेम भाई, क्या चल रहा है गाबा जी?
1: वही भाई डेली रूटीन,
0: डेली रूटीन। तो गाबा भाई सवाल सुना सुबह का,
1: सुना सुना भाई, भाई सबसे तो पहले कबीर भाई ये जो रैप चल रहा था ना डांडा भाई का,
0: हाँ जी भाई,
1: मैं सोच रहा था यार अगर आप सिंग कर रहे होते ये
0: भाई मजा आ जाता है सिंग में, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगता है। हाय हाय हाय, एकदम ड्राइव वाला है ये, ड्राइव करते हो ना शाम में बढ़िया सी ड्राइविंग चल रही हो, कल्ले कल्ले जब है मजा इसमें।
1: सी साइड ड्राइव
0: ओ भाई साहब आके सीने लग जा, मजा आ जाएगा। तो गाबा भाई कहाँ निकले हो सवारी, कहाँ निकली है
1: सवारी? मतार कदीम में भाई,
0: मतार कदीम में भाई साहब, बड़ा ट्रैफिक शैफिक है कि नहीं है?
1: ट्रैफिक कबीर भाई है, कल क्या हुआ कबीर भाई, मैं ना नोएडा से जा रहा था मंसूरा,
0: ठीक है,
1: यकीन मानिए 10-15 मिनट की ड्राइव थी वो, तो भाई इतना ज्यादा ट्रैफिक था ना, इतने ही डिस्टेंस में तकरीबन 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, 3 एक्सीडेंट भाई सुबह।
0: हाँ भाई कल एक्चुअली मैंने सुना था ये, कल वो जो एरिया बता रहे हैं मैंने भी यही सुना था भाई, बट मैं वही कह रहा हूँ बस लोग जो हैं जल्दबाजी में ना इधर का उधर ना जाएं, और पता है यहाँ पर कसर में गाड़ी चलाने का ये भी है कि सामने वाले पर नजर ज्यादा रखनी पड़ती है, हम तो चला लेंगे सामने वाले की चाल को देखना पड़ता है।
1: सामने वाले को कबीर भाई बिल्कुल यही सीन हुआ, दो तो हुए सिग्नल के ऊपर, क्योंकि हर बंदे को जल्दी होती है ना भाई, जब सिग्नल ब्लिंक करता है भी जल्दी जल्दी निकल जाए, उस टाइम तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं ये चीज हैपन होने के। दो सिग्नल पे थे, एक था कट पे, जैसे ही आप मेन रोड पे आते हो उस टाइम बंदा कंफ्यूज हो गया था तो पीछे वाले ने ठोक दी उसकी गाड़ी में।
0: अरे भाई
1: बस तो वही है कबीर भाई, बस चलो कल का दिन ही ऐसा था।
0: नहीं आप बताओ आप बजी, चलो सैड बातें बाद में करें, पहले ये बताओ आप किस सब्जी से रिलेट कर पाते हो?
1: मैं तो भाई हूँ साग के जैसा।
0: अरे मेरा भाई क्यों भाई साग के जैसा कैसे हो ये बताओ?
1: साग को बनाने में भाई मेहनत लगती है, और कबीर भाई जितना ही साग पुराना उतना ही उसका टेस्ट अच्छा होता जाता है।
0: क्या बात है भाई, खेल गए भाई, खेल गए आप भाई। ये आप नहीं बोला किसी ने अभी तक, साग वाग का बिल्कुल नाम और निशान नहीं आया किसी का, ये पहले हैं आप, बहुत क्रिएटिव रिस्पॉन्स आए, बड़ी अच्छी बात है, थैंक यू सो मच भाई, और हमारा पैगाम पहुंचा दीजिएगा इस सर्वर भाई तक जब उनका शो सुने आप।

0: सर्वर भाई तक क्या बोलना है,
1: पैगाम दे देना ऐसी। हाँ हाँ, मैं जब सुन लेता तो सुन लेता हूँ, वरना जो है फिर मैं उस टाइम गहरी नींद में होता हूँ मैं तो हमारा पैगाम पहुँचा दीजिएगा बस उन तक।
0: नहीं यार कबीर भाई, ये भी आपकी एक ट्रांसपेरेंसी है ना, देखो आप खुल के बोलते हो भी मैं वो शो सुनता हूँ उन औरतों के जैसा जिनको आदत होती है भी दूसरे के घर में क्या चल रहा है।
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ये तो मतलब आदत है, ये देसी खानदानों की आदत है, जानना है पड़ोस में क्या चल रहा है।
0: चलिए कबीर भाई, उम्मीद भी करेंगे भी ये भाईचारा जल्दी से जल्दी निभाएं।
1: बिल्कुल भाई, बिल्कुल,
0: सरप्राइज, वेटिंग फॉर द सरप्राइज।
1: ठीक है मेरा भाई, थैंक यू सो मच मेरा भाई। ओके भाई, ख्याल रखिए।
0: ओके मेरा भाई, लव यू,
1: लव यू मेरा भाई, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। तो गाब्बा जी के बाद भाई एक और शख्स है, एक्चुअली में उन्होंने मुझे मैसेज किया था, इनका मैसेज ही खो गया भाई, किधर गया, किधर गया, किधर गया इनका मैसेज, मेरे को मिलता क्यों, अब मिल गया, मिल गया। ओके एक मैसेज है भाई, पैगाम देना है, नहीं नहीं नहीं मैं पैगाम ही दे रहा हूँ। जयस भाई आप तो बिठवा रहे हो यार, क्या सुबह मैं जो सब्जी खाने का दिल करे है वो है सब्जी ग्रीन ग्रीन है। माजिद भाई हेल्दी बन रहे हो आप। एक और मैसेज है भाई का, इन्होंने मैसेज किया है, ये है वजाहत भाई, वजाहत भाई कह रहे हैं सलाम ब्रो, लव योर शो ब्रो, लॉट्स ऑफ लव टू यू एज वेल, लेकिन बड़ा आई मिस योर स्टोरीज, लगता है कि कल की स्टोरी बहुत अच्छी थी। भाई सारी स्टोरी मिल जाएगी भाई इसमें जो मैंने दी है ना भाई, बढ़िया करके इसको लाइक लुक कर दो, बढ़िया हो जाएगा मामला। साग ते मक्की दी रोटी, विंटर इज कमिंग, वेरी गुड, गुड रिमाइंडर इनफैक्ट। तो देखो भाइयों, अभी क्योंकि मैं कहानी शुरू करने वाला हूँ तो मैं पहले आपको ज़रा समा बांधना बांध दूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आज के स्टोरी के लिए। तो जो आज का किस्सा है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपके समझ में आ गया तब तो आपको बहुत मजे आएंगे, समझ रहे हैं हम, अगर समझ में आ गया तो बहुत मजे आएंगे, अगर नहीं आया तो दोबारा सुन लेना जब बाद में आप सुनने का मौका मिलेगा। बट ऑल आई वॉन्ट टू से इज के ये कहानी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इट्स गोना टेक सम टाइम, आपको थोड़ा सा इसको जहन पे चढ़ाने में सुकून से सुनना पड़ेगा। तो कहीं अगर पार्क करके सुन रहे तो बात दूसरी है, ड्राइव करते करते पल्ले पड़ गई कहानी तो फिर तो मजे आ जाएंगे। तो सिर्फ एक गाना है बीच में और उसके बाद सीधा आज का किस्सा है। ओके तो मैं एक काम करता हूँ भाई, कौन सा चलाऊँ मैं, एक सेकंड रुको, मिल क्यों नहीं रहा भाई, सही टाइम पे सही चीज़ नहीं मिलती ना। ओके तो सिर्फ दो मिनट के बाद मिल रहे हैं और उसके बाद सीधा हमारी होगी मुलाकात, ठीक है। तो 666-22107 नंबर है एंड आप किधर भी नहीं जाना, डायमंड बॉम्बे रॉकेट्स का ये गाना जो धुरंधर में यूज हुआ था, सीधा गाना 666-22107। आ जाओ भाई साहब, स्पीकर ला देंगे, सारे स्पीकर हाल लेंगे, तो मजा आ जाएगा। 7:30 ऑन द क्लॉक, 666-22107 स्टोरी सुनना चाहते हैं, आ जाइए।

लगे, हर साइन एकदम सटीक एकदम ऑर्डर में। वो लेता चला गया अपने नाम से। कागज का जो वजन है वो स्टैंप से है, वो ये समझ गया था। मैटर नहीं करता कि कागज पे जो लिखा है वो सच है कि नहीं, क्योंकि लोग फैक्ट चेक नहीं करते। मिसाल के तौर पे कि वो रोड के लिए पिच कर रहा है, पर लोगों को भरोसा है रोड तो बनाया लेगा, इसके बारे में बहुत सुना है, तो लोग फैक्ट नहीं देख रहे। रोड बना है या नहीं उससे मतलब नहीं है, स्टैंप है या नहीं वो जरूरी है। और हर कागज पे स्टैंप है, बस रोड नहीं है। रिपोर्ट देखी जाएगी ना, ठीक है कर लेंगे। आर्टून ने यह भी नोटिस करा कि दुनिया इसी फंक्शन पे काम करती है, पूरी दुनिया। और यह भी देखा कि फाइनेंशियली हालत खराब है जिस जगह वो रहता है, और लोगों ने 20-20 साल से अंगोला जो जगह है उसके वादे पूरे नहीं किए। 20 साल से रोड कंस्ट्रक्शन और फलाना फलाना के वादे करके कभी सरकार ने पूरा नहीं किया। 1922 में एक मौका आया उसके पास, और ये मौका था मदद करने का इस शहर की। और उसने ये कहा कि मैं यहां पे कुछ करना चाहता हूं। अब यहां से कहानी होगी कॉम्प्लिकेटेड, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ध्यान दीजिएगा, वरना ये कहानी फिर समझ में नहीं आएगी। तो एक कंपनी उसके सामने आई जो रेलवे लाइन डालती थी। यहां तक क्लियर है? इसने बोला कि मैं जो हूं आपका कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, इनफैक्ट मैं आपकी कंपनी को खरीदना चाहता हूं, आपके शेयर्स को मेरा मतलब, और उसके बाद हम काम को आगे बढ़ाते हैं, एक तरीके की ओनरशिप। यहां तक क्लियर है? तो आर्टून ने अकाउंट ये खरीदने के लिए, कंपनी खरीदने के लिए क्या किया, पैसे तो इतने हैं नहीं ना, कंपनी खरीदने के लिए तो आपकी जेब मोटी होनी चाहिए। आर्टून ने क्या किया, उसने न्यूयॉर्क जाके एक अकाउंट खोला, ठीक है, उस अकाउंट का एक चेक बनाया, एम्बेका वालों के नाम पे दे दिया, जैसे कि उसके अकाउंट में बहुत पैसा हो, लेकिन अकाउंट में पैसा नहीं था। अब ये समझिए कि 1922 में एक चेक को अगर आपने लगाया है बैंक में, तो न्यूयॉर्क से वो फिजिकली ट्रेवल होगा, डिजिटल तो है नहीं जमाना, तो फिजिकल ट्रेवल करने में उसे 8 दिन लगेंगे, 8 दिन लगेंगे। जब तक वो चेक पूरा का पूरा पहुंचेगा तब तक वो खेल जाएगा। तो हुआ क्या कि 8 दिन लग रहे हैं चेक को आने में, तब तक तो उसने कंपनी के जो ओनरशिप के कागज थे वो साइन कर लिए। कॉम्प्लिकेशन यहां पे है। अब उसने क्या किया, उसने कहा जब कंपनी मेरी हो जाएगी तो कंपनी के पैसे से ही मैं अपने अकाउंट को बचा लूंगा, चेक बाउंस नहीं होगा। तो उसने क्या किया, इसने सामने वाली कंपनी के पैसे को यूज करके ही कंपनी को खरीद लिया। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? आई होप आप समझ गए, क्योंकि इससे ज्यादा आसान में समझा सकता। लेट मी ट्राई दिस वंस मोर। उसने न्यूयॉर्क का एक अकाउंट खोला, ठीक है, उसका एक चेक बनाया, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो सामने वाली कंपनी खरीद सके। सामने वाली कंपनी को वो चेक थमा दिया कि भाई ये कंपनी मुझे दे दो। अब चेक ट्रेवल करने में टाइम लगेगा, क्योंकि 1920 की बात है, 22 की बात है, तो न्यूयॉर्क से आने तक पोर्चुगल उस चेक को लगेगा टाइम 8 दिन का। उस 8 दिन के अंदर उसने ओनरशिप के कागज पे कर लिया साइन, कंपनी हो गई उसकी। अब उसी कंपनी के शेयर, उसी कंपनी के पैसे से उसने जो चेक आ रहा है बाउंस होने वाला है उसको रोकने की कोशिश करी, कंपनी के पैसों से ही कंपनी को खरीद लिया, जो इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। गलती कहां हुई कि कंपनी के रिजर्व थोड़े से कम थे तो ओवरड्राफ्ट हो गया मामला, तो ज्यादा स्मार्टनेस तो उसने दिखाई और कामयाब भी हो जाता, लेकिन यहां पे ओवरड्राफ्ट हो गया और उसको जो है अरेस्ट कर लिया गया इस बेईमानी में। तो आर्टूर को पकड़ के अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। जुलाई 1924, 27 साल का हो चुका था आर्टूर। आमूमन लोग क्या करते हैं जो जेल में होते हैं, वो अपनी जिंदगी को रिकैलिब्रेट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, नींद ले लेते हैं, सोचते हैं, आजादी के सपने देखते हैं।

लेकिन इसने कहा यार मुझसे गलती कहाँ हुई, मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। तो उसने जेल की जो लाइब्रेरी है उसका एक्सेस मांगा और पढ़ाई शुरू करी। उसने पढ़ा कि बैंक ऑफ पोर्चुगल दरअसल काम कैसे करता है, उसके लेजिस्लेशन, उसके रूल्स, उसकी हिस्ट्री, वो कैसे ऑपरेट करता है, सब कुछ। वो बैंकिंग नहीं सीख रहा था, अब आप समझेंगे इतनी किताबें पढ़ा तो बैंकिंग ही सीख रहा होगा, ना ना ना ना ना ना, वो इस पूरे सिस्टम में एक कमी ढूंढ रहा था, कमी मिल जाए बस, वो कहां है लूप होल, कमजोरी का है जिसका वो फायदा उठा सके। अब उसे कमजोरी क्या मिली, उसे ये पता लगा कि बैंक ऑफ पोर्चुगल जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट छापने का दिया हुआ है एक फर्म को जिसका नाम है वाटरलू एंड सन्स, और ये जो फर्म है ये है ब्रिटेन में जहां नोट छपते हैं हाई वैल्यू वाले। समझाता हूं मैं, तो ये समझ लीजिए कि बैंक ऑफ पोर्चुगल के पास खुद का प्रिंटिंग सिस्टम नहीं है, उनके पास ना प्लेट्स हैं, ना कागज हैं, ना इंक है, कुछ नहीं है। उनके नोट छप रहे हैं एक बिल्डिंग में जो कि लंदन में है। तो जब पोर्चुगल के बैंक को नोट चाहिए, पोर्चुगल को नोट चाहिए, तो वो एक ऑथराइजेशन देता है वाटरलू वालों को जो लंदन में है, और वो लोग छापकर पोर्चुगल भिजवाते हैं। ये लाइन जो है उसने 3-4 मर्तबा पढ़ी। उसने वहां पे जेलर से कहा साहब बस एक नोट देखने के लिए दिखा दीजिए, देखने के लिए। जेलर ने कहा देखने के लिए, हो सकता है बेचारे ने नोट नहीं देखा इतने टाइम से, तो मांग रहा होगा। तो उसने एक हाई डिनोमिनेशन नोट उसको पकड़ाया, उसने नोट को समझने के लिए देखा तो उस पर लिखा हुआ था वाटरलू एंड सन्स। उसने देखा नीचे कि गवर्नर के सिग्नेचर भी हैं, और उसे यहां पे कुछ समझ में आया, जिसे समझने के लिए उसने अपने जेल के 6 साल पूरे फोकस के साथ लगाए। वो समझ गया कि सिस्टम को जो चाहिए मैं सिस्टम को वही दूंगा, क्योंकि सिस्टम खुद तो कुछ चेक करता ही नहीं है। डोंट वरी, मैं इस जो मैंने बोला ऐसे आसान बनाऊंगा मैं। तो उसने क्या समझा, उसने ये कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के हिसाब से 300 मिलियन एसक्यूडोस मतलब करेंसी इकोनॉमी में वो ला सकता है, और बीच का कोई भी प्रोसेस खराब भी नहीं होगा, जिससे वो अपना ही एक बैंक अंगोला में खोल सकता है और उसे खुद पैसे छापने की जरूरत भी नहीं है, वो वाटरलू वालों से छपवा लेगा। कैसे, मैं कहानी के आगे बताऊंगा। मतलब ये हुआ कि आर्टूर ने बचपन से जो देखा कि उसके फादर को डिस्ट्रॉय किया फाइनेंस सिस्टम ने, तो उसने ये फैसला किया कि उसी सिस्टम को वो अपना लेगा और वही सिस्टम वो खुद बन जाएगा। तो उसने ये 6 साल प्रैक्टिस करी इस प्रोसेस को बनाने में, 6 साल सीखा। आर्टूर को जेल से आजादी मिली दिसंबर 1924 में। अब उसे एक टीम चाहिए थी, कुछ कॉन्टैक्ट्स जिनको उस पर भरोसा हो, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना नहीं, तो कोई अगर सजा किसी को मिल भी रही है तो तीसरे बंदे को पता भी नहीं, बिकॉज नथिंग इज ऑन सोशल मीडिया, हर खबर छपती नहीं है अखबार में, जगह ही नहीं है। तो उसने एक कहानी बुनी, और कहानी अपने दिमाग में स्क्रिप्ट करने के बाद वो एक ट्रेन में बैठने को तैयार हो गया। वो ट्रेवल कर रहा था लिस्बन में, खिड़की से बाहर देख रहा था, खिड़की के बाहर चारकोल फायर, पूरा शहर ऐसा लग रहा था कि सभी गरीब हो चुके हैं, रिवर से निकलती हुई वो फॉग, वो धुंध, ट्रैम चल रही है, न्यूज़पेपर गली गली बिक रहे हैं। पोर्चुगीज फर्स्ट रिपब्लिक का आलम यह था कि 16 साल हो चुके थे लेकिन 45 मरतबा सरकार बदल चुकी थी, 9 प्रेसिडेंट रह चुके थे 1920 से 1925 के बीच में, और कई दफा यहां पंगे हुए। तो बैंक ऑफ पोर्चुगल जो था वो प्राइवेट था, सरकारी नहीं था, मगर उसके कैश का जो फ्लो है वो सरकारी सिस्टम के थ्रू आता है। तो यूं समझ लीजिए कि बैंक ऑफ पोर्चुगल एक स्टेट एजेंट हुआ, एक ब्रोकर किस्म का, जब आप घर खरीदने जाते हैं बीच में ब्रोकर होता है ना, वो समझ लीजिए। अब एक आम आदमी क्या करता है, हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हमें जो दिया गया उसकी एक वैल्यू है। अब मैं अभी आपको एक 500 रियाल का नोट दूं तो यू नो कि उसकी वैल्यू है, राइट? 10 में से शायद कोई एक होगा जो उस नोट को चेक करना चाहेगा कि नोट है क्या है, असली है कि नहीं है,
करते हैं चेक, अभी भी आप करते हैं चेक? नहीं करते होंगे, हर नोट आप नहीं देख रहे होंगे, स्पेशली अगर आपको लगता है कि ये तो भाई भरोसा

आइए, ये तो सही नोट ही देगा, तो आप चुपचाप अपनी जेब में रख लेंगे। यही है वो फैसला, यही है वो की। तो हुआ कि आर्टुर ने अपने पहले के दोस्त एक बंदे से कांटेक्ट किया, क्योंकि उसे इन्वेस्टर चाहिए थे अपना बैंक खोलने के लिए, एक कहानी रचने के लिए। और उसे एक दोस्त की याद आई जिसका नाम था कैरल मैरिंग वेन। ये एक डच ट्रेडर था जिसके पास ऑनररी लाइब्रेरियन काउंसलर पासपोर्ट था। मैं आसान कर देता हूँ, उसके पास ऐसा पासपोर्ट था कि उसको किसी भी कंट्री तक जाने के लिए कोई मसला नहीं है। कस्टम वाले उसको पूछेंगे भी नहीं कि भाई सामान डिक्लेयर तो करो। तो ये उसका दोस्त था और दोनों की दोस्ती गहरी भी थी। तो आर्टुर ने उसे खत लिखा और उसमें उसने झूठ लिखा, ऑब्वियसली उसने लिखा कि भाई ये काम है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है सरकार का, थोड़ा क्लासिफाइड है, मगर इसमें तुम्हारा भी फायदा है, मिलोगे क्या? उसने बोला हाँ भाई ज़रूर मिलते हैं। तो दोनों एक होटल में मिले, हैग नाम की जगह है, वहाँ पे होटल था। दोनों मिले और बैंक और पोर्चुगल के नाम पे इसने कहा कि भाई वो नया बैंक खोल रहे हैं ये लोग, तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, क्लासिफाइड है सब कुछ, मैं पूरा बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन नोट्स मंगवाने हैं, तो देख लो आपका ही फायदा होगा। तो सामने वाला क्या सोच रहा है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ये एक्चुअली में सरकारी एजेंट है, पर ये झूठ है। बहरहाल वो इसमें फंसता चला जा रहा था। उसने बताया पॉलिटिकल सिचुएशन यार पोर्चुगल में बड़ी खराब चल रही है, तो अब वो थोड़ा चुपके से करना चाह रहे हैं मेरे थ्रू, अब मुझे तो जानते ही हो यार, मैं मदद करना चाहता हूं अपने देश के लिए, तो आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए, थोड़े कॉन्टेक्ट्स हो आपके। तो उसने कहा हाँ जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल बिल्कुल मैं मदद करूंगा। तो बोला यार वो नोट जब आ जाएंगे यहाँ पे तो अंगोला के नाम पे लगा देंगे। तो कैरल ने कहा ठीक है, क्योंकि कैरल के पास उसके पासपोर्ट की ताकत थी। फिर उसने कहा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाओ। तो जो घर से पेपर तैयार करके नकली बना के लेके आया था वो, उसमें देखा स्टैंप है और सब कुछ था उस पे। फिर उसके बाद एक और बंदा चाहिए था उसे जो कि डिप्लोमेट हो, तो उसे बंदा मिला होजे बैंडेरा। ये जो था ये बंदा एक किस्म का एम्बेसडर टाइप का था, बिजनेसमैन था, ज्यादा वजनदार नहीं था लेकिन बिजनेसमैन था। उसने उसका नाम यूज करना है, टैलेंट नहीं। तो उसने इसको भी डिनर पे बुलाया और बोला भाई अंगोला में ना भाई बहुत बढ़िया काम होने वाला है, आप थोड़े मेरी मदद करोगे तो आपको भी फायदा होगा, मैं थोड़ा क्लासिफाइड काम कर रहा हूँ, देख लो आपको क्या करना है। तो उसने बोला मैं समझ नहीं आया, कोई कमीशन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? उसने बोला हाँ हाँ हाँ हाँ। इसको भी इसने कागज बना के दिखाया जिसमें ये माहिर था, जिसमें लिटरली सिग्नेचर्स और साइन हुए हुए थे। फिर एक और बंदा मिला अडोल्फ हेनिंस नाम का, इसको भी इसने बोतल में उतारा, ये जर्मन नेशनल था। इसको बोला भाई एक पैकेज जो है वो आएगा, जरा क्लियर करवा देना, थोड़ा क्लासिफाइड मामला है, इसमें आपको भी थोड़ा फायदा होगा। इसने कहा ठीक है क्लियर करा दूंगा, क्या आ रहा है वैसे मटेरियल? तो बोला अरे वो कागज हैं बहुत सारे, वो सरकारी काम है ना यार, समझते हो ना। तो अब ये तीनों के तीनों जिनको भरोसे में लिया है आर्टुर ने, इन तीनों को नहीं पता है हो क्या रहा है, पर तीनों फंस गए। ये पता कैसा है मैं आपको और आसान शब्दों में बताता हूँ। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको बोलूँ सुनो टीचर जो है वो ये एग्जाम लेना चाह रही है आप लोगों से, ये पेपर है ठीक है, इसके सवालों का जवाब दो। आप पूछोगे टीचर ने बोला है क्या, तो मैं बोलूँगा हाँ टीचर ने मुझे बोला है, सरप्राइज टेस्ट है ये, ज़्यादा सवाल नहीं करते, चलो जल्दी फेल हो जाओगे वरना। तो आप मुझसे दूसरा सवाल करोगे ही नहीं, बिकॉज यू बिलीव कि हाँ यार ये टीचर जो है इससे जुड़ी हुई है, बड़ा आदमी है ये, गलत थोड़ी बोलेगा। तो आप आ गए भरोसे में और मैंने आपसे कागज पे जो मर्जी चाहा पूछा और आपने लिख दिया, ये बिल्कुल वही हो रहा है। सो दिसंबर 1924 में पूरी टीम तैयार हो गई, अब डॉक्यूमेंट बनाना बाकी था। इस बंदे ने घर पे एक मेजर डॉक्यूमेंट बनाया, डॉक्यूमेंट में था बिटवीन गवर्नर जनरल ऑफ अंगोला और बैंक ऑफ पोर्चुगल दोनों के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। इसमें ऑथराइजेशन इसने दी 100 मिलियन एस्क्यूडेस की, 500 नए नोट अंगोला के डेवलपमेंट के लिए, और इसने इस पे ऊपर लिखा क्लासिफाइड। क्लासिफाइड लिखने का मतलब है कि कोई भी इस कागज को चेक नहीं करेगा, ये बाईपास कर जाएगा स्टैंडर्ड सारे के सारे प्रोसीजर। एक एक वर्ड इस कॉन्ट्रैक्ट का झूठ था, एक एक वर्ड। दो कमजोरियां थी बैंक ऑफ पोर्चुगल की,
प्रिंटिंग सिस्टम ऑथराइजेशन है। तो वाटरलू वालों के पास जब पहुंचेगा तो वाटरलू वाले चेक नहीं करने वाले, कॉल करके हाँ जी आपने भेजा कागज, जी आपका ही डॉक्यूमेंट है। नहीं, वो लोग सिर्फ ठप्पा देखते हैं, स्टैंप देखते हैं, बस स्टैंप है सरकारी स्टैंप हो जाएगा काम, वो कॉल नहीं करते। दिस इज बैक इन द डे, और वो ये चीज जानता था। इससे फायदा ये होगा कि कोई भी सीरियल नंबर ट्रैक ही नहीं होगा, लोकल ट्रैक तो बैंक वैसे भी नहीं कर रहा, तो नेशनल कहां से चेक कर लेगा। तो हो ये रहा है, मैं और आसान करता हूं कि मार्केट में एक ही सीरीज के दो नोट हैं, मगर आपको पता ही नहीं है। आपके हाथ में जब तक सेम सीरियल नंबर के दो नोट नहीं आएंगे, आपको कुछ नहीं पता कि आपके पास नोट जो है वो असली है भी कि नहीं। ऊपर से उसने नोटों पे कहा कि इससे मुझे वास्को डगामा की फोटो चाहिए, क्योंकि भाई ये डेवलपमेंट को सिग्निफाई करता है, वो बंदा अफ्रीका तक गया था भाई, तो उसकी फोटो चाहिए। तो एक पूरी पिक्चर, एक पूरा सिनेमा इस अकेले बंदे ने, आर2 ने पेंट किया विद कन्विक्शन। अब स्टेप वन ये था कि उसे चाहिए सिग्नेचर। वॉलेट से उसने 500 का पत्ता निकाला और उसके ऊपर जो गवर्नर के साइन थे उस पर ट्रेसिंग पेपर लगाया और उसकी प्रैक्टिस करी। इतनी प्रैक्टिस कि उसे अब फ्री हैंड वो सिग्नेचर साइन कर सकता है। स्टेप टू, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना। कॉन्ट्रैक्ट पे उसने जितना जेल में पढ़ाई करी थी कि बैंक किस तरीके से फंक्शन करता है, एक लीगल पेपर की भाषा क्या होती है, सारी की सारी लैंग्वेज उसने, सारी जुबान उस पर लिखी, उसमें हेडिंग क्लॉज और पेपर वजनदार, एकदम कड़क भारी पेपर कि लगे हाँ ये है लीगल डॉक्यूमेंट। अब स्टेप तीन था नोटरी सील। वो फिर से इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर असिस्टेंट के पास गया, लेकिन असिस्टेंट के पास गया, चीफ के पास नहीं गया, और बोला ये क्लासिफाइड है, बड़े साहब ने बोला ठप्पा लगा के तू जल्दी से। असिस्टेंट ज्यादा सवाल नहीं करते, बड़े साहब के बातों को काटोगे, उसने लगा दिया ठप्पा बिना पढ़े, काम खत्म। अब स्टेप फोर, नोटरी पे जो ठप्पा लगा हुआ है वो मेन है, अब ठप्पा लगवाना है बाकी एम्बेसी वालों से, क्योंकि नोट आएंगे कैसे। तो वो गया ब्रिटिश काउंसिलेट, लग गया वहां पे ठक्का। ब्रिटिश काउंसिलेट ने क्या देखा, भाई नोटरी वाले ने सील लगा रखी है, लगा दी। फिर गया फ्रेंच एम्बेसी, फ्रेंच वालों ने क्या देखा, भाई ब्रिटिश काउंसिलेट ने लगाया है नोटरी सील भी है, उसने भी लगा दी। फिर गया जी जर्मन वालों के पास, जर्मन वालों ने क्या देखा, भाई ब्रिटिश फ्रांस इन सबके ठप्पे हैं, उसने भी लगा दिया। किसी ने नहीं पढ़ा, सब क्या देख रहे हैं पिछले वाले का ठप्पा है कि नहीं, कोई पेपर नहीं देख रहा, कोई पेपर नहीं देख रहा, सभी देख रहे हैं पिछले वाले का ठप्पा है या नहीं। अब जो पेपर तैयार करने हैं, इन तीन सो कॉल्ड टीममेट को जिन्हें कुछ अलग तस्वीर दिखाई है, इनको पेपर देने के लिए पुराने कागजों में से ब्लेड लेके डॉक्यूमेंट से स्टैंप और सील फाड़ फाड़ के इसने चिपकाई, बहुत कायदे से, ताकि ऑथराइजेशन एकदम असली दिखे। दिसंबर 1924 में कैरल मैरिन, जिसको लग रहा है कि उसका बहुत फायदा होने वाला है, जिसके पास बहुत ताकतवर पासपोर्ट है, वो ट्रेवल कर रहा था लंदन। उसके पास था लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एक बहुत ही रसूखदार डच फर्म का, जिसका नाम था जेन एनसेदा। पहली मीटिंग हुई और मीटिंग सीधा विलियम वाटरलू से हुई, मतलब डायरेक्टर ऑफ वाटरलू एंड सन्स, वो कंपनी, वो फर्म जो नोट छापती है पोर्चुगल के लिए, पूरे पोर्चुगल के लिए। अब इसने क्या देखा, इसके पास जब कॉन्ट्रैक्ट आया तो उस पर भाई साहब इतने सारे गवर्नमेंट के स्टैंप लगे हुए हैं, तो ये कौन होता है सवाल करने वाला। और इसने बताया कि विलियम साहब वो पोर्चुगल में 500 के डिनोमिनेशन के नोट चाहिए, पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी खराब है आपको पता ही है, तो आप देख लो। विलियम वाटरलू ने कागज देखना शुरू किया, नोटरी है, एम्बेसी के सिग्नेचर है, वो कौन होता है शक करने वाला। उसने ये तक नहीं पूछा कि ये प्राइवेट बंदा क्यों बैठा हुआ है, मेरे सामने नोट क्यों मांग रहा है पूरे देश के लिए, कुछ नहीं, उसने ठप्पा देखा। अब एक मसला था, सब कुछ क्लियर हो चुका है, सीरियल नंबर का क्या किया जाए, डुप्लीकेशन हो जाएगा मार्केट में। तो आर2 ने कॉन्टेक्ट किया, एक खत में लिखा कि मैं आपको सीरियल नंबर सीरीज दे रहा हूं, इस नंबर के नोट छापने। विलियम वाटरलू ने कहा ठीक है हो जाएगा।
आर्टूर के अलावा सबको लग रहा है कि वो बहुत ही शरीफ और सीधा काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता है कि कितना बड़ा गेम चल रहा है। किसी को नहीं पता है कि आर्टूर ने अपनी जेब से नोट निकाल के उसी का सीरियल नंबर, उसी की सीरीज भेज दी है छपने के लिए। उसने बोला कि अरे वो आप इस सीरीज में छाप दीजिए, ऊपर से अंगोला ओवर प्रिंट तो वैसे भी होगा तो कंफ्यूजन नहीं होगी। उन्होंने ही बोल दिया ओके। तो फरवरी की फरवरी से नवंबर 1925 प्रोड्यूस किए गए 58,000 बैंक नोट्स 500-500 के, जिन पे शक्ल थी वास्को डगामा की। सेम पेपर, सेम इंक, प्लेट्स, नोट्स, सब कुछ एकदम असली, यानी कि 300 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग प्रोड्यूस किए गए, जो कि 1% था पोर्चुगल की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। आर्टूर ने प्रिंट नहीं किए, करवा दिए। वाटरलू बैच अब जो है बस पहुंचना बाकी है उस तक। तो कैसे पहुंचेगा? केरल के पास बहुत ताकतवर पासपोर्ट है, उसने ये सारे के सारे बहुत नॉर्मल से बैग्स में भरवाए और ये बंडल लेकर, एक ऑर्डिनरी सूट केस लेकर पहुंच गया। और उसके बाद ऑफिसर्स ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि पासपोर्ट भारी है, तो कोई कस्टम चेक नहीं, उसे कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है। और वो आ गया पोर्चुगल, कोई मसला नहीं है, ये करेंसी पोर्चुगल में आ चुकी थी। जून 1925, आर्टूर ने इन पैसों से, या यूं कहूं उस करेंसी से, एक बैंक खोल डाला। एक बैंक, द बैंको दे अंगोला ई मेट्रोपोले, जिसका ओनर और डायरेक्टर कौन है? आर्टूर एल्वेस दोरेस। 300 मिलियन करेंसी को साइकिल कर दिया, और जिसको जितना हिस्सा देना था दे दिया। सबको लग रहा है कि हमने तो बहुत नेक काम किया है। अब इस बैंक में जितना पैसा है, इसको रोटेट करने के लिए इसने सबको लोन बांटना शुरू किया। आ जाओ लोन ले लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाकियों के मुकाबले 3 गुना कम, क्योंकि लोन उस वक्त उन लोगों को मिलता था जिनके पास कुछ तो पैसे हो, लेकिन ये सबको ही बांट रहा था। आ जाओ भाई, आ जाओ, लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो। और लोग बोलते थे यार ये तो फरिश्ता है, ये तो फरिश्ता है। वो इस वक्त 28 साल का था, मगर रुकने वाला नहीं था। अब एक और फेज था, फाइनल फेज। अब उसे इस पूरे फाइनेंस सिस्टम को अपना लेना है। वो बिल्कुल चुपके से बैंक ऑफ पोर्चुगल के शेयर्स खरीदने शुरू कर चुका था। वो चाहता था कि वो इसका शेयर होल्डर बने, सबसे बड़ा, यानी कि खुद सिस्टम बन जाए। तो कुछ भी करता रहेगा, पैसे इधर उधर कोई सवाल ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद से क्यों सवाल करेगा, वो खुद ही कानून बन जाएगा। तो बैंक ऑफ पोर्चुगल का ओनर बनने के लिए 45,000 वोट शेयर चाहिए थे, मेजोरिटी। और इसके पास ये करने का मौका था, जल्दी करना पड़ेगा बस। तो क्रॉस ओनरशिप के जरिए, मतलब अलग अलग कंपनीज के जरिए अपने शेयर खरीदता गया, क्योंकि एक बंदे को सारे शेयर नहीं दिए जा सकते। तो इसके पास 10,000 शेयर इकट्ठे हो गए, और अभी भी बाकी थे काफी ज्यादा शेयर लेना। मगर इस बीच एक चीज हो गई जो बहुत दिक्कत थी। दरअसल इस टाइम पे एक बंदे के हाथों में, अक्टूबर 1925 में, एक नोट, दो नोट लगे सेम सीरियल नंबर की। और इसी टाइम पे रिपोर्टर्स को शक हुआ, ये कैसा बैंक है भाई, ये बैंक तो नया नया खुला है, ये सबको नोट इतनी जल्दी लोन कैसे बांट रहा है? और उन्होंने रिपोर्टर लगा दिए पीछे, हेडलाइंस छपने लगी, इकोनॉमी को बर्बाद कर रहे हैं घुसपैठिए, ये सब छपने लगा। और इसलिए सब इसके पीछे पड़ गए। दिसंबर 1925 अखबार में हेडलाइन बनी, ओपेस एम क्राइस, यानी कि कंट्री इन क्राइसिस। अब पुलिस वाले पीछे लग गए, अब वो छोड़ने वाले नहीं थे। सीरियल नंबर सेम निकल रहे थे, और अब एक पुलिस वाले को मार्केट में उतारा गया, तिशेरा दिब्रेतो
पोर्टो, और वो जब मार्केट में उतरे तो उन्होंने बैंक में जा जाकर नोटों को मैन्युअली मैच करना शुरू किया, सबको बिठा के गिनवाया कि डुप्लीकेट कितने हैं, अभी के अभी गिनो।

उसके पीछे लग गए कि अब इसको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। और फाइनली उन्होंने एक जहाज में बोर्ड करके आर्टूर को बाकायदा अरेस्ट कर लिया। वो उस वक्त कहाँ जा रहा था, किधर जा रहा था, ये मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 6 दिसंबर 1925 में उसे कस्टडी में लिया गया, लिस्बन लाया गया और उसके बैंक में जो उसने बैंक बनाया था वहां जाके भी चेक किया तो एक एक चीज का खुलासा हुआ। उन्होंने उसके बनाए हुए पेपर को फ्रैंकेनस्टाइन पेपर कहा कि स्टैंप असली है लेकिन जिस कागज पे स्टैंप लगे हुए हैं वो कागज जिंदा ही नहीं है। उसका प्लान ये था कि वो बैंक ऑफ पोर्चुगल का ओनर बन जाए पकड़े जाने से पहले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1930 में उसे 15 साल की सजा सुनाई गई, 1945 में वो बाहर आया और 10 साल के बाद दुनिया से चला गया, लोगों ने बुला दिया। लेकिन पीछे जो वो छोड़ के गया था, नतीजा ये हुआ कि बैंक ऑफ पोर्चुगल ने वाटरलू वालों पे केस कर दिया कि भाई तुमने नोट ऐसे छाप कैसे दिए, भरोसा तोड़ा है तुमने हमारा। और डैमेज में उन्हें 6,10,392 pounds भरने पड़े। कंपनी डूब गई, पोर्चुगल की गवर्नमेंट लूट चुकी थी। 6 महीने बाद अरेस्ट के आर्टूर के आखिरी दिन जो बीते बहुत दर्दनाक थे। वो जिस सिस्टम को ओन करना चाहता था उसी सिस्टम को उसने तोड़ कर रख दिया। और उसने निकलने के बाद ये कहा कि हर गवर्नमेंट यही तो करती है, कागज ही तो है, पर आपको मानना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू है और आप मानते हैं। 12,501 शेयर दूर था आर्टूर, अगर उसे ये वाले शेयर आखिरी में मिल जाते तो वो कभी भी पकड़ा नहीं जाता। तो जैसे लोग कहते हैं कि डिग्री है सब कुछ नहीं होता, आई एम सॉरी, मुझे मानना पड़ेगा कि सही कहते हैं। आर्टूर पे मूवी बहुत जल्द बन के सामने आने वाली है एंड नोबडी हैज मेड इट टिल नाउ, बट आई बिलीव ये बंदा बड़े से बड़े कौन आर्टिस्ट से बड़ा है। सो आर्टूर वर्जिलियो अल्वेस दोरेस, ये नाम मुझे तो याद रहेगा। अब आपके पास ये कहानी है, आई होप कि इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी में समझा पाया हूं, क्योंकि इस अकेले बंदे ने जो किया है आई नेवर थॉट किसी ने किया होगा। 666-22107 666-22107 ये नंबर है और ये किस्सा है आपके हवाले। प्लीज मैंने ट्राई किया, बताइएगा कि आपको कैसा लगा, बिकॉज दिस वॉज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट लॉन्गेस्ट स्टोरीज एवर टोल्ड। मिलते हैं जिंगल के बाद।

0: आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने बहुत कौन आर्टिस्ट की आपको कहानी सुनाई है, बहुतों की कहानी सुनाई है. ये बंदा भाई अलग था, ये अलग था, उन सबसे अलग था ये. अगर आप ये कहानी को पूरी तरह से समझ चुके हैं ना, तो आप समझ रहे होंगे मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ. मैंने किसी को ऐसा करता हुआ नहीं सुना जिसने जो इसने किया भाई. बाकी मैसेज मेरे पे बहुत सारे आ चुके हैं, आप भी मैसेज करके जरूर बताइएगा. एक कॉल आ रही है, मैं पहले कॉल उठा लेता हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.
0: जी मेरा भाई, क्या हाल है भाई के?
1: क्या कहानी सुना
0: दिया, कैसी लगी भाई को?
1: नहीं, कहानी तो बहुत शानदार. और ये जो पॉइंट आया ना इसमें, मैं इसे वाकई सोचता था.
0: हाँ.
1: अच्छा, हम सब जब यहाँ पे ट्रैवल करते आते हैं तो हाँ. हमें अपनी डिग्रियों को एडजस्ट कराना पड़ता है ना, आपको
0: हाँ.
1: पता होगा.
0: हाँ.
1: फला जगह हाँ. पहले एचआरडी कराओ, उसके बाद फॉरेन मिनिस्ट्री में कराओ.
0: हाँ.
1: पहले लोकल नौकरी की सील लगेगी.
0: हाँ.
1: फिर एम्बेसी में लगेगी, फिर यहाँ
0: कराओ.
1: इतना लंबा है.
0: हाँ.
1: तो मैं गौर करता था तो उसमें सील पर कभी लिखा होता था ये हम ऑथराइज कर रहे हैं पिछली सील को, बस
0: है ना.
1: उससे ऊपर क्या है किसी को मतलब नहीं है.
0: एग्जैक्टली exactly. तो वही पॉइंट है कि आप वो नहीं देख रहे पेपर पे क्या है कि नहीं, मैटर नहीं करता कि पिछले वाले का ठप्पा है कि नहीं.
1: एक सील चाहिए ओरिजिनल बस, उसके बाद बाकी उसी सील के बेस पे लग जाएंगी अगर पेपर देखने में थोड़ा सा ओरिजिनल हो जाए. तो मैं सोचता था कि यार तुम इसको कौन करते होंगे तो कितना क्या कर लेते होंगे, डिग्रियां बना लेते होंगे, कर लेते होंगे. लेकिन अभी पता चला लोग 300 मिलियन भी बना लेते.
0: अब सोचिए आप, इस बंदे का भेजा कहाँ तक इसका दिमाग चला होगा, मैं ये सोचता हूँ. मैं सच में खुद हैरान था इसके बारे में सुन के.
1: ब्रिलियंसी है, नेगेटिव ब्रिलियंसी बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो सिस्टम के लूपहोल को एक्सप्लॉइट किया है ना, क्या बात है. कहानी सुन के मतलब काफी एक तो डर भी लगा कि यार क्या क्या हो सकता है जब पूरे सिस्टम के साथ कोई ऐसा कर सकता है, तो मेरे हाथ के साथ कोई क्या कर सकता है.
0: हाँ वही ना, वो तो आदमी है, एक एक के साथ नहीं खेल रहा है, सबके साथ खेल रहा है वो.
1: जो लोग इतने बड़े सिस्टमों के साथ खेल जा रहे हैं, तो फिर एक बंदे को एक फेक जॉब लेटर बना के कुछ बना के किसी को बेवकूफ बना देना कौन सी बड़ी बात है.
0: वही तो भाई, मैं
1: एसके में भी आते रहते हमारे पास साथी बेचारे, उन लोग के साथ हो गए हाथ से.
0: मैं ज्यादा हैरान पता क्यों, कि इस पे मूवी अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी. एंड आई एम रियली हैप्पी कि अभी बन रही है, अभी तक किसी ने नहीं बनाई थी.
1: बहुत इंटरेस्टिंग मूवी बनी.
0: हां डेफिनेटली,
1: जो उसको पकड़ने का भी जो प्रोसेस था, इस पर एक प्रॉपर चीज बन सकती है.
0: डेफिनेटली भाई, डेफिनेटली. मुझे अच्छा लगा भाई, कहानी अच्छा लगी आपको. थैंक यू सो मच मेरे भाई, क्या कॉल करके बताया आपने. थैंक यू भाई, बहुत प्यार भाई. थैंक यू सो मच भाई, शुक्रिया. वालेकुम सलाम. एक मैसेज है खादर अब्दुल हादी भाई का, कहते हैं ओनली टैलेंट जो भाई, वो पूरी टीम थी यहाँ पे, कल्ले बंदे ने धनिया बो दिया भाई. एक मैसेज सलाम अलैकुम कबीर भाई, मुझे ये समझ नहीं आया कि अभी तक 100 साल में किसी भी डायरेक्टर को ये स्टोरी नहीं मिली. वही मैं हैरान हूँ, मैं भाई आपकी तरह हैरान हूँ कि अभी तक इसके स्टोरी पर किसी ने मूवी कैसे नहीं बनाई. ये तो सबसे पहले भाग के बनानी चाहिए इस पर कहानी. एक मैसेज कहानी सुनने के लिए लिंक चाहिए, बिल्कुल भाई मैं भेजता हूँ आपको. और एक मैसेज है आसिफ भाई का, वैसे आप कॉल भी कर सकते हैं 4434377 पे, 4434377 पे अगर बताना चाहे तो. एक मैसेज है, क्या कह रहे हैं भाई, मस्त है कहानी, मूवी का इंतज़ार रहेगा. चलो आखिर में तुमने इस बंदे को भी जान से मार दिया भाई, वो अपने नेचुरल डेथ गया भाई. तो किसी को तो माफ़ कर दो, कह रहे इसका लेवल ही लगता भाई. तो भाई जो भी इस पे बताना चाहे तो मुझे बताइएगा. आई होप कि आपको आज का किस्सा बहुत अच्छा लगा, बिकॉज आई पर्सनली लव्ड इट भाई. मैं बहुत चाव से सुना है मैंने, बिकॉज मुझे भी उतना ही मज़ा आया जितना शायद इस कहानी को समझने वाले को आया होगा. एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. तो कुछ मैसेजेस मैं पढ़ देता हूँ. अरे क्या बात है यार, क्या मज़े से सुन रहे हैं भाई. कौन सी जगह पे गए हुए हैं आप या भाई? और एक मैसेज है मनी हाइस भाई, मनी हाइस से ज़्यादा है, आप समझ रहे हैं, कोई टीम वीम नहीं है भाई. बंदे ने अकेले सब कुछ. तब उसमें मैंने मैसेज किया है, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कबीर भाई, ये भी एक याद रखने वाली स्टोरी है, ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग. थैंक यू सो मच बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल में कबीर भाई. ओके ओके, मैं आपको कॉल करता हूँ सीधा. कमाल भाई यही लो, मैं आपको कॉल लगा रहा हूँ, कॉल लगा रहा हूँ. आजी कमाल भाई उठा लो. अस्सलाम वालेकुम भाई.
2: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है कबीर भाई?
0: बढ़िया भाई अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए.
2: कहानी तो भाई लोगों ने जो शॉर्ट शॉर्ट कर रहे थे, बहुत लंबी कहानी आपने खींच दी आज तो.
0: हाँ कैसे लगी भाई
2: कहानी? तो जबरदस्त, बस उसके दिमाग की भाई दाद देनी पड़ेगी.
0: अलग वायरिंग है भाई,
2: इतना दिमाग. हाँ वो भी सरकारी सिस्टम से खेलने का जो दिमाग था उसका
0: वो बताइए
2: भाई, लोकल से तो आदमी खेल सकता है एक बार
0: हाँ।
2: लेकिन सरकारी सिस्टम से, और सरकारी सिस्टम में एक चीज है भाई
0: हाँ।
2: बहुत सारे लूज हैं
0: हाँ।
2: लूज पॉइंट रहते हैं,
0: पर पता ये बात, ये बात आपने नोटिस की होगी कई जगह वैसे तो ना, कि ये जो दफ्तर होते हैं इनमें पिछले स्टैंप को देखा जाता है, वहाँ वाले साहब ने स्टैंप लगाया नहीं लगाया, अगर वो बोलेंगे हाँ लगाया अच्छा ठीक है तो फिर हम भी लगा देंगे,
2: स्टैंप नहीं भाई ठप्पा,
0: हाँ ठप्पा ठप्पा ठप्पा जरूरी है भाई, ठप्पा जरूरी है तो भाई ये इसलिए था। तो कहानी के साथ आप रहे, आपको आखिर तक क्या लग रहा था, आपको किस तरह की स्टोरी?
2: कहानी तो लास्ट में यही लग रहा था कि वो निकल जाएगा बंदा, लेकिन जब उसको शेयर नहीं मिल पाया तो भाई फंस गया
0: चलो आपको स्टोरी अच्छी लगी, ये इंपॉर्टेंट है भाई।
2: नहीं नहीं, स्टोरी तो बहुत जबरदस्त थी, और सबसे बेस्ट स्टोरी आपकी वही थी जो मगरमच्छ पकड़ पकड़ के जो बोर्ड में डाल रहे थे
0: समझा मैं समझा ठीक है कमाल भाई, और बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और ये कहानी भी बाद में सुनिएगा जरूर, और अच्छी लगी ये कहानी, दो बार सुनने में ज्यादा मजा आता है।
2: हाँ दो बार सुनूंगा,
0: डन मेरा भाई,
2: सैटरडे या फ्राइडे,
0: ठीक है भाई ठीक है, बहुत
2: तो आपकी पूरी कहानी जो है ना रिपीट होती है भाई, फ्राइडे सैटरडे दो दिन,
0: हाँ ऑफ कोर्स मेरे भाई सुनिएगा जरूर, बहुत प्यार कमाल भाई हमेशा की तरह भाई,
2: थैंक यू सो मच
0: भाई, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और कमाल भाई के बाद अगली कॉल, अस्सलाम वालेकुम।
3: हेलो
0: जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम भाई, आपका नाम?
3: अब्दुल रऊफ बात कर रहा हूं
0: जी, अब्दुल रऊफ साहब बताइए।
3: अच्छी स्टोरी थी, और इसे कहते हैं इंटेलिजेंस वर्सेस वीक सिस्टम स्टेट,
0: हाँ ऑफ कोर्स, तो
3: क्योंकि उन दिनों में इकोनॉमी उनकी डाउन थी, बैंकरप्सी चल रही थी
0: जी,
3: तो वैसे ही पॉलिटिकल सिचुएशन इतनी कमजोर थी कि उसकी इंटेलिजेंस ने पूरा एक मास्टर प्लान तैयार किया, और थोड़ा मिस किया मैंने शायद, उसने अंगोला में बैठ के नोट छपवाए ना,
0: जी जी जी, अंगोला के, अंगोला में बैठ के भी, अंगोला के नाम पे भी
3: नाम पे भी,
0: हाँ नाम पे भी, तो उसने दोनों ही काम किए, और बहुत बहुत,
3: लेकिन वो होता है ना कि चोर और कातिल कहीं ना कहीं छोड़ देता है क्लू,
0: हाँ हाँ
3: तो वो सीरियल नंबर से फिर पकड़ा गया,
0: और ऐसा क्लू छोड़ा था ना उसने कि नजरों के सामने है, बस कोई देख नहीं रहा है,
3: देख नहीं रहा,
0: हाँ तो वो बच गया बस, मतलब एक तरीके से मैं कहूंगा बच ही गया, वरना बहुत पहले पकड़ा जाना चाहिए था, वो साल डेढ़ साल लगा उसे पकड़ने में, तो वो भी बहुत बड़ा वक्फा है उस टाइम के हिसाब से भी,
3: ये था कि वो इंटेलिजेंस अगर पॉजिटिव वे में करता तो कर सकता था, लेकिन उसने नेगेटिव में चला गया ना,
0: हाँ ये तो है भाई, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन अब्दुल भाई आपको कहानी अच्छी लगी ये मैटर करता है भाई, कहानी बड़ी लगी आपको तो बताइए,
3: नहीं ठीक है साथ, लेकिन ऐसी कहानियों के साथ चलना पड़ता है, मिस हाँ। कर दिया तो फिर वो
0: ये बात तो है,
3: नहीं समझ आएगा,
0: ये तो है भाई, ये प्लॉट ऐसा है कि इसके साथ साथ सुनना पड़ता है थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया,
3: चले आप प्रोड्यूस कर लें फिल्म
0: ठीक है 300 मिलियन का जुगाड़ करते हैं भाई, महंगे पिक्चर बनाएंगे,
3: नाम क्या रखेंगे
0: इसका, नाम क्या रखेंगे ये पता नहीं है, नाम एक्चुअली में सोचना चाहिए नाम इसका क्या रखेंगे,
3: अली बाबा 40 चोर
0: एक ही चोर है भाई इसमें तो अब्दुल साहब, बट ठीक है थैंक यू सो मच,
3: चले ठीक है ओके ओके बाय, अल्लाह
0: हाफिज़ अल्लाह हाफिज़। और अब्दुल रऊफ साहब के बाद एक और कॉल, अस्सलाम वालेकुम,
4: मरहबा,
0: अरे क्या हो गया
4: एक गोली डाली पांच घर खाली छकास,
0: अच्छा तुम ही थे क्या तुम्हारी कहानी तो नहीं सुनाई मैंने, अरे रे रे रे रे भैया,
4: अबे भाई कैसा है,
0: बढ़िया भाई एकदम शानदार,
4: वो अच्छा कहानी सुनाया, अच्छा वो छकास
0: झकास,
4: अच्छा कहानी, आदमी भी सोफे पे पड़े पड़े क्या करेगा, कहानी ही बनाएगा ना भाई,
0: और क्या भाई जरूरी है सब,
4: सोफे पे पड़े रहते हो कहानी बनाते रहते हो, मक्खी मारते रहते हो,
0: बना नहीं रहा हूँ, अरे असली कहानी है रे बाबा,
4: ओ असली वही सही बात, असली हो जो भी है
0: हाँ।
4: सोफे में पड़े पड़े कहानी ही बना सकता आदमी,
0: वही तो अपन तो है ही आलसी भाई,
4: बहुत मैं आज ऊँटों के पीछे गया था,
0: अच्छा
4: अभी ऊँटों के पीछे जा रहा हूँ,
0: अच्छा ठीक है,
4: रेडियो ऑन किया तो कहानी लगा होता, सुनता गया मजा आ
0: जाए, चलो मजा आना चाहिए बस, आपको मजा आना चाहिए इम्पोर्टेंट ही है,
4: बहुत मजा है माशाल्लाह बहुत है, आखिर में जो पकड़ा गया ना वो बड़ा गलती कर दिया उसने, समंदर में चला जाता था पागल है, नीचे डूबो खलास,
0: अच्छा मतलब समंदर में चला जाना चाहिए था उसे,
4: हाँ ना ऊपर क्यों पकड़ा गया, नीचे डूब जाता दूसरा सेट में निकल जाता था,
0: अरे यार आप नहीं थे ना बताने के लिए उसे, दिक्कत ये है
4: यार, जब पिक्चर बनाएगा बताएगा, और कैसा है तुम, ठीक है
0: बढ़िया, मैं बढ़िया हूँ, बताइए आप कैसे,
4: वाला कसम से बहुत याद आता है, तुम पकड़ा गया ना मेरा
0: आज मैं पकड़ा
4: गया, हाँ तो वो बहुत दिन से ढूंढ रहा था तुमको, मिल रहा नहीं था, जो मेरे को टाइम मिला, मैं बोला पकड़ा के किधर जाए वो बोलता ना अब बच के जाओगे कहाँ आपके मोहल्ले में, अब तो घर ले लिया देखा ना कैसा बात करता हूँ।
0: अरे जालिम हो तुम, जालिम भाई कतई कर रही बातें करते हो एकदम। फैन हूँ भाई मैं आपका।
4: बकरी खाया नहीं वो बकरी, बस वो क्या बोलेगा
0: माफ करो मेरे भाई।
4: दिल में रह गया बोलते ना दिल के अरमा आंसू में बह के, वो अभी तक बह रहा है बह रहा है।
0: अरे हो जाएगा सब, थोड़ा सुकून ठंड पाओ, अभी जाओ, अभी मैं बाकी कॉल्स भी ले लूँ ना, आप आराम करो अच्छे से।
4: नहीं नहीं बाकी कॉल किस लिए लेगा, सारा दिन तुम दूसरा का कॉल लेते, चाइना वाले का एक ही कॉल है।
0: अच्छा ठीक है,
4: चाइना वाला एक ही आदमी है मेरा भाई, एक हम है, बाकी सारा दिन वो अब्दुल रहमान, अब्दुल फकीर, अब्दुल रहीम, आज नाश्ता करेंगे।
0: ये कौन है ये कौन है
4: भाई,
0: ये कौन लोग, ये कौन कौन है, किन किन के नाम लिया आपने, कौन थे ये?
4: वो तो हमारा दोस्त मोस, वो हम सुनता है सारा दिन, कोई बोलता है समोसा खाएगा, कोई बोलता है
0: किसने बोला,
4: वो मेरे को नहीं मालूम है, सब तुम अच्छा मेरे को।
0: अरे माफ कर दो बेचारों को, गुस्सा नहीं, ठंड ठंड ठंड ठंड ठंड हल्का हाथ रखो।
4: देखो यार हम लोग को मैसेज लिखना नहीं आता है,
0: कोई बात नहीं कोई बात नहीं,
4: चाहिए कॉल करता है उसमें थोड़ा बर्दाश्त करो ना यार तुम।
0: बर्दाश्त करने के लिए तो मैं तुम्हारी कॉल उठाता हूँ, तभी तो बर्दाश्त करो।
4: सही है कि नहीं?
0: बिल्कुल सही है भाई, ब्लड प्रेशर आप अपना संभाल के रखो।
4: चार बजे प्रोग्राम आता है, पहले फजील प्रोग्राम करता था, फजील फजील नाम है उसका।
0: क्या करना है फजील को, उठवा लेंगे?
4: अच्छा सुनो ना, अभी वो दूसरा हमारा बहन मैडम आता है, फोन नहीं उठाता, देखो क्या हमको मैसेज लिखना नहीं आता है,
0: गलत है, गलत है। मैं आप सुनो मैं आपका नंबर स्टूडियो में छाप देता हूँ प्रिंट करके, ये नंबर देखते ही उठाएंगे सब, ठीक है?
4: 10,000 आदमी इधर अनपढ़ है, उसका इसका मतलब उसका फोन नहीं उठाएगा?
0: अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, किसी को पता नहीं होगा ना, गुस्सा नहीं करते, ठंडे हो जाओ यार, सुबह सुबह गुस्सा मत करो यार आप।
4: गुस्सा तो आता है ना, मैंने फोन मारा।
0: अरे बस अरे अरे अरे अरे गुस्सा छोड़ दो छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो। अच्छा मेरे लिए गुस्सा छोड़ दो,
4: मेरा दिल भी कहता मैं एक गाना सुनूं।
0: अच्छा गाने सुनो, अभी अभी सुनो सुनो, तुम्हारे लिए एकदम कर्रा गाना चलाता हूँ मैं, ठीक है? अभी चला रहा हूँ सुनो।
4: वो सुना दो ना, जब मैं 5 साल की उम्र में बैग लेके भाग गया था, मुकद्दर का सिकंदर का गाना सुना।
0: मैं अपनी मर्जी के लगाऊंगा, सुन के देखो अभी, ठीक है?
4: अच्छा चलो
0: चकास, चलो थैंक यू सो मच, अल्लाह
4: हाफिज़।
0: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे भाई साहब मेरी पगार थोड़ी तो बढ़नी चाहिए, आई डिजर्व इट भाई, आपके लिए गाना। अभी ये कल कॉल करके भाई साहब जो लठ लेके आएंगे इस गाने के बाद। चेक चेक म्यूजिक एमजी, बाकी मैसेज कुछ देर आज बच गए 25 मिनट, मैंने गुस्सा दिलाने के लिए चलाया मैंने गाना, खोला दूंगा खोला।

0: म्यूजिक MG।
1: अभी चाचा जो है आएंगे, जब आएंगे भाई लठ लेके आएंगे इस बार। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर एफएम सुन रहे, कॉल आ रही, पहले कॉल ले लेते। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम कबीर भाई।
1: जी मेरा भाई,
2: ये चाचा का फोन आप उठा लेने का और वो मैडम को भी बोल देने का,
1: मैं पता ही
2: पगार आपकी बढ़ जाएगी, मुश्किल नहीं है
1: भाई। दोनों को एक दिन में कॉन्फ्रेंस कॉल पे लगा के सो जाऊंगा भाई मैं।
2: नहीं चाचा सही में लट लेके आ जाएंगे, नहीं तो
1: भाई बिल्कुल भाई बिल्कुल, कल तो पक्का आएंगे, मैंने नंबर नोट कर लिया है उनका, तो मैं तो
2: नंबर लिख के लगा दो और सबको बोल दो चाचा का फोन आया तो पहले उठाने का।
1: हाँ।
2: हम लोग का तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है।
1: नहीं मैं नहीं उठाऊंगा, सबको उठाऊंगा, मैंने आज उठा लिया।
2: हाँ,
1: आज
2: सबको बोल देने का।
1: हाँ, सबको
2: हाँ, ये नंबर ध्यान में रखने का। ठीक है कबीर भाई,
1: बाकी सब बढ़िया? बाकी
2: बढ़िया बढ़िया, अल्लाह का एहसान, एकदम बढ़िया।
1: कहानी वानी सुनी आपने
2: कबीर भाई? थोड़ी मैंने सुनी, वो लोन मुझे भी दिला देते थोड़ा, बस उतना ही सुना, बाकी मैं वो व्हाट्सएप में सुनूंगा
1: आपको। मैं चाचा का नंबर देता हूँ, उनसे मांग लेना। ठीक है
2: ठीक
1: है, चलो
2: ठीक है।
1: वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और भाई के बाद जो एक मैसेज आया है, ये मुझे मैसेज किया है, सलाम कबीर भाई। भाई बहुत मजे के बंदे थे, सॉन्ग से पहले वाली कॉल में ख्याल भाई समझ गया था मिर्च मसाला उनके पास, इसलिए ना ना ही हुआ। कहते भाई चाचा की कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद जो साई ऑफ रिलीफ, ऑफ कोर्स भाई साहब मैं डरता हूँ उनसे बहुत ज़्यादा। एक और मैसेज है, मूवी का नाम, क्या मूवी का नाम होना चाहिए? झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए भाई, बेहतरीन नाम, बेहतरीन नाम। लिखते हैं तला भाई को हीरो होना चाहिए, तला भाई जचेंगे इस पर, आई थिंक। तो कहते हैं क्या करेगा आदमी सोफे पर बैठे बैठे, कुछ तो करेगा, कहानी सुनने का। और भाई एक मैसेज है, इज अ क्लेवर पर्सन, एक कॉल आ रही है, बस पहले कॉल उठा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम कबीर भाई, मेरे भाई।
1: जी ब्रज भाई, क्या हाल है भाई की?
3: भाई चंगे हैं
1: जी साहब, बताइए क्या कहेंगे
3: आने वाले हमारे पंगे हैं।
1: तो कैसे लगी आपको कहानी प्रिंस भाई?
3: बस बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया। ऐसे लगा कि KGF चैप्टर 1, चैप्टर 2 और वो पता नहीं बाहुबली 1, 2, इस तरह से वेट नहीं करना पड़ा, एक ही चैप्टर में सब कुछ कंप्लीट हो गया।
1: हाँ, इस पे पिक्चर नहीं बनी प्रिंस भाई, अफसोस इस बात का है, दुनिया को पता होना चाहिए इस कहानी के बारे में, क्या बोलते
3: भाई? बिल्कुल सही बात है, एक्चुअल पता होना चाहिए।
1: हाँ।
3: कौन आर्टिस्ट को वैसे भी बहुत सुने हैं, देखे नहीं है।
1: हाँ।
3: सुने बहुत हैं।
1: हाँ।
3: और दिखाई भी दे जाए तो हम पहचानेंगे कैसे? जब तक जब तक उस चीज से खुद नहीं गुजरेंगे।
1: हाँ बात तो सही है, नहीं पर इसके बारे में आप भी देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रहा है ये, हालांकि है कौन आर्टिस्ट, लेकिन भाई हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को होता है, तो ये बंदे से बहुत कुछ सीखने को है, ये बात तो माननी पड़ेगी।
3: इम्पेशेंट था बंदा।
1: हाँ इम्पेशेंट था, ये बात है, जल्दी जल्दी सब चाहिए बटोर लो,
3: उसमें क्वालिटी होती ना पेशेंस वाली, तो आज आप हमें ये स्टोरी नहीं सुना रहे होते।
1: बात तो सही। अगर बेसब्रा नहीं होता तो ये कहानी नहीं होती, करेक्ट?
3: बिल्कुल भाई बिल्कुल,
1: ठीक है।
3: फिर आप ये स्टोरी बिल्कुल टोटली डिफरेंट होती।
1: हाँ,
3: एक बंदा जो बहुत गरीब था, उसका बाप बैंकरप्ट हो गया था, और आज जब वो मरा तब वो बिलियनियर था।
1: हाँ, फिर ये चोर की नहीं, फिर ये इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाती है।
3: हाँ, तब वो बिलियनियर था। हाँ। ये हो जाता। और भाई
1: हाँ।
3: जो भाई भी मुझे रोस्ट कर रहे हैं ना, प्लीज ना करें, मैं बहुत ही सेंसिटिव बंदा हूँ।
1: हल्का हाथ बहुत सेंसिटिव है, ठीक है प्रिंस भाई, मैं रोक के रखता हूँ।
3: सेकंड थिंग कि भाई जो चाचा से भी बात की है ना, शायद किसी ने समझा हो या ना समझा हो।
1: हाँ।

0: आई लिटरली फील द पेन ऑफ दैट गाय.
1: आपको लग रहा है वो पेन में थे?
0: आई एम श्योर अबाउट इट.
1: आप मिले नहीं है उनसे इसलिए आपको पता नहीं है भाई.
0: सिंपली
1: हाँ,
0: ही इज फ्रस्ट्रेटेड बाय हिज फैमिली.
1: अच्छा ऐसा क्या?
0: आई कैन फील, आई कैन सेंस इट. यस वन.
1: अच्छा
0: जब तभी लोग चाहते हैं कि भाई हम अपने जो बिल्कुल क्या कहते हैं करीबी जो होते हैं जब कुछ नहीं कह पाते ना तो समथिंग केम आउट लाइक दिस. बिकॉज आई डू अ काउंसलिंग लॉट मोर टाइम काइंड ऑफ दिस पीपल.
1: ओके,
0: तो माय लव विद हिम.
1: ओके, कल मैं कल बात करता हूँ उनसे इस बारे में. कल तो बात करनी पड़ेगी.
0: माय लव विद हिम.
1: ठीक है.
0: आई नो व्हाट इन हिज हार्ट. भाई बंदा बहुत ही बढ़िया है. लेकिन what I said you must have to think about it. He needs someone to talk.
1: ठीक है.
0: ये बहुत ही खराब बात है कि जब बंदा एक बंदे ने सारी उम्र अपनी सारी गुजार दी किसी के पीछे और अब उसी को अलग कर दिया जा रहा है. अरे कहाँ दोस्तों के सामने ले जाए, बाबत पढ़े, कहाँ इनसे मिलाए, इसको समझ में नहीं आता. अगर किसी ने इंग्लिश में जोक मार दिया तो हम कुछ बोल नहीं पाएंगे. पहनावा समथिंग लाइक है. He's suffering from that thing.
1: ठीक है, मैं पता करूंगा. आपने जो मेरे दिमाग में डाली है पता करूंगा कितने टेंशन में है, ये तो मैं पता लगा के रहूंगा. देखो आप, ठीक है प्रिंस भाई, बहुत
0: बाकी तो भाई हमारे लिसनर्स तो वल्लाही बस क्या कहें,
1: अपनी पब्लिक बेस्ट है भाई. जी भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको बहुत
0: मारते हैं, मारते हैं.
1: थैंक यू प्रिंस भाई.
0: ऐसी ऐसी बातें करते हैं.
1: हाँ,
0: मिर्ची वाली मिसाल तो मैंने आपको दे ही दी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, सारे तीखे हैं भाई, पब्लिक तीखी है एकदम सुबह सुबह. ये बात भी सही है. क्या बात है यार, सुबह फॉर्म में, सब फॉर्म में.
0: सभी यही चाहते हैं कि सुबह उनकी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो. डोंट स्पॉइल एनीवन.
1: हाँ ऑब्वियसली, तभी तभी हमें सुबह लाइट लाइट मूड होना चाहिए. लाइट मूड होना चाहिए सुबह.
0: एट द प्लेटफॉर्म वेयर वी आर एंजॉयिंग योर वॉइस, योर अ काइंड ऑफ स्टोरी. ऑसम.
1: Thank you so
0: and
1: much.
0: जो आप सुबह सुबह चीजें लेके आते हैं, it is what should I say? I didn't have word.
1: Thank you so much, Prince भाई. आपकी मोहब्बत है भाई, बहुत प्यारा.
0: भाई इन चीजों को इन्हीं तरह रहने दे, ना के please to all of you and I.
1: समझ, मैं दिल की बात समझ गया भाई. Thank you, Prince भाई. बहुत प्यार भाई.
0: Take good care of yourself, everyone.
1: You too, मेरा भाई. बहुत
0: सारे. I am signing off.
1: एक और कॉल लेते हैं, फिर जरा मैसेज मेरे बहुत सारे हैं. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर जेस.
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जनाब खैरियत?
1: भाजी बढ़िया. तो सीधा सो, क्या हाल है आप?
2: क्या भाई, मुन्ना भैया याद आ गए थे क्या?
1: क्यों भाई? चचा, बात करा दूं क्या?
2: ना भाई साहब, धन्यवाद, मेहरबानी.
1: क्यों डर गए ना? इला डरा ना?
2: इधर ये चचा, ओ चचा.
1: हाँ तो मैं बोल दूंगा जैस भाई हैं, वो ऊंट देखना चाह रहे हैं तो
2: कंगारू जिराव.
1: अरे यार जैस भाई, कहानी सुनी आपने? बताओ, सब छोड़ो.
2: थोड़ी बहुत सुनी, समझ में आई. मुझे लग रहा है ना फिल्म रिलेटेड है, मगर वो बैंक के ऊपर फिल्म है कि भाई साहब?
1: नहीं, ये इस पे नहीं बनी है मूवी.
2: नहीं, वो आपने है साउथ में मूवी है, तुमने शायद देखी होगी या नहीं देखी होगी.
1: नहीं नहीं, इस पे नहीं है. देखो इतनी ओवर स्मार्ट नहीं चलेगी, मैं बता रहा हूँ, झगड़ लूंगा इस बात पे. मैंने बहुत सर्च करी है, मैं गलत मानूंगा ही नहीं आज अपने आप को.
2: नहीं है, रिलेटेड है भाई.
1: ना जी, मैं आज बढ़ जाऊंगा. नहीं है भाई, कौन सी
2: बात कर, देख लियो लकी भास्कर.
1: अरे वो अपने आप में एक अलग कहानी है, लकी भास्कर इज अ डिफरेंट स्टोरी.
2: अरे यार दिमाग की बात कर रहा हूँ, रिलेटेड.
1: हाँ, वो हाँ, दिमाग रिलेटेड है. दिमाग, आई एग्री, दिमाग के हिसाब से तो है, वो मैं मानता हूँ. पर कहानी
2: ट्रेडिंग में घुस गया, शेयर मार्केट में घुस गया, पेन से लोड बदल करने लगा भाई, पूरे हिला दिया.
1: अरे ये कहानी अब सुनोगे ना तो भास्कर भाई आपको छोटे लगेंगे भाई. अभी सुनाऊंगा, सुनना ये कहानी तब समझ में आएगी आपको.
2: इसमें तो 300 मिलियन का. कोई स्कीम बता दे यार भाई साहब.
1: ये स्कीम मैं आपको ऑफलाइन बता सकता हूँ भाई. ठीक है, ये सरोवर भाई को मत बताना.
2: ना ना ना
1: उनसे छुपा के रहेगी भाई, हाँ आपस में रहेगी, उनको कुछ नहीं बताना है क्योंकि उन्हीं के साथ तो स्कैम करना है हमें तो इसलिए उन तक नहीं बात पूछनी चाहिए।
2: अब कोई अब ये यार ये बात जो है ना अब खुल गई भाई साहब, ये कोई ना कोई बता देगा भाई इसके वाला तुम्हारे साथ
1: हाँ ये कह देना आज सरोवर भाई को लोग बता दें कि आज उनके साथ स्कैम होने वाला, उन्हें पता होना चाहिए बता के करेंगे हम
2: इसके होने वाला हाँ सरोवर भाई के साथ बताऊंगा, नहीं तिल्ली लगा दो थोड़ी सारी।
1: बिल्कुल भाई कोशिश करो, बिल्कुल ये तीली तो लगा ही दो इस बार, हो ही जाए बहुत हो गया एकदम
2: यार। नहीं यार बर्दाश्त करते हैं वो भाई साहब, अगर जिस दिन भड़क गए ना तो पर्सनैलिटी के हिसाब से बहुत तगड़ा वाला भड़क गया।
1: मैं तो शो के बाद घर चला जाता हूँ भाई, मैं सामने नहीं आता मैं
2: तुम तो चले जाओ घर पे, अगर किसी ने भाई साहब बात करते हुए भड़का दिया ना तो ऐसे भड़केंगे सिमटेंगे नहीं बाद में।
1: आज मैं ही भड़काऊंगा उन्हें, आज उनके शो में मुझे लगता आना ही पड़ेगा आज मुझे।
2: बिल्कुल आज उनके शो में खुद भी तो मजा लेके देखे करो कि जैसे हम लोग मजे लेते हैं बात करके, तुम भी तो थोड़े बहुत देखे देखो।
1: डन डन डन भैया जी किया जाएगा जस भाई, डन हो गया आज।
2: हाँ जी डन हो गया, पता चला बंदा खराड़ा मार दिया लंबे लंबे की।
1: देखो उसी गारंटी नहीं है, कोशिश तो करूंगा मैं कम से कम कोशिश के तो नंबर दो, एफर्ट के नंबर तो मिलते हैं भाई, स्कूलों में भी मिलते हैं, हमें क्यों नहीं मिलेंगे।
2: वो कहते हैं ना कि एक अंधेरी रातों में थोड़ी सी रोशनी की चमक उठी थी पर हाँ। वो कुछ ही मिनटों के लिए कुछ ही सेकंडों के लिए उठी थी, बाद में बुझ गई। हमारे साथ वैसा ही है भाई साहब।
1: क्या क्या बात कह गए जैसे भाई, क्या हो गया सुबह सुबह ज्यादा नाश्ता कर लिया, क्या बात हो
2: गई अभी नाश्ता नहीं करा, भूख की आवाज है भाई।
1: हाँ तो मुख्य आवाज है, अब मैं चाचा छोड़ दूंगा आप पे सरोवर भाई पे, तुम सब के साथ बहुत परेशान कर रहे हो भाई मुझे सुबह से ठीक है जस भाई, थैंक यू सो मच मेरा भाई,
2: सेंड करियो और दोबारा फिर से सुनूंगा
1: भाई। डन भाई मैं भी सेंड करता हूँ, डन हो गया।
2: ओके भाई ठीक है,
1: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। मैं जल्दी सारे मैसेज पढ़ दूँ। खादर भाई कहते हैं चाचा शुड कैच सरोवर भाई, आई होप सो। और एक दो मैसेज हैं, याया भाई का तो मैसेज मैंने पढ़ दिया था। मुबीन बुखारी साहब के बाद मैसेज है, लठ नहीं भाई चाबुक लेकर आएंगे चाचा, कमाल भाई ये कह रहे हैं। फरद भाई कह रहे हैं क्या करेगा आदमी सोफे, ये तो मैंने पढ़ा। और मैसेज आया था बसुम बहन का, लिखती हैं कौन मैन स्टोरी इज़ माय फेवरेट। उसके बाद एक मैसेज है, कसम से ऐसा जैसा बंदों की वजह से आजकल कुछ छोटा सा भी कर दो तो उस टाइम पकड़ लेते हैं, पूरा सिस्टम से खेल गया पूरी ट्रेनिंग करके ये ऐसे लोग हुआ करते थे भाई ज़माने में। और एक भाई कह रहे हैं स्टोरी जल्दी से अपडेट करते हैं, अभी हो जाएगी। उस्ताद उमेर अली साहब थैंक यू सो मच, और वालेकुम अस्सलाम, माई प्रोजेक्ट साइट FM बंद हो जाएगा, वापस सुन लूँगा, डोंट वरी भाई वापस सुन लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ मैसेजेस थे, बाकी एक गाने का मिलते हैं। 666-2107, 666-2107 इस नंबर पर जो आएगा उसको

Hani तो भाई बात यू है, सारे जग चुके हैं तो जरा खबरों की तरफ भी बढ़ लिया जाए. हैं, सबसे पहले तो इंट्रो, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ.

0: फायर लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हाँ जी 8:43 बाय द क्लॉक एंड सिंस एवरीबॉडी इज ऑलमोस्ट अवेकन अप तो मैसेज मैं बाद में पढ़ूंगा लेकिन सबसे पहले मैं खबर पढ़ देता हूँ क्या मैसेज है मुझे क्रेडिट नहीं दिया भाई मैं अपनी घरवाली को क्रेडिट देना चाहता हूँ मेरी घरवाली ने बड़ी मदद करी है कहानी को ब्रेक डाउन करके फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरा पूरा समझाया क्रेडिट गोज टू माई वाइफ तो मैं दे रहा हूँ भाई क्रेडिट ठीक है दे दिया क्रेडिट करा सकता हूँ मैं अब मैं ज़रा कहानी के बाद जो है कुछ चीज़ें पढ़ देना चाहता हूँ जो खबरें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं सबसे पहले खबर है कि कतर ऑफर करने जा रहा है HPV की वैक्सीन जो आपको पता होगा कि मैं इसका यह प्रोनाउंसिएशन बड़ी मुश्किल लगती है मुझे पेपिलोमा वायरस ओके तो HPV बेसिकली जो वैक्सीनेशन हैं वो कतर में स्कूल में दी जाएंगी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम और ये जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है ये 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा इसका जो मकसद है वो बड़ा सिंपल है दे वांट टू प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर और ये जो दूसरी HPV रिलेटेड कैंसर्स होते हैं उनसे बचाव हो सके और ये वैक्सीनेशन को इंट्रोड्यूस करके बहुत बड़ा स्टेप लिया कतर ने मैं हमेशा तारीफ करता हूँ मेडिकल फील्ड की और मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है लगता क्या ये है मेरे कहने से क्या होता है तो वैक्सीनेशन जो है इंट्रोड्यूस की जाएगी थ्रू द नेशनल स्कूल वैक्सीनेशन कैंपेन जिसने अभी तक कवर कर लिए हैं इनफैक्ट कवर करने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है तो 75,000 बॉयज एंड गर्ल्स स्कूल्स कवर किए जाएंगे जिसमें 301 गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं तो अक्रॉस कतर वैक्सीनेशन कैंपेन चलेगी उसके अलावा जनरल सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उन्होंने संडे को एक लीगल इंटीग्रेशन फोरम को अंजाम दिया और इसमें बात की गई वर्ल्ड लॉ डे को लेकर किस तरीके से लॉ को बनाया जाए उसका प्रोसेस किस तरह से और आउटकम किस तरह से तो बेसिकली हर एक सिचुएशन के हिसाब से लॉ को कॉन्स्टेंटली चेंज करना इज़ अ वेरी टफ जॉब लेकिन इसमें जो एक्सपर्टीज बैठे थे इस पूरे पैनल पर उन्होंने बात करी किस

तरीके से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू करंट सिनेरियोस, किस तरीके से सब बैठ के रिव्यू किया जाए और उसके अकॉर्डेंस किस तरीके से लॉस बनाने हैं उस पर बात की जाएगी। सो जो करंट ट्रेंड होते हैं, दुनिया कहां तक पहुंच चुकी है, उसके हिसाब से रिव्यू होना चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉस बनने चाहिए, विच यू कैन सी एक्चुअली। बहुत सारे पोस्ट आपने देखे होंगे रिसेंटली भी कतर ने कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अमेंडमेंट्स होते हैं लेकिन इतने कॉन्स्टेंट और हक में हो रहे हैं, तो कुडोस टू कतर ऑन दैट। इसके अलावा कतर पार्टिसिपेट करने वाला है 52nd सेशंस ऑफ अरब लेबर कॉन्फ्रेंस में, जो कि कायरो में हिज एक्सेलेंसी द मिनिस्टर ऑफ लेबर डॉक्टर अली बिन समिख अल मर्री इसको हेड करने वाले हैं कतर डेलीगेशन के साथ इस पूरी कॉन्फ्रेंस को। इसके अलावा विजिट कतर पार्टिसिपेट करने वाला है 33rd एडिशन में ऑफ द अरेबियन ट्रेवल मार्केट, शॉर्ट फॉर्म में ATM, वाह। और ये सितंबर की 14 तारीख, और आज 14 तारीख है ना, हाँ, तो आज से लेकर 17 सितंबर तक ही होगा दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एंड इट विल बी हेल्ड अंडर द थीम। इसकी एक थीम भी है बाकायदा, ट्रेवल 2040। इसमें जैसे आप समझ गए होंगे, जब साल ही इन्होंने 2040 दे दिया है तो उसमें सब कुछ फ्यूचरिस्टिक ही होगा। सो ऑफ कोर्स इसमें इनोवेशन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी, और ATM 2026 साथ ही साथ प्रोवाइड कराएगा एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म जिसपे विजिट कतर भी शोकेस कर सकता है कि किस तरीके से कतर टूरिज्म काम कर रहा है और ऑफर कर रहा है और किस तरीके से इंटीग्रेशन किया जा रहा है नई नई चीज़ों का, ताकि टूरिज्म बढ़े। इसमें पार्टनर्स भी होंगे, इंडस्ट्री पार्टनर्स, और साथ में ट्रेवल प्रोफेशनल्स फ्रॉम अराउंड द ग्लोब। एंड लास्टली, कतर सोसाइटी ऑफ इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, उन्होंने लॉन्च किया है एक इनॉग्रल कतर आर्किटेक्चर अवार्ड 2026, जिसका मकसद जो था, मतलब है, वो ये है कि एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस और इनोवेशन के जरिए जो टैलेंट आगे आ रहा है उनको स्टेज मिल सके और उन लोगों को मौका मिल सके जो सिचुएशन के हिसाब से टेलर्ड चीज़ें देते हैं, मतलब कि कोई परेशानी है तो उसके हिसाब से एक टेलर्ड सॉल्यूशन पैदा करना, उन लोगों को, लोकल टैलेंट को मौका दिया जाए और दुनिया के सामने रखा जाए। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग जिस पे मैं बात कर देता हूँ, जो 35th अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर है वो शुरू हो चुका है एट ADNEC सेंटर अबू धाबी संडे को, एंड इट वाज आल्सो हेल्ड, इसकी भी एक थीम थी, हेल्ड अंडर द थीम ऑफ लेट्स टर्न द पेज एंड रीड द वर्ल्ड। क्या थीम है यार। तो ये 18 सितंबर तक चलेगा, उसमें 95 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं जिसमें हमारा कतर भी है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये थी सारी की सारी खबरें, एक सांस में तो नहीं बोल सकता लेकिन जितने मैंने बोले आप समझ गई होंगी। 666-22-107 नंबर, बाकी एक गाने के बाद मिलते हैं। जाना आपने ही नहीं, आपको बताइए सबसे बढ़िया जगह पर हैं आप, तो यहीं रहो, ठीक है। 666-22-107, बाकी मिलते हैं सिर्फ एक गाने के उस पार। टू स्टोरीज है पी टिल्लो और शिंदे कालो 840।

उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने बहुत मजे किए भाई, बहुत ज्यादा मजे किए अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बहुत मजा आया आज के शो में, लिटरली खुद फील हो जाता है ना कि खुद पता होता है कि क्या हुआ है और क्या रिजल्ट आया। सो आई एम रियली हैप्पी। एग्जाम अजी नंबर फुल आने चाहिए आज, तो मजे आ गए। बाकी आपको भी आई होप मजा आएंगे आज की जो स्टोरी, आपको जरूर मिल जाएगी, आपको पता ही कहाँ मिलेगी, बट इट बी अपलोडेड इन अ वाइल। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। आपका भाई एक बहुत खास इवेंट में गया था कल। कल चार कंट्रीज जो सेंट्रल अमेरिका को बनाती हैं, मतलब उन चार कंट्रीज से सेंट्रल अमेरिका बनता है, तो उनका इंडिपेंडेंस डे था कल 205th था, तो उस इंडिपेंडेंस डे पे पहुंचा था। बहुत मजा आया भाई, डिफरेंट कल्चर से जुड़ने में जो मजा आता है। बट मेजर बात यह है कि आपका भाई एकदम ब्लेजर पहन के वीडियो मिल जाएगा आपको। सोशल मीडिया हैंडल्स पे चेक कर लीजिएगा और वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाकी 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन। कल आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी फेवरी 6 बजे मिलते हैं। फॉर नाउ दिस इज दुहा वाला कभी साइनिंग ऑफ। पूरे दिन याद रखिएगा बस, मतलब कल तक तो याद रखिएगा, इतना तो किया ही होगा आज मैंने। एंड बहुत सारा प्यार आपको। दिस इज कबीर साइनिंग ऑफ, और आप बेहद बेहद जरूरी है। मां सलामा।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए। दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
4: आज ही राब्ता करें
3: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

सलामती, मईशत और मेहनत की मंडियों को मुतासिर किया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम पायदार तरक्की और मेहनत की मंडी के इस्तेहकाम के बुनियादी सतून हैं, जबकि कशीदगी में कमी, मुजाकरात और सफारतकारी खित्ते के अवाम के तहफ़ुज़ और तरक्की के लिए ज़रूरी हैं। उन्होंने कतर की जानिब से मेहनत के शोबे में कानूनियों, इदारा जातीय असलाहत, कारकुनों के हकूक के तहफ़ुज़ और पायदार और लचकदार मेहनत की मंडी के क्याम के अज़म का अदा किया। उन्होंने मसनूई जहानत और डिजिटल तब्दीली समेत काम की दुनिया में होने वाली तेज़ रफ्तार तब्दीलियों से निमटने के लिए महारतों, तालीम और तरबियत और समाजी मुकालमे में सरमायाकारी की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर मेहनत ने उम्मीद जाहिर की कि कॉन्फ्रेंस अरब तआवुन को मजबूत बनाने, बाइज्जत रोज़गार के मौके पैदा करने और पायदार तरक्की के लिए मौसर इकदाम में मुआविन साबित होगी। वज़ारत सेहत आमा ने वज़ारत तालीम आला तालीम और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के तआवुन से ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन को कौमी स्कूल वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल करने का ऐलान किया है। मुहिम के तहत 301 सरकारी और निजी स्कूलों में 8वीं, 9वीं और 10वीं जमात के 75,000 से ज़ायद तलबा व तालबात को वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम का पहला मरहला 20 सितंबर से 18 नवंबर 2026 जबकि दूसरा मरहला 25 अप्रैल से 16 मई 2027 तक जारी रहेगा। वज़ारत सेहत के मुताबिक वैक्सीन वायरस की ख़तरनाक इकसाम से तहफ़ुज़ फराहम करने और मुस्तकबिल में इससे वाबस्ता बीमारियों और सर्विकल कैंसर के ख़तरे को कम करने में मदद देगी। वज़ारत के मुताबिक वैक्सीन आलमी इदारे सेहत और अमरीकी इदारे खुराक व अद्वियात से मंजूर शुदा है और उसकी मौसरियत 90% से ज़्यादा है। वैक्सीन के आम मज़र असरात मामूली बुखार, थकन, हल्का सर दर्द या इंजेक्शन की जगह पर मामूली इलामात तक महदूद होते हैं। हुकाम ने

0: फे के साथ 9,848.95 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सेशन के दौरान तमाम सेक्टर में 15,556 ट्रांजैक्शंस के नतीजों में 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 6 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: स्पोर्ट्स हेडलाइंस में अभिषेक शर्मा और अर्शदीप सिंह के शानदार परफॉर्मेंसेस की बदौलत इंडिया ने इतवार को दिल्ली में मुनाकिदा 3 T20 मैचेस की क्रिकेट सीरीज के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। जूनियर हॉकी एशिया कप 2026 में इंडिया की मेंस और वुमेन्स टीमों ने टाइटल्स जीत लिए हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में इतवार को मैनचेस्टर सिटी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से मात दी। और फॉर्मूला 1 में चैंपियनशिप लीडर किमी अंतोनेली ने इस सीजन की अपनी 8वीं जीत हासिल की, जब उन्होंने इतवार को मैड्रिड में स्पेनिश ग्रांड प्री में अपनी मर्सिडीज को शानदार अंदाज में फतेह तक पहुंचाया। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में जितना ही आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समझ फरमाइए।
2: न्यूज हेडलाइंस विद इस्माइल खान।
3: वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा, रियासत कुवैत के वज़ीर ख़ारजा, सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा और जम्हूरिया ऑस्ट्रिया की वज़ीर बराए यूरोपियो बैन अल-अक़वामी उमूर ने अलग अलग टेलीफोन कॉल्स पर राब्ता किया। राब्ते के दरमियान दो तरफ़ा तआवुन के ताल्लुकात और उन्हें मज़ीद मजबूत और फ़रोग देने के तरीक़ों के अलावा खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत कतर ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में जारी 52वीं अरब लेबर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में अरब ममालिक के वफूद के सरबराहान और अरकान, सह फरीकी फरीकों के नुमाइंदों के अलावा मुतलका अरब और बैन अल-अक़वामी इदारों के नुमाइंदे भी शरीक हैं। वजारत सेहत आमा ने वजारत तालीम आला तालीम और प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के तआवुन से ह्यूमन पेपलूमा वायरस यानी HPV वैक्सीन को कौमी स्कूल वैक्सीनेशन मुहिम में शामिल करने का ऐलान किया है। और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने जोर दिया है कि खलीज अरब की सलामती और उसके ममालिक की खुद मुख्तारी और आज़ादी के एहतराम के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। उर्दू रेडियो FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचा। स्टूडियो से तकनीकी माउन सारा और न्यूज़ स्टूडियो से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्ज़ा, युसरा महमूद और इस्माइल खान को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, जिन्होंने काफिरों के जुल्म और सितम के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी और अपने ईमान पर इस्तकामत की दुआ की। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने उस वक्त की थी जब वो ईमान की राह में जालिमों के जुल्म और फितनों से दो चार थे। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا

0: यार लेवल मेकअप कल जो ख्वाब थे आज चेज अब दुनिया जो बोले साइड में करके आंखों को खोलो वेक अप ए दोहा वाला मैं कबीर
1: यही कहूंगा सुबह सुबह
0: वेक अप
2: हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर

कैसा होगा? क्या AI सिर्फ एक मशीन है या एक ऐसी ताकत जो हमारी जिंदगी बदल रही है? डरिए नहीं, समझिए।

0: आरजे ए फॉर अमिता के साथ AI अनलॉक्ड पर। एक ऐसा सफर जहां हम रोबोटिक्स से लेकर मशीन लर्निंग तक हर मुश्किल बात को आसान बनाए। तो सुनिए AI अनलॉक्ड आरजे ए फॉर अमिता के साथ हर संडे दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करते हैं एथलेटिक्स की दुनिया के उस सुपरस्टार की जो हर बार पोल वॉल्ट में एक नई बुलंदी का मतलब समझाता है। नाम है आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, दुनिया का सबसे डोमिनेंट पोल वॉल्टर और शायद एथलेटिक्स की तारीख का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एथलीट। डुप्लांटिस की पैदाइश 10 नवंबर 1999 को लाफायते लुसियाना अमेरिका में हुई। अमेरिकन बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल एथलेटिक्स में स्वीडन को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया क्योंकि उनकी अम्मी हेलेना स्वीडिश हैं और यह फैसला आज स्वीडन के लिए एक स्पोर्टिंग फेरी टेल बन चुका है। डुप्लांटिस ने बचपन से ही पोल वॉल्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने वॉल्टिंग शुरू कर दी थी और 7 साल की उम्र तक एज ग्रुप रिकॉर्ड्स उनके नाम होने लगे थे। उनका टैलेंट कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। उनके वालिद ग्रेग डुप्लांटिस खुद फॉर्मर पोल वॉल्टर रहे जबकि उनकी वालदा हेलेना फॉर्मर हेप्टाथलीट और वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यानी मोंडो के लिए एथलेटिक्स घर से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जो चीज मोंडो को दूसरों से अलग करती है वो है उनकी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत। 2020 में जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उस वक्त किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ये सिलसिला इतना लंबा चलेगा। लेकिन आज डुप्लांटिस 15 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और लेटेस्ट रिकॉर्ड 6.31 मीटर। 12 मार्च 2026 को उपसला में डुप्लांटिस ने 6.31 मीटर क्लियर करके अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर बेहतर कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुताबिक वो अब भी मेंस पोल वॉल्ट में वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन 2026 में भी मोंडो की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं रही। मार्च में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 6.25 मीटर्स की जंप के साथ अपना 4th कंसेक्यूटिव वर्ल्ड इंडोर टाइटल जीता। इस कंपटीशन में ग्रीस के मैनुअल कारालिस ने 6.05 मीटर्स के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया और अगस्त में लुसेन डायमंड लीग में एक और हिस्ट्रिक कंटेस्ट देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.21 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.16 मीटर्स के साथ उनको जबरदस्त चैलेंज दिया। मोंडो ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर ज्यूरिक डायमंड लीग में भी दोनों के दरमियान मुकाबला देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.20 मीटर्स के साथ अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो बनाया। करालिस ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड को चैलेंज किया लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। यानी डुप्लांटिस के सामने अब एक नया चैलेंज भी उभर रहा है, इमानुएल करालिस। डुप्लांटिस के करियर में 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी हैं, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024। वो 3 मरतबा वर्ल्ड आउटडोर चैंपियन भी बन चुके हैं और 2025 में टोक्यो में 6.30 मीटर्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप के साथ अपना 3रा वर्ल्ड टाइटल जीता। अच्छा, 2025 में उन्होंने सीजन की 16 कॉम्पिटिशन में अनबीटन रहकर अपना 5वां कंसेक्यूटिव डायमंड लीग टाइटल भी जीता और 4 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंप्रूव किया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया। लेकिन मोंडो की सबसे खास बात शायद यह है कि वो दूसरों से कम और खुद से

ज्यादा कम्पीट करते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि मोंडो को कौन हरा सकता है, सवाल ये है मोंडो डुप्लांटिस खुद अपने लिमिट को कितना और आगे ले जा सकते हैं। 6.31 मीटर्स के बाद क्या 6.32, 6.40 या शायद एक दिन 6.50 मीटर्स। दुनिया की नजरें मोंडो पर हैं और पोल वॉल्ट की हर नई बुलंदी उनके नाम का इंतजार करती नजर आती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं।
1: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, यू मैटर आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है। ट्यून इन टू FM 107, दिल से देसी।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
3: FM 107 presents Tech Update. Tech Update.
0: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं दुहा वाला कबीर और अब आपको बताऊंगा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में एक वेबसाइट बीच में प्लगइन कर देता हूं, बहुत जरूरी। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपको इमेजेस को लेकर कुछ ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं। देखिए, आपने मान लीजिए अपना एक फोटो अपलोड किया, ठीक है, आपको फोटो अपलोड करने के बाद प्रॉम्प्ट में लिखना है /ID photo, तो आपकी फोटो क्या हो जाएगी, आईडी फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने /ForwardSlash लिख के आगे लिख दिया ओल्ड मनी, तो आप ऐसे दिखेंगे जैसे आपने अपने बाप दादा की दौलत इनहेरिट कर ली है। सच में वो वाले कपड़े आपको पहना देगा वो। और ये कुछ बेसिक कोड्स हैं जो बता रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल काफी फेमस हो रहा है /GTA 6, तो आपके फोटो को वो GTA 6 में तब्दील कर देगा। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी परफेक्ट दिखे तो उसके लिए भी कोड है, हाँ भाई ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में, तो आपको सिर्फ टाइप करना है फोटो अपलोड करने के बाद /jawline, तो आपकी जॉ लाइन को वो फिक्स कर देगा एंड इट एक्चुअली फिक्सेस रियली रियली वेल, तो यू कैन ट्राई दिस वन। ठीक है, अब जरा वेबसाइट बता देता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है, ये तो कतर में लोग जरूर यूज करें, 4x4builder.com। जैसे 4x4 लिखते हैं यानी न्यूमेरिकल 4, फिर वो एक्स वाला साइन, फिर 4builder.com। अब आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आप अपनी गाड़ी 4x4 खुद बिल्ड कर सकते हैं भाई। उसमें ट्रक लीजिए, आप कोई क्रूजर लीजिए, आप जैसी मर्जी लीजिए, उस गाड़ी का एक एक पार्ट आप बदल के देख सकते हैं कैसी दिख सकती है, पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं आप, सस्पेंशन से लेकर लाइट से लेकर बॉडी पार्ट से लेकर एक एक चीज गाड़ी की आप बना सकते हैं। और फिर इसको आप सामने रेगिस्तान में दौड़ा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं किधर कैसे आपकी लग रही है गाड़ी। भाई बहुत फन है, और स्पेशली कतर में जहां पर लोग कस्टमाइजेशन में इतना यकीन रखते हैं तो आपके तो बहुत ही काम आने वाली है भाई। तो ये जरूर जरूर ट्राई करें, एंड 4x4builder.com ये नाम है वेबसाइट का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है lightpdf.com, ये बहुत काम आएगी। लाइट LIGHTPDF.com। इस वेबसाइट पे जाके जब आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं तो सुनिए, उस पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं भाई, पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं आप, जैसे कि वर्ड में टाइप कर रहे हैं वैसे आप पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, एंड दिस इज मिरेकल, तो आपकी बहुत काम आएगी वेबसाइट। जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड। चलो एक लगे हाथों एक और वेबसाइट बता देता हूं आपको। अगली वेबसाइट का नाम है image2prompt.org, इमेज image2prompt.org। मान लीजिए कोई इमेज आपको बड़ी अच्छी लगी, उसका आप एग्जैक्टली उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा कि भैया ये रहा प्रॉम्प्ट, अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, ये आपके हवाले एंड यू विल गेट इट। ये है भाई सबसे सबसे खास बात, तो ये आप जरूर चेक कीजिएगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड लास्ट में खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि गूगल वर्क कर रहा है अपने AI पे, एंड काफी डिलीजेंटली वर्क कर रहा है। तो न्यू जेमिनी मॉडल जो रिपोर्टली जिसके बारे में बात हो रही थी, वो गूगल कह रहा है कि खत्म कर देगा कोडिंग गैप को भाई। गूगल करंटली टेस्ट कर रहा है जेमिनाई 3.8 फ्लैश और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी काफी कमाल के हैं. बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन कोडिंग परफॉर्मेंसेस जितने पिछले जेमिनाई मॉडल रहे हैं उन सबको बीट करता है. साथ ही में गूगल ने भी कहा कि जेमिनाई बहुत जल्दी गूगल असिस्टेंट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा. ऑलरेडी कर चुका है बट और भी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर देगा. गूगल ने यह भी कहा कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड ताकि जेमिनाई डिफॉल्ट मॉडल बन जाए और जो ट्रेडिशनल गूगल असिस्टेंट है जो यूज हो रहा है एंड्रॉयड पर और जो उनके बाकी वेयरिंग ओएस है उस पे खत्म हो जाए. तो खत्म हो भी चुका है और अगर आप ओल्ड मॉडल पे हैं तो यू कैन अपडेट एंड यू कैन गेट इट डन. तो ये थी कुछ टेक अपडेट्स. मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे इसी तरह से और भी अपडेट्स आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाते रहेंगे. दिल से देसी क्रिकेट हो
4: एंड ही इज हुक दैट अवे दैट्स फोर रन.
0: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे साधे अंदाज में.
5: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
0: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंड अप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूजडे एट 1 PM.
5: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की. स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स
2: की. आप सुन रहे हैं FM 107.
1: दिल से देसी.
6: स्कैम अलर्ट. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का. मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे एक नए जमाने के फ्रॉड के बारे में मैं बात करता रहता हूँ. ये फ्रॉड इतने ज्यादा टैलेंटेड तरीके से किए जाते हैं कि कई बार स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी फंस जाता है. लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये डायरेक्ट धमकी पर ही काम करता है. ये टेक थ्रेट है. जो टेक्निकल बंदे हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है. उसके अलावा ये डिमांड नहीं है, ये पैसे की डिमांड नहीं है, ये आपको धमकी होती है जिसे कहते हैं फेक रैंसमवेयर और टेक थ्रेट. ये टेक थ्रेट डिजिटल दुनिया में चलने वाला एक साइकोलॉजिकल गेम है जहां स्कैमर्स डर और झूठ का सहारा लेकर बिजनेस ओनर्स को डराते हैं. इसमें होता यह है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा या स्केरी पॉपअप मैसेज आता है या फिर आपको एक धमकी भरा ईमेल मिलता है. इस मैसेज में लिखा होता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, हमने आपकी कंपनी का सारा सेंसिटिव डेटा, बैंक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट फाइल्स चुरा ली हैं और उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी कि इंक्रिप्ट कर दिया गया है. इंक्रिप्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज. स्कैमर आगे लिखता है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी में एक मोटी रकम नहीं दी तो आपका सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा या इंटरनेट पर लीक हो जाएगा. और ये डायरेक्ट धमकी होती है. यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको स्कैम करने की जरूरत पड़े इनको, ये धमकी देते हैं. लेकिन स्कैम एक्चुअली यही है कि ये धमकी झूठी होती है. यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि बहुत सारे केसेस में ये थ्रेड बिल्कुल फेक होते हैं. स्कैमर के पास आपके सिस्टम का कोई एक्सेस नहीं होता है और ना ही उन्होंने कोई डेटा चुराया होता है. वो सिर्फ एक अजीब या जावास्क्रिप्ट कोड या पॉपअप वेबसाइट का यूज करते हैं जो स्क्रीन पर लॉक हो जाता है जिससे लगता है कि कंप्यूटर हैक हो गया. बिजनेस ओनर अपने रेपुटेशन और कस्टमर डेटा खोने के डर से पैनिक हो जाते हैं और स्कैमर को लाखों रुपए भेज देते हैं. ये स्कैमर्स सिर्फ डर का माहौल बनाकर बिना मेहनत के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं. लेकिन सॉल्यूशन भी इसके हैं. अगर इन सॉल्यूशन को ध्यान से सुने तो आप बच सकते हैं. सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है अलग से बैकअप रखना. देखिए आपके साथ कोई फेक थ्रेट करे, असली करे, कुछ भी हो, इवन हो सकता है कि आपका कभी कंप्यूटर ही खराब हो जाए, जरूरी है कि बैकअप आप अलग से रखे रहें. और ये बैकअप कैसा होना चाहिए? अपने बिजनेस का सारा इंपॉर्टेंट डेटा हर हफ्ते एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या सिक्योर डिस्कनेक्टेड क्लाउड पर बैकअप करें, सेव करें. अगर आपका बैकअप मेन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो असली में आपसे कोई डिमांड भी करे, रैंसमवेयर आए भी अगर आपके पास, तो आपके पास असल में सेटअप तो है, आपके पास बैकअप तो है, तो डरने की जरूरत नहीं है. आपको पैसा या पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है, किसी भी तरह की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आप बच जाते हैं. उसके अलावा पैनिक ना करें कभी भी. अगर ऐसा कोई पॉपअप स्क्रीन पर आए तो कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई बंद कर दें और टास्क मैनेजर खोलकर ब्राउजर को फोर्स क्लोज करें. अक्सर ब्राउजर बंद करते ही फेक पॉपअप्स गायब हो जाते हैं. उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें. और एक चौथा तरीका है एड ब्लॉकर्स या साइबर हाइजीन। अपने ऑफिस के कंप्यूटर में एक अच्छा एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें ताकि ऐसे मलिशियस और डराने वाले पॉपअप्स इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान सामने ही ना आए। किसी भी अनजान ईमेल अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक करने से भी बचें। तो दोस्तों ये था तरीका नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने का और ये था आज का फेक रैंसमवेयर या टेक थ्रेट जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
7: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
8: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
9: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।
10: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल स्मार्ट मनी। मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है? देखिए बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी अच्छी है तो उसकी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री होगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आजकल बहुत से लोग हाई इनकम अर्न करने के बावजूद परेशान रहते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि मनी मैनेजमेंट से है। सबसे पहली वजह तो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या फिर लाइफस्टाइल क्रीप, जो कि हमने आपको बताया कि जब सैलरी बढ़ती है तो लोग अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं और नए एक्सपेंसेस बढ़ाने के चक्कर में फिर उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है। वो हमने आपको मिसाल देकर भी समझाया कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 रियाल है और थोड़ी बढ़ गई तो आप जो है वो अब एक्सपेंसिव गाड़ी पर इन्वेस्ट करने लगे, इंस्टॉलमेंट्स आपके बढ़ गए, लग्जरी अपार्टमेंट आपने खरीद लिया, क्रेडिट बिल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से आपका जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है। और दूसरी बड़ी वजह जो समझ में आती है वो है बजट का ना होना। बहुत से लोग अच्छी इनकम तो अर्न करते हैं लेकिन ये ट्रैक नहीं रखते कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। छोटी छोटी परचेजेस, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी या फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस धीरे धीरे कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। और एक और कॉमन रीजन है डेट और क्रेडिट कार्ड्स। जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का यूज या इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है, बड़ा आसान हो गया है। लोग सोचते हैं कि बाद में पेमेंट कर देंगे लेकिन जब मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जमा हो जाते हैं तो शुरू होता है स्ट्रेस। अब हाई सैलरी होने के बावजूद भी कर्ज का बोझ इंसान को मेंटली और फाइनेंशियली डिस्टर्ब करता है। वहीं सोशल मीडिया प्रेशर भी बढ़ गया है, फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा हिडन फैक्टर है। चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके हाई फाई फ्रेंड्स हैं, उनके एक्सपेंसिव ट्रिप्स, उनके एक्सपेंसिव गैजेट्स, उनके ब्रांडेड शॉपिंग, कपड़े, ना चाहकर भी हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं। वो जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं कि शायद वैसा ही मेंटेन करें और हमारी फाइनेंशियल रियलिटी उनकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है। और कहीं ना कहीं ये सब मेंटेन करने के चक्कर में हम फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार होते हैं और फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अचानक कोई मेडिकल इशू या कोई जॉब इशू या कुछ और अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं। साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लोग अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे कहीं ज्यादा। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझदारी से काम करते हैं, लेते हैं और अपने जो स्टेटस है उसको कम दिखाते हैं, चाहे उनकी इनकम अच्छी हो या फिर कम। मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ा सोल्यूशन अगर हमें कहीं से मिलता है वो है हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स, जैसे बजट बनाना, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना, डेट को कंट्रोल करना, रेगुलर सेविंग्स करना, और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पहले अपने आप को पे करो, यानी सैलरी मिलते ही सेविंग अकाउंट्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो, और इस तरह से अगर आप करते रहे तो आप जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आएंगे। आखिर में फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल पीस दे सकती है, और अगर हैबिट्स खराब हो तो बड़ी से बड़ी सैलरी भी स्ट्रेस का सबब बनती है। तभी तो कहते हैं गुड मनी हैबिट्स डू। तो बस आज इसी चीज का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है। बाकी और भी बातें करेंगे लेकिन आज नहीं कल। फिलहाल मुझे नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107।

0: सितारे उतरेंगे मैदान में, अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए, और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: FM 107 टाइम चेक। टाइम चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु साथियों, इस वक्त एफएम 107 की घड़ियों बज रहे हैं 10:02 और सफा और माविश के साथ आप जुड़ गए हैं। शो का नाम है यू मैटर।
3: यस, अस्सलाम वालेकुम, हम आपके साथ हैं और 11 बजे तक हम और आप साथ रहने वाले हैं रोजाना की तरह। आज भी हमारे पास एक अच्छा सा टॉपिक है जो कि हम आपको बताएंगे, उसके बाद फिर आप कॉल करेंगे, हमें मैसेजेस करेंगे और हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कॉलिंग नंबर।
2: तो भाई हमें कॉल करने के लिए नंबर है 4434377, कॉलिंग के लिए नंबर है 4434377 और मैसेज के लिए नंबर है
3: 6662107। आप हमें मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और टॉपिक भी साथ साथ हम बता ही देते हैं।
2: हाँ जी भाई, आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जिसे हम सब नज़रअंदाज करते हैं। मुझे लगता है माविश और मैं तो लाजमी करते ही होंगे।
3: क्या चीज़ है, मुझे आज अंदाज़ा नहीं है तो इसलिए पहले।
2: मॉर्निंग रूटीन।
3: यार क्या मतलब मॉर्निंग रूटीन, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं?
2: अच्छा मजे की बात ये, मॉर्निंग एक होता है लाइफस्टाइल जिसको आप फॉलो करते हो, ठीक है। मॉर्निंग रूटीन हमने लोगों से ये जानना है कि क्या आपको लगता है कि मॉर्निंग रूटीन जो है वो कोई डिफरेंस लेकर आती हैं लाइफ में कि नहीं लेकर आती, या ये सिर्फ एक हम कहते हैं ना वो अमीरों के शोशे।
3: मॉर्निंग रूटीन मतलब क्या, पहले तो ये मॉर्निंग रूटीन क्या।
2: मॉर्निंग रूटीन में आ सकता है ना लोगों की हेल्दी हैबिट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग रूटीन में आ सकता है कि भाई आप सुबह 5 बजे उठकर 10 किलोमीटर रनिंग करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, ग्रीन स्मूदीज पीते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स रूटीन में लेकर आते हैं, सुबह उठने के बाद कुछ इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल या कुछ ऐसी रूटीन्स करते हैं, मेंटली फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर करते हैं पूरे दिन के लिए। एक तो मेरा वाला मामला है ना कि सुबह आंख खुली और मशीन की तरह इस दीवार पे लगना है पहले, फिर उस दीवार पे लगना है, फिर सामने अलमारी है उस पे लगना है, फिर किचन में जाके ना मतलब मेरे जैसे लोग ना रूटीन पे नहीं चल सकते।
3: रूटीन तो है
2: अच्छा,
3: लेकिन
2: है।
3: अब वो हेल्दी है कि नहीं है ये नहीं पता, लेकिन रूटीन है।
2: अच्छा क्या क्या, अच्छा ये बात
3: मैं
2: मुझे
3: 4 बजे उठ जाती हूँ।
2: अच्छा ओके
3: ठीक है, 4 बजे मतलब ये मैं वीकडेज की बात कर रही हूँ। अच्छा कोई इसको छुट्टी के दिन के ऊपर या फिर ब्रेक्स वेकेशंस के ऊपर बिल्कुल भी ना ले, मैं सिर्फ ये आम दिनों की बात कर रही हूँ जब बच्चों ने स्कूल जाना होता है और हमने भी निकलना होता है, 4 बजे उठ जाती हूँ।
2: ठीक है,
3: उसके बाद जो एक काम मैं अपने लिए हेल्दी करती हूँ ये कि मैं तकरीबन जो है वो 1 लीटर से ज़्यादा पानी पीती हूँ। वो मेरी हैबिट है शुरू से है, ये नहीं कि कुछ मतलब अभी खास किया है, बचपन से ही है तकरीबन, तो वो पानी पी लेती हूँ। बाकी नाश्ता मेरा हेल्दी ही होता है लेकिन वो उस वक्त नहीं होता, वो थोड़ा मतलब 2 घंटे बाद होता है।
2: अच्छा नाश्ते का तो ये भी कहा जाता है ना कि सुबह 10 बजे से पहले पहले कर लेना चाहिए, तो टाइम होता है आपके पास?
3: हाँ
2: 9-10 बजे से पहले पहले कर लेना
3: चाहिए। मैं करती हूँ नाश्ता, आजकल जो कर रही हूँ वो तकरीबन 7:30 बजे।
2: सही
3: तो, और फिर बीच में और दूसरे काम, घर के बच्चों को सारा तैयार शैयार और सारी चीजें, ये चलती है। भाग दौड़ तो होती है लेकिन उसमें सिर्फ भाग दौड़ मतलब वो वाली होती है, घर में इधर से उधर भागना काम के लिए।
2: मेरा भी काम वाला हिसाब है, मेरे लिए अपने लिए कोई रूटीन वैसी वाली नहीं।
3: पहले थी मेरी, पहले थी मतलब एक वक्त था कि मैं रोजाना ट्रेडमिल करती थी, लाजमी करती थी और मतलब मैं अपनी डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड थी, लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया, अब इतना ज्यादा फिक्र नहीं करती मैं।
2: जब उम्र आई फिक्र करने की तो फिक्र करना छोड़ दिया।
3: मैं नहीं कहा यार मतलब जितना जीना है उतना जीना है, खत्म बात।
2: नोबडी एस्केप्ड लाइफ अलाइव एनीवेज।
3: मुझे लगता है कि हेल्थ का कोई चक्कर नहीं होता। मैंने ये मतलब ये मैं सब लोगों को नहीं बोल रही, लोग सीरियस ना हो जाए, लेकिन मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैंने देखा है बहुत से लोग खाते पीते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं लेकिन वो बीमार नहीं होते।
2: माशाल्लाह
3: सही, माशाल्लाह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इर्द गिर्द भी हमारे, मैं माशाल्लाह से देखती हूँ कि माशाल्लाह खाते पीते रहते हैं, अच्छे हेल्दी हैं, सब कुछ है लेकिन बीमार नहीं होते। और बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं
2: लेकिन वो झींगा मच्छी ना वो बीमार
3: हो जाते हैं। हाँ, तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बहुत सारे तुम देखो इस दौरान, अभी तो खासतौर पे कोविड के बाद वाली जो सिचुएशन रही है ना,
2: हाँ।
3: इसमें तो आपने देखा है कि बहुत सारे जो हेल्दी मतलब फिटनेस फ्रीक्स थे ना वो ज्यादा उन लोगों को सडन प्रॉब्लम हुए और बस गए। तो मैंने उसके बाद ये अंदाजा लगाया कि नहीं भाई कछुए की चाल चलो, कोई जरूरत नहीं है भागने की।
2: लेकिन मावेश कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे कल परसों ना कल हुआ ये कि मेडिकल रूटीन चेकअप्स वगैरह इंसानों कराते रहने चाहिए अगर आपको ऐसा लगे ना आपके साथ कोई मसला चल रहा है तो हमारे घर में ही जो है वो एक आधा केस ऐसा निकला है कि हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया किसी का जो है ना ये पता चला कि भाई फैटी लिवर हो गया किसी का ये पता चला भाई शुगर बॉर्डर लाइन पर है तो ये चीज़ें जो मैटर करती हैं खासतौर पर खाना पीना
3: भी मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके बारे में क्योंकि मैंने अपनी अम्मी को बहुत करीब से देखा है और मेरी अम्मी को तकरीबन जो है ना डायबिटीज़ भी हुई और बीमारियां भी होती चली गई और फिर मैंने और लोगों को भी देखा जिन लोगों को बीमारियां मतलब बीमारी वाला जो चक्कर है क्रॉनिक डिजीज़ और ये सब कुछ ना तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि यार ये वो तमाम लोग वो होते हैं जो ओवर थिंक करते हैं
2: यस
3: चाहे आप बोलो कि कोलेस्ट्रॉल चाहे आप बोलो कि कुछ और मैंने देखा भाई मेरी अम्मी ना चीनी को हाथ नहीं लगाती थी और शुरू से और मेरी अम्मी बिल्कुल यूं दुबली पतली थी बिल्कुल लंबी दुबली पतली मेरी तो हाइट 5'2" है लेकिन मेरी अम्मी जो है ना वो 5'6" थी
2: माशाल्लाह
3: पंजाबी थी ना तो वो लेकिन इसके बावजूद मतलब बिल्कुल हेल्दी सब कुछ लेकिन इसके बावजूद डायबिटीज थी रीजन क्या था
2: ओवरथिंकिंग
3: परेशान ओवरथिंकिंग भी किसी ऐसी बात पे नहीं जो परेशानी हो
2: हर चीज पर
3: भाई मेरे मतलब अम्मी के मामू की तबीयत खराब है और अम्मी कोयत में बैठ के डायबिटीज का शिकार हो गई क्योंकि मामू की तबीयत खराब चल रही
2: है ये है मामला ये ओवरथिंकिंग लोगों का होता है ओवरथिंक जो करते हैं ना चीनी को हाथ नहीं लगाएंगे मीठा खाएंगे भी नहीं
3: एग्जैक्टली तो जो लोग भी इसीलिए मैं सोचती नहीं
2: अच्छा ये भी आपकी एक मॉर्निंग रूटीन में आता है देखिए आपको ये बात समझनी चाहिए

0: नहीं,
1: मेरा अपना ही हिसाब है, सुबह 4 बजे उठती हूं, तो सुबह 4 बजे उठकर ना वो एक एक माइंडसेट होता है इंसान का कि अच्छा मेरे पास अभी टाइम फ्रेम है, उसके अंदर 5 से 10 मिनट बेशक आप सारे काम कर रहे हो, नाश्ते बना रहे हो, घर को समेट रहे हो, बच्चों को उठा रहे हो, स्कूल ड्रॉप करने जा रहे हो, लेकिन उसके अंदर 5 से 10 मिनट लाजमी मावेश ऐसे होते हैं, चाहे वो ड्राइविंग करते हुए क्यों ना हो, चाहे वो ट्रैफिक में फंसे हुए क्यों ना हो, वो 5 से 10 मिनट आपके अपने होते हैं कि जब आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हो मॉर्निंग के लिए, आप कहते हो अच्छा मैं फलानी जगह पे जाऊंगा, या आप ये कहते हो ना सुबह सुबह आप उठते हो, तो 5 से 10 मिनट आप बेड पे लेटे हुए ना अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि नया दिन शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह नया दिन शुरू हो रहा है, जो होगा आगे देख लेंगे क्या मामला, अल्लाह ताला संभाल लेगा, हमने क्या ही संभालना है। लेकिन वो जो एक एक्सेप्टेंस होती है ना दिन को शुरू करने की भी, वो एक बहुत बड़ी चीज है, और वो एक बहुत बड़ी रूटीन में आती है। लोग उस एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट किए बगैर या सोचे बगैर जब उठते हैं ना, मैंने कहा ना जब मैं उठती हूँ इस दीवार से लगी उस दीवार, और यकीन जाने जिस दिन मैं बौखला कर उठती हूँ ना, कभी देर हो जाती है, कभी ये हो जाता है, कभी वो हो जाता है, तो कभी कभी देर भी हो जाती है, अलार्म आप 2-3 दफा बंद कर देते हो, आप उन्हें उठना 4 बजे लेकिन आप उठ रहे हो तो आपके 5:50 पे उठ रहे हो आप, तो आप कभी इस दीवार पे लगते हो, कभी उस दीवार पे लगते हो, वो जो दिन आपका आपकी एक रूटीन होती है ना कि आप सुबह आंख खोलते हो और थोड़ा सा अपने आप को रेडी करते हो डे के लिए, इन द सेंस कि अपने माइंड सेट करते हो, आप होश हवास में आते हो और कहते हो दिन शुरू होने वाला है, अगर वो आप स्किप कर दो ना तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है भाई, आप पूरा दिन डिस्टॉर्टेड रहते हो, आपको पता नहीं चलता दिन कहाँ भाग रहा है, ये चीज रह गई, वो चीज रह गई, वो चीज रह गई।
0: अच्छा सही,
1: मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरे साथ ये मसला है कि मैं सुबह उठती हूँ ना तो मुझे अच्छा ये बैग, इसके अंदर इतनी किताबें जानी हैं, अच्छा आज मैंने ये काम करना है, अच्छा ऑफिस जाऊंगी तो ये कर, वो सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर मेरा माइंड सेट जो है ना वो अपने आप को फ्रेम कर लेता है ये होगा सफर।
0: अच्छा वैसे मैं सोच रही थी आज सुबह ही आते हुए, कल मैंने देखा रात में ना कि एक क्लिप था, बेसिकली रात को सोने से पहले ही देखा था, कि जिसमें ना वो बता रहे थे कि अल्लाह ताला ने कुरान में ही एक सबसे बेहतरीन दुरूद बताया है, तो मैंने वो देखा, फिर उसके बाद मैंने सर्च किया कि कौन सा वाला है, कहाँ है, तो अभी आते हुए गाड़ी चलाते हुए ना मेरे दिमाग में फिर आया कि यार वो देखूंगी उसको, मतलब ना निकाल के पढ़ूंगी, तो कल रात में ही मैंने, उस वक्त नींद में ही थी और मैंने उसको सर्च करके देखा था, तो वो सूरह सफात की आयत नंबर 82 थी, 82। तो उसमें मैं ये सोच रही थी कि आते हुए एकदम से पहले मैंने सोचा, मैंने कहा यार वो मैंने रात में देखा था, एकदम से झमाका सा हुआ, फिर आया यार मैंने नोट किया था, तो एकदम से दिमाग में आया, मैं ये सोच रही थी यार कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं करते कि हम कोई सतही तौर पे भी यूं सेकंड्स में भी कोई चीज़ यूं देखते हैं यार, हमारे दिमाग में रहती है वो बात, मतलब बड़ी बात है यार कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे ब्रेन को ये कैपेसिटी दी है कि हम कोई चीज सेकंड्स के लिए भी तवज्जो देते हैं ना इस चीज के ऊपर, तो वो हमारे एक मेमोरी का हिस्सा बन जाती है,
1: और वो अगर हमारे दिल को भा जाए ना तो हमारे लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाती है,
0: अल्लाह करे, मतलब ये जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं हम लोग, मतलब बहुत दफ़ा मैं ये कहती हूँ कि यार मुझे याद नहीं रहता इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाती, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि ये नहीं, याद हमें हर चीज़ रह जाती है अगर हम याद रखना चाहें तो, मतलब याद रखना चाहें और मतलब थोड़ा सा एफर्ट करें तो।
1: अच्छा कितने, अभी आपने ये बात बोली तो ये जो डेली रूटीन की हम बात कर रहे हैं, डज इट रियली मेक्स अ डिफरेंस, यकीन जाने मेरा इसके ऊपर ऐसा ईमान पक्का हुआ ना, एक टाइम था बचपन में हम लोग, हमें हम सबको मुसलमान के बच्चे हैं तो कुरान तो हमने पढ़ना ही है ना, हमने पढ़ा है, पढ़कर ही बड़े हुए हैं, लेकिन कुरान को समझकर पढ़ना ना, मेरे दिमाग में हमेशा सवाल घूमता था, मैं कहती थी सूरह बकरा की आखिरी दो आयत ना मुझे वैसे भी पता नहीं क्यों इतनी प्यारी लगती हैं, क्योंकि मैंने उसके बारे में पढ़ा था कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद बुला कर वो वही नाजिल नहीं हुई थी, आपको दी गई थी वो, तो मैं सोचती थी बचपन में, मैं कहती थी ये ऐसी कौन सी दो आयतें होंगी जिनके लिए आपको अर्श तक बुलाया गया, कुछ तो होगा भाई आयतों में, और मैंने जो ना एक टाइम बाद जाकर उसका तर्जुमा पढ़ा, मावे जब मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा ना तो मुझे एहसास हुआ वो दिन और आज का दिन है मेरे, मेरा दिन शुरू होता है ना तो मेरे दिमाग में यही होती है, वही बात होती है कि अल्लाह ताला किसी जान के ऊपर उतना बोझ नहीं डालता, इतना बर्दाश्त ना कर सके, तो सफा दिन शुरू कर, अल्लाह का नाम लेकर दिन शुरू हो जाएगा, अल्लाह ताला संभाल लेगा सब कुछ, वो ऐसा माइंडसेट आपका ऐसा फ्लिप आता है ना अगर आप कोई चीज समझ लो, तो वो जो हमारी हेल्दी हैबिट्स होती है ना, जब हम, ये भी एक किस्म की हेल्दी हैबिट है ना कि आपकी थिंकिंग, एक तो आपका ये होता है ना खाना पीना, ये फिजिकली आपका, हम दो चीज़ों से बने हुए ना, एक हम फिजिकली ठीक है इंसान है और एक हमारी

0: रूह होती है, एक हमारा अपना जो है ना नफ्स होता है, उसको आप संभाल कर चलते हो. तो जाहिर बात है आप अंदर से अपने आप को रेगुलेट करोगे तभी बाहर से आप प्रॉपरली जो है ना काम कर पाओगे. तो मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डेली रूटीन. मुझे इतनी खूबसूरत एक बात बोली थी मेरी बहन की मदर इन लॉ ने, बात बोली थी मुझसे, कहती थी कुरान पाक की ना बेशक पूरा एक सफ़ा ना भी पढ़ पाओ, दिन में एक काम करना सिर्फ कि एक आयत कोई भी पसंद की, या कभी ऐसा होता है ना कोई आप टाइम देखते, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 10:14 हो रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल एज अ गेम कुरान पाक का वही चैप्टर आप खोल कर देखो, 10वां चैप्टर 14वीं आयत, और आप उसका तर्जुमा पढ़ो सिर्फ वो एक लाइन.
1: अच्छा,
0: इट विल अफेक्ट, इट विल अफेक्ट, ट्रस्ट मी इट विल अफेक्ट. वो जो आपने कहा ना एकदम से आप कोई चीज यूं करके खोलते और वो आपके सामने आती है और आप उसकी वो एक लाइन पढ़ने में आपको कितना सेकंड लगेगा.
1: बिल्कुल,
0: एंड इट विल बी अमेजिंग फॉर यू.
1: जबरदस्त, ग्रेट. चलो तो फिर ये भी करके देखेंगे. खैर जी, तो मॉर्निंग रूटीन के ऊपर आप लोग आ जाइए और बताइए कि ये वाली मॉर्निंग रूटीन किसी भी तरह की आपकी.
0: हाँ, किसी भी तरह की हो सकती है.
1: किसी हद तक तो है, लेकिन वो भागना दौड़ना जिम विम अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है जो लोग करते हैं, तो और वो भी सुबह सुबह कर लेते हैं. सुबह में तो मुझसे बड़ा ही मुश्किल काम है सुबह में भागना.
0: हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती है, अलग टाइप की होती
1: है. चलिए जी, मतलब चाहे वो आप जिम करते हो, चाहे आप कोई और आपने रूटीन बनाई हुई हो,
0: कोई खाने पीने का हो, कोई कोई मेंटल अपने आप को सॉर्ट आउट करने का हो, तो हमारे साथ जरूर शेयर करें.
1: कॉल भी कर सकते हैं आप, हमें मैसेज भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको सहूलत हो आप कीजिए और शामिल हो जाइए.
0: और आप हमें कॉल कर सकते हैं 443-443-77 पर, द नंबर इज 443-443-77, और चाहें तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं 666-22-107. मैसेज के लिए नंबर है 666-22-107. अब अगर लोगों को ये बात कही जाए कि लोगों की एक एक चीज ये भी होती है जो मॉर्निंग रूटीन में आती है, अस्कार सुनते हैं लोग. हाँ, बहुत ज्यादा दीनी हो जाएंगे आप लोग, बहुत ज्यादा दीनी हो रहे हैं. लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं. आप अपने पास से क्या करते हैं ये हमें जरूर बताएं. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी रूह को फुलफिल करती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपकी फिजिकली जो है ना आपको हेल्दी रखने से. लोग जिम कर लेते हैं, जैसे लोग वॉक शॉक कर लेते हैं. मैंने इतने लोगों को देखा है बाहर सुबह सुबह, महावीर सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे होते हैं भाई.
1: हाँ हाँ, मैं आ रही हूँ.
0: वॉकिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं.
1: 5 बजे निकलती हूँ घर से.
0: मैंने कहा कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग.
1: तो उस वक्त क्या होता है सीन के लोग, औरतें वॉक कर रही होती हैं, मैं सोचती हूँ यार कैसे.
0: और क्या क्या क्या आपको लगता है कि ये चीज डिफरेंस पैदा करती है अपने आप को थोड़ा. बेशक ये नहीं बोलो कि मेरी कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त है, भाई नहीं है कोई लंबी चौड़ी फहरिस्त. मुश्किल से कोई एक आधा काम करते होगे. हाँ. लेकिन वो एक आधा काम बताओ ना, ताकि क्या पता वो कोई ऐसा अच्छा काम हो जो कोई और भी इंक्लूड कर सके.
1: एग्जैक्टली. हेलो,
0: अच्छा हमारे पास कॉलर है. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
0: जी, कौन है हमारे साथ?
2: एफएम 107. ऐलान करेंगे अभी कौन है हमारे साथ.
1: अच्छा, थोड़ी सी बात करें. रईस है क्या?
2: आज लेट हो गए थोड़ा सा.
1: नहीं, ये आवाज के साथ क्या किया है, प्लास्टिक सर्जरी करा कर आए क्या?
0: मैं पकड़ लेती रईस भाई, लेकिन मुझे जो ना ये हुआ कि रईस भाई तो यार खांसी जुकाम हो रहा है
2: अभी जस्ट. नहीं नहीं नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक ठाक है, खैरियत का है, मतलब वो मसला तो नहीं आया.
1: आज ना ये कहीं गाड़ी में नहीं है, आज ये कहीं और है, तो आज इनकी असली वाली आवाज
2: नहीं. आज हम रूम पे है भैया, अभी हम मोबाइल का रेडियो चालू करके रूम में ही है.
1: असली आवाज ये वाली है.
2: अच्छा, तो और गाड़ियों में होते थे तो कुछ आवाज और होता था.
0: हाँ, कुछ अलग आवाज लग रही है. नहीं तो मैं खुद पकड़ लेती हूँ ना, रईस भाई पर मुझे ऐसा लगा रईस भाई, मैंने कहा नहीं रईस भाई.
2: अरे मेहरबान, कल भी हम रूम में ही बात किए थे आप लोगों से, तो आज कैसे आज हमारे आवाज में, मतलब हाँ थोड़ा सा पसीने से आया हूँ.
1: कुछ ऑन किया हुआ है, कोई स्पीकर मतलब कोई हेडफोन्स कुछ तो किया हुआ है आपने, कुछ डिफरेंट है.
2: नहीं, स्पीकर मैंने आज हर दिन स्पीकर पे बात कर रहा था.
0: आज स्पीकर नहीं है, आज आवाज क्लियर है.
2: आज मैं उससे मतलब डायरेक्ट उससे कान में लगा के बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा हो सकता है.
1: हाँ.
2: आवाज में कुछ ये हो, चेंजिंग हो.
1: इतनी बदल जाती है आवाज,
0: वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, रईस भाई बदल गए, रईस भाई की आवाज बदल गई.
2: मारो मारो मुझे, मारो मुझे. और एयरपोर्ट पे उसको घेर लेते हैं ना, आप लोगों को पता ना उसका मीम बना हुआ है, मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो, वही हाल है.
1: जी जी.
0: तो रईस भाई ये बताएं,
2: आज मैं तो सुना भी नहीं भाई, आज क्या चल रहा है, केड़ी चल रही पे ही है.
0: अच्छा भाई, आज

0: बारे में नहीं जानते हो, ना मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ, लेकिन जो टेंशन जो परेशानी मेरे साथ में बचपन से चल रही है, ऐसी बड़ी बड़ी परेशानियाँ
1: आपने ली नहीं होगी ना, हंसते बढ़ा देते होंगे
0: वो भी पैसे की। मैम इतने बड़े बड़े के माशाल्लाह कमा कमा के थक रहा हूँ मैं, लेकिन नुकसान नहीं रुके। अगर मैं नुकसान की तरफ जाऊँ तो मुझे तो कब की शुक्रगुजारी चाहिए मैम शादी से पहले।
1: यही तो बात है मुबीन बुखारी कि आपको परेशानी आती है लेकिन आप उसको लेते नहीं है, आप उसको
2: कुछ लोग ना हावी कर लेते हैं चीज को और हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से इसको सॉर्ट आउट कर दें। कुछ लोगों के अंदर ये एक्सेप्टेंस नहीं होती। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप क्या करते हैं, आप अल्लाह तवक्कल करते हैं, आप कहते हैं भाई ये जा वो जा होगा दुनिया में देखूंगा क्या होता है, मुझे क्या पता क्या क्या हो रहा है।
0: ये भी हो सकता है बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
1: हर बंदा ना परेशानी, हाँ परेशानी ना मुबीन बुखारी हर बंदे के ऊपर आती है। अच्छा नमाज का भी ताल्लुक नहीं है इसमें, नमाज भी लोग पढ़ रहे होते हैं लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी टेंशन को ना मतलब बहुत ज्यादा फील करते हैं हर चीज को कि यार ये हो गया तो क्यों हो गया। अब उसमें मसला ये आ जाता है कि जब हम इतना सोचेंगे अपने आप को थका देंगे तो वो अंदर से आप बीमार होंगे। अगर परेशानी की बात है ना तो परेशानी देखें, एक घर के ऊपर आपने देखा होगा कोई परेशानी आई, उसमें अगर 5-6 लोग थे, हर बंदा ना उस परेशानी को एक अलग तरीके से लेता है। कोई बहुत परेशान होता है, कोई एफर्ट करता है, कोई सोता रहता है हर बंदा अलग तरीके से लेता है और उसका इफेक्ट भी ना हेल्थ वाइज भी और वैसे भी मतलब फाइनेंशियली भी सोशली भी हर किसी के ऊपर अलग अलग इफेक्ट पड़ता है। तो ये होता है फर्क।
0: बिल्कुल मैं सही, आपकी अपनी सोच होती है इंसान की अलग अलग, कुछ इग्नोर कर देते हैं कुछ,
2: हाँ कुछ exactly. कुछ दिल पे जान पे जिगर पे हर जगह ले लेते हैं तो
1: ये वाला
0: अल्लाह की मर्जी वो कहाँ ले जाए, ये भी बात सही है। फिर मैं तो चलती रहती मैम पूरी लाइफ की, कितना ये हुआ वो 24 घंटे चलती रहती फिर अल्लाह खैर करे।
2: चलिए जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ये तो बताएं आपकी डेली रूटीन में क्या आता है सुबह सुबह की मॉर्निंग रूटीन में?
0: अरे मैं नमाज पढ़ना, सही उसके बाद काम से जाके आना, फिर सो जाना अभी तो ये रूटीन चल रही है।
2: चलें
0: 5 किलोमीटर वॉक तो 5 किलोमीटर डेली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह।
1: चलें गुड है भाई, गुड है, जबरदस्त
0: वॉक तो है 5 किलोमीटर।
1: चलें तो आप एक हेल्दी लाइफ गुजारे माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है
0: जी मैम।
1: चले मुबीन बुखारी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू जी,
2: अल्लाह हाफिज़।
1: तो मुबीन बुखारी काफी कम कॉल करते हैं, मैसेज ज्यादा करते हैं
2: और मैसेज भी कॉल रिकॉर्ड नहीं हो सकते,
1: हाँ लेकिन जब कॉल करते हैं ना तो अच्छा लगता है इनसे बात करके। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि
1: वबरकातुहु। पता है मैं क्या सोच रही थी शहजाद सलीम, मैं सोच रही थी मुबीन बुखारी ना एक बड़े पॉजिटिव एक उनकी शख्सियत है, जब भी कॉल करते हैं मजा आता है और मेरे दिमाग में ना दूसरा नाम कसम से आपका आ रहा था और आपकी कॉल आ गई, मैंने आपको दिल से याद किया अभी।
3: जी जी एक्सीलेंट गेस किया आपने जी, नाम लेते आज
1: नहीं नाम ही आपका आया था और आपने कॉल कर ली, इसका मतलब आपकी उम्र बहुत लंबी है।
3: हाँ बहुत सारा इत्तेफाक हुआ है अपना आफाबाजी और मानी से, तो मैं मेरी मामी के यहाँ जाया करता था ना, तो बोले अब भी याद किए तेरे को, अब भी बस याद याद मतलब उम्र बड़ी है, मतलब बड़ी है। मैं जस्ट है ना टोन ऑन ही किया, मुबीन भाई की कॉल चल रही थी अभी, जरा पहुंचा मैं एक जगह मतलब कंफर्टेबल पार्किंग ऑन द वे ड्राइव पे था मैं, तो मतलब ये नहीं सुना था, मेरे साथ जो बंदा था ना वो मिर्ची सुन रहा था 89.6, तो बोला मैं मिर्ची सुनता हूँ, मैं बोला तू सुन जब तेरा खत्म हो जाएगा तो मेरी बारी है तो अभी मेरी बारी आई। तो क्या टॉपिक था
1: बताएं भाई?
2: भाई टॉपिक ये है कि आपकी डेली रूटीन में ऐसी कोई एक से दो चीजें बताएं जो आपको लगता है कि नहीं वाकई में जिंदगी में फर्क लेकर आती हैं।
3: रोजमर्रा की जिंदगी में, हाँ रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम से जो फारिग होने के बाद जो काम पेंडिंग है ना, जो मतलब तरतीब जैसे कपड़े वगैरह का जो सेटिंग रहती है यही है, और बाकी जो है सुबह अपना नमाज ऑन द वे में नमाज मिलती है फजर की, क्योंकि मेरा तो 3 बजे से शेड्यूल स्टार्ट होता है, जैसी गर्मी स्टार्ट होती है ना तो शेड्यूल चेंज होते हैं ना साइटों के, तो उस हिसाब से फिर बाहर होती है, उसके बाद फिर स्टेप टू स्टेप फिर नाश्ते और फिर उसी तरह जो लंच टाइम लंच ब्रेक है वो सारा कंपनी रूल रेगुलेशन फॉलो करते हुए चलता रहता है इसी तरह जी।
2: सही, तो मतलब कुछ स्पेसिफिक कुछ बस ऐसे मेरी तरह चल रहे होते हैं बस चलो
3: यहाँ तो जो

0: मुझे कोई एक गिलास पानी पिला दे बड़ी बात है, मुझसे एक गिलास पानी नीचे ना उतरेगा गले के। तो
1: जी जी जी बोलिए, आप बोलिए पहले।
0: तो मैंने कहा कोई ऐसी आदत आपकी जो आप कहते हैं कि भाई ये इसके बगैर तो मेरा दिन स्टार्ट नहीं होगा, और ये बड़ी अच्छी आदत है।
1: तो वो मेरा है ना चाय ही रहता है बेस्ट, तो मतलब है ना सिर्फ चाय, लेकिन उससे पहले नहार पेट है ना 2 या 3 खजूर और पानी के साथ, उसके बाद फिर चाय, हाँ उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद फिर है ना ब्रेकफास्ट।
0: ये एक सही चीज है, लोग नाश्ता भी करते हैं। मुझे अगर कोई नाश्ते का बोले तो मुझे तो पता नहीं क्या हो जाए, मैं तो वैसे बीमार हो जाऊँ नाश्ते का सुनकर। लेकिन अच्छी रूटीन है 1 से 2 घंटे बाद नाश्ता।
1: उसके बाद जब शाम को जब ड्यूटी से वापसी होती है ना अकोमोडेशन की तरफ से, ऑन द वे में तो कुछ चाहता है, दिल पे चाहता है या एक समोसा एक चाय,
0: दिल चाहता है। अरे समोसा और चाय याद दिला दी आप।
2: समोसा
0: तो
2: चाय किस वक्त, सुबह नाश्ते में
0: मजा आता है, कभी खाकर देखो।
2: सुबह नाश्ते में कह रहे
1: हैं?
2: अच्छा शाम को
1: जब ड्यूटी से फारिग होने के बाद जब अकोमोडेशन पे जब लौटते हैं ना,
0: दोपहर के टाइम बोल रहे हैं या शाम के टाइम बोल रहे हैं?
1: शाम
0: के टाइम। ओके,
1: तो उस टाइम पर है ना दिल पे कुछ चाहता ही है, चाय की तलब और वगैरह।
0: हम देसी लोग हैं, हमें कुछ शाम के टाइम ना कुछ चाय के साथ कोई फ्राई फूड जो चाहिए चाहिए होता है।
1: हाँ तो वो है ना समोसा स्पेशली रहता है और चाय रहती है।
0: सही,
1: ये कभी मिक्स नहीं होता है
2: समोसा एंड चाय। शहजाद सलीम आप खा सकते हैं, मतलब आपकी माशाल्लाह जिस तरह की फिजीक है ना मैंने आपको देखा है, आप रोजाना खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते।
1: हाँ सही सही सही है। और दूसरे जो ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पे हमारे सनैया में ना ऐसे स्टॉल है ना मतलब फास्ट फूड के, जो ना बाहर मतलब इतना बड़ा तवा चलता होता है पाकिस्तानी भाइयों का कि बेहतरीन से बेहतरीन है ना, आप यकीन करेंगे इसमें सफा बाजी, यहाँ सनैया में 1 रियाल के परोठे में हलवा डाल के देते हैं, 1 रियाल का हलवा पराठा है, सही बोल रहा है,
2: क्या बात है।
1: और 2 रियाल में ना आलू पराठा है।
0: सनैया साइड पैसा है मुझे, मैं इस बात को मान सकती हूँ।
1: हाँ किसी को भी अगर जाना हो ना 15 नंबर स्टेट पे राइट साइड में, वहाँ पे एकदम बिलाल रेस्टोरेंट है, मैं भी हाँ बिलाल
0: ब्रांडिंग कर दी इन्होंने, हमने नहीं की, देखे नाम ना लिया करें, मेहरबानी आपकी हमारे गले ना पड़ जाए बात। अच्छा देखें ये मैं मान सकती हूँ सनैया में। एक और मुझे अब नंबर याद नहीं आ रहा, मैं अपनी गाड़ी जहाँ सही कराने जाती हूँ तो वहाँ पर भी एक दुकान है, उसका छोटी सी दुकान है, छोटा सा कैफेटेरिया उसका, लेकिन उसका अंडा पराठा इतना मशहूर है ना, अंडा पराठा रोल उसका।
2: अच्छा।
0: अरे भाई वो मतलब मैं कहती हूँ मेरी गाड़ी नहीं भी खराब हो ना, मैं बस वहाँ चली जाऊँ अंडा पराठा खा लूँ वहाँ से।
2: अच्छा
0: मजे का लगता है वो
2: अंडा पराठा।
1: और एक है ना 15 नंबर स्ट्रीट पे ना,
2: अगला नाम ना बताना।
1: हाँ उधर एक टी स्टॉल है, वहाँ कतरी आते हैं, वहाँ कतरी चाय पीने आते
0: हैं वाकई में। और खास तौर पर ये 15 नंबर वाली जो स्ट्रीट है ना ये बड़ी मशहूर है खाने के लिए।
2: अच्छा
0: खाना पीना बहुत ज्यादा हो गया, मुझे अभी फिर भूख लग जाएगी, ऐसा ना करें ना। चले जी
2: ओके, थैंक यू बाय रोहित जी। कभी कभी लगता है वाकई तुम फरजाना सफदर की बेटी हो।
0: अच्छा मैं एक मजे की बात बताऊं, ये जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, एक तो होती है हेल्दी हैबिट होती है, मॉर्निंग रूटीन होती है, इन्होंने जो बात कर दी है ना 15 नंबर वाली सनैया की, मजाक के अलावा अब एक दफा मेरे साथ पता है क्या हुआ था, मैं पाकिस्तान से आई एयरपोर्ट से उतरी और मैं वो अंडा पराठा वाला रोल खाने गई थी, मैं घर नहीं गई, मैं मजाक के अलावा कर रही हूं। बहन वो कुछ मुझे नहीं पता क्या है उसकी रेसिपी, मुझे अब मुझे फिर याद आ गया। चलो ब्रेक लो और मैं जा रही हूँ सनैया। ब्रेक लो
2: चले जी, ब्रेक तो हम ले रहे हैं लेकिन ये सनैया अभी नहीं जा सकती, शो करके ही जाना पड़ेगा। खैर जी तो हम यहीं पर हैं आपके साथ 11 बजे तक, आप सुनते रहें FM 107 107.3।

0: आप सुन रहे हैं यू मैटर
1: आरजे सफा और आरजे महविश के साथ
0: एफएम 107 पर दिल से देसी।
2: भाई आज आप अभी जो हैं वो सुन रहे हैं यू मैटर विद माविश एंड सफा और आज हमारी बातचीत हो रही है मॉर्निंग रूटीन्स के ऊपर और मॉर्निंग रूटीन्स तो है ही हैं लेकिन उससे ज़्यादा मुद्दा ये चल रहा है कि ये मॉर्निंग रूटीन सिर्फ एक शुगल है या वाकई में ये इंसान की ज़िंदगी पे इफेक्ट डालते हैं साइकोलॉजिकली इफेक्ट होता है इनका या नहीं होता या अगर हम कहें कि इंसान की आप कह लें कि सिस्टम जो भी लाइफ का चल रहा होता है उसके अंदर कोई इसका इन्वॉल्वमेंट होती है कि नहीं
3: होता तो है क्योंकि वो अब देखो ये मतलब हदीस भी इसके हवाले से कि अगर रिस्क की तलाश में निकलना है तो सुबह सुबह निकलो तो रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और वैसे भी देखा जाए वाकई मतलब अभी शहजाद सलीम कह रहे थे ना कि अगर आप सुबह उठते मैं नहीं बल्कि मुबीन बुखारी कह रहे थे काम यूं हो जाते हैं फिर उसके बाद आप सोते रहो तो वाला सीन होता है।
2: अच्छा एक
3: बरकत है सुबह के
2: मजे की बात ये कि साइकोलॉजिकली ना अगर देखा जाए तो साइंस भी बिलीव करती है कि जो मॉर्निंग रूटीन होती है ना वो पता है क्या करती हैं वो डिफरेंस लेकर आती हैं और अगर साइंटिफिक वे में बात करें तो भाई ये दिन को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करती हैं स्ट्रेस और मॉर्निंग केओस को रिड्यूस करने में आपकी हेल्प कर सकती हैं इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज को पहले समझने में वो जो मैं कह रही थी ना सुबह का टाइम समझने वाला होता है उसको प्रायोरिटाइज करने में एड्रेस करने में आपकी हेल्प कर सकती है और हेल्दी हैबिट्स मेंटेन करना ईजियर बना सकती है आपकी लाइफ को
3: सुबह
2: सुबह को। हाँ जी
3: अस्सलाम वालेकुम
2: कॉल पर है अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक मुदस्सिर भाई है ना मुदस्सिर भाई हाँ मुदस्सिर भाई कैसे हैं ठीक ठाक हैं
3: अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाज में बहुत गड़बड़ है
2: आप मेरे ख्याल से रेडियो ऑफ करना भूल गए हैं
4: रेडियो ऑफ है मेरा
3: अब सही है
4: आज रईस भाई आसमान से नीचे आ गया था बात कर रहा था
2: हाँ पायलट मोड से हट गए थे रईस भाई
4: शोर शराबा नहीं था
2: आज जहाज नहीं उड़ा रहे थे
3: जब भी इतने मुख्तलिफ लगे
2: अच्छा आपको भी लगे ना आवाज से पता नहीं चला ना
4: नहीं मैं तो शुरू में तो नहीं जब ऑन किया था रईस बात कर रहा था बीच में पहचानने किया रही थे
2: सही
3: अच्छा
4: आज तो आवाज साफ आ रहा है
3: सही सही
2: तो मुदस्सिर भाई आप क्या कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे हमारी डिस्कशन में
4: मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हम लोग जो खत्म में रहते हैं यहाँ का किसी मॉर्निंग का रूटीन नहीं होता है ना
2: नहीं होती रूटीन
4: मॉर्निंग का रूटीन नहीं है मेरा तो 10 साल से अभी तक मॉर्निंग का कोई रूटीन नहीं है
2: सही कोई एक आधी चीज भी नहीं कोई एक आधी चीज
4: मैं बात कर रहा हूँ ना मैं जब यहाँ पे हम लोग काम करते हैं जैसे 1 घंटा पहले हम उठते हैं शावर लेते हैं करते वो करते बस डायरेक्ट काम पे जाते हैं
2: सही
4: जब फिर हम पाकिस्तान जाते हैं वेकेशन पे जाते हैं छुट्टी पे वहाँ पे हमारा रूटीन बन जाते हैं फिर वहाँ पे हमारा हम जाएंगे नमाज पढ़ेंगे नमाज के बाद निकल रहे हैं वॉकिंग करते फिर घर पे आते नाश्ता करते फिर इसके बाद थोड़ा देर बच्चों के साथ खेलते फिर इसके बाद हम सो जाते आठ बजे
3: सो जाते
4: हाँ तो 1 घंटा सो जाते फिर उठते तो अगर वेकेशन पे जाते हैं तो रूटीन बन जाता है मॉर्निंग का यहाँ पे तो मॉर्निंग का कोई रूटीन नहीं बनता है
3: अच्छा
4: जी
3: सही सही ठीक हो गया अच्छा जी तो मुदस्सिर भाई ये कहना था आपने
4: जी ये क्योंकि हम काम करते हैं काम से पहले हम 1 घंटा पहले उठने वाले डायरेक्ट गाड़ी स्टार्ट करने काम की तरफ जाता है जो नमाज पढ़ेगा वो नमाज के लिए उठेगा फिर सो जाता है
3: सही सही सही हो गया सीन ये वाला है ठीक है अब समझ में आ गई चलें जी गुड और मुदस्सिर भाई
4: बस ठीक है ओके
3: चलिए बहुत शुक्रिया थैंक यू तुम्हें डांटा था
2: हिम्मत करो मुदस्सिर भाई आज बेड की कौन सी साइड से उठे
3: थे मैं बोल रहा हूं ना
2: मुदस्सिर भाई आज बेड की कौन सी साइड से उठे
3: थे सुबह बोली नहीं
2: सुबह जो मुदस्सिर को पूरा मिला
3: हमारे वो सलसल जो है ना यू पोज बनाया हुआ था मैं नहीं बोलूंगी
2: टीचर कहती है साइलेंस इन द क्लास मुदस्सिर भाई आज उस वाले मोड में
3: वही
2: साइलेंस इन द क्लास
3: अच्छा जी, तो हम आ जाते हैं मैसेजेस की तरफ। मैं भी सुन रहा हूँ आप दोनों को और सही बताओ, बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को सुनकर। और ये भाई मेरी गाड़ी के बाजू में है और हमारी गाड़ी के बाजू में एक एम्बुलेंस गुजरी है। कौन से भाई गाड़ी में है और बाजू में कौन थे भाई, कौन थे जिसके मतलब जो बात कर रहे थे, या कौन? आसिफ, आसिफ का मैसेज है। ओके जी, अच्छा इसके अलावा तौफीक जो है ना एक डायरेक्टरी अपनी लॉन्च करने वाले फोन नंबर्स की, तो रोज एक नंबर मांगते ही आज इसका नंबर दे दे, आज इसका नंबर दे दे, आज उसका। मैं सबके नंबर दे रही हूँ, ये पूरी एक बनाएंगे और फिर उसके बाद 107 के सारे लिस्टर्स की जो है ना एक मौजूद होगी
2: डायरेक्टरी। स्कूल में होता था ना एक, क्या कहते थे, प्रोस्पेक्टिव कहते थे, क्या कहते वो, एक बुक होती थी, बुकलेट होती थी स्कूल की।
3: नहीं नहीं कुछ प्रोस्पेक्टस, नहीं नहीं
2: कुछ कुछ था,
3: कुछ था ऐसे, मेरे भी दिमाग से नाम निकल रहा है। खैर जी, तो खैर वो जो मतलब बनाएंगे, अभी कल मैं देख रही थी, पहले पता है बहुत पहले मतलब जो ना वो 90s की बात कर रही हूँ, वो एक घरों में होती थी,
2: येलो पेज
3: हाँ, तो वो घरों में होती थी, उसमें कुछ मतलब मारूफ लोगों के नंबर्स वगैरह होते थे। और
2: कुछ मारूफ लोगों के नहीं, जो कतर में थी मुझे अच्छी तरह से याद है, अगर आपका लैंडलाइन रजिस्टर्ड था तो वो उसके अंदर होता था, बस आपको बंदे का नाम आना चाहिए।
3: हमने ना मुइन अख्तर को कॉल की थी उसमें से देख के, वो वाकई मुइन अख्तर थे।
2: वाह
3: तो बिल्कुल अच्छा, वो मजे की बात, उस वक्त तो हमें मतलब इतना आइडिया नहीं हुआ था कि वो हैं कि नहीं है, लेकिन फिर बाद में हमने सुना, जब हमने जिनको कॉल की थी ना, उन्होंने ये कहा था कि मैं अभी सोकर उठाऊं, तो बाद में पता चला कि वो वाकई ही शाम को 4 बजे सोकर उठते थे, बाद में उनके इंटरव्यू से पता चला। तो वो लगती थी भाई, मतलब लोगों के नंबर्स होते थे उसमें, हमने मुइन अख्तर से बात की थी।
2: हमने कतर में रहकर बड़े वो
3: कतर में भी थी
2: येलो पेजेस की इतनी बड़ी बुक होती थी, और उसके अंदर से आप कमर्शियल अलग नंबर्स होते थे, और जो है ना
3: यहाँ पे किसको कॉल करते थे,
2: हम लोग बच्चे थे ना, तो हम लोग प्रैंक कॉल्स करते थे,
3: प्रैंक कॉल्स, यानी वो भी एक वक्त था ना जब CLI नहीं होती थी। अच्छा मैंने भी बड़ी प्रैंक कॉल्स की हैं,
2: प्रैंक कॉल्स करते थे,
3: मैंने भी बहुत किए, और मुझे लगता है कि मेरे आरजे बनने में ना प्रैंक कॉल्स का बहुत बड़ा रोल है, लोगों को ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बनाया है कि मतलब कोई ना पूछो। खैर जी, मोहम्मद यूसुफ खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, गुड मॉर्निंग मावजी, और मेरी मॉर्निंग रूटीन कुछ अलग नहीं है, जस्ट वेकअप रेडी फॉर द ऑफिस एंड लेफ्ट, और हाँ फ्रेश होने के बाद एक ग्लास पानी, एक दिन कलौंजी, एक दिन मीठी मेथी दाना, और एक दिन साबुत धनिया। अरे हर दिन का मतलब अलग अलग दिन बना हुआ है, मंडे को कलौंजी, इसको ट्यूसडे को ये, ओके ओके सीन ये वाला। मेरी वाइफ जो है रात में ग्लास रेडी करके रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह अदर देन दिस नथिंग, और नींद प्रॉपर ना करना, नो फिजिकल एक्टिविटीज, एंड टेंशन से भी डायबिटीज होती है। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये येलो पेजेस की टेलीफोन डायरेक्टरी थी, अभी भी है बट ऑनलाइन। ओके
2: अच्छा, एक टाइम आया था फिर जब उससे ज्यादा आगे बढ़े थे, तो कतर में ना एक नंबर होता था, उसके ऊपर आप कॉल करें तो आप वहां से भी नंबर निकाल सकते थे फोन करके, डायरेक्टरी नंबर होता था, अब तो वो चेंज हो गया। उस जमाने में 180 मिलाते थे हम लोग कतर में फोन से, तो वो हमें डिजिटल डायरेक्टरी की तरफ, टेलीफोनिक डायरेक्टरी की तरफ ले जाता था।
3: अच्छा अच्छा सही, वो कह रहे अभी प्रैंक करो ना, प्रैंक कॉल प्लीज, बहुत मजा आएगा। अब हम प्रैंक कॉल्स करें तो पकड़े जाएंगे भाई, बेवकूफ थोड़ी है हम,
2: वो जमाने चले।
3: अच्छा उस वक्त क्या होता था, मैं अक्सर लोगों को करती थी और आगे से वो कहते थे आपकी आवाज बहुत अच्छी है, यही सुन सुन के मैंने सोचा बस मैं रेडियो पे जाएंगे लोगों को बताऊंगी मेरी आवाज अच्छी है। अच्छा जी, तो ये है मोहम्मद अशफाक, और ये कहते थे कि सफा को स्टेटस बना दिया मुद्दसर भाई ने, स्टेचू बना दिया, अच्छा मैं सुनी स्टेटस बना दिया,
2: स्टेटस
3: क्या हो गया मुझे क्या हो गया, मैं क्या पढ़ी। और रियाज अहमद कह रहे सुबह की हेल्दी रूटीन अपनाना बहुत चेंजेस ला सकता है, पॉइंट ये है कि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि उनको हम जैसे आदत डालते हैं तो वैसे ही चलता है। कुछ कुछ लोगों ने सुबह 4 बजे उठने की आदत डाली होती है, कुछ लोग ड्यूटी से 10 मिनट पहले भाग भाग के निकलते हैं। अच्छा सुबह जल्दी उठने की रूटीन का फ़ायदा फिजिकल से ज़्यादा मेंटली होता है, आपका माइंड फ्रेश रहता है, आदत बनाना मुश्किल नहीं बट कंटिन्यू रखना और हर हर रोज़ इस पर चलना लोगों के लिए मुश्किल होता है, हमसे अक्सर नहीं हो पाता। अच्छा मैं तो बहुत अरसे से, और मुझे लगता है बहुत फर्क डालता है, मतलब सुबह 4 बजे उठो ना, और 4 बजे उठ के फिर मैं उठी रहती हूँ,
2: और मजे की बात 9:30 4 बजे आप तब उठो जब आप माइंड सेट अपना पूरा प्रॉपर ये रख कर सो कि मैं 4 बजे उठूंगा, प्लस आप रात को जल्दी सो,
3: 9:30 सो जाती हूं।
2: हाँ तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड होकर कोई काम करते हो ना तो वो उसका अफेक्ट
3: आपको पूरे दिन मतलब ऐसा कोई थकन वकन और इन सब चीज़ों का एहसास नहीं होता। लेकिन ये जुमे हफ्ते को नहीं हो पाता अनफॉर्चुनेटली, ये सिर्फ वीकडेज में हो पाता है। तो खैर जी, तो अभी जो है सीन ये है कि हमने इजाज़त लेनी है, मुझे लग रहा है आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा इस बात का,
2: ऐसा मुझे
3: सफा खोई हुई थी, सफा खोई हुई थी, सफा को लग रहा था अभी तो चल रहा है,
2: मैं मामला भी पिक्चर भी बाकी वाला सीन चल रहा था। अच्छा भाई जाने से पहले आपको यही कहेंगे कि देखें रूटीन जो
3: सिस्टर भाई की डांट देना दिमाग पे उसे डाल
2: चले भाई ये माविश मैं ऑफ एयर आपसे बात करती हूँ
3: चलिए ठीक
2: देखो भाई पानी पीना नहीं छोड़ना मॉर्निंग रूटीन में ये बातें मैं बता दूँ
3: मुदस्सिर भाई कल से कॉल पहली कीजिएगा
2: मैं पूरा दिन फिर चुप रहूँगी मुदस्सिर भाई
3: चले जी ओके अल्लाह हाफिज़
2: नहीं नहीं ये बातें तो बता दूं भाई पानी पीना
3: जल्दी जल्दी
2: 5 मिनट अपने आप को खामोशी वाला टाइम देना छोटी सी वॉक कर लेना स्ट्रेच आउट कर लेना नेचुरल लाइट को थोड़ा सा अच्छे तरीके से इनहेल एक्सहेल करना लाइट को नहीं मतलब फ्रेश एयर को और भाई बैलेंस ब्रेकफास्ट रखना माविश की तरह और मेहरबानी करके फोन से थोड़ा डिस्टेंस रखना ठीक है
3: ये अली डेली वॉक करते हैं अली ने बताया डेली वॉक करते हैं चले दी इसके साथ ही हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़ बाय बाय

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामने किराम, प्रोग्राम कुरान के मोती की आज की इस नई किस्त का आगाज हम एक सवाल से करेंगे जो शायद हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बार बार हमारे सामने आता है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आप किसी बहस में पूरी कुव्वत, पूरे जोश और पूरे जज्बे के साथ उतर गए हों, हालांकि दिल के किसी गोशे में आपको मालूम था कि इस बहस का कोई फायदा नहीं, मगर फिर भी आपने गुफ्तगु जारी रखी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला ये न समझे कि आप कमजोर पड़ गए, जवाब नहीं है या मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। इंसान कभी हक के लिए नहीं, अपनी अना की हिफाजत के लिए बहस जारी रखता है। सामने किराम, इस्लाम हमें बातिल के सामने खामोशी की तालीम नहीं देता। जहां हक वाज़े करना जरूरी है, जहां किसी गुमराह कुन फिक्र का जवाब देना लोगों की हिफाजत के लिए मतलूब हो, जहां खामोशी से नुकसान बढ़ने का अंदेशा हो, वहां इल्मी, अखलाकी और हकीमाना जवाब अपनी जगह अहम है। लेकिन मुकाबला अपनी ज़ात में मकसद नहीं, यानी मुकाबला बज़ात खुद ये मकसद नहीं, बहस एक वसीला है, उसकी कीमत उसके नतीजे से तय होती है। अगर गुफ्तगु खैर पैदा करे, किसी शुबह को दूर करे, किसी बातिल को कमज़ोर करे, तो उसकी अपनी अहमियत अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन अगर बहस महज तमाशा बन जाए, बातिल को मजीद शोहरत दे और हक को एक बेमाना झगड़े में घसे

0: कौन बड़ा नाम है?
1: अल्लाह देखता है किसके दिल में तलब है। हम सोचते हैं किसके जवाब से ज्यादा शोर होगा। कुरान पूछता है किसके लिए ज्यादा खैर होगी। तो फिर हम भी अपने वक्त का मुहासबा करें। क्या हम उन लोगों को छोड़ रहे हैं जिनमें इस्लाह की उम्मीद है, और उन लोगों में डूबे हैं जो सिर्फ जंग चाहते हैं? कभी इंसान को ये खौफ भी रोकता है कि लोग कहेंगे कि मैं कमजोर हूँ, कहेंगे जवाब नहीं था, कहेंगे बहस से भाग गया। लेकिन कुरान हमें लोगों की उस राय की गुलामी से भी आजाद करता है। एक मकाम पर इरशाद खुदाबंदी है, وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْئًا, अगर तुम उनसे एराज करो तो तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अब हकीकी एराज क्या है? ये नहीं कि आप लिखें मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं, फिर अगले 6 घंटे उसके तमाम रिप्लाईज पढ़ते रहें। एराज यानी बात खत्म, तवज्जो खत्म, हर जवाब की निगरानी खत्म, हर जुमले पर दिल का धड़कना खत्म, उसके दायरे से निकल जाना। जिस तरह मोमिन को मुकाबला सीखना चाहिए, उसे एराज भी सीखना चाहिए। हर वक्त तलवार निकालना बहादुरी नहीं, कभी तलवार मयान में रखना ज्यादा बड़ी हिकमत होती है। दीन हमें गुफ्तगु इसलिए नहीं सिखाता कि हम अपने इल्मी मसल्स दिखाएं। मकसद ये नहीं कि हर मुखालिफ को लाजवाब करके फातिहाना अंदाज में लौटें। असल सवाल ये है कि हक कितना पहुंचा, बातिल कितना कम हुआ, लोगों को कितना फायदा मिला। वैसा औकात एक तवील मुनाजरा कोई फर्क नहीं बनाता, और एक खामोश एराज पूरा तमाशा खत्म कर देता है। सामने के प्रोग्राम के इस मरहले में आप गुफ्तगू को एक दूसरे अखलाकी दरवाजे पर ले आते हैं, और वो है लोगों की पर्दापोशी। एक रिवायत में आता है कि एक शख्स ने एक सहाबी के सामने अपने एक संगीन गुनाह का जिक्र किया। अब उस सहाबी ने उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाने का मशवरा दिया। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया, या हज्जाल लो सतरतहु बिरिदाइक लकाना खैरन लक, ए हज्जाल अगर तुम उसे अपनी चादर से ढांप लेते तो तुम्हारे लिए बेहतर होता। अब इससे एक अजीम उसूल सामने आता है कि हर मालूम खता को आम करना इस्लाह नहीं। किसी की लग्जिश मालूम हो गई तो फौरन ये ना सोचें उसकी वीडियो कहाँ है, स्क्रीनशॉट महफूज है या नहीं, पोस्ट बनाई जाए, लोगों को टैग किया जाए, बल्कि ये सोचे कि उसकी इस्लाह कैसे होगी। मुमकिन है एक शख्स गुनाह करे, फिर अपने रब के सामने रोए, इस्तग़फ़ार करे, तौबा करे और अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। लेकिन बाज़ लोग उसकी तौबा से ज्यादा देर तक उसका गुनाह जिंदा रखते हैं। वो शख्स आगे बढ़ गया मगर लोग कहते नहीं हमें याद है। कोई इंसान को तौबा का हक अल्लाह तो दे मगर हम न दें। कुरान मुतनब्बे करता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअ अल-फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग चाहते हैं कि ईमान वालों में बेहयाई और बुराई की बात फैले उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अब पर्दापोशी का मतलब ये नहीं कि जुल्म, ज्यादती, जुर्म या किसी जारी नुकसान को छुपाया जाए जहां मुतासर शख्स की हिफाजत, जिम्मेदार इदारे को इत्तला या अदल जरूरी हो। सतर तो वहां है जहां इस्लाह मुमकिन हो और किसी दूसरे का हक पामाल न हो रहा हो। जुल्म छुपाना सतर नहीं, किसी का ऐब जाहिर करना बहादुरी नहीं। जब आप अपने भाई की लग्जिशें गिनते गिनते खुद को कामिल महसूस करने लगें तो शायद असल बीमारी वहां शुरू होती है। एक मारूफ शेर है, ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء نبلا ان تعد معايبه, ऐसा कौन है जिसकी तमाम आदतें पसंदीदा हों? इंसान के शर्फ के लिए यही काफी है कि उसके ऐब गिने जा सकें। तो किसी से गलती हो तो क्या बेहतर नहीं कि हम उस पर पर्दा रखें, उसे तन्हाई में नसीहत करें और उसे उसके बदतरीन लम्हे की शनाख्त न बना दें। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। आज वो फिसल गया, कल हमें कौन संभालेगा? शैतान इंसान को पहले गुनाह में गिराता है, फिर उसी गुनाह को उसके खिलाफ हथियार बनाता है। वो कहता है अब तुम अच्छे इंसान नहीं रहे, अब तौबा का क्या फायदा, अब लोग तुम्हें कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर हम भी उस वक्त उस शख्स की रुसवाई कर दें, उसकी खता को हर जगह फैला दें, तो हम शैतान का काम आसान कर सकते हैं। समीन किराम, जरा क़यामत का मंजर सोचिए। आप अपने आमाल के साथ खड़े हैं, अपनी कमजोरियां मालूम हैं, अपने पोशीदा राज भी, फिर अल्लाह आप पर सतर फरमाए, बाज़ खताओं से दरगुजर करे और आपको मालूम हो कि दुनिया में आपने भी किसी मोमिन के ऐब पर पर्दा रखा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमन सतर मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो किसी मुसलमान की पर्दापोशी करे اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔

0: हम में से कौन है जिसे उस सतर की जरूरत नहीं। इसलिए अगर किसी को किसी बुरे हाल में देखे और मामला ऐसा हो जिसमें किसी दूसरे की हिफाजत या हक मुतासर न हो रहा हो तो उसे लोगों की मुस्तकिल याददाश्त में कैद न करें। शायद वो तौबा कर ले, शायद अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाए, शायद उसका खात्मा हमसे बेहतर हो। और जो आज उसकी रसवाई पर खुश है उसे अपने खात्मे की कोई खबर नहीं। तो सामने कराम, दूसरों की पर्दापोशी ये निहायत एक अहम फजीलत है।
1: आइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ सुनिए पर्ल्स ऑफ द कुरान सिर्फ एफएम 107 पर।
0: अब एक पर्दा और भी है कि अल्लाह ने आप पर जो सतर किया है उसकी हिफाजत। अगर कभी नफ्स गालिब आ गया, शैतान ने गुनाह को मुजय्यन किया, आप फिसल गए, फिर अल्लाह ने लोगों से आपकी लग्ज़िश छुपा दी, दूसरे मजलिसों की कहानी मत बनाएं। ये सोचकर अपने गुनाहों का ऐलान न करें कि अगर मैं लोगों के सामने अच्छा दिखाई देता हूँ तो शायद मैं मुनाफिक हूँ। नहीं, इंसान कमजोर पड़ सकता है लेकिन फिर भी इस्लाह की उम्मीद तो अपनी जगह पर कायम रहनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल उम्मती मुआफन इल्ला मुजाहिरीन, मेरी उम्मत के लिए आफियत की उम्मीद है सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों को अलानिया जाहिर करते हैं। तो अगर अल्लाह ने छुपाया है, खामोश रहिए, शुक्र कीजिए और इस शुक्र का सबसे खूबसूरत फल तौबा बनाइए। हर गुनाह कॉन्फेशन का मौजू नहीं, हर माजी सामीन नहीं मांगता। अल्लाह के सामने टूटना और लोगों के सामने अपने गुनाह की नुमाइश करना दो अलग चीजें हैं। सामने कराम, अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ख्वाहिशात, रगबतें और मुहर्रिकात रखे हैं। ये जिंदगी की तामीर के लिए जरूरी है, उन्हीं से खानदान बनता है, मेहनत होती है, रिज़्क़ तलाश किया जाता है, इंसानी तमद्दुन आगे बढ़ता है। अब इस्लाम ख्वाहिशात के लिए एक हुदूद बनाता है। ख्वाहिश अगर तरबियत याफ्ता हो तो कुव्वत है और अगर बेलगाम हो तो गुलामी। नफ्स को अगर लगाम न दी जाए तो पहले इंसान ख्वाहिश पर सवार होता है, फिर एक वक्त आता है कि ख्वाहिश इंसान पर सवार हो जाती है। कुरान मजमूम ख्वाहिश के लिए लफ्ज हवा इस्तेमाल करता है और ये लफ्ज मानवी तौर पर गिरने की कैफियत भी याद दिलाता है। यानी हवाए नफ्स के पीछे बेसोचे चलने वाला शख्स समझता है कि वो आजाद है मगर हकीकत में वो नीचे जा रहा होता है। ख्वाहिश बजाते खुद इंसान को हलाक नहीं करती, हलाकत उस वक्त शुरू होती है जब इंसान अपनी पुश्त झुकाकर ख्वाहिश को अपने ऊपर सवार कर ले और कहे, अब तू जहां ले जाएगी मैं चलूंगा। फिर लज्जतें जाल बन जाती है और ये सिर्फ हराम चीजों में नहीं होता, मुबाह चीज भी अगर हद से बढ़ जाए तो एडिक्शन बन सकती है। खाना, तफरी, खरीदारी, स्क्रीन गेम्स, सोशल मीडिया, शोहरत, हर वक्त नई स्टिम्युलेशन की तलब। पहले आप चीज इस्तेमाल करते हैं फिर चीज आपका वक्त इस्तेमाल करने लगती है। आज की सरफियत पसंद मुआशरे में इंसान को मुसलसल ये बावर कराया जाता है कि तुम्हारा बुनियादी हक ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है और अपनी हर लज्जत को पूरा करना ही आजादी की सबसे बड़ी अलामत है। अब्दुल वहाब अल-मुसैदी रहिमहुल्लाह ने जदीद सारफियत की इसी नफ्सियात की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि इंसान को ऐसा बनाया जाए कि वो मुसलसल ख्वाहिश पैदा करे, फिर उसे पूरा करने के लिए वक्त, माल, उम्र और तवज्जो खर्च करता रहे। वो अपना माल खोता है और किसी और का अकाउंट बढ़ता है, अपनी जवानी खर्च करता है और किसी और की सनत फैलती है, अपनी तवज्जो गंवाता है और किसी और का प्लेटफॉर्म ताकतवर हो जाता है। फिर उसे बताया जाता है, ये सब तुम्हारी आजादी के लिए है। लेकिन अगर आप हर ख्वाहिश के सामने बेबस हैं तो फिर आजादी कहाँ है? भाई, हकीकी आजादी तो ये है कि ख्वाहिश मौजूद हो और आप उसे नहीं कह सकें। इंसान का नफ्स उसकी हिम्मत के साथ बुलंद और पस्त होता है। जिसकी हिम्मत सिर्फ मामूली लज्जतों, बेफायदा मशागल और सतही दिलचस्पियों तक महदूद हो, उसकी रूह भी उन्हीं दायरों में सिमटती जाती है। और जिसकी हिम्मत इल्म, इबादत, खिदमत, किरदार, इस्लाह और अल्लाह की रजा तक उठती है, उसके नफ्स का जौक भी बुलंद होने लगता है। एक मशहूर रिवायत के अल्फाज हैं, इन्नल्लाह युहिब्बु मआलियल उमूर व अशराफहा व यकरहु सफसाफहा। अल्लाह बुलंद शरीफ उमूर को पसंद फरमाता है और हकीर व पस्त उमूर को नापसंद करता है। यानी मोमिन सिर्फ गुनाह से नहीं बचता, वो सफासिफुल उमूर से भी अपना जौक बचाता है। उसकी जिंदगी हर मामूली शोर के पीछे नहीं भागती, उसकी हिम्मत का भी एक वक़ार होता है। अब हवाए नफ्स का सबसे खतरनाक मरहला तब आता है जब इंसान अपनी ख्वाहिश को सिर्फ ख्वाहिश नहीं रहने देता बल्कि दीन का मेयार बनाना शुरू कर देता है। अब वो हुक्म को नहीं देखता कि अल्लाह क्या चाहता है, वो देखता है कि मेरा नफ्स क्या चाहता है।

0: इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फवक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती है। विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राहे रास्त पर आ जाएं।
2: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं, पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है, मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी। यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो, दुआ को हकीर समझते हो, हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते, अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। अमीन, आज की दुआ है इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की, जिन्होंने काफिरों के जुल्म सितम के मुकाबले में अल्लाह की पनाह मांगी और अपने ईमान पर इस्तकामत की दुआ की। ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों ने उस वक्त की थी जब वो ईमान की राह में जालिमों के जुल्म और फितनों से दो चार थे। उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज किया, ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Qatar National Health Strategy. Health for all. Suniye Dr. Fauzia Shafiq ke saath. FM 107. Dil se desi.
2: Assalamu alaikum listeners. खाने तो सभी अहम हैं, मगर हम आज बात करेंगे दिन के सबसे अहम खाने की यानी नाश्ते की यानी ब्रेकफास्ट की। जी हाँ, सुबह का नाश्ता हमारे सारे दिन की तवानाई और तंदुरुस्ती का आगाज है। अक्सर आपने सुना होगा कि नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना है। इसकी वजह यह है कि रात को 8 से 10 घंटे सोने के बाद हमारा जो मेदा है वो खाली हो जाता है और नाश्ता हमें नई तवानाई देता है, हमारे जो दिमाग को जगाता है यानी एक्टिव करता है और हमारे जिस्म को दिन भर के काम के लिए तैयार करता है। अगर आप नाश्ता छोड़ देंगे तो थकान, चिड़चिड़ाहट और गैर सेहतमंद चीजें खाने का ज्यादा इम्कान होता है। तो आइए देखते हैं कि एक जो बैलेंस्ड ब्रेकफास्ट है या एक मतवाजन नाश्ता हमें क्या फायदा देता है। उसमें ज्यादा तवानाई देता है यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हमें दिन के आगाज के लिए ताकत देते हैं। बच्चे और बड़े दोनों को नाश्ता करने से पढ़ाई और काम में ज्यादा परफॉर्म जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह याददाश्त और जो कंसंट्रेशन है या तवज्जो है उसको बेहतर बनाते हैं। इसमें भी बच्चे और बड़े दोनों ही नाश्ता करने से पढ़ाई और काम में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। नाश्ता करने वाले अफराद दोपहर में जरूरत से ज्यादा नहीं खाते और इसी तरह दिल की सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। दलिया, फल और जो नट्स हैं वो कोलेस्ट्रॉल और जो दिल के मसाइल हैं उनसे हमें दूर रखते हैं और आपका जो मिजाज है वो तो खुशगवार होता ही है। और नाश्ते में ब्लड शुगर को मतवाजन रखता है जो हम नाश्ता करते हैं, तो उससे हमारा जो मूड है वो बेहतर रहता है। अब सवाल ये है कि नाश्ता होना कैसे चाहिए। सिर्फ चाय के साथ बिस्किट नाश्ता नहीं कहलाता। एक अच्छे नाश्ते में तीन चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि दलिया है, ब्राउन ब्रेड है और इसी तरह से रोटी है, प्रोटीन जैसे अंडा है, दूध है, दही या नट्स हैं। फल और सब्जियां भी शामिल कीजिए ताकि जिस्म को विटामिंस और फाइबर मिले। मिसाल के तौर पर एक अंडा, ब्राउन ब्रेड और साथ एक सेब या दलिया दूध के साथ और इसके अलावा केला और बादाम, ये सब आसान और सेहतमंद इंतखाब हो सकते हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो रात को ही तैयारी कर लीजिए, और अगर आप बिल्कुल भी आपके पास वक्त नहीं है नाश्ते करने का तो फिर आप सिर्फ एक सेब और एक मुट्ठी भर बादाम भी एक बेहतरीन नाश्ता हो सकते हैं। याद रखिए, नाश्ता सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि सेहत और खुशी की है यानी चाबी है। दिन का आगाज अच्छे नाश्ते से कीजिए ताकि पूरा दिन तवानाई और सुकून के साथ गुजरे। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम और जरूरी नंबर है। हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें फौरन मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जो हमेशा हमारी मदद के लिए दस्तयाब हो, तो हम खुद को ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 का मतलब है कि अगर आप किसी भी खौफनाक या खतरनाक हालत में फंस गए हैं, तो आप सिर्फ इस नंबर पर कॉल करके फौरन मदद हासिल कर सकते हैं। इमरजेंसी नंबर 999 की अहमियत को हम सबको समझना बहुत जरूरी है। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ एक नंबर है, लेकिन ये हमारी जिंदगी में एक अहम रोल अदा करता है। जब भी आपको मदद की जरूरत हो, आपको बस ये नंबर डायल करना होता है। इस नंबर से आप बहुत सी मुश्किलात से निकल सकते हैं और आपकी जानो माल को नुकसान से बचाया जा सकता है। और याद रखिए, ये नंबर सिर्फ और सिर्फ हर किस्म के इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट, मेडिकल इमरजेंसीज, नेचुरल डिजास्टर्स और कोई खौफनाक सिचुएशन जो आपके लिए खतरा बन सके। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश।

0: Wake up! हर हफ्ते संडे टू थर्सडे सुबह 6 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी
0: FM 107 presents Tech Update. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट. मैं दुहा वाला कबीर और अब आपको बताऊंगा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में एक वेबसाइट बीच में प्लगइन कर देता हूं, बहुत जरूरी. अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपको इमेजेस को लेकर कुछ ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं. देखिए, आपने मान लीजिए अपना एक फोटो अपलोड किया, ठीक है. आपको फोटो अपलोड करने के बाद प्रॉम्प्ट में लिखना है /ID photo, तो आपकी फोटो क्या हो जाएगी, आईडी फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी. आपने /ForwardSlash लिख के आगे लिख दिया ओल्ड मनी, तो आप ऐसे दिखेंगे जैसे आपने अपने बाप दादा की दौलत इनहेरिट कर ली है. सच में वो वाले कपड़े आपको पहना देगा वो. और ये कुछ बेसिक कोड्स हैं जो बता रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल काफी फेमस हो रहा है /GTA 6, तो आपके फोटो को वो GTA 6 में तब्दील कर देगा. एंड अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी परफेक्ट दिखे तो उसके लिए भी कोड है ना भाई, ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में. तो आपको सिर्फ टाइप करना है फोटो अपलोड करने के बाद /ForwardSlash jawline, तो आपकी जॉ लाइन को वो फिक्स कर देगा. एंड इट

0: एक्चुअली फिक्सेस रियली रियली वेल, तो यू कैन ट्राई दिस वन. ठीक है, अब जरा वेबसाइट बता देता हूँ. तो वेबसाइट का नाम है, ये तो कतर में लोग जरूर यूज करें, 4x4builder.com. जैसे 4x4 लिखते हैं, यानी न्यूमेरिकल 4, फिर वो x वाला साइन, फिर 4builder.com. अब आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आप अपनी गाड़ी 4x4 खुद बिल्ड कर सकते हैं भाई. उसमें ट्रक लीजिए, आप कोई क्रूजर लीजिए, आप जैसी मर्जी लीजिए, उस गाड़ी का एक एक पार्ट आप बदल के देख सकते हैं कैसी दिख सकती है. पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं आप, सस्पेंशन से लेकर, लाइट से लेकर, बॉडी पार्ट से लेकर, एक एक चीज गाड़ी की आप बना सकते हैं. और फिर इसको आप सामने रेगिस्तान में दौड़ा भी सकते हैं. आप देख सकते हैं किधर कैसे आपकी लग रही है गाड़ी. भाई बहुत फन है, और स्पेशली कतर में जहां पर लोग कस्टमाइजेशन में इतना यकीन रखते हैं, तो आपके तो बहुत ही काम आने वाली है भाई. तो ये जरूर जरूर ट्राई करें. एंड 4x4builder.com ये नाम है वेबसाइट का. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. अगली वेबसाइट का नाम है lightpdf.com. ये बहुत काम आएगी. लाइट, lightpdf.com. इस वेबसाइट पे जाके जब आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं, तो सुनिए, उस पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं भाई, पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं आप. जैसे कि वर्ड में टाइप कर रहे हैं वैसे आप पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी. एंड दिस इज मिरेकल, मिरेकल. तो आपकी बहुत काम आएगी वेबसाइट. जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें. हाईली हाईली रिकमेंडेड. चलो एक लगे हाथों एक और वेबसाइट बता देता हूं आपको. अगली वेबसाइट का नाम है image2prompt.org. इमेज, image2prompt.org. मान लीजिए कोई इमेज आपको बड़ी अच्छी लगी, उसका आप एग्जैक्टली उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा कि भैया ये रहा प्रॉम्प्ट, अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, ये आपके हवाले एंड यू विल गेट इट. ये है भाई सबसे सबसे खास बात. तो ये आप जरूर चेक कीजिएगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट. एंड लास्ट में खबर की तरफ बढ़ते हैं. तो देखिए अभी क्या है कि गूगल वर्क कर रहा है अपने AI पे, काफी काफी डिलीजेंटली वर्क कर रहा है. तो न्यू जेमिनाई मॉडल जो रिपोर्टली जिसके बारे में बात हो रही थी, वो गूगल कह रहा है कि ये खत्म कर देगा कोडिंग गैप को. भाई गूगल करंटली टेस्ट कर रहा है जेमिनाई 3.8 फ्लैश, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी काफी कमाल के हैं. बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन कोडिंग परफॉर्मेंसेस जितने पिछले जेमिनाई मॉडल रहे हैं उन सबको बीट करता है. साथ ही में गूगल ने भी कहा कि जेमिनाई बहुत जल्दी गूगल असिस्टेंट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा. ऑलरेडी कर चुका है बट और भी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर देगा. गूगल ने यह भी कहा कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड ताकि जेमिनाई डिफॉल्ट मॉडल बन जाए, और जो ट्रेडिशनल गूगल असिस्टेंट है जो यूज हो रहा है एंड्रॉयड पर और जो उनके बाकी वेयरिंग ओएस है उस पे खत्म हो जाए. तो खत्म हो भी चुका है, और अगर आप ओल्ड मॉडल पे हैं तो यू कैन अपडेट एंड यू कैन गेट इट डन. तो ये थी कुछ टेक अपडेट्स. मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे. इसी तरह से और भी अपडेट्स आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाते रहेंगे. दिल से देसी टेक अपडेट. टेक अपडेट.
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: मुझे तो लगता है नोटिफिकेशन को बंद कर देना चाहिए, बहुत डिस्टर्ब करते हैं.
4: अरे पर कुछ मिस हो गया तो? इनफैक्ट हर नोटिफिकेशन ऑन रहना चाहिए, वरना बेचैनी रहेगी ना.
3: उफ, पर दिमाग को सुकून भी तो चाहिए ना.
0: यही वो अलाइनमेंट है दिमाग की, जिसे बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि हर ओपिनियन मैटर. सुनिए हमारा खास प्रोग्राम एनर्जी आर हर संडे से थर्सडे दोपहर 1:30 to 2:30 RJ नाजिया और RJ सरवर मिर्जा के साथ Only on FM 107. Dil se desi.
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें. आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
2: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे एक नए जमाने के फ्रॉड के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। ये फ्रॉड इतने ज्यादा टैलेंटेड तरीके से किए जाते हैं कि कई बार स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी फंस जाता है। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये डायरेक्ट धमकी पर ही काम करता है। ये टेक थ्रेट है। जो टेक्निकल बंदे हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा ये डिमांड नहीं है, ये पैसे की डिमांड नहीं है, ये आपको धमकी होती है, जिसे कहते हैं फेक रैंसमवेयर और टेक थ्रेट। ये टेक थ्रेट डिजिटल दुनिया में चलने वाला एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां स्कैमर्स डर और झूठ का सहारा लेकर बिजनेस ओनर्स को डराते हैं। इसमें होता यह है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा या स्केरी पॉपअप मैसेज आता है, या फिर आपको एक धमकी भरा ईमेल मिलता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, हमने आपकी कंपनी का सारा सेंसिटिव डेटा, बैंक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट फाइल्स चुरा ली हैं और उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी कि इंक्रिप्ट कर दिया गया है। इंक्रिप्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज। स्कैमर आगे लिखता है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी

0: किसी में एक मोटी रकम नहीं दी तो आपका सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा या इंटरनेट पर लीक हो जाएगा। और ये डायरेक्ट धमकी होती है, यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको स्कैम करने की जरूरत पड़े इनको, ये धमकी देते हैं। लेकिन स्कैम एक्चुअली यही है कि ये धमकी झूठी होती है। यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि बहुत सारे केसेस में ये थ्रेड बिल्कुल फेक होते हैं। स्कैमर के पास आपके सिस्टम का कोई एक्सेस नहीं होता है और ना ही उन्होंने कोई डेटा चुराया होता है। वो सिर्फ एक अजीब या जावास्क्रिप्ट कोड या पॉपअप वेबसाइट का यूज करते हैं जो स्क्रीन पर लॉक हो जाता है, जिससे लगता है कि कंप्यूटर हैक हो गया। बिजनेस ओनर अपने रेपुटेशन और कस्टमर डेटा खोने के डर से पैनिक हो जाते हैं और स्कैमर को लाखों रुपए भेज देते हैं। ये स्कैमर्स सिर्फ डर का माहौल बनाकर बिना मेहनत के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी इसके हैं, अगर इन सॉल्यूशन को ध्यान से सुने तो आप बच सकते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है अलग से बैकअप रखना। देखिए, आपके साथ कोई फेक थ्रेट करे, असली करे, कुछ भी हो, इवन हो सकता है कि आपका कभी कंप्यूटर ही खराब हो जाए, जरूरी है कि बैकअप आप अलग से रखे रहें। और ये बैकअप कैसा होना चाहिए? अपने बिजनेस का सारा इंपॉर्टेंट डेटा हर हफ्ते एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या सिक्योर डिस्कनेक्टेड क्लाउड पर बैकअप करें, सेव करें। अगर आपका बैकअप मेन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो असली में आपसे कोई डिमांड भी करे, रैंसमवेयर आए भी अगर आपके पास, तो आपके पास असल में सेटअप तो है, आपके पास बैकअप तो है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा या पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है, किसी भी तरह की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आप बच जाते हैं। उसके अलावा पैनिक ना करें कभी भी, अगर ऐसा कोई पॉपअप स्क्रीन पर आए तो कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई बंद कर दें और टास्क मैनेजर खोलकर ब्राउजर को फोर्स क्लोज करें। अक्सर ब्राउजर बंद करते ही फेक पॉपअप्स गायब हो जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। और एक चौथा तरीका है एड ब्लॉकर्स या साइबर हाइजीन। अपने ऑफिस के कंप्यूटर में एक अच्छा एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें ताकि ऐसे मलिशियस और डराने वाले पॉपअप्स इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान सामने ही ना आए, किसी भी अनजान ईमेल अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक करने से भी बचे। तो दोस्तों, ये था तरीका नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने का, और ये था आज का फेक रैंसमवेयर या टेक थ्रेट, जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया, उम्मीद है कि ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी। स्कैम अलर्ट,
1: मैक्सिमम म्यूजिक, मैक्सिमम फन ऑन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करते हैं एथलेटिक्स की दुनिया के उस सुपरस्टार की जो हर बार पोल वॉल्ट में एक नई बुलंदी का मतलब समझाता है। नाम है आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, दुनिया का सबसे डोमिनेंट पोल वॉल्टर और शायद एथलेटिक्स की तारीख का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एथलीट। डुप्लांटिस की पैदाइश 10 नवंबर 1999 को लाफायते लुसियाना अमेरिका में हुई। अमेरिकन बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल एथलेटिक्स में स्वीडन को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया क्योंकि उनकी अम्मी हेलेना स्वीडिश हैं और यह फैसला आज स्वीडन के लिए एक स्पोर्टिंग फेरी टेल बन चुका है। डुप्लांटिस ने बचपन से ही पोल वॉल्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने वॉल्टिंग शुरू कर दी थी और 7 साल की उम्र तक एज ग्रुप रिकॉर्ड्स उनके नाम होने लगे थे। उनका टैलेंट कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। उनके वालिद ग्रेग डुप्लांटिस खुद फॉर्मर पोल वॉल्टर रहे जबकि उनकी वालदा हेलेना फॉर्मर हेप्टैथलीट और वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यानी मोंडो के लिए एथलेटिक्स घर से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जो चीज मोंडो को दूसरों से अलग करती है वो है उनकी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत। 2020 में जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उस वक्त किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ये सिलसिला इतना लंबा चलेगा। लेकिन आज डुप्लांटिस 15 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और लेटेस्ट रिकॉर्ड 6.31 मीटर। 12 मार्च 2026 को उपसला में डुप्लांटिस ने 6.31 मीटर क्लियर करके अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर बेहतर कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुताबिक वो अब भी मेंस पोल वॉल्ट में वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन 2026 में भी मोंडो की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं रही। मार्च में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 6.25 मीटर्स की जंप के साथ अपना 4th कंसेक्यूटिव वर्ल्ड इंडोर टाइटल जीता। इस कंपटीशन में ग्रीस के मैनुअल कारालिस ने 6.05 मीटर्स के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया और अगस्त में लोसेन डायमंड लीग में एक और हिस्ट्रिक कंटेस्ट देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.21 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.16 मीटर्स के साथ उनको जबरदस्त चैलेंज दिया। मोंडो ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर ज्यूरिख डायमंड लीग में भी दोनों के दरमियान मुकाबला देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.20 मीटर्स के साथ अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो बनाया। करालिस ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड को चैलेंज किया लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। यानी डुप्लांटिस के सामने अब एक नया चैलेंज भी उभर रहा है, इमानुएल करालिस। डुप्लांटिस के करियर में 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी हैं, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024। वो 3 मरतबा वर्ल्ड आउटडोर चैंपियन भी बन चुके हैं और 2025 में टोक्यो में 6.30 मीटर्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप के साथ अपना 3रा वर्ल्ड टाइटल जीता। अच्छा, 2025 में उन्होंने सीजन की 16 कॉम्पिटिशंस में अनबीटन रहकर अपना 5वां कंसेक्यूटिव डायमंड लीग टाइटल भी जीता और 4 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंप्रूव किया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया। लेकिन मोंडो की सबसे खास बात शायद ये है कि वो दूसरों से कम और खुद से ज्यादा कम्पीट करते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि मोंडो को कौन हरा सकता है, सवाल ये है मोंडो डुप्लांटिस खुद अपने लिमिट को कितना और आगे ले जा सकते हैं। 6.31 मीटर्स के बाद क्या 6.32, 6.40 या शायद एक दिन 6.50 मीटर्स। दुनिया की नजरें मोंडो पर हैं और पोल वॉल्ट की हर नई बुलंदी उनके नाम का इंतजार करती नजर आती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत।
खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहां हर रस्म, हर लिबास, हर खाने और हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस विरसे को अगली नस्लों तक पहुँचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में किसी से मिलना सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं, बल्कि इज्जत, खुलूस और अपनायत का इजहार होता है। सलाम, मुस्कुराहट और खैरियत पूछने जैसे छोटे छोटे रवैये लोगों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद पैदा करते हैं। इसीलिए मुलाकात के आदाब कतरी समाजी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। किसी से मिलते वक्त सलाम करना अच्छे अखलाक की अलामत है। सलाम के बाद हाल चाल पूछना, सामने वाले की खैरियत मालूम करना, ये बताता है कि उसकी कदर की जा रही है। अगर मुलाकात किसी मेहमान से हो तो उसका खैर मुकदम और ज्यादा तवज्जो के साथ किया जाता है। कतरी माशरे में बुजुर्गों और वालदैन का खास एहतराम किया जाता है, इसलिए मुलाकात के वक्त पहले बुजुर्गों को सलाम करना बेहतर अंदाज समझा जाता है। उनके पास अदब से बैठना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनका ख्याल रखना अच्छी तरबियत की निशानी है। मुलाकात का एक अहम पहलू लहजा है। नरम आवाज, प्यारे अल्फाज और मुस्कुराहट बात को ज्यादा खुशगवार बना देती है। कतरी आदाब हमें सिखाते हैं कि गुफ्तगू में शोर, सख्ती या बेतौजी से बचना चाहिए। दूसरे शख्स को इज्जत देने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रवैया भी अहम होता है। मजलिस में बैठने का भी अपना सलीका होता है। मेहमान को आम तौर पर इज्जत के साथ जगह दी जाती है। लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, कहवा और खजूर से तवाज़ो करते हैं और पुरसकून गुफ्तगू का माहौल कायम रखते हैं। गुफ्तगू के दौरान सामने वाले की बात पूरी तवज्जो से सुनना जरूरी समझा जाता है। बात के दरमियान मुदाखलत करने के बजाय इंतजार करना और फिर अपनी राय देना अदब है। अगर किसी मौजू पर मुख्तलिफ सोच भी हो तो नरमी और एहतराम के साथ बात की जा सकती है। कतरी मुलाकातों में रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। किसी से मिलकर उसकी सेहत, काम और घर वालों के बारे में पूछना आम रवैया है। ये सवालात सिर्फ बात शुरू करने का जरिया नहीं बल्कि दूसरे शख्स के लिए दिलचस्पी और फिक्र का इजहार होते हैं। मेहमान का भी अपना अदब होता है। जब कोई शख्स किसी के घर या मजलिस में जाए तो वक्त का लिहाज करे, सलाम करे और मेजबान की राहत का ख्याल रखे। जो पेश किया जाए उसकी कदर करे और जरूरत हो तो शुक्रिया भी अदा करे। ये रवैये मुलाकात को ज्यादा खुशी बख्शते हैं। कहवा पेश करने का अमल भी मुलाकात के अदाब से जुड़ा है। प्याला अदब से पेश किया जाता है और मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक उसे कबूल करता है। कहवे के चंद लम्हों में लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। किसी मुलाकात से रुखसत होते वक्त भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरत असर छोड़ता है। मेजबान का शुक्रिया अदा करना और उसके लिए खैर की दुआ देना शुक्रगुजारी का इजहार है। इसी तरह मेजबान अपने मेहमान को खुशी के साथ रुखसत करता है। आज के जदीद कतर में मुलाकात के तरीके नए भी हो गए हैं। लोग फोन, मुलाकात, पैगामात, ऑनलाइन राब्ते के जरिए भी हालचाल पूछते हैं। फिर भी आमने सामने मिलने, सलाम करने और दिल से बात करने की अपनी अहमियत है। मुलाकात के आदाब बचपन से सिखाए जाते हैं। घर के बड़े बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरह मेहमान का इस्तकबाल करना है, किस तरह बैठना है और गुफ्तगू में किस तरह नरमी रखनी है। बच्चे देख कर सीखते हैं और फिर ये रिवायत आगे बढ़ती रहती है। कतर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इसलिए एक दूसरे की रिवायात और रवैयों का एहतराम और भी अहम हो जाता है। صحیح طریقے سے سلام کرنا، نام عزت سے لینا، گفتگو توجہ سے سننا اور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دینا، ایسا رویہ ہے جو ہر دل کو قریب لا سکتا ہے۔ خطری ملاقات کے آداب کا اصل حسن اخلاص اور سادگی میں ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ اچھی محفل مہنگی چیزوں سے نہیں بلکہ اچھے رویوں سے بنتی ہے۔ ایک سلام، ایک مسکراہٹ، ایک پیاری گفتگو دن کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ آج کے کلچر مومن کا پیغام یہ ہے کہ ملاقات کا حسن عزت اور خلوص میں ہوتا ہے۔ جب ہم سلام کو محبت، گفتگو کو ادب اور رخصتی کو شکریہ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو ہر ملاقات ایک خوبصورت یاد بن جاتی ہے۔ تو لسنرز، آج کے کلچر مومنٹ کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ثقافت صرف گزرے ہوئے وقت کا نام نہیں بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کا خوبصورت حصہ ہے۔ میں ہوں آپ کی آرجے مہوش۔ اگلی ملاقات تک اپنا خیال رکھیے اور قطر کی خوبصورت ثقافت کو ہمیشہ عزت اور محبت کے ساتھ یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाए, दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शूव प्लेटफॉर्म पर।
1: साइंस कैन बी फन? ना, साइंस विल बी फन, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स होंगे तभी तो थ्योरीज फैक्ट्स बनेंगी, है ना? तो बस दुनिया बदलते देखिए हमारे साथ, क्योंकि हम करेंगे फन साइंस एक्सपेरिमेंट दोहा वाले कबीर के साथ, एक इजी एंड सेफ एनवायरनमेंट में। सुनिए और देखिए हमारे साथ ये खास शो जूनियर साइंटिस्ट, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, या फिर दोहा वाला साइंटिस्ट ओनली ऑन एफएम 107। सो ये खास शो है जिसका नाम है जूनियर साइंटिस्ट, और पिछले शो में, सबसे पहले एपिसोड में इनफैक्ट, हमने बात करी थी किस तरीके से जो बॉयंट फोर्स है वो पुश करती है ऑब्जेक्ट्स को, और फिर जो है हमने एक एक्सपेरिमेंट आपको ऑडियो फॉर्मेट में सुनाया जिसमें हमने एक अंडे को पानी में डुबाने की कोशिश करी लेकिन जा ही नहीं रहा था, फिर हमने नमक मिला दिया, हमने अंडे से कहा कैसे नहीं जाओगे बेटा तुम, और फिर हमने सीखा कि बॉयंट फोर्स होती क्या है। आज लेकिन हम बात करेंगे टेंशन के बारे में, लेकिन ये टेंशन सरफेस टेंशन है, क्योंकि पानी की सिर्फ एक क्वालिटी नहीं है भाई साहब, पानी की हिडन क्वालिटीज है, पानी के पास हिडन फोर्सेस हैं। ये दिखता तो बाहर से बड़ा ही जेंटल, बड़ा ही काम किस्म का है, लेकिन पानी इतना जेंटलमैन है नहीं, इसके अंदर छुपी हैं बहुत सारी ताकतें। ये वो ताकतें हैं जो पानी को मदद करती हैं कि वो होल्ड कर सके अपने सारे मॉलिक्यूल्स को टुगेदर और एक सरफेस फॉर्म कर सके। आपने देखा होगा ऊपर से, अगर बहुत ही ऊपर से कोई पानी में डुबकी लगाने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल ऐसे गिरेगा जैसे कंक्रीट पे गिरा हो, ये भी इफेक्ट आपको यहीं पे पता लगेगा। एंड ये जो इनविजिबल फोर्स है ये लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए थोड़ी सी अलग हो जाती है, यानी कि आज एक्सपेरिमेंट में एक लाइट ऑब्जेक्ट हम यूज करने वाले हैं, वी विल यूज ब्लैक पेपर, जी काला नमक। ये पानी के ऊपर फ्लोट करने लगता है, इस फोर्स को ही कहते हैं सरफेस टेंशन, और ये हमें हर जगह देखने को मिलती है, बहुत सारी जगहों पे इनफैक्ट। अब जो पानी है इसमें क्या कर रहा है, वो एक सरफेस लेयर बनाता है, जो ब्लैक पेपर है वो रिप्रेजेंट करता है लाइट फ्लोटिंग पार्टिकल्स को, और इसमें हम चीजें बाकी ऐड करेंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाने से पहले आपको बता दें कि भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट आपको इंशाल्लाह वीडियो फॉर्मेट में भी देखने को मिलेगा, लेकिन सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर जुड़िएगा। आपके घर में भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट आप करके दिखाते हैं बच्चों को, इन जूनियर्स के अंदर साइंस की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी जगाते हैं, जरूर जरूर बताइएगा। एफएम 107 कतर ये नंबर है हमारा, एफएम 107 कतर, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज ये सारे एक्सपेरिमेंट इतने इजी हैं कि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, बहुत आसान इजी एक्सपेरिमेंट्स हैं। इस शो के जरिए हम इन्हीं को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि इन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो रियलिस्टिकली कई सारे फिनोमेना को समझ पाए, क्योंकि साइंस इज एक्चुअली इजी एंड इज एक्चुअली फन इफ यू डू इट इन द राइट वे, और वो राइट वे फाइंड करना हमारा और आपका काम है, मिल बांट के कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, वो ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, नॉर्मल एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। तो आपको इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, आपको चाहिए पानी, आपको तो पता ही है, उसके अलावा चाहिए ब्लैक पेपर, उसके अलावा चाहिए एक साबुन की टिकिया, मतलब लिक्विड सोप भी चलेगा, ऐसे कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद आपको चाहिए एक बॉल या फिर एक प्लेट चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स इस एक्सपेरिमेंट में बड़े ही सिंपल हैं, घर में मिल जाते हैं, मगर आपको ये सिंपल एक्सपेरिमेंट मदद करेंगे बच्चों को ये सिखाने में कि सरफेस टेंशन किस चिड़िया का नाम है जो ये पानी डेवलप करता है। पानी एक्चुअली में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, एक स्ट्रेंथ रखता है कि उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन पैदा होती है जो काफी इनविजिबल फोर्स है, और उस फोर्स को ब्रेक करने के लिए कोई ना कोई अलग अलग ऑब्जेक्ट्स या फिर चीजें यूज की जा सकती हैं। सो ब्लैक पेपर जो है आपने उसका इस्तेमाल करना है सरफेस टेंशन दिखाने के लिए, और आपके पास भी सिमिलर कोई एक्सपेरिमेंट है अगर आप कर चुके हैं तो व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए जरूर जरूर बताइएगा। एंड तो एक एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। तो अगर ब्लैक पेपर को आप पूरे सरफेस पे, पानी के सरफेस पे स्प्रेड कर दें, ऐसे छिड़क दें उसके ऊपर, तो वो फ्लोट होने लग जाएगा बिकॉज वो काफी ज्यादा लाइट है। लेकिन लिक्विड सोप अगर इसे मिला दिया जाए तो होगा क्या, वो सरफेस की टेंशन को डिस्टर्ब कर देगा। ये तीसरा

इतना उसमें आ गया है दोनों की दोस्ती के बीच में और इस वजह से सरफेस की टेंशन हो जाती है ब्रेक. सो ब्लैक पेपर फ्लोट क्यों कर रहा है, दरअसल ये सवाल है और इस सवाल का जवाब कुछ देर में देंगे क्योंकि अभी शो को हम शुरू कर रहे हैं जूनियर साइंटिस्ट और आज हम समझेंगे पानी की उस हिडन कैरेक्टरिस्टिक को, उस हिडन स्ट्रेंथ को जो आपको बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलती है. जूनियर साइंटिस्ट शो का नाम है, बंदे का नाम है दोहा वाला कबीर, दोहा वाला साइंटिस्ट कबीर. जाएगा नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने बाकी है. मेरा साइंटिस्ट वाला चश्मा लाओ भाई. जानन स्टे ट्यून्ड.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे एंड वेलकम टू जूनियर साइंटिस्ट. ये एक्सपेरिमेंट बच्चों के लिए है लेकिन बड़ों को इसमें साथ देना है और बच्चों को समझाना है. तो आज हम बात करें वाटर सरफेस टेंशन की. पानी के ऊपर आपने अगर एक मान लीजिए ब्लैक पेपर छिड़क दे, जो आज के एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, तो सिंपल वो तैरने लगता है, फ्लोट होने लगता है क्योंकि बड़ा लाइट है. पर वो फ्लोट हो क्यों रहा है इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो फ्लोट इसलिए हो रहा है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गली, और इसलिए सरफेस लेवल पर बिल्कुल टॉप पे ये एक टाइट लेयर बनाते हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करता है. इट्स लाइक अ मोर लाइक अ ट्रैम्पोलिन, यू नो, ट्रैम्पोलिन बना देता है पानी और उसके ऊपर जो कुछ भी आएगा कुछ लेगा तो नहीं, ट्रैम्पोलिन लिटरल मीनिंग में नहीं है, लेकिन वो फ्लोट करने लग जाए. और जितनी लेयर टाइट होगी सरफेस टेंशन उतनी ही ज्यादा होगी, और इसीलिए जो पेपर है, जो ब्लैक पेपर है, वो सरफेस पे फ्लोट करने लग जाएगा. तो ऑब्जर्वेशन क्या हो सकती है, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या होगा अगर इसमें साबुन को मिला दिया जाए, लिक्विड सोप को मिला दिया जाए. सबसे पहली बात तो ये आप बच्चों से पूछेगा कि बेटा यहां तक तो हम पहुंच गए, हमने एक बोल में पानी लिया, उसके ऊपर हमने ब्लैक पेपर छिड़क दिया, ब्लैक पेपर हो रहा है फ्लोट. पर अगर इसमें लिक्विड सोप मिला दें तो क्या होगा, ये पहला सवाल है. और जवाब आने के बाद फिर उन्हें करके दिखाई एक्सपेरिमेंट. तो जब आप उसमें ऐड करेंगे तो एक किस्म की मूवमेंट आपको नजर आएगी. द मोमेंट यू ऐड इसमें लिक्विड सोप, तो जो आपने ब्लैक पेपर डाला था उसमें एक मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी और वो फैलने लग जाएगा, इधर से उधर जाने लग जाएगा. साइंस इसलिए इतनी खास है क्योंकि साइंस बिकम्स एक्साइटिंग व्हेन वी प्रेडिक्ट, ऑब्जर्व एंड देन थिंक. ये तीन स्टेजेस है साइंस की, और एक्सपेरिमेंट क्लियरली दिखाता है वो इनविजिबल फोर्स जो विजिबल मूवमेंट आपकी नजरों के सामने लेके आती है. आप जरा इमेजिन कीजिए पानी के सरफेस को एक खिंची हुई रबर शीट की तरह, पूरा किसी ने खींच के रबर शीट को पकड़ा हुआ है. अब उस पे आपने ब्लैक पेपर डाला, अब ये शीट जो है पूरी तरह से उसे होल्ड करके पकड़ी हुई है क्योंकि टाइटली मॉलिक्यूल्स पानी के एक दूसरे को जकड़े हुए हैं. इसलिए ये ब्लैक पेपर ना तो डूबेगा, एक तो पहली बात लाइट है, और दूसरी बात फैलेगा नहीं, सिर्फ फ्लोट करता रह जाएगा क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा कम है. मगर जैसे ही आपने इसको मिलवाया लिक्विड सोप से, तो ये शीट, जो रबर की शीट है जिसको हम जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज वाटर, वो ब्रेक हो जाएगी और रिजल्ट क्या आएगा कि सारे के सारे ब्लैक पेपर जितने भी उसके तिनके कहते हैं, क्या कहते हैं, तिनके कह लेते हैं, वो इधर उधर भागने लग जाएंगे जैसे कोई आफत आई हो. तो ये जो आफत आई है ये दिखाता है वाटर टेंशन किस तरीके से ब्रेक होती है और ये क्या इनविजिबल फोर्स है पानी की और कैसे ये स्ट्रेंथ काम करती है. अब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए क्योंकि ये बड़े काम आने वाले हैं आपके. सबसे पहले आपको एक बोल लेना है, एक प्लेट लेनी है जिसमें क्लीन वाटर भर देना है, एकदम क्लीन वाटर. फिर उसके ऊपर स्प्रिंकल करना है ब्लैक पेपर को, यानी काले नमक को इवनली गिरा दीजिएगा सरफेस पे पानी के, और उसके बाद नोटिस करवाइएगा, देखो भाई कैसे फ्लोट हो रहा है, और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दीजिएगा उसे. और उसके बाद लिक्विड सोप लीजिएगा, उसमें अपनी उंगली डुबा के उस उंगली से इस पानी को टच कीजिएगा. जैसे ही आप सेंटर ऑफ वाटर पर टच करेंगे अपनी सोपी फिंगर से, सारे के सारे ब्लैक पेपर के कणों को, हिस्सों को, हिस्से भी नहीं कहूंगा, ब्लैक पेपर को, पार्टिकल्स को बेसिकली, आप क्विकली एक दूसरे से जुदा होते हुए नजर देख पाएंगे, नजर आएंगे आपको. और ये सिंपल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करता है पावर ऑफ सरफेस टेंशन और किस तरीके से एक सिंपल चीज लाइक लिक्विड सोप उसको ब्रेक कर सकता है. तो आज के एक्सपेरिमेंट में आपने सीखा कि वाटर अपने आप में एक ताकत रखता है खुद को होल्ड करने की, लेकिन एक सिंपल सा सोप उसको कैसे उसके बैलेंस को ब्रेक कर सकता है. और ऐसे बहुत सारे फन एक्सपेरिमेंट्स जो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन वाटर की सरफेस टेंशन और कहां कहां रियल लाइफ में देखने को मिलती है उसके बारे में हम कुछ देर में बात करेंगे. तो आपने जाना नहीं है, दोहा वाला कबीर आपके साथ लगातार बना हुआ है. सो स्टे ट्यून्ड जूनियर साइंटिस्ट. क्या नाम दिया, मैं भी जूनियर ही हूँ, बालक. स्टे ट्यून्ड.

वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं उदू हवाला कबीर एफएम 107 से, एंड एफएम 107 पे आप सुन रहे हैं जूनियर साइंटिस्ट। तो एक क्यूरियोसिटी जागती है कि वाटर सरफेस टेंशन एक्चुअली में क्या है। अब मैंने एक्सपेरिमेंट आपको कुछ देर पहले ऑडियो फॉर्मेट में बता दिया, तो आपने रेडियो पे ही तो जान लिया कि एक्सपेरिमेंट बच्चों को कैसे दिखाना है। आपने सिंपल एक पानी पे ब्लैक पेपर छिड़क के आपने दिखाना है कि किस तरीके से वाटर की एक प्रॉपर्टी है, वो उसके अपने खुद के मॉलिक्यूल्स को इतना टाइटली एक दूसरे को पकड़ के रखता है कि उसके ऊपर लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ब्लैक पेपर फ्लोट करता है। मगर जैसे ही आपने लिक्विड सोप से जरा सा उसे छू दिया, तो ये छुई हुई हो जाता है और वो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है, एंड इट कम्प्लीटली ब्रेक्स, तो बैलेंस बिगड़ जाता है। मगर ये असल जिंदगी में एग्जाम्पल कैसे देंगे आप? बहुत सारे एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल है वाटर पे, पानी पे। आपने देखा होगा किस तरीके से कुछ कीड़े मकोड़े आराम से तैर रहे होते हैं मौज में।

0: कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स आप देखते हैं पानी पर आराम से, लेक पे, पॉन्ड्स में, सरफेस लेवल पे एकदम आराम से चल फिर रहे होते हैं, मून वॉक कर रहे होते हैं, क्योंकि वाटर लेवल के जो वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो उन्हें मदद करता है, और वो मॉलिक्यूल्स पानी को उनको सरफेस पे एकदम इलास्टिक की तरह बना देते हैं, इलास्टिक शीट की तरह, एंड दैट्स व्हाई इट इज इजीयर फॉर देम टू डू इट। अब अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट करें एक नीडल या फिर एक पेपर क्लिप के साथ, तो हालांकि मेटल जो होता है वो डेंसर होता है पानी से, लेकिन अगर बहुत ही केयरफुली आप प्लेस करें नीडल या फिर पेपर क्लिप को, तो आप देखेंगे कि ये भी फ्लोट करते हैं सपोर्टिंग इट्स वेट, बिकॉज सरफेस टेंशन उसकी वेट को सपोर्ट करती है। अगर ढंग से किया जाए वाटर ड्रॉपलेट्स का सबसे कमाल का एग्जांपल, इससे बढ़िया एग्जांपल हो नहीं सकता। वाटर ड्रॉपलेट्स जो लीव्स पे आप देखते हैं या फिर अलग सर्विसेज पे, रेन वाटर जो होता है वो फॉर्म करता है राउंड वाटर ड्रॉपलेट्स। देखा ना, पानी गिरता है शबनम, तो जब किसी पत्ते पे गिरता है तो एक मोटी सी एक लेयर बन जाती है, मोटी ड्रॉपलेट होती है, तो वो फैलती नहीं है, है ना, वो बूंद बन जाती है, उस पर रहती है देर तक। ये सरफेस टेंशन है, पानी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को जकड़ के रखते हैं, जिस वजह से ये शेप आपके सामने आता है जिसे हम बूंद कह देते हैं। ये एक अलग एग्जांपल है, लेकिन जो जैसे सोप है वो इसको भी ब्रेक कर सकता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देता है, इसलिए फ्लोटिंग पेपर सिंक कर जाता है और पानी जो है काफ़ी ईजिली जो डिशेज हैं मोर इजिली डिश वॉशिंग में काम आ सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी रुकता नहीं है, फिर मॉलिक्यूल्स के ब्रेक हो जाते हैं, उसमें सोप मिला होता है। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही एग्जांपल मेरे जहन में आता है बबल्स हैं, बबल्स कैसे फॉर्म होते हैं, पानी की मर्जी आया मर्जी बोल वो बोले भाई मेरे को फैलना है, तो आपके बबल्स बना पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन सोप बबल एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज सरफेस टेंशन जो है होल्ड करती है उस थिन लेयर को पानी की एक साथ, और इसलिए आपको वो स्फेरिकल शेप आपके नजरों के सामने होता है। तो सरफेस टेंशन वो फोर्स है जो विच रियली मेक्स द सरफेस ऑफ वाटर एक्ट लाइक अ स्ट्रेच स्किन। अंग्रेजी में ये हो गया, उर्दू बताऊं तो एक रबर की शीट बना देती है सरफेस टेंशन को पानी के, जिस वजह से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनता है पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आपके सामने एक्सपेरिमेंट ये नजरों के सामने आता है और बच्चों को सिखाने के लिए काफी काफी वायरल। मगर एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह हम आपको वीडियो फॉर्मेट पे भी करके दिखाएंगे और आप घरों में भी दिखाएं, क्योंकि यू नेवर नो, आपके घर से कोई साइंटिस्ट बनने के लिए तैयार बैठा है, बस उसे वो एक ट्रिगर पॉइंट की जरूरत है जो आप उसे दे सकें। साइंस इज रियली रियली फन, और वो फन तभी आएगा जब आप एज अ पेरेंट, एज समवन हु इज टेकिंग केयर ऑफ देम, आप उतना ही इंटरेस्ट लेंगे, तो ही आप इंटरेस्ट से उन्हें बता पाएंगे। तो आपका इंटरेस्ट लेना जरूरी है, और जूनियर जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपने सुना है मुझे तो प्लीज प्लीज एक्सपेरिमेंट करके जरूर बताना। कबीर अंकल नहीं, अंकल नहीं भाई, चले कबीर भाई को बता देना। सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। एंड प्लीज अगर एक्सपेरिमेंट घर पे करें तो जरूर जरूर बताएं, और ऐसा ही साइंस का कोई बहुत ही नॉर्मल टॉपिक हो जो आसान है समझाना तो जरूर बताइए। आई वुड लव टू गो इन डिटेल, और फिर आपको बताने में मुझे उतना ही मजा आएगा। मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा तो आपको इंटरेस्ट से कैसे बताऊंगा, इसलिए मैं भी इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा और आप भी थोड़ा सा इस बारे में पढ़ाई करें, और ये पढ़ाई हैवी नहीं है, बोझ नहीं बनाना है, एंटरटेनमेंट की तरह समझना है, असल जिंदगी के असल एग्जांपल्स से जोड़ना है साइंस को। वो कैसे जोड़ेंगे, इज द क्यूरियोसिटी ट्रिगर, वो ढूंढिए। बट सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ फ्रॉम जूनियर साइंटिस्ट। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है।
1: जूनियर साइंटिस्ट सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 Qatar, दिल से देसी।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। दोस्तों टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 1:30।
3: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर,
4: एनर्जी आर
3: आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर। दिल से देसी,
2: दोस्तों सलाम आदाब, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अपना आपका जो दिन है आज का काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी पॉजिटिव और अच्छी वाइब के साथ गुजर रहा होगा। वाइफ के साथ भी और वाइब के साथ भी। देखिए चाहे आप ऑफिस से घर आने की तैयारी करें, आई मीन टू से लंच की तैयारी करें, या फिर आप ऑफिस में ही लंच प्लान कर रहे हैं, या अभी भी आप स्टक हैं अपने काम में, या ड्राइव कर रहे हैं, या फिर आप ट्रैफिक में फंसे हैं, बस याद रखिए अगला एक घंटा पूरा मैं आपके साथ रहने वाली हूँ। और आज मैंने क्या किया है, ये जो रिमोट कंट्रोल है या ये कहें ये जो कंसोल है, आज पूरी तरह से मेरे हाथ में। अब आप पूछेंगे मेरे हाथ में तो इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि आज मैं सर्वर भाई को एकदम पॉज वाले बटन पर रखने वाली हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं जो हूँ ना इनको ऐसे ही पॉज करके रखूँगी जिससे कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टैचू रहेंगे और कुछ थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊँगी कि आज इनको स्टैचू रखना क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया था। वेल और भी बहुत सारी बातें हैं, मौसम की बात होगी, आज का जो मेरा टॉपिक है उस पर भी बात होगी, एंड यस ऑफ कोर्स आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर है 666-22107, या फिर अगर आप सोच ही रहे कि चलो डायरेक्टली मैं कॉल ही कर लूँ, फ्री हूँ या लंच के दौरान थोड़ा सा मेरे पास टाइम है, तब हमारा नंबर लिख लीजिए। कॉल करने के लिए नंबर है 4434377। इस नंबर पर आपको मेरा साथ देना है, आपको जुड़ना है। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपका साथ जो है फौरन से हमारे साथ जो है कुछ लोग जुड़ भी गए। यहाँ पर सलाम कहा है और एक भाई ने अपना नाम नहीं लिखा बट पूछा ये है कि सर्वर भाई क्यों क्या हुआ मैडम। देखिए कितना बोलते हैं ना सर्वर भाई, इतना बोलते हैं, इतना अनोइंग हो चुके हैं कि मुझे लगा कि आज मैंने चुपचाप बैठा लूँ, एकदम चुपचाप, ऐसे जैसे कि बस एक अच्छा सा बच्चा होता है ना क्लास में, उसे एकदम कह दिया जाए कि हेड डाउन करके बैठ जाओ, बस ये उसी वाली कैटेगरी में आ चुके हैं आज। तो चलिए अगर मैं बताऊँगी आपको, लेकिन उसके पहले मेरे साथ यहाँ पर एक कॉलर कनेक्ट हो रहे हैं, चलिए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो गुड आफ्टरनून।
5: हेलो मैडम गुड आफ्टरनून, दिस इज मोहम्मद अली खान फ्रॉम पाकिस्तान।
2: हाय सर कैसे हैं आप?
5: आप कैसी हैं मैडम? ठीक है,
2: आज तो मैं बहुत ही अच्छी हूँ, खुश हूँ, पूछिए क्यों।
5: अल्लाह आपको ऐसा ही अच्छा रखे हमारे साथ।
2: आपको भी अल्लाह ताला हमेशा हंसता मुस्कुराता खुश रखे। आज मैं इसलिए भी एक्स्ट्रा खुश हूँ,
5: मैं तलाबाद राइडर की जॉब करता हूँ।
2: अच्छा अच्छा, चलिए आज का जो मेरा सवाल है वो मैं आपसे ही पूछूं।
5: जी पूछिए।
2: अच्छा, अगर आपको ठीक ठाक अच्छी रकम आज के लिए मिल जाए और आज ही आपको स्पेंड करनी है, तो आप क्या खरीदना चाहेंगे? लग्जरी गाड़ी खरीदेंगे, घर खरीदेंगे या कुछ और क्यों?
5: अगर इतने टाइम में तो मैं सोचूंगा कि ये पैसे आए कहाँ से।
2: नहीं सोच ही नहीं, मतलब आपको मिल ही गए हैं और आज के आज ही आपको स्पेंड भी करने, खर्च भी आज ही करने, अब आप क्या करेंगे उसका, क्या चीज खरीदेंगे?
5: बहुत मुश्किल सा सवाल है। अच्छा? तो फिर बंदा उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी चीज खरीदूं।
2: अरे मुझे लगा ये तो आसान है, आपकी जो ख्वाहिश है ना, यू नो जो आपने हमेशा से प्लान किया है मैं ये लूंगा ये करूंगा, हो सकता है बहुत सारी ख्वाहिश हो, बहुत सारी चीजें हो, खट खट मुंह से निकलना शुरू हो जाए। अच्छा कोई ऐसी गाड़ी या लग्जरी जो आपने सोच रखी है कि कभी मेरे पास थोड़े पैसे जुड़ जाएंगे, बन जाएंगे? आए हाय क्या बात है जी, तो बस यही सोचिए कि आज
5: बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ
2: इंशाल्लाह। देखो हम लोग सोचने में भी घबरा जाते हैं, इतना पैसा आएगा तो हम क्या करें, घबरा रहे हैं।
5: सोचना तो देखें, कहते हैं ना कि आप अल्लाह से मांगो तो अपनी हैसियत नहीं, अल्लाह की जो है तो नेमतों से मांगो।
2: हाँ,
5: क्योंकि अल्लाह जो है तो अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आती आपको देने में।
2: बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सही बात है। तो बाकी
5: अच्छा मैडम मैं बात आपसे करना शेयर करना चाहता हूँ।
2: हाँ जी करिए।
5: असल में वो एक फिल्म है अमिताभ बच्चन साहब की शराबी,
2: ओके
5: okay. उसमें एक डायलॉग है उसका कि मुंशी जी सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है। तो हमारा तो मुंशी नहीं है, लेकिन जब नींद पूरी नहीं होती तो खुद के साथ ही कहते हैं कि मुंशी जी कब इतनी जल्दी क्यों हो जाती
2: है। ये मेरा सवाल मुझे लगता है हर किसी ने कहा होगा अपने आप से कि भाई इतनी जल्दी सुबह क्यों हो जाती है। पता है उसकी वजह क्या है कि हमारी रात बड़ी देर में होती है। काश कि हमारी रात जल्दी होने लगे ना, तो फिर हमें ये सवाल सुबह सुबह नहीं करना पड़ेगा, है ना।
5: यही बात है,
2: कोशिश कीजिएगा कि कभी आपकी रात जल्दी हो जाए, थोड़ा सा जल्दी टाइम लेकर जल्दी टाइमली सो पाए।
5: मैडम कल मैं 9 बजे का जो है तो अपने बिस्तर पे चढ़ गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अब मैं क्या करूं, और सुबह आंख नहीं खुल रही थी, फिर मैं क्या करूं।
2: देखिए किसी भी आदत को बनने में ना 21 दिन लगते हैं टोटल, तो कोशिश करते रहिए 20-21 दिन तक। हो सकता है आप परेशान रहे, लेकिन आई एम श्योर 23rd day 22nd day ये आदत आपकी एकदम से सेट हो जाएगी, जो आपके लिए भी बहुत जरूरी है।
5: मेरा एक दोस्त है, वो रोजाना मुझे सुबह नमाज के लिए उठाता है, कहता है और नमाज के लिए।
2: ओ माशाल्लाह,
5: तो वो भी रूटीन बनी हुई है, वो नया नया आया है तबलीग से।
2: माशाल्लाह,
5: तो उसने हम पे रखी हुई है जो है, तो तलवार गर्दन पे, कहते उठो नमाज के लिए।
2: मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छा है, और इसी बहाने आप सबकी आदत पड़ जाए तो।
5: इसकी वजह से जो है तो हम नमाज पढ़ने के लिए भी जो है तो प्रॉपर हम कहते हैं कि सुबह की पढ़ी तो फिर और भी पढ़नी है।
2: माशाल्लाह, नाइस, बहुत ही जबरदस्त। चलिए उस दोस्त को भी सल्यूट है, और आपको भी है, और दुआएं भी आपके साथ है। इंशाल्लाह आपका अच्छा रूटीन सेट होगा, और मुझे बताइएगा भी, है ना।
5: चले इंशाल्लाह मैडम, अपना ख्याल रखिए,
2: आप भी अपना। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, यहाँ पर प्यारी प्यारी बात। वैसे तो सर्वर भाई ने एक सवाल जो छोड़ा था वो ये था कि भाई लग्जरी गाड़ी या लग्जरी होम आप क्या पसंद करेंगे। तो सर्वर भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैंने कहा चलो, मतलब आप सुन ही रहे हैं तो ऐसे ही पूछ लेते हैं। चलिए इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तो फिलहाल एक और कॉलर मेरे साथ है यहाँ पर। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है मेरे साथ?
1: मैं शफीक बोल रहा हूँ मैडम जी।
2: शफीक जी, कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी आफ्टरनून?
1: आफ्टरनून मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बच्चों को स्कूल ले जा रहा हूँ, इवनिंग शिफ्ट है उनकी।
2: अच्छा अच्छा,
1: तो बच्चे भी मेरे साथ हैं और वो सुन रहे हैं।
2: नाइस नाइस नाइस, चलिए जबरदस्त। वालेकुम अस्सलाम, हाउ यू डूइंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो खुशी खुशी आजकल के टाइम में ना, तो बच्चे बड़े खुशी खुशी एक्साइटेड होके स्कूल जाते हैं ना।
1: जी जी, पर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक्साइटेड होते हैं वो।
2: हाँ,
1: पर ये जो मौसम है ना, इससे थोड़ा सा वो चिड़चिड़ हो जाती है, गुस्सा।
2: हाँ ये तो है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौसम आना स्टार्ट हो गया। मौसम देखिए चेंज हो रहा है, तबीयतें लोगों की खराब हो रही है, दिस इज अ सिंबल एंड साइन कि हाँ अब हम विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो इंशाल्लाह बस कुछ ही दिन और इंशाल्लाह बेहतर मौसम इंशाल्लाह। तो शफीक जी, आज मुझे हाँ जी
1: सॉरी
2: नहीं प्लीज बताइए। अरे नाइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल लगाया, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। आज हम पूछ ये रहे हैं कि अगर आपको ठीक ठाक रकम मिल जाती है, सोचिए आज ही आपको स्पेंड करनी है, तो आप क्या खरीदना चाहेंगे?
1: ठीक ठाक मतलब बड़ी रकम?
2: हाँ ठीक ठाक, बड़ी वाली, अच्छी ठीक ठाक। तो क्या आप लग्जरी गाड़ी अपने लिए खरीदेंगे, या फिर एक आपको लग्जरी होम की जरूरत है, या फिर कुछ और?
1: नहीं, मुझे फिलहाल जरूरत चल रहा है।
2: नाइस,
1: तो मैं तो खर्च कर दूंगा, मतलब अल्लाह के राह में सदका कर दूंगा।
2: ओ माशाल्लाह, ये तो हमने चॉइस रखी भी नहीं थी और हमें लग भी नहीं रहा था कि बहुत बड़ा दिल है आपका कि आप इतनी बड़ी रकम को जो है पूरा डोनेट कर देंगे, जो कि बहुत ही रेयर मुझे सुनने में आया है, और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लोग जो है ना सबसे पहले अपनी उनकी इतनी ख्वाहिशें, इतनी लंबी लिस्ट होती है कि वो वही सोचते रहते कि इनको हम कैसे पूरा करेंगे।
1: नहीं तो फिर मैं पूरा तो नहीं करूँ, 50% कर दूंगा, 50% थोड़ा अपने लिए, घर बच्चों के लिए, घर वालों के लिए।
2: चलिए ये भी बहुत, ये भी काफ़ी हद तक बड़ी बात है कि 50% भी डोनेट कर दिया और उतना रख लिया, बड़ी बात है। तो लग्जरी गाड़ियों का आपको शौक है, या फिर आप चाहते हैं कि मेरे पास एक लग्जरी होम हो, घर हो?
1: हाँ लग्जरी घर हो ये अच्छा है, गाड़ी तो इट्स ओके, पर मेरे लिए घर लग्जरी घर हो,
2: लग्जरी होम
1: हो। मतलब बहुत जितना बड़ा घर होता है उतना घर वालों को काम करने में मुश्किल, काम करने।
2: हाँ ये तो ख्वाहिश सबकी है कि लग्जरी क्यों

0: होम हो जहाँ पे सब कुछ ऑटोमेटिकली ज़्यादातर काम हो जाए, तो मतलब किसी पे कोई बर्डन नहीं, एक अच्छा वाला क्वालिटी टाइम. आई डोंट नो इसे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट या ऐसा हाइपोथेटिकली हम सोच तो रहे हैं कि ऐसा घर हो जहाँ पे सारे काम हो जाए, कोई टेंशन नहीं, कोई चिक चिक नहीं, अच्छा टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड कर पाए. वी जस्ट होप, जस्ट होप. बट थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू फॉर योर कॉल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. हैव अ ग्रेट डे.
1: डॉटर एक क्वेश्चन कर देना चाहती है
0: जी,
1: पूछ रही है कि आपको इतना बड़ा अमाउंट मिल जाए आप क्या करेंगे.
0: मुझे इतना बड़ा अमाउंट मिल जाए, टू बी ऑनेस्ट, मैं लग्जरी होम ही लूंगी. हाँ, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ऐसा घर हो जो अच्छा, और वो भी यहाँ पे हो. यहाँ नहीं है मेरा घर कोई भी ऐसा अपना घर नहीं है, तो मुझे अगर मिलता है तो वाई नॉट. गाड़ियों का मुझे इतना शौक नहीं है, तो घर में थोड़ा ज्यादा शायद.
1: तो घर पे तो पहल में जाएंगे आप, क्योंकि पहल ही एक अच्छी जगह है.
0: नहीं, आजकल रसेल में बहुत अच्छे अच्छे घर हैं, वहाँ भी जा सकते हैं. इवन बुकेर में बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ भी आप बाय कर सकते हैं. सो या, बाय नॉट. एंड ऑफ कोर्स पर्ल में भी बहुत खूबसूरत है. सो या, अगर मुझे मिले तो, अब तो देखिए वो भी उसमें भी सर्वर भाई ने दांत गड़ाए हुए हैं, कहीं से कुछ भी पैसा मिल जाए तो. आज मैंने सर्वर भाई को एकदम ऐसे चुप करके बैठा रखा, मैंने अगर आज आप बोले तो सही नहीं होगा. सही किया मैंने.
1: पर आप लोग की तो, आप लोग दोनों की तो केमिस्ट्री है ना, वो खतरनाक है. मतलब कंफर्टेबल है, मतलब आप दोनों रहेंगे तो आप मतलब तो क्या मेरे लाइफ में किसी की भी शेयर ले सकते हैं, पता भी नहीं चलता मुझे.
0: अरे सर्वर भाई ने ना मेरे एकदम दिमाग में से कंफ्यूजन कर रखा है, इतना बोलते इतना बोलते हैं. आज मैंने कहा मैंने बोलने ही नहीं दूंगा, ऐसे चुप बैठा लूंगा कि देखो. सही किया ना, सही किया ना
1: जी, आपने सही किया. कल वसूल कर,
0: कल. हाँ, ये देखिएगा, कल देखिएगा, तीन चार गुना करेंगे बातचीत और मुझे कहीं ना पॉज पे डाल दें. तो चलिए खैर, आज जो है दिन इसे तो मैं एंजॉय कर लूँ, बाकी कल की कल देखी जाएगी. थैंक यू जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का. अपना ख्याल रखिए, हैव अ फैंटास्टिक इवनिंग, आफ्टरनून, जो भी बचा है. एंड लॉट्स ऑफ लव टू द किड्स, थैंक यू वंस अगेन. ओके जी, अल्लाह हाफिज़. Alright, तो सर्वर भाई कैसा सवाल आप पूछ के गए. वैसे सर्वर भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, सवाल होना चाहिए लग्जरी गाड़ी या लग्जरी घर. मैंने कहा चलो पैसे मिल गए तो अगर इन दोनों में से कुछ आप लेना चाहें तो आप क्या लेंगे, किस तरह से उस पैसे को स्पेंड करना चाहेंगे, ये भी मैंने कहा एंगल डाल देते हैं. तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं. हेलो,
2: हाय.
0: हाय, वेरी गुड आफ्टरनून.
2: हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, आई एम ग्रेट. हाउ आर यू डूइंग?
2: I'm fine.
0: What's your name?
2: Oh, my name is Hania.
0: Hania, Hania. So, Hania, आप मुझे बताएंगे अगर आज आपको ठीक ठाक रुपए मिल जाते हैं, let's say लॉटरी लग जाती है, तो आप कहाँ स्पेंड करना चाहेंगे, और आज के आज ही आपको स्पेंड करना है, तो क्या चीज है या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने सोच रखी हैं कि आप बाय करेंगे?
2: Firstly, I would like to donate some money in the way of Allah. And secondly, I would spend some on myself.
0: Nice.
2: And thirdly, I would give some to my family and my siblings.
0: Wow, such a nice thing. You donate to some needy people. ये आपने खुद सोचा, or somebody has taught you that way or asked कैसे बोलो जाके? You're saying it on your own.
2: We learned to share and care in school, so that's why.
0: Wow, that's nice, very nice. Hania, बहुत ही अच्छी सोच आपकी. और मुझे क्या, मैं जान सकती हूँ आप कितने साल की हैं?
2: I'm actually 11.
0: Oh, nice. इतनी young होके इतनी अच्छी सोच. We are really proud of you. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और साथ में ये जान के कि आपने सारे का सारा पैसा अपने लिए नहीं रखने की सोची. आपने पहले कहा मैं डोनेट करूंगी, देन फॉर योर सेल्फ, देन फॉर योर सिबलिंग्स, योर पेरेंट्स एंड एवरीवन. वेरी नाइस, ब्यूटिफुल आंसर, बहुत ही अच्छा जवाब. थैंक यू सो वेरी मच हानिया, थैंक यू फॉर योर कॉल.
2: ओके, थैंक यू, यू आर वेलकम,
0: बाय. आज मैंने देखा कि लोग जो हैं वो मेरी तरह सेल्फिश नहीं है. सरवर भाई आपकी तरह तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो मेरी और अपनी सबकी रकम हड़पने पे बैठे हैं. लेकिन अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहे कि मुझे ही रख लेना है सारे के सारे पैसे, उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो है डोनेट भी करेंगे. दैट्स नाइस. एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून. हाय,
3: क्या हाल है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?

0: आज मैंने सर्वर में भगाया नहीं, चुप कराया हुआ एकदम.
1: ये तो नहीं हो सकता.
0: ये नहीं हो सकता क्यों? आज आज रिमोट मेरे हाथ में, मैंने पॉज बटन ऐसे दबा रखा है एकदम पॉज पे.
1: नहीं बैठे नहीं है वो यहाँ पे.
0: तो कहाँ बैठे फिर बताइए मुझे. मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सर्वर भाई यहाँ पर बैठेंगे तो वो बिना बोले रह ही नहीं सकते. और अगर अगर मैं वाकई उनके मुंह पे ऐसे टेप लगा दूं तो तब भी बोलेंगे. अरे पता है मैं उनको अगर खाना पीना देती रहूं देती रहूं, उसी में बिजी रखूं तो तब तो चुप रहेंगे ना.
1: नहीं वो खाना पीना में भी बोलेंगे.
0: अच्छा उसमें
1: ये हड्डी आ गई, ये नमक कम है, ये मिर्च ज्यादा है.
0: आप तो बहुत अच्छे से पहचान गए भाई सर्वर भाई को. ये तो कमाल की बात है.
1: ये बात
0: हाँ नहीं, आज ना सर्वर भाई जो है किसी काम की वजह से नहीं आ सके. और मुझे इतनी खुशी हुई जैसे उन्होंने कहा आज मेरा आना. मुझे उन्होंने ठीक ठीक ठीक वाह वाह वाह बिल्कुल सही बहुत सही, आप आराम से पूरा काम करके देर से आइएगा. मैंने गुंजाइश नहीं रखी कि वो थोड़ा भी कहे कि मैं बीच में शो में आ जाऊँ. मैं नहीं, आप आराम से 3 बजे तक आइए सुकून से सारा काम करके. तो आप बताइए आपकी आफ्टरनून कैसी जा रही है, लंच वगैरह कर लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा वही सवाल है जो मैं सबसे पूछ रही हूँ, अगर आज आपकी लॉटरी लग गई है और आपको सारे पैसे आज के आज ही स्पेंड करने हैं तो आप क्या करेंगे, क्या खरीदेंगे?
1: बिल्कुल बात वही है जो आनिया ने अपनी कही, पहले तो जो एनर्जी प्रोडक्ट किए गए, फिर अपना काम, और फिर जो एनर्जी अपनी फैमिली के ऊपर.
0: सच्ची माशाल्लाह इतने सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर ज्यादा पैसा है तो सबसे पहले ही डोनेट करेंगे. सरोज भाई आप सुन रहे हैं, शर्म खाइए, बिरयानी रख दीजिए साइड में, शर्म खाइए. तो बताइए खा पी रहे, मैं उनसे कहना चाह रही हूँ थोड़ा शर्म करो भाई. मैंने उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा तो कह रहे मैं अपना पैसा तो रखूंगा ही रहूंगा, जो आपकी लॉटरी लगी वो भी मैं ही रखूंगा. हाँ उनको तो कम ही लगता है, चाहे जितना भी आप दे दो ना, कहते कम ही है, तो उनके हिसाब से तो वाकई कम है. बट चलिए मुझे ये जान के बहुत खुशी है कि हमारे पास कम लोग नहीं, बहुत ज्यादा लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, जो दूसरों का ख्याल पहले रख रहे हैं. दैट्स रियली नाइस ऑन अ सीरियस नोट.
1: अल्लाह और अल्लाह के रसूल का भी यही फरमान है, जो चीज अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों के लिए पसंद करो.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात, जबरदस्त बात, और मुझे जान के खुशी हुई. खैर मुझे उम्मीद थी कि मेरे लिसनर्स जितने भी हैं वो इतने ही जेनरस हैं, लेकिन अभी आप सब ने कह के इस बात पे एक पक्की मुहर भी लगा दी. सो नाइस एंड ग्लैड. काम आने वाली चीज है. अच्छा कोई भी ऐसा नहीं जो कह रहा है कि अगर मुझे ठीक ठाक रकम मिल जाए तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं या कुछ ऐसा कर लूं? नहीं
1: ये तो चलता रहेगा.
0: सही ये सब चीजें चलती रहेंगी. बट आपने कहा कि पहले अल्लाह की राह में कुछ पैसा कुछ रकम जो है वो निकाल देनी चाहिए, फिर आपके काम में अल्लाह ताला वैसे ही बरकत डाल देते हैं, कम रकम में भी आपका काम हो जाता है.
1: हमारे अबू जी कहते थे
0: जी,
1: पहले अल्लाह के नाम का बाकी फिर दूसरे काम का.
0: बहुत अच्छी बात, सही जबरदस्त. चलिए जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. अपना ख्याल रखिए. ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट. और कोई लगातार जो है वो मुझे कॉल कर रहा है 666-22-107 पर, तो हम आपको बता दें कि दोस्तों 666-22-107 पर हम सिर्फ और सिर्फ आपके जो हैं वो मैसेजेस ले सकते हैं. अगर आप वहीं बात करना चाहते हैं हमसे तो हमारा नंबर है 443-443-77. इस नंबर पे आपकी कॉल रिसीव होगी, आप ऑन एयर सुनाई दिए जाएंगे और हमें भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगेगा. अच्छा यहाँ पर कुछ मैसेजेस भी हैं और कुछ कॉल्स भी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं तो कुछ और बातें, मौसम का हालचाल, इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे. स्टे हुक्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: दोस्तों एक बार वापस आप सभी को कहूंगी वेलकम, खुशामदीद, अ वेरी गुड आफ्टरनून। आप सुन रहे हैं शो एनर्जी आर, मैं हूं नासिया आपके साथ और मुझे आज तो बहुत ही खुशी हो रही है। यहाँ पर कंसोल पे और इस स्टूडियो में आराम से सुकून से कोई बैठा है वो हूँ मैं। और यहाँ पे आप लोगों के बहुत ही अच्छे अच्छे वाले प्यारे प्यारे मैसेजेस आ चुके हैं। तौफीक जी हमारे साथ जुड़े हैं, सलाम हम दोनों को कहते हैं अल वकरा से। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? इसके साथ है यहाँ पर मुबीन बगदादी जी का मैसेज, कहते हैं सलाम एंड सरवर जी, नाजिया जी, आप दोनों को वेरी गुड आफ्टरनून। बहुत ही प्यारी बात है कि आज आप लोग सलाम भेजते रहिए लेकिन सारे के सारे सलाम मुझ तक ही पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पर एक और मैसेज है अहमद जी का और कहते हैं मैं तो लग्जरी हूँ। चलिए ये भी एक अच्छा जवाब आपका। एक कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कौन है मेरे साथ? अहमद जी कैसे हैं आप और कैसी जा रही है आपकी आफ्टरनून? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि आइडियली मेरी तबीयत खराब थी और भाई साहब निकल लिए। मैं कह रही हूँ कि कल से एक दो दिन से मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन थी लेकिन सर्वर भाई को मौका मिलना चाहिए दावत उड़ाने के लिए, इधर उधर निकल गए।
3: आज गायब है सर्वर भाई, पता नहीं किधर गया।
2: कह रहे तो मेरी इतनी दावतें पेंडिंग हो गई है ना, मैं आज पूरी कर लूंगा अपनी सारी। वसूल करने गए दावत, वसूली पे आज।
3: आज इसलिए नंबर ही नहीं आ रहा, ना आवाज है, खामोशी लगी हुई है।
2: अच्छा है ना, देखिए आज थोड़ा सुकून है। सर्वर भाई आते थे शोर शराबा लेकर आते हैं कि बस पूछिए मत, तो बस आज मैं हल्का फुल्का ये कह सकते हैं कि सुकून सा है, ये तो मानिए आप।
3: आज तो सुकून लग रहा है ना, इसलिए तो पूछ रहा था, मैंने कहा गायब है।
2: तो क्यों आपको सुकून नहीं अच्छा लग रहा?
3: नहीं नहीं अच्छा तो लग रहा है, वैसे पूछ रहा था मैंने कहा आज सुकून लगा हुआ है, आपकी
2: खामोशी है, आज सुकून है। वही मैंने बताया ना सर्वर भाई आज जो है वसूली पे निकले, कह रहे थे मैं वसूल कर लूँ सारी दावतें, अब सारी तो मुझे लंच में मिलती हैं, अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। मैंने कहा भाई चले जाइए आप, और क्या हो सकता है। जैसे ही गए मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है, चले गए।
3: नहीं नहीं तो, वापस तो आ जाएगा ना,
2: अब जितनी जल्दी वो फिनिश कर लेंगे अपना लंच बस वैसे ही आ जाएंगे। अब कोशिश मैंने ये कहा जो है आराम से खा के आइएगा 3-3 बजे तक आराम से। सही कहा ना मैंने, देखो क्यों जल्दबाजी में खाएं फिर पता नहीं डाइजेस्ट हो सही से ना हो, तो मैंने कहा आराम से खा के आइए, कोई टेंशन थोड़ी है। यही ना, आराम से फ्रेश होकर आइए।

0: अच्छा आज मैं पूछ भी ये रही हूँ, अगर आपके पास ठीक ठाक बजट हो तो आप उन पैसों का क्या करना चाहेंगे?
1: मैं उन पैसों का हर चीज खरीदना चाहता हूँ, प्यार मोहब्बत दौलत हर चीज मिलते खरीद लूंगा।
0: एक बात बताइए, प्यार मोहब्बत भी मिल जाती है पैसों से?
1: दौलत शोहरत इज्जत हर चीज मिलता है ना आजकल, पैसों से मिलता है ना।
0: कहने का तो बड़ा क्वेश्चन मार्क है ये टॉपिक ऐसा है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हर चीज़ आप पैसे से ख़रीद सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं अपने आराम के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा सुकून है या मोहब्बत है या फिर इज्जत है, तो ये ज़रूरी नहीं आप पैसे से ले पाएँ या ले लेंगे।
1: हर चीज़ पैसों, आज के दौर में हर चीज़ पैसों से मिलता है, प्यार मोहब्बत इज्जत दौलत हर चीज़। जिसके पास पैसा नहीं होगा सलाम नहीं करेंगे।
0: ये तो है, ये हार्श रियलिटी भी है हमारे माशरे की, दैट्स ट्रू, कि शायद हम इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो दे रहे हैं वो पैसों को दे रहे हैं और चीज़ें थोड़े से पीछे हो रही
1: हैं। हाँ सच कह रहे हैं, उसको सलाम ही नहीं करते, सलाम ही नहीं करते उसको, जिसके पास पैसा होगा उसके आगे पीछे घूमेंगे।
0: ये बात तो सच है काफ़ी हद तक। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को ही इस माशरे को थोड़ा सा सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? क्या हम कुछ कर सकते हैं?
1: कर सकते हैं
0: है ना? क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए?
1: हर चीज कर सकते हैं।
0: मतलब झूठी शान शौकत वाले को मैं ये पूछ रही हूँ, झूठी शान शौकत वाला नहीं, मान लेते उस पे पैसा तो बहुत कुछ है लेकिन उसका नेचर एकदम भी अच्छा नहीं, फिर भी आप उसको प्यार इज्जत करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा बहुत है, इसलिए करने को तैयार है?
1: यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, जिसके पास पैसा है ना ज्यादा उसको लोग सलाम भी करते हैं, उससे पूछते भी हैं, हर चीज पूछते हैं उससे, आज आपने खाना खाया है, पानी पिया है, कहाँ जा रहे हैं, मैं चलूँ आपके साथ, ये करूँ वो करूँ। जिसके पास पैसा नहीं होगा ना वो देखेंगे वो आ रहा है, उसके पास पैसा नहीं है तो एक बार यू टर्न लगा के वापस चले जाएंगे।
0: ये बात तो सच्चाई कही आपने, ये है तो सच्चाई,
1: हकीकत
0: सही सही। तो इसीलिए आप कहते हैं अगर आपको पैसा मिलेगा तो आप वो सारी लग्जरी खरीदेंगे जो आपने सोचा है अपने।
1: हर चीज खरीदूंगा, हर चीज, प्यार इज्जत दौलत।
0: अच्छा सबसे पहले अपने लिए अच्छा घर खरीदेंगे या अच्छी बड़ी गाड़ी खरीदेंगे?
1: अच्छा घर खरीदूंगा,
0: हर चीज खरीदेंगे। चलिए आपने बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाई दिया, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ सल्यूट कि आपने सोचा कि हाँ मैंने जो चीज़ों से मैं डिप्राइव्ड हूँ मैं पहले अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट करूँगा लूँगा और फिर बाद में सोचूंगा कुछ और। That's nice. That's a very honest answer. Thank you, जी. बहुत शुक्रिया आप कितने honest reply का. बहुत शुक्रिया.
1: सरवर भाई को सलाम देना, सरवर भाई को सलाम देना.
0: अरे वो बिरयानी खा रहे हैं. अभी कुछ नहीं लेंगे. अभी लेंगे तो कहेंगे थोड़ा रायता दे दो बस. इतना ही लेंगे इस वक्त. चलिए. इंशाल्लाह, इंशाल्लाह. Okay. Thank you once again. अलाफिज। और नहीं दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा मैंडेटरी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पर फर्दर बात होगी। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, नंबर्स हैं 666-22-107 या फिर आप कॉल कीजिए 443-443-77 पर।

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 Time Check. Time Check. दोस्तों टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक पे बज रहे हैं 2:05.
2: आप सुन रहे हैं एनर्जी आर, एनर्जी आर आरजे नाजिया और आरजे सर्वर के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी, देसी.
1: हाँ जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सा हल्का फुल्का सा टॉपिक है हमारा. हम पूछ आपसे ये रहे हैं कि आज आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं तो फिर आप उन पैसों का क्या करने वाले हैं. आज के आज ही आपको स्पेंड भी करने हैं सारे के सारे पैसे, तो आप क्या चीज़ खरीदना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे. तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो, गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम नाजिया.
1: वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से?
3: मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? ठीक ठाक कैसे?
1: जी जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ. कैसे जा रहे हैं
3: आप? लग रही है आपकी
1: आज कितना अच्छा लग रहा है ना
3: आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा.
1: मुझे भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ. सर्वर भाई जो वसूली पे निकले हुए,
3: आपको ऐसे याद ऐसे खुशी हो रही है ना कि जो आदमी बरसों से एक चीज का इंतजार करता है ना, वो उसको अचानक मिल जाए ना, वो खुशी से पागल हो जाएगा. तो मां जैसी खुश रही है, सर भाई नहीं है.
1: ये आपने सही कहा, इंसान हमारी खुशी के. मुझसे बोला सरवर भाई ने कि मैं आज वसूली पे चला जाऊँ. मैंने कहा अभी चले जाइए, इससे पहले कि सब चीजें एक्सपायर हो जाए, मेरा मतलब इन्विटेशन एक्सपायर हो जाए, आज के आज वसूल कर लीजिए. बोले मैं जल्दी आ जाऊंगा. मैंने कहा नहीं, आप आराम से खा के देर से आए, जल्दी आएंगे तबियत बिगड़ जाएगी.
3: उन्होंने
1: कहा सलाम दीजिएगा, मैंने कहा इस वक्त वो कुछ नहीं लेंगे, बिरयानी के पास बैठे हैं, सिर्फ रायता एक्स्ट्रा मांग सकते हैं, वही लेंगे, सलाम तो लेंगे. तो बस अब कल आप लोग पूछेगा, जब आ जाए तो पूछेगा कितनी वसूली की आपने. ठीक है, कल पूछेगा. अब जो भी है आज तो वही, मैंने कहा जो दिन है, जो पल है, जो खुशी के पल है, वो अच्छे से एंजॉय करो. हाँ बस आज का दिन एंजॉय कर रही हूँ मैं, बड़ी खुश हूँ. सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है भाई, इसलिए मैं एंजॉय कर रही हूँ. तो अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों से भी मैं गवाही लेती जा रही हूँ टाइम टू टाइम. सबने कहा हाँ हाँ मैडम अच्छा लग रहा है, जैसे भी दिल से कहा उनका हाँ हाँ अच्छा तो लग ही रहा है.
3: अच्छा नहीं, सब तो नहीं बोल रहे, नहीं हम मिस कर रहे सर आपको.
1: अरे क्यों बोल रहे हैं?
3: नहीं बनती है ना, आप दोनों का नहीं बनती है ना, हमारा तो बनती है ना.
1: अरे तो आपको बुरा नहीं लग रहा कि मेरी नहीं बनती? तो फिर आज अच्छा लग रहा है कि आपकी और मेरी भी तो बनती है ना. अब ये प्रॉब्लम बीच में सरवर भाई की बनती है सिर्फ और सिर्फ. तो आज जो है वो किसी तरह से भाई बिजी है हमारे, और अच्छी जगह बिजी है माशाल्लाह खाने पीने में. तो बस
3: अच्छा, खाने पीने में बिजी है.
1: हाँ माशाल्लाह.
3: ऐसा ना हो कि तुम इधर से जाओगे और तुम्हारे घर के सामने खड़ा है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आया हूँ.
1: अरे इतने अच्छे नहीं है, देखिए अच्छे हैं सरवर भाई लेकिन इतने अच्छे ऐसा नहीं है. खाने से दोस्ती से वो अपनी रखते हैं, बाकियों को कहते हैं ना भाई आपकी दोस्ती आप जाने, मुझसे कोई मतलब नहीं है.
3: मुझे तो पैसे मिलेगा, मैं सबसे पहले काम ये करूँगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँगा.
1: वेरी गुड, बहुत ही अच्छा सोचा आपने, मेरी तरह कुछ कुछ सोच रखा है.
3: जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये एक टाइम का जो पैसा तुम्हें मिल गया वो तुम खर्च करोगे या गाड़ी पे या घर पे या और चीज पे, तो खत्म हो गया.
1: बिल्कुल सही कहा.
3: अगर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस में आपको अर्निंग आएगा, आएगा तो गाड़ी भी खरीद सकता है, घर भी खरीद सकता है, गरीबों को भी मदद कर सकते हो.
1: नाइस
3: सर, तो खुशी खुशी है.
1: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी बात.
3: और एक बात यही है कि इज्जत जो है ना, इज्जत पैसों में नहीं है,
1: है ना.
3: इज्जत ये एक अलग अल्लाह की तरफ से होती है, वो आप पे डिपेंड करता है. आप दुनिया में कैसे चलते हो, किस तरह

0: पूरी में दिल से तो होती नहीं है, हमारा टॉपिक भी था एक बार कुछ दिन पहले आ रहे मेम्बर, पर ये बात सच है, ना आप सुकून पैसे से ले पाओगे, ना आप मोहब्बत खरीद सकते हो पैसे से, और ना सच में इज्जत ले सकते हो पैसे से।
1: देखो नाज़िया, मैं आपको मसलन कतरी 10,000 रियाल दूंगा, आप तो लोगे ना, इनकार तो नहीं करोगे ना, आप मुझे दोगे, मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी है कि मैंने खुद अपने हाथ से इसको पैसे दे रहा था, वो मुझे बोल रहा था कि मेरे दिन में मुझे खाना मिल रहा है, उस आदमी को दे दो जिसके दिन में खाना नहीं है, वो उसका जो मंथली का अर्निंग है वो 500 रियाल है था पाकिस्तानी, वो ऐसे लोग भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पैसों से इज्जत नहीं होता है, इज्जत को और पे डिपेंड करता है, आप किस तरह लाइफ करते हो तो इस तरह आपको इज्जत भी मिलेगा।
0: अच्छे शख्सियत, अच्छे कैरेक्टर की इज्जत है,
1: अच्छे कैरेक्टर,
0: अच्छी पर्सनालिटी है, भले से पैसा बहुत कम है लेकिन वो अच्छा शख्स है तो लोग उसकी इज्जत करते ही करते हैं।
1: ऐसे बहुत दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं उसके साथ मिलियन बिलियन में पैसा है लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करता है, लेकिन उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है, उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं होता है, लोग इसको
0: सही करते हैं। बहुत ही अच्छा जवाब आपने दिया, आई रियली अप्रिशिएट यू, आपने कहा ना मैं बिजनेस करूंगा तो लोगों को रोजगार भी दूंगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी सोच। थैंक यू जी, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, एक और कॉलर यहाँ हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो।
2: हाँ जी,
0: हाय गावा जी, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल हल्के फुल्के, किसी की कमी महसूस हो रही है आज।
0: अरे क्यों, तो कुछ खा लीजिए ना, अंबे बिरयानी वगैरह।
2: हाँ सही है, सही है। और मैडम कैसी हो रही हैं?
0: मैं तो बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: वसूली भाई ने वसूल कर ली जो करना था वसूल।
0: वो वसूली पे गए, मैंने आपको बताया ना दावत वसूली कर रहे हो सब जगह, तो अब कल पूछिएगा, अभी तो आए नहीं है, मुझे तो पता नहीं है, अब वो आए।
2: शुक्र है नाजिया जी, शुक्र है ये वसूली दावत तक ही रहे।
0: अच्छा पैसे भी मांगते हैं इधर उधर जाके?
2: हाँ जी।
0: मैंने कहा पैसे वैसे भी मांगते हैं क्या?
2: वो मैडम पर्दे की बात है, सर्वर भाई बताएंगे बेटर आपको।
0: अच्छा ये काम भी चल रहा है, इसीलिए कहते हैं मैं बिजी हूँ बिजी हूँ, शाम के वक्त तो मैं बड़ा बिजी रहता हूँ, अब समझ में आया शाम में निकल जाते हैं।
2: मैडम मशीन भी मंगवाई है, नहीं इम्पोर्टेड, पैसे गिनने वाली।
0: ओ अच्छा ये काम चल रहा है, इसीलिए आज ये सवाल छोड़ के चले गए, कहने लगे ये सवाल आप पूछिए, जवाब मैं आके दूंगा आपको, लेकिन ये सवाल आप पूछ लीजिएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो यही पूछ लेते हैं।
2: सही है सही है।
0: तो बताइए अगर आपकी किस्मत एकदम से खुल जाए, लॉटरी लग जाए, और वो पूरे पूरे पैसे आज के आज ही आपको स्पेंड भी करने हैं, क्या करेंगे?
2: ओके,
0: पहले तो घबरा जाएगा आदमी, क्या करूँ क्या करूँ।
2: ये मैडम जी ये भी सबसे बड़ी मुसीबत है,
0: है ना, इतना सारा पैसा देख के घबराहट, क्या करूं क्या करूं।
2: पैसा मैडम यहाँ पे ना एक बंदा है वो बता रहा था, उसका रूममेट है कोई, उसकी गाड़ी निकली किसी मॉल से।
0: अच्छा,
2: तो उस बंदे को ना मैडम मॉल से कॉल आई, भाई ऐसे ऐसे करके आपकी गाड़ी निकल गई, आप आ जाइए, ये एड्रेस है हमारा, गाड़ी ले जाइए। अच्छा। ना उन्होंने कोई ओटीपी मांगा, ना कोई बैंक की डिटेल्स, वो बंदा बोल रहा है मेरे को गाड़ी नहीं चाहिए यार, आप लोग झूठ बोल रहे हो, आप खुद ही रख लो। मैं वही बोल रहा हूँ कि 3-4 बार उसको कॉल की बंदे को, फिर उसको मनाया, फिर वो राजी हुआ बंदा लेने के लिए।
0: अच्छा,
2: अभी कभी मैडम क्या होता है बंदे को यकीन नहीं होता,
0: उसको मिली वाकई सच में मिल गई गाड़ी,
2: सच में मिल गई मैडम। यहाँ पे तो आपको पता है ना, जो
0: उससे ट्रिक पूछिए क्या तरकीब है, हमारी तो कभी निकलती है।
2: मैडम निकलेगी निकलेगी, आप लाइन में लगे रहो। मैडम एक चीज और बताता हूँ,
0: तो लाइन में लगने ही छोड़ दिया, पता है मुझे तो अब लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ होगा।
2: नहीं नहीं नहीं मैडम, आप ऐसे डीमोटिवेट होने वाली बात मत करो जी,
0: मतलब लग पे
2: बात नहीं जाती।
0: नहीं मैं अपनी मेहनत पे तो पूरा 100%, आपको याद है ना मॉर्निंग में टॉपिक रखा था मेहनत और लक, तो मैं मेहनत पे तो 100% यकीन रखती हूँ, करती रहती हूँ, लक पे उतना यू नो उतनी लकी मैं हो नहीं पाती हूँ कि बिना मेहनत के मुझे कुछ ऐसे यू नो मिल जाए, ऐसा मुझे, और मैं चाहती भी नहीं हूँ। मेहनत से जो चीज़ मिलती है उसकी वैल्यू भी बहुत होती है
2: मैडम, वो चीज़ भी मेहनत से ही मिलती है ना। आप घर से जाओगे उठ के शॉपिंग करने, बिल्कुल
0: अच्छा,
2: रेफरल कूपन आप डालोगे, वो भी मेहनत ही है ना मैडम एक तरह की।
0: वो भी मेहनत है, और वही मैं पूछ रही हूँ कोई स्ट्रैटेजी है तो मुझे भेजिएगा।
2: नहीं मैडम स्ट्रेटजी नहीं है, कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है। मैं ना नाजिया जी ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने कबीर भाई को भी बात बताई थी।
0: अच्छा
2: मैं आपको

0: बकायदा मैसेज कर देता हूँ व्हाट्सएप पे।
1: हाँ हाँ प्लीज।
0: एक ना मार्केट है, उन्होंने 27 या 28 तारीख को निकाला था रेफल ड्रॉ।
1: हाँ हाँ।
0: वो उतना बड़ा नहीं था, यानी कि छोटी आइटम्स थी, एलईडी, गोल्ड कॉइन, शॉपिंग वाउचर। तो मैडम आप यकीन मानिए, एक ही बंदे की तीन चीजें निकली हैं, तीन कूपन एक ही बंदे के।
1: इतना लकी कोई?
0: मैडम मैं खुद हैरान देख के, और मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा, आप खुद नाम देखिएगा, बंदे का आईडी नंबर सारा कुछ सेम है।
1: बताओ, मैं आधी बार लकी,
0: डिफरेंट चीजें जीतती है बंदे ने।
1: गावा जी, ये तो वाकई रोने वाली बात है कि हम लोग आधी बार भी लकी नहीं हो रहे, कोई तीन तीन
0: नहीं,
1: बार।
0: मैं तो होऊंगा नाजिया जी, मुझे पक्का यकीन है।
1: गावा जी मुझे भी यकीन है, आप डेफिनेटली लकी होंगे और आप जीतेंगे पक्का।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम।
1: तो बताइए जीतने के बाद क्या करेंगे? हाँ वो मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, और जी मान लेते हैं आप जीत गए एक बहुत अच्छी खासी रकम, अब आप क्या करेंगे? लग्जरी गाड़ी लेंगे, लग्जरी होम लेंगे, या कुछ और करेंगे?
0: मैं नाजिया जी मैं सच बताऊं, मैं ना किताबें लूंगा बच्चों के लिए।
1: क्या बात है बाबा जी, ये तो बिल्कुल अलग सा जवाब, किताबें बच्चों के लिए।
0: और जो बच्चे, जी बिल्कुल बच्चे पढ़े लिखे, अगर बच्चे पढ़ लिख गए वो खुद आने वाले फ्यूचर में अपने पैरों पे खुद सेटल हो जाएंगे, मेरी इतनी सी सोच है मैडम।
1: बहुत अच्छी गावा जी, पढ़ाई लिखाई की कोई बात करता है एकदम दिल खुश हो जाता है मेरा, कितनी अच्छी आपकी सोच के जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब जिनका फाइनेंशियल स्टेटस उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं बुक्स, उन्हें आप जो है वो किताबें देंगे और उन्हें चांस देंगे, एक बहुत बड़ा चांस देंगे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का। बहुत अच्छी सोच, बड़े कम लोग हैं ऐसी सोच रखते हैं। मैं मगर चाहूंगी कि प्लीज आप लोग जो कह भी रहे, डेफिनेटली कभी लाइफ में किसी भी मौके पर, हो सकता है बहुत बड़ी रकम ना मिले पर छोटी में ही हमें डिसाइड करने का मौका मिले, तो प्लीज गो अहेड, यही सोच रखिएगा और इसी सोच के साथ फैसला कीजिएगा।
0: बिल्कुल मैडम बिल्कुल जी, यही सोच आगे जाएगी। और मैं मैडम आपको ना मैं सेंड करता हूँ व्हाट्सएप पे।
1: हाँ मुझे
0: आप जरूर देखना है।
1: हाँ हाँ हाँ भेजिए मुझे। ठीक है जी।
0: जी ओके मैडम,
1: ओके टेक केयर, बाय,
0: ओके थैंक यू,
1: बाय। ऑलराइट, एक और कॉलर दोस्तों हमारे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है हमारे साथ?
2: जी मेरा नाम रियाज है।
1: रियाज जी जो सऊदी से आए हुए है ना?
2: जी जी जी।
1: नाइस, चलिए तो रियाज जी आपसे भी यही सवाल है मेरा, आपको ठीक ठाक रकम मिल जाती है और आज के आज ही आपको उसको स्पेंड करना है, खर्च करना है, तो आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे?
2: जी, मुझे अपना बिजनेस करना है, स्पेशली तो मेरा मन है वो ये रेस्टोरेंट लाइन में है।
1: अच्छा,
2: तो मैं तो उस तरफ जाऊंगा।
1: वेरी गुड,
2: जबरदस्त सा बिजनेस सेटअप करूंगा से। और फिर उसी बिजनेस से मैं जो अपनी बाकी तमाम ख्वाहिशें है, ये छोटी मोटी, ये गाड़ी, ये मोबाइल, वो इंशाल्लाह फिर वो खुद ब खुद इंशाल्लाह मेरा वो पूरा करेगा। तो एक ऐसी सोच, एक ऐसी चीज करनी चाहिए कि मतलब आपका पैसा उसमें लगे और उससे पैसा आ जाए।
1: वो कहते ना कि मनी मेक्स मनी, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, उसके लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए जो आपने अपने लिए तैयार की है। मेरी दुआ है कि वाकई अल्लाह ताला इतना पैसा आपको दे कि आपने जो सोच रखा है वो आप अपनी लाइफ में ज़रूर पूरा कर सकें। और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपना ही भला नहीं करेंगे, आप आसपास के लोगों का भी करेंगे, लोगों को जॉब्स देंगे और ख़ास करके वो लोग जो वाकई बेचारे परेशान बदहाल हैं उनकी मदद भी करेंगे।
2: मेरा मानना ये है नादिया जी,
1: जी
2: कि जब मैं अपनी हेल्प करूंगा ना तब हाँ। जाके मैं दूसरों की हेल्प कर पाऊंगा।
1: बहुत अच्छी
2: बात। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने रेस्टोरेंट का बोला है
1: हाँ।
2: तो मैं उस रेस्टोरेंट से बहुत से गरीब लोगों को या बहुत से ऐसे लोगों को फ्री में खाना भी खिला सकता हूँ, ये भी एक है।
1: बिल्कुल क्यों नहीं,
2: ठीक है
1: बिल्कुल।
2: इसमें और भी बहुत तरीकों से मैं लोगों की हेल्प करा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले खुद को बेट करना पड़ेगा
1: हाँ।
2: उसके बाद जाके मैं दूसरों की ये हेल्प या जो भी है अल्लाह की राह में देना है, ये करना है वो करना है, ये सब मैं उससे करूँगा, पहले मैं खुद को बेट करूँगा।
1: रियाज जी आपने बहुत अच्छी बात की और आपकी बात के साथ मुझे याद आ गया जब हम प्लेन में बैठते हैं ना जब सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमें समझा रही होती है एयर होस्टेस तो वो यही कहती है पहले अपनी सहायता करें फिर दूसरों की सहायता करें
2: अपनी
1: हाँ तो
2: अपनी
1: पहले अपनी हेल्प कीजिए फिर आप दूसरों की हेल्प करने की पोजिशन में होते हैं
2: मैं अपने सब भाइयों की रिस्पेक्ट करता हूँ किसी की वो नहीं करता हूँ लेकिन जो भी आप लिखे क्या और इसी बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छी सोच है लेकिन ये तब आप कर सकते हैं जब आप खुद इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग होंगे तब जाके आप कर सकते हैं
1: सही
2: तो मेरा ये सोच है
1: बहुत अच्छी सोच और अप्रिशिएट करूंगी
2: ये एक लाइफ टाइम के लिए एक लंबे आस्ते के लिए ये मतलब ये आपको आउटपुट लंबे टाइम के लिए देगा
1: लॉन्ग टर्म
2: इन्वेस्टमेंट और आपने एक एक चीज खरीदी वो हाँ। चीज आपकी हो गई
1: हाँ।
2: या दूसरी की हो गई या कुछ टाइम के लिए आ गई लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिससे आप भी सेटल हो गए और आप दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते
1: True. बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी सोच आपकी सल्यूट थैंक यू जी जज़ाकअल्लाह कि आप मेरे साथ जुड़े और इतना अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपने हम सब के साथ शेयर किया थैंक यू सो मच ओके अपना ख्याल रखिएगा जी अल्लाह हाफिज अच्छा कोई लगातार जिनके लास्ट में नंबर है 724 मुझे कॉल कर रहे हैं 666 वाले नंबर पे प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मुझे कॉल कीजिए 443-443-77 पर अब तक देखा जाए तो वो 7-8 टाइम्स कॉल कर चुके हैं सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि कॉल बैक टू बैक यहाँ पर हमें आ रही है आपको टाइम मिलता है प्लीज़ कॉल कीजिए और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 443-443-77 एक और कॉलर मेरे साथ हैं इस वक्त हेलो
3: हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह कौन है मेरे साथ
3: उसामा बात कर रहा हूँ
1: उसामा कैसे हैं आप मॉर्निंग से आफ्टरनून में आज बात हो रही है
3: जी जी जी जी बिल्कुल क्योंकि आफ्टरनून में बस स्केड्यूल कुछ ऐसा है कि आजकल मॉर्निंग में वो आ गए हैं ना कबीर भाई
1: जी जी
3: आजकल उनके साथ गपशप चल रही है
1: ओह नाइस चलिए लेकिन मुझे खुशी है कि आप जो है आप टाइम निकाल के जुड़े हैं मेरे साथ सवाल मेरा वही है कि आज आपको पैसे मिल जा रहे हैं ठीक ठाक रकम आज के आज स्पेंड करने आप क्या करेंगे उन पैसों
3: मैं ये सुन रहा था टॉपिक वो गाबा भाई का मैं बहुत जबरदस्त वो
1: बहुत अच्छा
3: मेरे यानी कि उनका जो था ना बिल्कुल मेरे करीब करीब था लेकिन
1: अच्छा
3: उनके पॉइंट्स है ना जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था उससे मेरा जरा थोड़ा सा और वास्ट हो गया पहले मेरा ये था कि मैं ना अगर मुझे कभी ऐसा चांस मिले तो मैं ऐसा सिस्टम क्रिएट करूंगा जिसमें बच्चियों की खासतौर पे बच्चियों की तालीम के लिए जो अवेयरनेस क्रिएट करें ऐसे एरियाज में जैसे हमारे डेवलपिंग एरियाज हैं हमारे
1: रिमोट एरियाज जो है रूरल एरियाज जो है
3: जहाँ पे यानी कि खवातीन की तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती लेकिन मेरे ख्याल से बच्चियों की तालीम आजकल उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी बच्चों की है
1: बहुत सही बहुत अच्छी सोच और इस तरह का एक सिस्टम सेटअप करना चाहेंगे नाइस नाइस
3: सिस्टम ऐसा बनाया जाए जिसमें ये अवेयरनेस क्रिएट हो क्योंकि अवेयरनेस बनेगी तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ वो हो जाएंगे और दूसरा ये कि वाकई एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए जिसमें क्योंकि हमने ऐसे एरियाज भी देखे हैं जहाँ पे जिन बच्चों को पढ़ना चाहिए वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं ड्यू टू देयर फाइनेंशियल कंडीशन सिचुएशन बहुत तालीम बहुत जरूरी है बहुत जरूरी है
1: ये हर बच्चे का हक है जो उससे छीन जाते हैं बेचारे का
3: ये उसका बुनियादी हक है
1: राइट है उसका बिल्कुल बहुत अच्छी सोच है आपकी सल्यूट है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला वाकई नवाजे हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला वाकई आपको इतना पैसा दे कि आप ऐसे काम कर सकें इंशाल्लाह कर सकें
3: मेरा पहले कभी ऐसा होता था मैं यानी कि आप कभी ना कभी मैं आ रहा हूं
1: जी
3: होता था ना ऐसे कि आपने यानी कि मेरा पहले एक होता था कि मैं एक यानी कि ट्रीटमेंट सेंटर बनाऊंगा लेकिन
1: हां
3: जब आपको वक्त के साथ साथ आपकी लर्निंग होती है इसमें कोई एज नहीं होती आप एज के हर उसमें हिस्से में कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं
1: बिल्कुल
3: तो पहले मैं सोचता था कि नहीं अगर कभी मुझे ऐसा चांस मिले तो मैं स्पेसिफिकली डायलिसिस सेंटर बनाऊंगा जिसमें यानी कि ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट हो जो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन मैं समझता हूँ कि तालीम उससे ज्यादा जरूरी है अगर आपने 100 बच्चों को आपने तालीम याफ्ता कर दिया तो हो सकता है वो 100 में से 20 बच्चे 20 डायलिसिस सेंटर बना दे मैं अगर एक बना सकूँ तो वो हो सकता है वो 20 बना दे
1: क्या सोच है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत अच्छी सोच. एंड थैंक यू, जज़ाकअल्लाह कि आप इस अच्छी सोच के साथ मेरे साथ जुड़े इस शो में. थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन भी किया आपने इस शो का.
3: कभी ये गाबा भाई का और इनका ये दो तीन लोगों का अगर मुझे फिर याद नहीं रहता जब भी बात होती है इनका, अगर मेरे साथ नंबर शेयर कर रहे हैं. गाबा बहुत बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं.
1: बिल्कुल प्रैक्टिकल देते हैं. गाबा जी का नंबर तो मेरे पास है, मैं आपका लिख लेती हूँ, जिससे कि हम इस नंबर पे आपको फॉरवर्ड कर दें उनका नंबर पूछने के बाद. ठीक है, चलिए जी, थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल रखिएगा. हाँ हाँ, इनिशिएट कीजिए ना आप इनिशिएट कीजिए, बट हाँ मेक श्योर कि बहुत सारे लोगों को बताइएगा. नहीं, बहुत सारों से मेरा मतलब है सर्वर भाई को मत बताइएगा.
3: सर्वर भाई की ना एक चीज मुझे बड़ी जबरदस्त लगती है, वो जो पब्लिक सर्विस मैसेज देते हैं ना, वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल 100% जैसे परफेक्ट, सिर्फ उनके लिए ये ड्यूटी है, उनकी पर्सनालिटी के साथ मैच करता है.
1: अरे आपको ये नहीं पता समझ रही, ये जब उनसे रिकॉर्ड करवाया जाता है बकायदा उन्हें जरा थोड़ी देर तक इंतखाब भाई डांटते हैं कि सीरियस हो जाओ भाई, सीरियस हो जाओ, डांट वांट पड़ती है तो ये सीरियस होते हैं, फिर पहुंचते हैं कि अच्छा डांट काफी पड़ गई, फिर लोग एहसास दिलाते हैं कि आपकी ठीक ठाक बेइज्जती हो गई है, मैं खड़ी रहती हूँ बताती हूँ बेइज्जती हो गई हो गई हो गई, फिर सीरियस होते हैं फिर जाते हैं. वरना आपको पता है वो तो बहुत ज्यादा मजाक हंसी करने वाले हैं, वो सीरियस नहीं हो पाते, ये बड़ा इशू है. सीरियस किया जाता
3: है, कोई चीज आपकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है कोई काम, तो वो ऐसे लगता है कि ये जो पब्लिक सर्विस मैसेज देने की ड्यूटी है ना, ये सिर्फ है ही सर्वर भाई के लिए.
1: हाँ, ये बनी है सर्वर भाई के लिए कि आपको जो है बस सीरियस होके बताना है लोगों को, बस उतनी ही देर सीरियस होते हैं जितनी देर बता रहे होते हैं. हाँ, ये भी याद रखिए. चलिए वंस अगेन थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया. हाँ, बहुत अच्छा लगा. ओके, अल्लाह हाफिज़. ऑल राइट, और यहाँ पे वैसे तो हमारे पास और भी कॉल्स आ रही हैं, बट अब मुझे नहीं पता मेरे पास टाइम है. एंड यस ऑफ कोर्स नहीं है, सर्वर भाई होते तो बहुत पहले हाथ खड़े कर चुके हैं, कहते नहीं नहीं हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है. लेकिन थोड़ा सा टाइम है जहाँ पर हम मैसेजेस ले लेते हैं. यहाँ हमें मैसेज किया है आतिफ जी ने और कहते हैं सर्वर भाई सर्वर डाउन है, यस सलाम कहते हैं. एंड फनी भाई जैन है हमारे साथ, फनी भाई जो है मैंने बताया ना वसूली भी गए हुए, यहाँ पर सलाम कहा है. और किसी ने अपना मैसेज आसिफ जी ने लग्जरी होम लिखा था, आसिफ जी मुझे आपका पता था, मैंने भी लग्जरी होम, कोई बात नहीं, हमने सोचा है तो सोचा है, क्या कर सकते हैं, अब लग्जरी होम का है दिल में ख्वाब तो क्या कर सकते हैं. रिजवान है हमारे साथ, सलाम कहते हैं. और मुझे इतने सारे पैसे मिल जाए तो सबसे पहले लेन देन वालों को क्लियर करूंगा, फिर अपनी फैमिली को यहाँ कतर में सेट करूंगा. बहुत ही प्यारा मैसेज और बड़ा ही अच्छा मैसेज आपने यहाँ पे किया. अच्छा, इसके साथ कहते हैं लगता है सर्वर भाई आज जो है वो ट्रैफिक में स्टक है. नहीं नहीं, उल्टा कीजिए, ट्रैफिक उनकी वजह से स्टक हो गया है. थैंक यू सो मच. और कुछ और भी मैसेजेस हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले पाई. मुमताज़ जी थैंक यू, मुबीन जी थैंक यू सो मच, और वसीम जी थैंक यू आप लोगों के मैसेजेस का, मेरे पास टाइम कम है. शहजादा जी थैंक यू सो मच, गापा जी थैंक यू, और आपने मैसेज भेजा है. अली मकसूद है, रिजवान है, मोहम्मद यूसुफ जी, थैंक यू एवरी वन. विद दिस अब आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी 1:30 पर. अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामईन किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। इंसान से गलती हो जाती है, लग्जिश हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन कभी अल्लाह ताला अपने बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि उसकी लग्जिश लोगों से छुपी रहती है, कोई नहीं जानता। लोग उसकी इज्जत कायम रखते हैं, उसका राज उसके रब और उसके दरमियान रहता है। अब इस मकाम पर बंदे के सामने दो रास्ते होते हैं, एक ये कि वो शर्मिंदा हो, अल्लाह से तौबा करे, अपने गुनाह को छुपाए और अपनी इस्लाह की कोशिश करे, और दूसरा ये कि सुबह होते ही लोगों से कहने लगे कल रात मैंने ये किया था, और फिर एक ऐसी बात जिस पर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी वो मजलिस की कहानी बन जाती है, कभी मजाक, कभी फख्र, कभी सोशल मीडिया का मवाद। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मेरी उम्मत के सब लोगों के लिए माफ़ी और आफियत की उम्मीद है, कुल उम्मती मुआफ़न इल्ल मुजाहिरीन, सिवाय उन लोगों के जो अपने गुनाहों को अलानिया करते हैं। और अलानिया गुनाह की एक सूरत ये है कि आदमी रात को कोई गुनाह करे, फिर सुबह इस हाल में उठे कि अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल रखा हो, लेकिन वो खुद कहने लगे फलां मैंने कल रात ये किया था, हालांकि उसके रब ने पूरी रात उसकी पर्दापोशी फरमाई और सुबह को वो खुद अल्लाह के पर्दे को हटा देता है। समझने के लिए मुजाहरा क्या है? अब मुजाहरा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि इंसान लोगों के सामने खड़े होकर गुनाह करे, उसकी एक सूरत यह भी है कि गुनाह तन्हाई में हुआ लेकिन इंसान खुद उसे लोगों में बयान करे। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मुजाहिरून वो लोग हैं जो फवाहिश और गुनाहों को अलानिया करते हैं और उन आमाल का भी जिक्र करते हैं जो उन्होंने छुप कर किए थे। समीने किराम, हदीस के सबसे अहम अल्फाज शायद ये हैं, वक़द सतरहुल्लाहु अलैह, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल रखा था। ज़रा सोचिए कि अल्लाह चाहता तो लोगों के सामने राज खुल जाता, लेकिन अल्लाह ने पर्दा रखा, फिर बंदा खुद अपने हाथ से वो पर्दा हटाता है। ये अल्लाह के अता करदा सतर की नाकदरी भी है। अल्लाह ने ऐब छुपाया, आपने खुद बयान कर दिया। कोई पैगाम ये हो, देखो मैंने ये किया और मुझे कोई परवाह नहीं, समझे कलाम, ये दिल की बहुत ख़तरनाक कैफियत है। इमाम आइनी रहमहुल्लाह ने एक बहुत खूबसूरत नुक्ता बयान किया है कि अल्लाह का सतर इस बात से जुड़ा है कि मोमिन खुद भी अपने गुनाह को छुपाए, और जो शख्स अपने गुनाह को जाहिर करने का कष्ट करे वो अपने लिए रुसवाई के असबाब पैदा करता है। समीर किराम, गुनाह के बाद हया बाकी रहना भी खैर की अलामत है। इंसान का दिल कहे मैंने गलत किया है, मुझे ये बात लोगों में नहीं ले जानी चाहिए, मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, ये शर्मिंदगी अगर इंसान को तौबा तक ले जाए तो यही शर्मिंदगी रहमत बन सकती है। गुनाह जब छुपा हुआ हो तो इंसान के अंदर कुछ हया बाकी रहती है, लेकिन जब लोग उसे अलानिया करने लगें तो एक नया जुमला पैदा होता है कि सब करते हैं, और ये जुमला दिल की हसासियत को ख़त्म कर देता है। हालांकि मोमिन का मेयार लोग क्या कर रहे हैं कभी भी ये नहीं है, मोमिन का मेयार तो अल्लाह क्या चाहता है होना चाहिए। समय कराम, इंसान से गुनाह हो जाए तो शैतान दो इंतहाओं की तरफ ले जा सकता है, पहली तुम बहुत बुरे हो अब तुम्हारी तौबा नहीं हो सकती, ये मायूसी है, और दूसरी अरे कोई बात नहीं सब करते हैं लोगों को भी बताओ, ये बेहिसी है। इस्लाम दोनों से बचाता है, न मायूस होना न गुनाह को मामूली बनाना। अल्लाह ताला हमें सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर करने, उसे समझने اور محبت کے ساتھ اپنی زندگیوں میں انہیں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپر و سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 107 और स्पोर्ट्स हाइलाइट्स के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीन। आज हम बात करते हैं एथलेटिक्स की दुनिया के उस सुपरस्टार की जो हर बार पोल वॉल्ट में एक नई बुलंदी का मतलब समझाता है। नाम है आर्मांड मोंडो डुप्लांटिस, दुनिया का सबसे डोमिनेंट पोल वॉल्टर और शायद एथलेटिक्स की तारीख का सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एथलीट। डुप्लांटिस की पैदाइश 10 नवंबर 1999 को लाफायते लुसियाना अमेरिका में हुई। अमेरिकन बैकग्राउंड के बावजूद उन्होंने इंटरनेशनल एथलेटिक्स में स्वीडन को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया क्योंकि उनकी अम्मी हेलेना स्वीडिश हैं और यह फैसला आज स्वीडन के लिए एक स्पोर्टिंग फेरी टेल बन चुका है। डुप्लांटिस ने बचपन से ही पोल वॉल्ट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने वॉल्टिंग शुरू कर दी थी और 7 साल की उम्र तक एज ग्रुप रिकॉर्ड्स उनके नाम होने लगे थे। उनका टैलेंट कोई इत्तेफाक नहीं था दोस्तों। उनके वालिद ग्रेग डुप्लांटिस खुद फॉर्मर पोल वॉल्टर रहे जबकि उनकी वालदा हेलेना फॉर्मर हेप्टैथलीट और वॉलीबॉल प्लेयर हैं। यानी मोंडो के लिए एथलेटिक्स घर से ही शुरू हो गई थी। लेकिन जो चीज मोंडो को दूसरों से अलग करती है वो है उनकी रिकॉर्ड तोड़ने की आदत। 2020 में जब उन्होंने पहली बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा उस वक्त किसी ने शायद नहीं सोचा होगा कि ये सिलसिला इतना लंबा चलेगा। लेकिन आज डुप्लांटिस 15 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और लेटेस्ट रिकॉर्ड 6.31 मीटर। 12 मार्च 2026 को उपसला में डुप्लांटिस ने 6.31 मीटर क्लियर करके अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड 1 सेंटीमीटर बेहतर कर दिया। वर्ल्ड एथलेटिक्स के मुताबिक वो अब भी मेंस पोल वॉल्ट में वर्ल्ड नंबर 1 है। लेकिन 2026 में भी मोंडो की कहानी सिर्फ रिकॉर्ड्स तक महदूद नहीं रही। मार्च में वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 6.25 मीटर्स की जंप के साथ अपना 4th कंसेक्यूटिव वर्ल्ड इंडोर टाइटल जीता। इस कंपटीशन में ग्रीस के मैनुअल कारालिस ने 6.05 मीटर्स के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया और अगस्त में लुसेन डायमंड लीग में एक और हिस्ट्रिक कंटेस्ट देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.21 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.16 मीटर्स के साथ उनको जबरदस्त चैलेंज दिया। मोंडो ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश भी की लेकिन कामयाब नहीं हो सके। फिर ज्यूरिख डायमंड लीग में भी दोनों के दरमियान मुकाबला देखने को मिला। डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर्स क्लियर किए जबकि करालिस ने 6.20 मीटर्स के साथ अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड जो है वो बनाया। करालिस ने 6.32 मीटर्स पर वर्ल्ड रिकॉर्ड को चैलेंज किया लेकिन वो भी कामयाब नहीं हो सके। यानी डुप्लांटिस के सामने अब एक नया चैलेंज भी उभर रहा है, इमानुएल करालिस। डुप्लांटिस के करियर में 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स भी हैं, टोक्यो 2020 और पेरिस 2024। वो 3 मरतबा वर्ल्ड आउटडोर चैंपियन भी बन चुके हैं और 2025 में टोक्यो में 6.30 मीटर्स की वर्ल्ड रिकॉर्ड जंप के साथ अपना 3रा वर्ल्ड टाइटल जीता। अच्छा, 2025 में उन्होंने सीजन की 16 कॉम्पिटिशंस में अनबीटन रहकर अपना 5वां कंसेक्यूटिव डायमंड लीग टाइटल भी जीता और 4 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड इंप्रूव किया। इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें 2025 का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना गया। लेकिन मोंडो की सबसे खास बात शायद यह है कि वो दूसरों से कम और खुद से ज्यादा कम्पीट करते हैं। आज सवाल ये नहीं है कि मोंडो को कौन हरा सकता है, सवाल यह है मोंडो डुप्लांटिस खुद अपने लिमिट को कितना और आगे ले जा सकते हैं। 6.31 मीटर्स के बाद क्या 6.32, 6.40 या शायद एक दिन 6.50 मीटर्स। दुनिया की नजरें मोंडो पर हैं और पोल वॉल्ट की हर नई बुलंदी उनके नाम का इंतजार करती नजर आती है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये स्पोर्ट्स सेगमेंट पसंद आया होगा। अगली बार फिर एक नए और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी को दीजिए इजाजत।
खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपना जज्बा जिंदा रखें। फी अमानिल्लाह।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: FM 107 presents Tech Update.
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं दुहा वाला कबीर और अब आपको बताऊंगा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में एक वेबसाइट बीच में प्लगइन कर देता हूं, बहुत जरूरी। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपको इमेजेस को लेकर कुछ ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। देखिए, आपने मान लीजिए अपना एक फोटो अपलोड किया, ठीक है। आपको फोटो अपलोड करने के बाद प्रॉम्प्ट में लिखना है /ID photo, तो आपके फोटो क्या हो जाएगी, आईडी फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने फॉरवर्ड स्लैश लिख के आगे लिख दिया ओल्ड मनी, तो आप ऐसे दिखेंगे जैसे आपने अपने बाप दादा की दौलत इनहेरिट कर ली है। सच में वो वाले कपड़े आपको पहना देगा वो। और ये कुछ बेसिक कोड्स हैं जो बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल काफी फेमस हो रहा है /GTA 6, तो आपके फोटो को वो GTA 6 में तब्दील कर देगा। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी परफेक्ट दिखे तो उसके लिए भी कोड है। हाँ भाई, ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में, तो आपको सिर्फ टाइप करना है फोटो अपलोड करने के बाद /jawline, तो आपकी जॉ लाइन को वो फिक्स कर देगा एंड इट एक्चुअली फिक्सेस रियली रियली वेल, तो यू कैन ट्राई दिस वन। ठीक है, अब जरा वेबसाइट बता देता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है, ये तो कतर में लोग जरूर यूज करें, 4x4builder.com। जैसे 4x4 लिखते हैं यानी न्यूमेरिकल 4, फिर वो एक्स वाला साइन, फिर 4builder.com। अब आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आप अपनी गाड़ी 4x4 खुद बिल्ड कर सकते हैं भाई। उसमें ट्रक लीजिए, आप कोई क्रूजर लीजिए, आप जैसी मर्जी लीजिए, उस गाड़ी का एक एक पार्ट आप बदल के देख सकते हैं कैसी दिख सकती है, पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं आप। सस्पेंशन से लेकर लाइट से लेकर बॉडी पार्ट से लेकर एक एक चीज गाड़ी की आप बना सकते हैं, और फिर इसको आप सामने रेगिस्तान में दौड़ा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं किधर कैसे आपकी लग रही है गाड़ी, भाई बहुत फन है। और स्पेशली कतर में जहां पर लोग कस्टमाइजेशन में इतना यकीन रखते हैं तो आपके तो बहुत ही काम आने वाली है भाई। तो ये जरूर जरूर ट्राई करें, एंड 4x4builder.com ये नाम है वेबसाइट का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है lightpdf.com, ये बहुत काम आएगी। लाइट LIGHTPDF.com। इस वेबसाइट पे जाके जब आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं तो सुनिए, उस पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं भाई, पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं आप। जैसे कि वर्ड में टाइप कर रहे हैं वैसे आप पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, एंड दिस इज मिरेकल, तो आपकी बहुत काम आएगी वेबसाइट। जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड। चलो एक लगे हाथों एक और वेबसाइट बता देता हूं आपको। अगली वेबसाइट का नाम है image2prompt.org, image2prompt.org। मान लीजिए कोई इमेज आपको बड़ी अच्छी लगी, उसका आप एग्जैक्टली उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा कि भैया ये रहा प्रॉम्प्ट, अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, ये आपके हवाले एंड यू विल गेट इट। ये है भाई सबसे सबसे खास बात, तो ये आप जरूर चेक कीजिएगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड लास्ट में खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि गूगल वर्क कर रहा है अपने AI पे, काफी डिलीजेंटली वर्क कर रहा है। तो न्यू जेमिनी मॉडल जो रिपोर्टली जिसके बारे में बात हो रही थी, वो गूगल कह रहा है कि ये खत्म कर देगा कोडिंग गैप को। भाई गूगल करंटली टेस्ट कर रहा है जेमिनी 3.8 फ्लैश, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी कमाल के हैं। बताया जा रहा है कि इंप्रूवमेंट इन कोडिंग परफॉर्मेंसेस जितने पिछले जेमिनी मॉडल रहे हैं उन सबको बीट करता है। साथ ही में गूगल ने भी कहा कि जेमिनी बहुत जल्दी गूगल असिस्टेंट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ऑलरेडी कर चुका है बट और भी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर देगा। गूगल ने यह भी कहा कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड ताकि जेमिनी डिफॉल्ट मॉडल बन जाए, और जो ट्रेडिशनल गूगल असिस्टेंट है जो यूज हो रहा है एंड्रॉयड पर और जो उनके बाकी वेयरिंग ओएस है उस पे खत्म हो जाए, तो खत्म हो भी चुका है। और अगर आप ओल्ड मॉडल पे हैं तो यू कैन अपडेट एंड यू कैन गेट इट डन। तो ये थी कुछ टेक अपडेट्स, मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, इसी तरह से और भी अपडेट्स आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल से देसी।
0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे एक नए जमाने के फ्रॉड के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। ये फ्रॉड इतने ज्यादा टैलेंटेड तरीके से किए जाते हैं कि कई बार स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी फंस जाता है। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये डायरेक्ट धमकी पर ही काम करता है। ये टेक थ्रेट है। जो टेक्निकल बंदे हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा ये डिमांड नहीं है, ये पैसे की डिमांड नहीं है, ये आपको धमकी होती है, जिसे कहते हैं फेक रैंसमवेयर और टेक थ्रेट। ये टेक थ्रेट डिजिटल दुनिया में चलने वाला एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां स्कैमर्स डर और झूठ का सहारा लेकर बिजनेस ओनर्स को डराते हैं। इसमें होता यह है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा या स्केरी पॉपअप मैसेज आता है, या फिर आपको एक धमकी भरा ईमेल मिलता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, हमने आपकी कंपनी का सारा सेंसिटिव डेटा, बैंक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट फाइल्स चुरा ली हैं और उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी कि इंक्रिप्ट कर दिया गया है। इंक्रिप्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज। स्कैमर आगे लिखता है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी में एक मोटी रकम नहीं दी तो आपका सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा या इंटरनेट पर लीक हो जाएगा। और यह डायरेक्ट धमकी होती है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको स्कैम करने की जरूरत पड़े इनको, यह धमकी देते हैं। लेकिन स्कैम एक्चुअली यही है कि यह धमकी झूठी होती है। यहां सबसे बड़ा कैच यह है कि बहुत सारे केसेस में यह थ्रेड बिल्कुल फेक होते हैं। स्कैमर के पास आपके सिस्टम का कोई एक्सेस नहीं होता है और ना ही उन्होंने कोई डेटा चुराया होता है। वो सिर्फ एक अजीब या जावास्क्रिप्ट कोड या पॉपअप वेबसाइट का यूज करते हैं जो स्क्रीन पर लॉक हो जाता है, जिससे लगता है कि कंप्यूटर हैक हो गया। बिजनेस ओनर अपने रेपुटेशन और कस्टमर डेटा खोने के डर से पैनिक हो जाते हैं और स्कैमर को लाखों रुपए भेज देते हैं। ये स्कैमर्स सिर्फ डर का माहौल बनाकर बिना मेहनत के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी इसके हैं। अगर इन सॉल्यूशन को ध्यान से सुने तो आप बच सकते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है अलग से बैकअप रखना। देखिए, आपके साथ कोई फेक थ्रेट करे, असली करे, कुछ भी हो, इवन हो सकता है कि आपका कभी कंप्यूटर ही खराब हो जाए, जरूरी है कि बैकअप आप अलग से रखे रहें। और ये बैकअप कैसा होना चाहिए? अपने बिजनेस का सारा इंपॉर्टेंट डेटा हर हफ्ते एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या सिक्योर डिस्कनेक्टेड क्लाउड पर बैकअप करें, सेव करें। अगर आपका बैकअप मेन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो असली में आपसे कोई डिमांड भी करे, रैंसमवेयर आए भी अगर आपके पास, तो आपके पास असल में सेटअप तो है, आपके पास बैकअप तो है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा या पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है, किसी भी तरह की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आप बच जाते हैं। उसके अलावा पैनिक ना करें कभी भी। अगर ऐसा कोई पॉपअप स्क्रीन पर आए तो कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई बंद कर दें और टास्क मैनेजर खोलकर ब्राउजर को फोर्स क्लोज करें। अक्सर ब्राउजर बंद करते ही फेक पॉपअप्स गायब हो जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। और एक चौथा तरीका है एड ब्लॉकर्स या साइबर हाइजीन। अपने ऑफिस के कंप्यूटर में एक अच्छा एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें ताकि ऐसे मलिशियस और डराने वाले पॉपअप्स इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान सामने ही ना आए, किसी भी अनजान ईमेल अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक करने से भी बचे। तो दोस्तों, ये था तरीका नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने का, और ये था आज का फेक रैंसमवेयर या टेक थ्रेट, जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।
0: स्कैम अलर्ट। आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
3: हेलो एंड वेलकम टू अवर सेगमेंट कॉल्ड स्मार्ट मनी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट नासिया। और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है? देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी अच्छी है तो उसकी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री होगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है। आजकल बहुत से लोग हाई इनकम अर्न करने के बावजूद परेशान रहते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि मनी मैनेजमेंट से है सबसे पहली वजह तो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या फिर लाइफस्टाइल क्रीप जो कि हमने आपको बताया कि जब सैलरी बढ़ती है तो लोग अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं और नए एक्सपेंसेस बढ़ाने के चक्कर में फिर उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है वो हमने आपको मिसाल देकर भी समझाया कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 रियाल है और थोड़ी बढ़ गई तो आप जो है वो अब एक्सपेंसिव गाड़ी पर इन्वेस्ट करने लगे इंस्टॉलमेंट्स आपके बढ़ गए लग्जरी अपार्टमेंट आपने खरीद लिया क्रेडिट बिल्स ये सारी चीजें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से आपका जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है और दूसरी बड़ी वजह जो समझ में आती है वो है बजट का ना होना बहुत से लोग अच्छी इनकम तो अर्न करते हैं लेकिन ये ट्रैक नहीं रखते कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं छोटी छोटी परचेजेस ऑनलाइन शॉपिंग फूड डिलीवरी या फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस धीरे धीरे कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता और एक और कॉमन रीजन है डेट और क्रेडिट कार्ड्स जी हाँ क्रेडिट कार्ड का यूज या इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है बड़ा आसान हो गया है लोग सोचते हैं कि बाद में पेमेंट कर देंगे लेकिन जब मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जमा हो जाते हैं तो शुरू होता है स्ट्रेस अब हाई सैलरी होने के बावजूद भी कर्ज का बोझ इंसान को मेंटली और फाइनेंशियली डिस्टर्ब करता है वहीं सोशल मीडिया प्रेशर भी बढ़ गया है फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा हिडन फैक्टर है चाहे आपके दोस्त हों चाहे आपके हाई फाई फ्रेंड्स हैं उनके एक्सपेंसिव ट्रिप्स उनके एक्सपेंसिव गैजेट्स उनके ब्रांडेड शॉपिंग कपड़े ना चाहकर भी हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं वो जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं कि शायद वैसा ही मेंटेन करें और हमारी फाइनेंशियल रियलिटी उनकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है और कहीं ना कहीं ये सब मेंटेन करने के चक्कर में हम फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार होते हैं और फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अचानक कोई मेडिकल इशू या कोई जॉब इशू या कुछ और अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लोग अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं जितनी उनकी हैसियत नहीं उससे कहीं ज्यादा वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझदारी से काम करते हैं लेते हैं और अपने जो स्टेटस है उसको कम दिखाते हैं चाहे उनकी इनकम अच्छी हो या फिर कम मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ा सोल्यूशन अगर हमें कहीं से मिलता है वो है हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स जैसे बजट बनाना अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना डेट को कंट्रोल करना रेगुलर सेविंग्स करना और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पहले अपने आप को पे करो यानी सैलरी मिलते ही सेविंग अकाउंट्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो और इस तरह से अगर आप करते रहे तो आप जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आएंगे आखिर में फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं कि आप कितना कमाते हैं बल्कि इस बात से है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं फाइनेंशियल पीस दे सकती है और अगर हैबिट्स खराब हो तो बड़ी से बड़ी सैलरी भी स्ट्रेस का सबब बनती है तभी तो कहते हैं गुड मनी हैबिट्स डू तो बस आज इसी चीज का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है बाकी और भी बातें करेंगे लेकिन आज नहीं कल फिलहाल मुझे नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए देखते और सुनते रहिए एफएम 101

0: सितारे उतरेंगे मैदान में अजमत की जुस्तजू में, टीमें टकराएंगी टॉप पोजीशन के लिए और जोश ऐसा जो आखिरी सीटी तक थमने ना पाया, थमने ना पाया। दोहा बैंक स्टार्स लीग सिर्फ अलकास के इनक्रिप्टेड चैनल्स और शू प्लेटफॉर्म पर।
1: आप सुन रहे हैं FM 107, FM 107,
2: दिल से देसी।
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए। इसलिए FM 107 लाया है एक ऐसा शो जहां बच्चे कुरान को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सुनिए कुरान फॉर किड्स हर बुध शाम 3 बजे से आरजे तलहा के साथ।
4: अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे बच्चों, प्यारी अम्मियों और अब्बों को दिल से खुश आमदीद। हमारे इस प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स में आपके दोस्त तलहा शरीफ जमान की तरफ से कबूल कीजिए सलाम व तहियात। सामने किराम, प्रोग्राम कुरान फॉर किड्स, इस प्रोग्राम में हम कुरान को दिल की ज़बान में मोहब्बत के साथ सीखते हैं। नन्हे दोस्तों, एक बात बताओ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी एक बात ने तुम्हें बहुत खुश कर दिया हो और कभी किसी की एक बात ने दिल को उदास कर दिया हो? हाँ जी बच्चों, ये इसलिए होता है क्योंकि अल्फाज में ताकत होती है। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी नेमत दी है और वो है ज़बान, यानी बोलने की ताकत। सभी किराम, अच्छी ज़बान किसी के लिए चेहरे पर मुस्कराहट ला सकती है, किसी के आंसू पोंछ सकती है, किसी कमज़ोर दिल को मजबूत बना सकती है। और इसीलिए कुरान हमें एक बहुत खूबसूरत हुक्म देता है। आज की आयत में ये बात वारिद है कि सब लोगों से अच्छी बात कहो। प्यारे बच्चों, ज़रा गौर करो, अल्लाह ये नहीं कहते कि सिर्फ अपने दोस्तों से या सिर्फ अपने घर वालों से या सिर्फ मुसलमानों से अच्छी बात करो, बल्कि अल्लाह फरमाता है सब लोगों से, यानी जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते, जो हम जैसे हैं और जो हम से मुख्तलिफ हैं, सब के साथ। क्योंकि कुरान हर लफ्ज़ सोच समझकर चुनता है और अल्लाह चाहते हैं कि हमारी ज़बान मोहब्बत और रोशनी फैलाए। दोस्तों, जब तुम किसी बच्चे को हौसला देते हो, जब तुम किसी दोस्त से नरमी से बात करते हो, जब तुम किसी उदास इंसान को अच्छी बात कहते हो, तो ये सिर्फ बात नहीं होती, ये इबादत बन जाती है। अल्लाह हमें अच्छी बात की तरफ राह दिखाते हैं ताकि हम अच्छे इंसान बने। तो आज के प्रोग्राम में सामिन इकराम, आज हम सीखेंगे मेरे नन्हे दोस्तों कि अच्छी बात क्या होती है, किससे अच्छी बात करनी है, मुश्किल वक्त में ज़बान को कैसे नरम रखना है। तो बच्चों, हाँ जी, अपने दिल को खोलो, वसी तर करो, वसत ज़र्फ़ी बहुत अहम चीज़ है, अपनी ज़बान को नरम करो और कुरान के इस प्यारे पैगाम के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आज की आयत हमें सिखानी आई है कि अच्छी बात कहना भी अल्लाह की कुर्बत का रास्ता है। अच्छा साथ सामने कराम, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद बिदल्लाह ताला, जुड़े रहिए हमारे साथ।
3: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए खास तोहफा है जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
4: वेलकम बैक सामिन इकराम, बच्चों, अम्मियों, अब्बों, सबको हमारी तरफ से खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, अब जरा खामोशी इख्तियार करो, खामोश, दिल को नरम करें, कानों के साथ साथ दिल से भी सुने। आज एक ऐसी आयत सुनने वाले हैं जो हमें सिखाती है कि अच्छी बात कैसे दिलों तक पहुंचती है। जरा गौर से सुनो। वकूलु लिन्नासि हुस्ना, एक बार फिर आहिस्ते से, वकूलु लिन्नासि हुस्ना। माशाल्लाह बच्चों, कुरान हमें ये सिखाता है कि जब हम किसी से नरम, प्यारी और अच्छी बात करते हैं तो वो बात सिर्फ कानों तक नहीं जाती बल्कि दिल तक पहुंचती है। अच्छी बात किसी के दिल जोड़ देती है, किसी के आंसू पोंछ देती है, किसी थके हुए दिल को दोबारा मजबूत बना देती है। समीन इकराम, जब हम किसी का दिल खुश करते हैं तो अल्लाह भी हमारा दिल खुश कर देते हैं। बच्चों याद रखो कि अच्छी बात सिर्फ आमने सामने ही नहीं होती बल्कि फ़ोन पर, मैसेज में, इंटरनेट पर भी, जहाँ भी तुम हो वहाँ तुम्हारी ज़बान और तुम्हारे लफ्ज़ रोशनी बन सकते हैं। कुरान हमें ये खुशखबरी देता है कि अच्छी बात अल्लाह तक पहुँचती है और अल्लाह के यहाँ उसकी बड़ी कदर होती है। यानी जब तुम सलाम करते हो, शुक्रिया कहते हो या किसी को हौसला देते हो तो ये सब अल्लाह के पास ऊपर चले जाते हैं। नन्हे दोस्तों, अच्छी बात कोई छोटी चीज़ नहीं, ये एक ऐसी नेकी है जो दिल में नूर और उम्मीद भर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें ये सिखाया कि नरम बात करो, सलाम फैलाओ और लोगों को खुशी दो। ये सब काम अल्लाह को बहुत पसंद है। सामिन इकराम, अब अगर दिल चाहे तो मेरे साथ एक मरतबा फिर कहिए आहिस्ता आहिस्ता, वकूलू लिन्नासि हुस्ना, कि लोगों के साथ अच्छे तरीके से, अच्छे बिहेवियर से मिलो, यानी अच्छी बातें कहो, अच्छी ज़बान से बात करो, क्योंकि अच्छी बात कहना भी गोया एक इबादत है और अच्छी ज़बान अल्लाह को पसंद है। हाँ जी, और अब हम प्रोग्राम के इस मरहले में रुख कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट की तरफ, और ये सेगमेंट है हमारा ड्रामा सेगमेंट, जहाँ पर आप हमारे आज की जो आयत है या आज का मौजू है इस पर हम ड्रामेटिकल अंदाज में पेश करते हैं आपके आगे, ताकि आप ये कुरानी मानी को आप मज़ीद

0: चाहिए। हाँ, कौन सी आयत है? अच्छी बात करने की बात जहाँ आई है, वकूलू लिन्नासी हुस्ना। अब अम्मी कहने लगी, बिल्कुल सही, कुरान हमें ये नहीं सिखाता कि हम बुराई का जवाब बुराई से दें। बच्चा फिर कहने लगा, लेकिन अम्मी जब कोई बुरा कहता है तो अच्छी बात कहना बहुत मुश्किल लगता है। अब अम्मी कहने लगी, हाँ मेरे बच्चे, ये वाकई मुश्किल लगता है, लेकिन अल्लाह ने हमें मुश्किल हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह ने हमें आसान हुक्म दिया है कि बस कोशिश करो। अल्लाह ये नहीं कहते कि तुम हमेशा कामिल बनो, अल्लाह ये कहते हैं कि नीयत अच्छी रखो। अब बच्चा कहने लगा, तो अगर मैं चीखूं नहीं और खामोश रहूं तो भी ठीक है? अब अम्मी कहने लगी, हाँ बिल्कुल ठीक, कभी नरम बात और कभी खामोशी सबसे अच्छी बात होती है। प्यारे बच्चों, अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। अगर स्कूल में कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए और तुम्हारा दिल चाहे कि फ़ौरन जवाब दो, अगर खेल के दौरान कोई दोस्त गुस्सा करे, चीखने लगे, या अगर ऑनलाइन कोई सख्त बात लिख दे जो दिल को चुभ जाए, तो ऐसे वक्त में क्या करना है? नरम बात, आहिस्ता लहजा, खामोशी, मुस्कराहट, यही सबसे कीमती हथियार हैं। यही है कुरान का हुक्म, वकूलू लिन्नासी हुस्ना। दोस्तों, अच्छी बात सिर्फ आवाज़ नहीं होती, ये एक ताकत है। अच्छी बात झगड़े को ख़त्म कर देती है, गुस्से को ठंडा कर देती है, दिलों को दोबारा जोड़ देती है। समझ कराम, कितने ही बार एक ही नरम जुमले ने किसी को रोने से बचाया, किसी कमज़ोर का साथ दिया, किसी लड़ाई को ख़त्म कर दिया और दो दोस्तों को फिर से मिला दिया। याद रखो बच्चों, जब हम अच्छी बात कहते हैं तो शैतान का काम ख़राब हो जाता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि हम लड़ें और कुरान चाहता है कि हम जुड़ें। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे बंदे हमेशा सबसे अच्छी बात कही, क्योंकि बुरी बात दिलों के बीच दुश्मनी पैदा करती है। दोस्तों, हो सकता है कि हर बार तुम न जीत सको, हर बार तुम जवाब न दे सको, लेकिन जब तुम अच्छी बात का इंतखाब करते हो तो अल्लाह के नज़दीक तुम जीत जाते हो। आज के सबक याद रखो कि जब कोई बुरा कहे तो खुद अच्छा बन जाओ, जब कोई गुस्सा करे तो खुद नरम बन जाओ, और जब दिल दुखे तो कुरान को याद कर लो। तो सभी के नामी करता, फिर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद मुलाकात होती है बिइज़्निल्लाह ताला। जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। यह हमें बताता है क्या सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, और मुश्किल वक्त में कैसे सब्र और उम्मीद रखी जाती है। बचपन से हमने कुरान पढ़ा, तिलावत की, लफ्ज़ दोहराए, लेकिन अक्सर उसे समझने के लिए रुककर सोचा नहीं, जबकि कुरान अल्लाह की तरफ से हर मोमिन के लिए ख़ास तोहफा है, जो सिर्फ पढ़ा नहीं समझा भी जाना चाहिए।
0: सामने किराम, प्यारे बच्चों, अब ज़रा सुकून से बैठ जाओ, अपने दिल को नरम और साफ कर लो। अगर दिल चाहे तो मेरे साथ आहिस्ता आहिस्ता भी कह सकते हो, वकूलू लिन्नासी हुस्ना। एक बार फिर दिल से, वकूलू लिन्नासी हुस्ना। इस तरह सामने किराम, हदीस ने भी हमें यही सिखाया है कि हम अपनी ज़बान के ज़रिए किसी का दिल नहीं तोड़ें। इस बात को हमें दिल की गहराई में उतार लेनी है कि मेरी ज़बान किसी को दुख नहीं देगी, मेरी बात किसी का दिल नहीं तोड़ेगी। नन्हे दोस्तों, ज़बान एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। एक नरम बात ज़ख़म पर मरहम बन सकती है, एक प्यारा जुमला उदास दिल को मुस्करा सकता है, और एक अच्छा लफ्ज़ दो दिलों को जोड़ सकता है। इसलिए कुरान हमें सिखाता है कि हमारी हर बात जायका रखती हो, रोशनी रखती हो और दिल को सुकून देने वाली हो। सामने किराम, इसी तरह अब एक लम्हा खामोशी इख्तियार करें और दिल में सोचें कि आज हम किसके साथ नरम बात करेंगे। मुअज़्ज़ज़ प्यारे वालिदैन, अब आपकी जनाब में भी हमारी चंद गुजारिशात हैं। मुअज़्ज़ज़ वालिदैन, बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं और वही बोलते हैं जो वो सुनते हैं। अगर हम आवाज़ ऊंची करें, सख्त लफ्ज़ बोलें या गुस्से में बात करें तो बच्चे भी वही ज़बान सीख लेते हैं, और अगर हम नरमी से बात करें, एहतराम से जवाब दें और ग़लती पर भी प्यार से समझाएं तो बच्चे अच्छी ज़बान और अच्छे अखलाक सीखते हैं। याद रखिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी बदज़बान नहीं थे, कभी गाली नहीं।

0: मुकाबले के दरवाजे खुल चुके हैं पॉइंट्स की दौड़ का आगाज हो चुका है मुकाबले फिर सजेंगे और हर राउंड लेकर आएगा एक नई कहानी यतूर लीग सिर्फ और सिर्फ अलकास चैनल और शूफ प्लेटफॉर्म पर
1: FM 107 टाइम चेक
2: चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए शाम के 4:01 यानी वक्त हो चला है
3: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से
2: जनाब अस्सलाम वालेकुम मरहबा मरहबा मरहबा वेरी वेरी गुड इवनिंग तो मैं हूँ आपके एफ और अमिता एफएम 107 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन द शो द रिक्वेस्ट शो जो कि आपका अपना पर्सनल म्यूजिकल शो है तो जनाब हर दिन कुछ खास थीम लेकर आते हैं हम और फिर आपके पसंद के गाने आपकी डेडिकेशंस किसी अपने के लिए कोई खास मैसेज सब कुछ यहाँ आपके लिए होता है तो आज का थीम वो है जिसका हर कोई दीवाना है मतलब ये वो दौर था जहाँ पर वो ओवरसाइज्ड शर्ट्स बेल बॉटम्स फ्लॉपी कर्ल्स वो कहते हैं ना कैसेट टेप्स का जमाना था बताइए किस जमाने की बात कर रही हूं मैं Well, I'm talking about 90s. फिर चाहे खान्स का मैजिक हो या फिर गोविंदा के रंगों से मोहब्बत ये जो दौर था इसे कोई ना कभी भूला और ना कभी भूल पाएगा तो आज की थीम है 90s के हिट सॉन्ग्स तो वो कौन सा 90s का गाना है जो आपके रेडियो में या यूं कहें आपकी पर्सनल प्लेलिस्ट में हमेशा बचता ही बचता है देखिए हमारे रेडियो में तो तरह तरह के गाने बजते हैं लेकिन आपकी प्लेलिस्ट में वो 90s वाला कौन सा गाना है सोचिए सोचिए सोचिए और रिक्वेस्ट कीजिए 666-22-107 666-22-107 पर अपने नाम के साथ और वो गाना आपको क्यों पसंद है यू कैन शेयर दैट एंड किसी खास को अगर 90s वाला कोई गाना डेडिकेट करना है किसी खास मैसेज के साथ तो वो भी आप हमसे शेयर कर सकते हैं लेकिन अभी इस वक्त उस गाने को हम प्ले करेंगे जिस गाने के लिए हमारी जो करिश्मा कपूर है उन्होंने सोचा नहीं था कि वो परफॉर्म करेंगी यस एंड द सॉन्ग इज आ हा हा ये म्यूजिक सुनते ही याद आ गया होगा कि कौन सा गाना है हाँ आशा भोसले जी की आवाज़ है दिल तो पागल है का सबसे पहला गाना मतलब मूवी शुरू होती है एंड देन दिस स्टेज परफॉर्मेंस कम ओहो ले गई इज द सॉन्ग तो फुल वॉल्यूम पे इंजॉय करो बने रहो हमारे साथ FM 107 पर दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। द रिक्वेस्ट शो पर कैसे लगा आज हमारे शो का आगाज? ले गई ले गई ले गई, ओहो ये गाना सुन के ना मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, मजा आ जाता है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। हमारे कुछ लिसनर्स कह रहे थे कि अमिता कोई अपने पसंद का गाना प्ले करो और आपको ही हम डेडिकेट करना चाहते हैं, तो दिस वॉज द सॉन्ग दैट आई रियली रियली लव्ड। वैसे 90s का एरा ऐसा है कि आप कोई भी गाना कहीं से भी उठा के रिक्वेस्ट कर दोगे, वो गाना मेरा फेवरेट ही होगा, क्योंकि अपन भी 90s के बहुत बड़े फैन है कि नहीं। वेल अभी मुझे रिक्वेस्ट आई है रमेश की, और मुझे लगता है कि अभी जो दो गानों की रिक्वेस्ट मैं प्ले करने वाली हूँ ना, इनके बिना 90s अधूरा सा लगता है। हाँ जनाब, तो ये गाना कौन सा है? ये पियानो की धुन, कोई कैसे भूल सकता है साधना सरगम एंड उदित नारायण की आवाज का ये गाना, पहला नशा। आहा, इसे रिक्वेस्ट किया है रमेश ने, सो डेफिनेटली ये गाना अभी हम पूरा पूरा प्ले करेंगे। और ये जो अगला गाना है, ओ हो हो हो, प्यार चीज ही ऐसी है, कुछ कुछ होता है कि नहीं? इसके बिना तो ऐसा लगता है कि कोई भी प्लेलिस्ट पूरी नहीं है। अलका याग्निक एंड उदित नारायण की आवाज़ का ये बेहतरीन ट्रैक। तो ये दोनों ही खूबसूरत गाने आप पूरे पूरे आगे सुनने वाले हैं। और आप जो अभी सोच रहे हैं कि मैं कौन सा गाना सुनूं, सोचो जल्दी और रिक्वेस्ट करो 666-22-107 पर, 666-22-107 पर, अपने नाम के साथ अपने 90s वाली रिक्वेस्ट। ठीक है, हमारे लिसनर्स कुछ डिफरेंट एरा की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कहूंगी आज का थीम है सिर्फ और सिर्फ 90s। तो अपने डेडिकेशंस भेजें, स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: हर प्रोफेशनल शख्स इतना मसरूफ है जिंदगी में कि अगर उसे वक्त मिले और कोई उससे पूछे कि बैठिए जरा बताइए क्या चल रहा है. कहानी सुनने को मिलेगी जो सीधा आपके दिल पे जा लगेगी. इसलिए हम आपको इनवाइट करते हैं हमारे कैफे में, जहां आप में से ही एक शख्स हमारे साथ होगा कैफे 107 पर.
3: हर फ्राइडे शाम 7:15 बजे से FM 107 पर दो हवाले कबीर के साथ. आपके जहन में वजारत दाखला या उसके मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक कोई सवाल है? वजारत दाखला की किसी सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए या पुलिस के किसी शोबे की जिम्मेदारियों और खिदमात को जानना चाहते हैं? तो सुनिए प्रोग्राम पुलिस और आवाम.

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. द रिक्वेस्ट शो पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. एंड रियली आज की प्लेलिस्ट ना मतलब ऐसे कहते ना कि दिल पर एक अलग ही सुरूर पैदा कर रही है बिकॉज इट्स 90s. एंड व्हेन इट कम्स कि 90s का म्यूजिक हो तो दिल हमेशा ही खुश हो जाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स होते हैं, यादें होती हैं. स्कूल के दिनों में हमने परफॉर्मेंसेस भी की होती हैं, जैसे कि ये वाला गाना. ओहो, इस गाने में न जाने कितने ही जो परफॉर्मेंसेस हैं हर एक स्कूल में करवाए गए थे और बच्चे बस बिल्कुल ताल से ताल मिलाते थे. अलका याग्निक, उदित नारायण की आवाज़, गाना ताल से ताल मिला. हाँ जी, तो इस गाने की रिक्वेस्ट किसने की है? इस गाने की रिक्वेस्ट की है रिजवान ने एंड उमर ने. डेफिनेटली ताल के कुछ और भी गानों की रिक्वेस्ट आई बट अनफॉर्चुनेटली वी कैनॉट प्ले. सो हम आपके लिए टाइटल ट्रैक प्ले करेंगे. और उसके बाद एक ऐसे गाने की रिक्वेस्ट आई है जो कि है फिल्म अग्नि साक्षी का गाना. एंड 90s की वन ऑफ दी सुपर डुपर हिट फिल्म रही और इस पर्टिकुलर फिल्म के लिए नाना पाटेकर को नेशनल अवार्ड भी मिला. ओहो, एंड द सॉन्ग इज ओ यारा दिल लगाना, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज. सो ये दोनों ही रिक्वेस्ट आपकी राहों में आ रही है जनाब. तो वॉल्यूम बढ़ा लो, इन्जॉय करो. और आप क्या करोगे, आप भी अपने गानों की रिक्वेस्ट भेजो ना 6622107 पर, 6622107 पर, क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ 90s की यादें फुल वॉल्यूम पर प्ले होने वाली है. बने रहिए एफएम 107 पर, दिल से देसी. ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना ना

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
2: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर, फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
4: एब्सोल्यूट सिनेमा।
0: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर थर्सडे रात 9 बजे से आरजे फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
5: Yes, my desi audience, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी फरमीता द रिक्वेस्ट शो पर। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है और आई कैन सी कि हमारे लिसनर्स अपनी प्लेलिस्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं और एक से बढ़कर एक गानों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे लिसनर्स थोड़ा सा एतराज़ जता रहे हैं, अमिता हमारे गाने का क्या? देखिए आज 90s थीम है, तो अगर आप 2000s के गानों की रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा आज प्ले करना, है कि नहीं? चलिए अब अगली रिक्वेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसके लिए 3 शख्स ने रिक्वेस्ट की है। मोहम्मद है, राहिल है, सैयद हुसैन है एंड द सॉन्ग इज, इस गिटार के पीस को तो समझ ही गए होगे, विजयपथ मूवी का गाना है, अलका याग्निक एंड कुमार सानू की आवाज। राह में उनसे मुलाकात हो गई, डेफिनेटली द ब्यूटीफुल ट्रैक आपकी राहों में पूरा पूरा आएगा। और आपको पता है एक मज़े की बात, इस फिल्म के जो लीड्स हैं अजय देवगन, तब्बू, ये रियल लाइफ में स्कूल फ्रेंड्स रह चुके हैं और फिर देखो जब बड़े हुए तो मूवी में भी आ गए, है कि नहीं? और अब जो अगली रिक्वेस्ट मैं प्ले करने वाली हूँ, वैसे 90s की फिल्म आओ प्यार करे का ये गाना है, जो फिल्म तो बॉक्स ऑफिस में उतना कमाल नहीं कर पाई पर इसके गानों ने काफ़ी कमाल किया। कुमार सानू की आवाज़ है और ये इस गाने की रिक्वेस्ट की है अब्दुल कादर ने, और बड़े प्यारे मैसेज के साथ कि अमिता मेरी ज़िंदगी की मोहब्बत को ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ। सो डेफिनेटली ये दोनों ही गाने पूरे पूरे आपकी राहों में आने वाले हैं, तो बस वॉल्यूम बढ़ाइए, इंजॉय कीजिए और अपने नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स में खो जाइए। और हाँ, आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप भी हमसे शेयर कर सकते हैं 6622107 पर अपनी स्टोरी के साथ। कुछ ही देर में क्विज टाइम लेकर आ रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता. और द रिक्वेस्ट शो पर अब आपके फिल्मी नॉलेज को टेस्ट करने का टाइम आ चुका है. तो आपके लिए हम लेकर आए हैं
0: क्विज टाइम.
1: हाँ तो क्विज टाइम पे क्या होगा, एक गाना बीच से मैं आपको सुनाऊंगी एंड डोंट वरी इट्स अ 90s हिट सॉन्ग और आपको गाना पहचानना है. और अगर आपने पहचान लिया तो ये पूरा पूरा गाना आपके नाम.

सोचिए सोचिए कौन सा गाना है विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज में ये बेहतरीन सा गाना कौन सा है. इसका नाम लिखिए 6622107 पर 6622107 पर अपने नाम के साथ और फिर क्विज टाइम का ये गाना आपका हो जाएगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. पर अभी हम एक रिक्वेस्ट प्ले करेंगे. मोहम्मद बशारत की रिक्वेस्ट है एंड इट्स सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक. फिल्म का नाम है आशिकी और इसकी एक खास बात यह है कि पहले ये फिल्म नहीं बनने वाली थी, ये सिर्फ एक म्यूजिकल एल्बम था. और जब ये गाने पहले रिलीज हुए मतलब बन गए और महेश भट्ट ने इनको सुना, he loved it so much कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर होकर इस फिल्म की स्टोरी बना डाली. एंड दिस इज हाउ ये फिल्म और इसके गाने सुपर डुपर हिट हो गए. इनफैक्ट जब 90s में ये फिल्म रिलीज हुई ना, राहुल रॉय का वो हेयर कट उफ इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि हर सैलों में जाकर बंदे ना उसी कट को करवाते थे चाहे कितने भी पैसे लग जाए. सो डेफिनेटली ये दोनों मतलब ये पहला गाना तो नज़र के सामने और दूसरा गाना आपको मैंने टेस्ट करने के लिए दिया है. जल्दी से बताएं क्विज टाइम पर ये गाना कौन सा था, ठीक है, मतलब जो थोड़ी देर पहले प्ले किया. और अभी कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर दिल से देसी. स्टे ट्यून्ड.

0: एग्जैक्टली वो है आप, क्योंकि अगर आप ना हो तो द रिक्वेस्ट शो की शान कैसे बढ़ेगी।
1: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से
0: Yes, जनाब, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप और बिल्कुल हमारे शो का आखिरी पड़ाव चल रहा है और आपको मैंने क्विज टाइम में एक गाना बीच से सुनाया और कहा कि इस गाने को पहचानो। हाँ जनाब, विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज़ का ये बहुत ही हिट गाना है। एंड आई कैन सी हमारे लिसनर्स कह रहे हैं कि अमिता ये बाजीगर फिल्म का गाना है और कुछ कह रहे हैं कि ये दीवाना फिल्म का गाना है। ऑलराइट, ये दीवाना फिल्म का गाना है और द सॉन्ग इज ऐसी दीवानगी। और जिन्होंने सही जवाब दिया उनके नाम है कैसर, उनके नाम है प्रिंसन, आफ्ताब हैं और कौन कौन है जिन्होंने हमें सही जवाब देने की कोशिश की है, मुदस्सर अहमद भी है और शहजादा सलीम है और ये जनाब कौन है, इम्तियाज़ साहब हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिया है और एक और देखिए नाम जरूर लिखा करें, बड़ी आसानी हो जाती है। जीशान ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया क्विज टाइम पे पार्टिसिपेट करने के लिए। फिलहाल ये गाना आपकी राहों में पूरा पूरा आने वाला है, तो इसे इंजॉय कीजिए और यहाँ अपनी ए फॉर अमिता को इजाज़त दीजिए क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। मीनवाइल आप हमारे FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं और जाते जाते ये कहना तो बनता है हम हेरा ही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक। राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 5:01।
3: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: हाँ जी दोस्तों, वेलकम कहेंगे इस शो में जिसका नाम है विमेन वेलनेस। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी

0: दोस्त नाजिया। दोस्तों देखा जाए तो ये शो बहुत ही खास है और ये खास तौर पर ख्वातीन की सेहत, उनकी वेलबींग और अवेयरनेस के लिए तैयार किया गया है। आज हमारा ये सेकंड एपिसोड है और हर एपिसोड में हम हेल्थ के उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो हर फीमेल की जिंदगी से किसी न किसी तरह से जुड़ी है, लेकिन अक्सर उन पर हम खुल कर बात नहीं कर पाते। तो आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही खास टॉपिक को एक्सप्लोर करेंगे, इस पर बात करेंगे और ये हम सब के लिए जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वेल, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है PMOS। PMOS यानी पॉली एंड्रोक्रेन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और बहुत सी ख्वातीन PMOS को सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स का एक मसला समझती हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक कंडीशन है जो कि कहीं ना कहीं हमारे और आपके वेट, फर्टिलिटी, स्किन, हेयर ग्रोथ, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ओवरऑल हेल्थ को मुतासिर कर सकती है। तो हम जानेंगे कि PMOS की असल हकीकत क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह विमेन इस कंडीशन को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकती हैं। वेल, आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ, हमारे बीच डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर सिमरन, माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर समरीन, जो कि एक हेल्थ प्रोफेशनल हैं और इस फील्ड में एक लंबे अरसे से जो है वो अपने काम को बखूबी अंजाम दे रही हैं। डॉक्टर, हम आपको विमेन वेलनेस के इस ख़ास एपिसोड में वेलकम कहना चाहेंगे। खुश आमदीद।
1: थैंक यू नाजिया, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा डॉक्टर, आज जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमने कहा PMOS, जो कि एक अलग ही टर्म है, PCODs पे बात होती है, उस पर बहुत फ्रिक्वेंटली लोग बात करते हैं, एटलीस्ट टर्म से अवेयर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं PMOS से उतना ज़्यादा हम लोग जो हैं वो अवेयर नहीं है। तो पहले आप हमें ये बताइए डॉक्टर कि बहुत सी जो ख्वातीन हैं वो इसको सिर्फ और सिर्फ इरेगुलर पीरियड से जोड़ती हैं, तो क्या PMOS इससे कहीं ज़्यादा बड़ा मसला है?
1: नादिया, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर द वुमेन हेल्थ। POMS जो के एब्रिविएशन है पॉली एंडोक्राइन मल्टीपल ओवेरियन सिंड्रोम की, ये बेसिकली PCOS ही है। PCOS को 2026 में माहरीन ने नया नाम दिया है जिसको POMS कहा गया है। इसको पहले पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, या ख़वातीन में ये जो नाम मकबूल है वो PCOS के नाम से मकबूल है। इसका नाम चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? बीमारी भी वही है, इसके बेसिक्स भी वही हैं, इसके सिम्टम्स भी वही हैं, इसके मैनेजमेंट भी वही है, लेकिन बेसिकली एक ब्रॉड तरीके से इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि जैसे ये सिर्फ एक इरेगुलर पीरियड्स या इरेगुलर माहवारी का मसला नहीं है, बल्कि ये इंटरलिंक्ड है हार्मोनल इम्बेलेंस, हमारे जिस्म के अंदर जो मेटाबॉलिक चेंजेस आ रही हैं उनके साथ। ये सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहा ओवरीज को, बल्कि हमारे बॉडी इंसुलिन को, बॉडी ब्लड शुगर लेवल्स को, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इन सब चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। तो इस ब्रॉड इस डिज़ीज़ को ये ब्रॉड नाम देने की ज़रूरत ही इसलिए पेश आई कि एक जनरल कॉन्सेप्ट ख़त्म किया जा सके कि ये सिर्फ रिलेटेड है इरेगुलर पीरियड्स के साथ। दिस इरेगुलर पीरियड इज़ अ पार्ट ऑफ PCOS। इसको PCOS कहना ज़्यादा आसान है क्योंकि सारे लोग जो हैं इस टर्म से ज़्यादा फेमिलियर हैं, बट PMOS, PCOS, PCOD, दीज आर ऑल द वन एंड द सेम थिंग्स, द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम क्लिनिकल कंडीशन, जिससे कि ख़वातीन, तकरीबन हर खातून जो है इसको किसी ना किसी टाइम के ऊपर इसका शिकार हो सकती है। अब सवाल आपने ये किया कि क्या POMS जो है वो सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स ही हैं या कुछ और भी है? तो मैं आपको बताऊं कि हकीकत में इससे कहीं बड़ा मसला है जिससे हम सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि ख़वातीन रेगुलर पीरियड्स हुए, चलो जी इसको तो PCOS हो गया, PMOS हो गया। नहीं, इस जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, स्टार्ट इरेगुलर पीरियड्स, उसके बाद वज़न बढ़ना शुरू हो सकता है, वज़न बढ़ जाए वज़न कम करना मुश्किल हो जाता है, चेहरे और जिस्म पर एबनॉर्मल किस्म के हेयर ग्रोथ यानी बाल आना शुरू हो जाते हैं, थिक होते हैं, डार्क ब्लैक होते हैं, फेस के ऊपर, कमर के ऊपर, चेस्ट के दरमियान में एक्नीज, कील, मुहासे ज़्यादा हो सकते हैं और होना शुरू हो जाते हैं। ये यूजुअली यंग बच्चियाँ जिनमें पीरियड्स शुरू हो रहे होते हैं, ये प्रॉब्लम्स उनके अंदर ज़्यादा आते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है। और जो मेरिड ख़वातीन हैं या वो خواتین جو کہ ریپروڈکٹیو لائف میں ہیں ان کے لیے کنسیو کرنا مشکل ایک چیلنج بن جاتا ہے. مشکل تو نہیں کہوں گی.

0: बहरहाल कंसेप्शन हो जाती है. सो पीसीओएस या पीएमओएस एक ऐसी कंडीशन है जो औरत की मजबूरी सेहत के ऊपर असर डालती है और इसकी बरवत तशखीस और इसका मैनेजमेंट यानी इसका इलाज बहुत ज़रूरी है.
1: सही, बहुत ही अहम बात बताई डॉक्टर आपने कि जो पीएमओएस है वो सिर्फ पीरियड्स ही नहीं बल्कि पूरी हेल्थ का एक मामला है जैसे आपने कहा. अच्छा डॉक्टर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि पीएमओएस के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस इतनी कॉमन क्यों हो जाती है?
0: इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं या ये वजाहत करना शुरू मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं बताऊँ कि इंसुलिन क्या है.
1: जी,
0: इंसुलिन बेसिकली एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो अगर मैं इसको एक लेमन टर्म यूज़ करूं तो हमारा ब्लड शुगर्स के जो सेल्स होते हैं इंसुलिन इन ब्लड शुगर्स को सेल्स के लेवल के ऊपर लेके जाता है जहां पर ये ब्लड शुगर्स जो है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू एनर्जी में कन्वर्ट होती है और फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट ये एनर्जी डिफरेंट कामों के लिए इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. दिस इज इंसुलिन बेसिकली अ हार्मोन. अब पीएमओएस में क्या होता है कि बॉडी इंसुलिन तो बना रही है लेकिन हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं मुख्तलिफ वजूहात के बिना पे इस इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं करते. उनको नहीं पता चलता कि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन आ चुकी है जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं. नतीजे के तौर पे हमारी बॉडी सिग्नल्स भेजती है ब्रेन को कि जी इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है. ब्रेन मजीद इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है. सो समझाइए ये एक सर्कल बन जाता है और इस सर्कल को कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. बॉडी के अंदर इंसुलिन मौजूद तो है लेकिन हमारी बॉडी उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रही और मजीद इंसुलिन की डिमांड कर रही है. मजीद इंसुलिन आती है. अब यहाँ से इसकी बेसिक पैथोलॉजी शुरू होती है कि यहाँ से हार्मोनल इम्बेलेंस होनी शुरू हो जाती है. बॉडी ज़्यादा इंसुलिन बना रही है, हमारे जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, इरेगुलर पीरियड्स शुरू हो जाते हैं, जो हमारी ओवरीज हैं उनके वो एक हार्मोन जो कि जहाँ मैं मेंशन करूँगी जो कि आगे हमारे इस डिस्कशन में भी इसका जिक्र होगा एंड्रोजन जिसे कहते हैं उसकी स्क्रीशन ज़्यादा हो जाती है. तो ये सब मिल मिला के एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है जो कि बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस हार्मोनल इम्बेलेंस एंड देन सिम्टम्स. तो इस तरह से हम इसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं.
1: यानी आप कहीं ना कहीं कह रही हैं कि ब्लड शुगर और हार्मोन्स का जो कनेक्शन है उसे भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट.
0: एग्जैक्टली.
1: अच्छा डॉक्टर, अमूमन ये कहा जाता है कि पीएमओएस जो है वो ज़्यादातर या सिर्फ ओवरवेट वुमेन्स में ही होता है, तो क्या ये सही है या ये मिथ है?
0: नहीं, ये मिथ भी नहीं है और ये 100% करेक्ट भी नहीं है. एक जनरल इम्प्रेशन ये है कि जो ख्वातीन मोटी हैं उनमें पीसीओएस हो गया क्योंकि वो मोटी थी. हालांकि सिलसिला इसके उलट होता है. होता ये है कि जिन लोगों में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है उन लोगों में हार्मोनल बैलेंस ज़्यादा जल्दी बॉडी अडेप्ट करती है. जब वो हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, उसकी वजह से वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है. वज़न बढ़ने की वजह से पीसीओएस नहीं होता. अच्छा, अब एक दफ़ा जब हार्मोनल इम्बेलेंस हुए, वज़न बढ़ना शुरू हुआ, वज़न बढ़ने के बाद मजीद इम्बेलेंस हुआ, मजीद वज़न, तो अगेन एक विशियस साइकिल शुरू हो जाता है. तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने पूछा कि क्या सिर्फ ओबीस या मोटी ख्वातीन में ही होता है या नॉर्मल वेट की ख्वातीन में भी हो सकता है. ये नॉर्मल वेट की या इवन कम वेट की ख्वातीन भी इस मसले का शिकार हो सकती हैं कि अगर उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी वजह से प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए. तो आंसर टू योर क्वेश्चन, पीएमओएस सिर्फ मोटी ख्वातीन ही में नहीं बल्कि कम वजन और नॉर्मल वजन की ख्वातीन में भी हो सकता है.
1: अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगी कि पीएमओएस जो है वो कहते हैं कि फर्टिलिटी या फिर कंसीविंग पर भी असर डालता है, तो ये बात कहाँ तक सही है?
0: ना, दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू एक्चुअली. सो अब क्योंकि हम ख्वातीन की बात कर रहे हैं और पीसीओएस की बात कर रहे हैं, पीएमएस की बात कर रहे हैं कि जो कि शुरू ही तब होता है जब पीरियड्स शुरू होते हैं, जब एक दफ़ा बच्चों को ख्वातीन को पीरियड्स शुरू होते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 12 ईयर्स अब एक जो ग्रॉस रेंज है अप टिल एज ऑफ 55, इस पीरियड को हम फर्टिलिटी पीरियड कहते हैं. जहाँ पर फर्टिलिटी पीरियड क्या होते हैं कि जहाँ पर नॉर्मल साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, दरमियान में एग प्रोड्यूस होता है और वो एग जो है वो कंसेप्शन के लिए मैंडेटरी होता है. सवाल ये है कि क्या पीएमओएस ख्वातीन की फर्टिलिटी पे अफेक्ट करता है या नहीं? बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. और अगर मैं कहूँ तो कुछ गलत ना होगा कि वो ख्वातीन जिनको पीसीओएस है उनमें 70-80% ख्वातीन को कंसीव करने में मुश्किल

0: आप सुन रहे हैं विमेन वेलनेस आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुशामदीद। आप सुन रहे हैं शो विमेन वेलनेस, मैं हूं नाजिया आपके साथ। और डॉक्टर, हमारे पास यहां पर एक सवाल आया।

0: है एक हमारे लिसनर ये पूछ रहे हैं और उन्होंने जानने की कोशिश की है कि डॉक्टर अगर कोई लड़की जो है वो गैर शादीशुदा है और उसे महावारी के पहले पहला और दूसरे दिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है या दर्द होता है तो क्या ये एक आम बात है या उसे जो है वो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। और फिर उन्होंने पूछा है क्या किसी तरह से ये जो PMOS है ये सिम्टम्स तो नहीं है और कब आपको लगता है कि उसे दिखाना चाहिए डॉक्टर को।
1: अगर तो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं
0: और एज कह रहे हैं 18 इयर्स है।
1: ओके दैट्स फाइन। सो 18 इयर्स में पीरियड्स के पहले या दूसरे दिन पेन होती है। दिस इज नॉट स्पेसिफिकली द पार्ट ऑफ द PCOS, यानी हम इसको ये नहीं कह सकते इस बच्ची को PCOS है।
0: सही।
1: इसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कह सकते हैं। इसकी कुछ और वजूहात हो सकती हैं। तो अगर तो ये पेन एक या दो दिन रहती है और उसके बाद सबसाइड हो जाती है और बच्ची जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन के काम करना शुरू हो जाती है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पेन की इंटेंसिटी नहीं, दर्द जो है वो बढ़ता चला जा रहा है हर साइकिल के साथ, कि उसके जो है वो रोज़ का या स्कूल या कॉलेज या ऑफिस के जो इश्यूज हैं वो मुतासिर होना शुरू हो गए हैं, उसको छुट्टी लेनी पड़ती है, वो बेड से नहीं हिल पाती, देन दिस इज़ समथिंग बेटर कि आप जाएं और अपने फिजिशियन से ज़रूर एक दफ़ा राबता करें ये देखने के लिए, क्योंकि जो कंडीशन आप बता रहे हैं उसकी वजूहात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उस टॉपिक से जो कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको कि PCOS या PMOS कहते हैं।
0: सही। अच्छा, उन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया है कि सिर्फ दो दिन ही रहती है इशू, उसके बाद उसका सबसाइड हो जाता है।
1: तो इसका मतलब ये है कि प्रॉबेबली दिस इज़ द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। जब पीरियड्स आते हैं, हॉर्मोन्स जब विदड्रॉ होते हैं बॉडी से, बॉडी में कंजेशन होती है, उस कंजेशन की वजह से रिलैक्स होते हैं मसल और वो इस किस्म का पेन देते हैं। सो अगर तो पहले और दूसरे दिन हो और सेटल हो जाती है, दैट्स फाइन। लेकिन मैं फिर यही कहूंगी कि अगर ये कंडीशन मुतवातर रहे और लगता है कि वर्सनिंग होती जाए तो गिव योरसेल्फ 3 to 6 months। अगर सेटल नहीं होता तो बेटर टू सी सम डॉक्टर।
0: सही। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, क्या PMOS की वजह से, आपने जैसे पहले भी मेंशन किया, एक बार वापस से भी आपसे डिटेल में जानना चाहूँगी, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, फेस पर अनवांटेड हेयर्स का आ जाना, एक्ने होना, ये सारे इसी की वजह से हैं या और भी रीजंस हैं?
1: मुख्तलिफ रीजंस के अलावा PMOS एक बड़ा फैक्टर है ख़वातीन में इन सिम्टम्स का, जिसमें शामिल हैं बालों का गिरना, बाल थिन हो जाना, बॉडी के ऊपर हेयर ग्रोथ होना। वजह उसकी वही, शुरू से शुरू करेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो होता क्या है कि ओवरीज हमारी, मैंने जब पहले कहा था कि मेल हार्मोन बनाना शुरू कर देता है, नॉर्मल बनता है जो कि हमारी रेगुलर हेयर ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से मेल हार्मोन जिसका नाम एंड्रोजन्स हैं, एंड्रोजन्स बॉडी में लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ख़वातीन में मेल टाइप जो, यानी जो मर्द हजरात की तरह के मेल हेयर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आनी शुरू हो जाती है, जिसके अंदर बालों का गिरना और स्पेशली ये फ्रंट वाले बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, बाल थिन होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चियां या ख़वातीन या यंग लेडीज़ जो आती हैं हमारे पास, उनमें कोई पीरियड्स का प्रॉब्लम नहीं होता, कोई वेट का प्रॉब्लम नहीं होता, उनका मेन इशू सिर्फ ये होता है कि वो नोटिस कर रही हैं कि उनके चिन के ऊपर, उनके गालों के ऊपर, उनके अपर लिप्स के ऊपर बहुत थिक ब्लैक मोटे बाल आना शुरू हो गए हैं, अंडर आर्म्स में, बिकनी एरियाज़ में एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ वो फील करती हैं, एरियाज के कलर ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ यानी PMOS सिर्फ इरेगुलरिटी के साथ ही प्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ एक ये वाहिद फैक्टर भी हो सकता है कि जिसकी वजह से अगर आप जाएं अवेलुएशन कराएं तो फिर बेसलाइन प्रॉब्लम निकलती है कि आप PCOS डेवलप कर रहे हैं। सो आंसर टू योर क्वेश्चन, यस, बालों का गिरना, थिन होना, एक्नी, महासे, चिकनी जल्द, गंजेपन थोड़ा बहुत जो स्टार्ट होना शुरू होता है, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, ये सब जो है ये PMOS से ही रिलेटेड हैं।
0: ओके। अच्छा डॉक्टर, एक यहाँ पर हमें मैसेज है, हमारे लिसनर जानना चाहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी वाइफ के जो हैं वो बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ये एक बड़ी वजह हो सकती है?
1: सिर्फ एक चीज़ के ऊपर ये मेंशन करना कि सिर्फ यही इसकी, यानी PMOS ही इसकी वजह है बाल गिरने की, तो मैं कहूँगी कि नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि यह उनको PMS हो सकता है। बाल गिरने की और बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनको रूल आउट करना ज़रूरी है। और दूसरी बात नाज़िया, मैं आपको ये बताऊँ कि सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर एक चीज़ हम देखें ये नहीं कह सकते कि इस खातून, ये खातून जो है वो PCOS का शिकार है या PMOS का शिकार। फॉर एग्जांपल किसी के इरेगुलर पीरियड्स हैं तो ये PMS, या वज़न बढ़ा है या PMS, नहीं, PMOS डायग्नोस करने के लिए एक बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसके अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं जिसके अंदर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड होते हैं जब ये चीजें जब ये क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं तब हम जाके किसी को लेबल करते हैं कि यस ये खातून जो है वो PMS का शिकार हो रही हैं या हो चुकी हैं तो आंसर टू योर क्वेश्चन अगर खातून के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो इनको बाकी चीज़ें भी रूल आउट करने की बहुत ज़रूरत है
0: सही और मेरे ख्याल से अपनी डाइट का ख्याल करना वो भी देखना
1: कि बैलेंस डाइट या एग्जैक्टली इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट
0: वो भी एक इम्पॉर्टेंट है अच्छा डॉक्टर यहाँ पे एक और हमें मैसेज है और यहाँ पर ये लिसनर हमसे पूछ रहे हैं कि कौन कौन से मेजर सिम्टम्स हैं PMOS के
1: कि जिसके लिए आपको हाँ,
0: जो कंसल्ट करना चाहिए हमें डॉक्टर्स
1: एग्जैक्टली सो पहली बात पीरियड्स का इरेगुलर होना अब उस इरेगुलरिटी का मतलब क्या है कि दो पीरियड्स के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होता चली जा रही है दो दो तीन तीन महीने ख्वातीन अपने पीरियड्स मिस कर रही हैं साथ में ही ब्लीडिंग की अमाउंट कम होती चली जा रही है साथ में ही उनको लग रहा है कि उनका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वेट बढ़ रहा है ऑल्दो वो इतना खा नहीं रही या वो एक्सरसाइज भी कर रही हैं वो जो वेट बढ़ रहा है लेकिन वो कम नहीं हो रहा या रेजिस्टेंट हो गया है जैसे हेयर ग्रोथ की भी हमने बात की एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ वो नोटिस करना शुरू कर देती हैं चिन स्पेशली चिन के ऊपर बैक के ऊपर अंडर आर्म बैक और चेहरे के ऊपर एक्नीज और चिन और अंडर आर्म्स और बिकनी एरिया के अंदर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ दीज आर द मेन इश्यूज दीज आर द मेन साइंस सिम्टम्स के जिसको उनको वो अवैल्यूएट करा लें तो बहुत बेहतर है
0: बहुत बेहतर है अच्छा डॉक्टर क्या PMOS को पूरी तरह से रिवर्स किया जा सकता है या सिर्फ इसे मैनेज ही किया जा सकता है
1: इट्स अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन
0: अच्छा
1: जैसे अभी हमने कहा कि PMOS सिर्फ एक चीज़ नहीं है इट्स अ मल्टी फैक्टोरियल इशूज़ जो कि खातून की हेल्थ के ऊपर असर अंदाज होते हैं मुख्तलिफ तरीके से तो ये कहना कि इसको कम्प्लीटली रिवर्स किया जा सकता है ये शायद बहुत मुश्किल होगा मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नामुमकिन है लेकिन मुश्किल ज़रूर है लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट इस बीमारी का एक प्लस पॉइंट जो कि मैं समझती हूँ ये है कि अगर हम इसको अप्रोप्रिएटली मैनेज करें तो इसके सिम्टम्स इतने अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाते हैं कि लगता है कि आपका PCOS रिवर्स हो गया है ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये रिवर्स हो सके मसलन अगर हम मेरा ख्याल है आगे इस बारे में बात थोड़ी सी करेंगे लेकिन मैं टच कर दूं अगर हम अपना वज़न कंट्रोल करना शुरू कर दें अगर हम अपनी डाइट बैलेंस कर लें अगर हम वर्जिश अगर नहीं कर रहे तो वर्जिश की तरफ आना शुरू हो जाए तो सबसे पहला जो चेंज हम नोट करेंगे अपने अंदर वो ये कि हमारी जो एंजाइटी है स्ट्रेस लेवल कम हो रहा है हम रिलैक्सेशन की तरफ जा रहे हैं और ये रिलैक्सेशन इट्सेल्फ पीरियड्स को कंट्रोल करने में मुआवन साबित होती है तो ये चीज़ें आंसर टू योर क्वेश्चन के रिवर्स करना पॉसिबल है या नहीं इट्स अ वेरी लॉन्ग डिबेट लेकिन इसको कंट्रोल ज़रूर इस तरह से किया जा सकता है कि इम्प्रेशन मिल सकता है कि हमारी प्रॉब्लम अब रिजॉल्व हो गई है और खातून कैन खातून जो है वो आराम से कंसेप्शन जो है वो इजीली हो जाती है और दे कैन हैव अ नॉर्मल लाइफ नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी विद अ वेरी गुड हेल्दी लाइफ बेबी एट द एंड ऑफ द डे
0: राइट अच्छा डॉक्टर यहाँ पर जो है एक लिसनर हमसे पूछ रहे हैं कि अगर फीमेल की एज ज़्यादा है फॉर एग्जांपल लाइक 40s में है प्लस में है तो क्या रिवर्स मतलब हो सकता है या एक्सरसाइज और डाइट से रिवर्स हो सकता है या चांसेस कम है
1: देखिए मैं फिर वही कहूँगी कि रिवर्स का जो लफ्ज़ है ना वो इट्स अ वेरी ब्रॉड थिंग ठीक हो सकती है ठीक हो सकता है आपके सिम्टम्स डेफिनेटली ठीक हो सकते हैं सिम्टम्स की जो बात अभी हम कर रहे हैं कि आपको बॉदर क्या कर रहा है आपको पीरियड्स बॉदर कर रहे हैं टू सम एक्सटेंड क्योंकि 40s के बाद टाइम वो आ जाता है जो कि पीरियड्स के कमी वाला ख़त्म होने की तरफ चल रहे हैं लेकिन चीज़ें सेटल हो सकती हैं आप अपने वजन को कंट्रोल बिल्कुल कर सकती हैं 40s के बाद इवन अगर आप कंसीव करना चाहें तो आप एक प्रॉपर एवेल्यूएशन प्लान करके कंसेप्शन भी पॉसिबल हो सकती है So, coming back, age is only a number, basically. जो मैटर करता है वो ये मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे लेके चलती हैं और आप अपने हेल्थ को किस तरह से मेंटेन करती हैं which can possible at any point of life.
0: Beautiful.
1: Age is only a number.
0: Age is just a number, जैसे आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि आप अपनी health को किस तरह से prioritize कर रही हैं, कितना important और अहम समझ रही हैं और कितनी ज़्यादा dedication से आप अपनी diet और exercise या अपने lifestyle पे काम कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर जब आपसे बात हो रही थी आपने mention किया था diet के बारे में भी और हल्के फुल्के अंदाज में आपने exercise पे भी emphasize किया तो मैं यहाँ पर ये पूछूंगी कि जो खातें जिनको ऑलरेडी फीमेल्स को डायग्नोज हो जाता है कि PMOS है तो उनके लिए ज़्यादा क्या अहम हो जाता है, डाइट ज़्यादा अहम होती है या फिर एक्सरसाइज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है?
1: अगर हम मैनेजमेंट की बात करें या अगर हम अपने एक हेल्दी मेंटेन रूटीन लाइफ को मेंटेन करने की बात करें तो डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम है। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ अपनी डाइट के ऊपर फोकस करेंगे तो हम PMOS हमारी ख़त्म हो जाएगी, या ठीक है हम जो भी खाएं लेकिन हम दबा के एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारी PMS ठीक हो जाएगी, तो ये ट्रू नहीं है। उसकी अगर मैं आपको वजह बताऊँ एक बहुत उसके अंदर तो सेहतमंद ग़िज़ा, बैलेंस्ड डाइट, वज़न कम करने में और हार्मोन्स को बैलेंस करने में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम एक बैलेंस डाइट जो है हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बहुत बहुत मदद देती है, जबकि दूसरी तरफ जो एक्सरसाइज है वो बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि बेसिक कल्प्रेट है सारी कहानी का, तो वर्जिश जो है एक्सरसाइज जो है वो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है जो इन टर्न अगेन वज़न कम करने में मदद देती है, आपके मूड को बेहतर बनाती है, आप बहुत स्ट्रेस रिलीव होती है, एंजाइटी रिलीव होती है। सो ये एंजाइटी और स्ट्रेस रिलीव होना भी वज़न कम करने में हेल्पफुल है, और जब वज़न कम हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो रही है पीरियड्स के मसले सेटल हो रहे हैं। तो कहने की बात ये कि डाइट, बैलेंस्ड डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं इसको परसेंटेज में कहूँ तो आई थिंक के डाइट जो है वो कंट्रीब्यूट करती है तकरीबन 60-70% ऑफ मैनेजमेंट, और एक्सरसाइज जो है इस कंट्रीब्यूट करती है तकरीबन 30-40%, विच इज अगेन तो दोनों के दोनों एक वाइटल रोल प्ले करते हैं इस प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए।
0: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर समरीन, यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात की और आपने परसेंटेज देके बता दिया कहीं ना कहीं डाइट पे थोड़ा सा ज्यादा काम करने की
1: जरूरत है। एग्जैक्टली बिल्कुल
0: जरूरत है। चलो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो इस टॉपिक पर और भी सवाल है जो हम डॉक्टर से जानने की कोशिश करेंगे। वेल आपका भी कोई सवाल है तो आप डेफिनेटली भेज सकते हैं, नंबर है 666-22107।
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
3: आज ही राब्ता करें
2: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
5: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से RJ सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, देसी। कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जिनका काम बोलता है, उनकी मेहनत उनकी लगन हजारों लाखों को इंस्पायर करती है, पर ऊंची कुर्सी ये पोजीशन के पीछे एक शख्स होता है जिसकी कहानी लोग जानना चाहते हैं, और वही कहानी हम पहुंचाएंगे आप तक। ये बातें होंगी थोड़ी सी प्रोफेशनल और बहुत सारी पर्सनल, तो सुनिएगा जरूर एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमेरात को शाम 5 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: दोस्तों रमजान का मुबारक महीना रहमत और बरकत का महीना है। इफ्तार का वक्त करीब आता है तो अक्सर लोग जल्दी में गाड़ी तेज चलाने लगते हैं, मगर याद रखें इफ्तार से पहले हद से ज्यादा रफ्तार ट्रैफिक हादसात की अहम वजूहात में से एक है। सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। तेज रफ्तार में एकदम से ब्रेक लगाने पड़ते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम होता है और एक छोटी सी गलती बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है। इसलिए हमेशा इफ्तार से पहले रफ्तार आहिस्ता रखें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, सिग्नल और लेन डिसिप्लिन की पाबंदी करें, मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें और अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो कहीं साइड पर प्रॉपर पार्किंग में गाड़ी लगाकर थोड़ी देर आराम कर लीजिए। इफ्तार के वक्त आपको घर पहुंचना है मगर महफूज पहुंचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो होशियार रहें, एहतियात करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी बचाएं, रफ्तार कम रखें, सिग्नल फॉलो करें, सेफ डिस्टेंस बरकरार रखें, सिर्फ कुछ मिनट बचाने के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में मत डालिए। वजारत दाखिला का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारे लिए अहम है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: سامنے کرام، عربی زبان کی مشہور تنزیہ کہاوت ہے حافظ الحب ودافق الدب، اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی جو پیسے پیسے پر بخل کرتا ہے، اپنی ضروریات اور گھر والوں پر خرچ کرنے سے کتراتا ہے، لیکن جب کسی غیر اہم یا فضول چیز پر آتا ہے تو ہاتھ کھول کر خرچ کرتا ہے۔ یہ کہاوت ایسے شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو اپنے اہل و عیال کی ضروریات میں تنگی کرتا ہے مگر نمود و نمائش یا غیر ضروری چیزوں پر بے دریغ پیسہ بہا دیتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اس طرح کے کئی جملے اور کہاوتیں رائج ہیں جو اس صورتحال کو ظاہر کرتی ہیں۔ ویسے کہتے ہیں نا، کپڑے کی جیب خالی مگر باتیں لمبی چوڑی، یا پھر گھر میں فاقے باہر دکھاوے، یعنی اہل خانہ بھوکے رہے مگر دنیا کے سامنے شان و شوکت دکھائے۔ دوستوں، یہ سب کہاوتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اصل سخاوت وہ ہے جو اپنے گھر اور ضرورت مندوں سے شروع ہو، ورنہ جو انسان اپنے اولاد اور اہل خانہ پر بخل کرے مگر غیر ضروری چیزوں پر دل کھول دے، اس کی فیاضی اصل میں تماشا ہی ہے۔
7: آپ سن رہے ہیں ویمن ویلنس آر جے نازیہ کے ساتھ، صرف FM 107 پر، دل سے دیسی۔
0: Right guys, ایک بار واپس آپ سبھی کو کہیں گے ویلکم، خوش آمدید اس شو میں جہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں PMOS پر، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں۔ ڈاکٹر سمرین، ہم آپ سے اب یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمیں بتائیے، اگر ڈاکٹر کئی سالوں تک PMOS کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، اسے مینج صحیح طریقے سے نہ کیا جائے، تو کس طرح کا اثر ہو سکتا ہے ہیلتھ پر؟
1: نازیہ، بہت ویلڈ کوسچن ہے۔ بینگ اے فیمیل، ہم جو خواتین ہیں ہم یہ سوچتی ہیں کہ ہم گھر پہ رہتے ہیں، ہمارا کام ہے گھر کا کام کرنا، ہمارا بچے ہماری رسپانسبلٹی ہیں، اور ہسبینڈ اور فیملی اور سوشلز۔ خواتین، بینگ خواتین، اپنی صحت کو کبھی بھی ترجیح پہ نہیں رکھتی، جو کہ ایک صحیح اور مناسب، میں کیا کہوں کہ یہ ایک ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک تھاٹ پروسیس نہیں ہے۔ آپ کا سوال کہ اگر کچھ چل رہا ہے زندگی میں، پیریڈز نہیں ٹھیک آ رہے ہیں، وزن زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ابھی جاؤں گی ڈاکٹر کے پاس، پھر دکھاؤں گی، پھر دکھاؤں گی، کرتے کرتے کرتے کرتے چیزیں بہت کانسیکوینسز ان کے گریو ہو جاتے ہیں، یہ صحت کے اوپر بہت منفی اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم شروع کریں پیریڈ سے، پہلے ہوئے کیا، پیریڈز ارریگولر ہوئے، اس کے بعد بہت ہی ڈیلے ہونے شروع ہوئے، اس کے بعد جلدی ختم ہو گئے، جو کہ پیریڈز ختم ہونے کی ایج ہے اس سے پہلے ہو گئے ختم، کنسیو کرنے میں پرابلم ہونا شروع ہو گئی، کنسیپشن نہیں ہوئی، مسکیریجز ہو گئے، یہ پرابلم ہو سکتی ہے، وزن مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے، جو ہمارے یوٹرس ہے جس کو کہ ہم بچہ دانی کہتے ہیں، اس کی جھلی متورم ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کی جھلی کے اوپر جو ہے وہ تھک ہونی شروع ہو جاتی ہے، ہماری بند ہو گئی جلدی، تھک پہ تھک ہوتی چلی گئی، ہم نے اس کی کیئر نہیں کی، اس میڈیکل ٹریٹمنٹ سارٹ آؤٹ نہیں کی، خدا نخواستہ اینڈ اپ جو ہے وہ ہم انڈومیٹریل کینسر کے اوپر ہم اینڈ اپ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اس کا نہیں توجہ دی، چلتا چلا گیا ایشو، پیریڈز بند ہو گئے، ٹھیک ہے اب ہم ٹھیک ہیں، اب تو پیریڈز بند ہو گئے، اب دکھا کے کیا کرنا، آگے چل کے ڈائبٹیز ہونے کے چانسز کئی گنا بڑھ جاتے ہیں، دل کی بیماریوں کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، انگزائٹی ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے، چہرے پہ کیل مہا سے چھائیاں جلدی آتی ہیں ایکسیسیو ہیئر گروتھ ہوتی ہے آپ کی مینٹل ویل بینگ متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور غرض یہ کہ اگر آپ اس کو نگلیکٹ کریں یا اس کی ٹائم کے اوپر کیئر نہ کریں اور ٹائم کے اوپر پراپر مینجمنٹ نہ شروع کریں تو اس کے جو ہیں صحت کے اوپر بہت منفی اثرات آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کو پھر مینج کرنا اور کنٹرول کرنا وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے
0: صحیح بہت ہی اچھی بات بتائی اچھا یہاں پہ پھر کسی نے شاید وہی سمپٹمس والا سوال پوچھا تو آئی تھنک وہ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں یا ڈاکٹر اقبال پھر سے واپس سے کیا
1: نو پرابلم
0: بتانا چاہیے کہ سمپٹمس جو ہیں یہ کوئی پوچھ رہا ہے ہم سے
1: جی جی کہ کیا سمٹمز ہیں
0: کہ جب
1: ہمیں کہ ہمیں جب ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا بالکل نو پرابلم ایکچولی دس از اے ویری کی کوسچن فار اینی بڈی ٹو نو کہ ہم نے جانا کب ہے ڈاکٹر کے پاس ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے جانا کب ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ پیریڈس شروع ہوئے لیکن اب پیریڈس کے درمیان میں گیپ آنا شروع ہو گیا پہلے 10 دن ڈیلے ہوئے پھر مہینہ ڈیلے ہوئے پھر 2-2 مہینے نہیں آتے وزن ہے کہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے حالانکہ کھا اتنا نہیں رہے ہیں بیلنس ڈائٹ بھی کھا رہے ہیں واک بھی چل رہی ہے وزن بڑھ گیا ہے کم نہیں ہو پا رہا جسم کے اوپر اب نارمل ہیئر گروتھ شروع ہو گئی ہے چن کے اوپر انڈر آرمس کے بکنی ایئرس کے اوپر تھک بال آنا شروع ہو گئے ہیں بالوں کی جو ہے جو جگہ ہیں وہاں پر بلیک بلیک اسپاٹس پڑنے شروع ہو گئے ہیں چکنی جلد ہونی شروع ہو گئی ہے سو دیز آل آر دا سمٹمس کہ اگر آپ دیکھیں کہ 3-4 مہینے کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ مسئلے ہیں کہ چلتے چلے جا رہے ہیں اگر میرڈ ہیں تو کنسیو نہیں ہو پا رہا حالانکہ باقی سب بھی کر کے دیکھ لیا سو یہ وہ سمٹمس ہیں کہ جس میں آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کا پراپر معائنہ ہو سکے تاکہ آپ کے پراپر ہم بلڈ ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ کرا سکیں ڈائگنوز کر سکیں اور پھر اپروپریٹ مینجمنٹ سٹارٹ کر سکیں
0: صحیح تو آپ نے ایک بار واپس سے بتا دیا بہت شکریہ ڈاکٹر یہاں پر آئے تھے ایک چھوٹا سا ہم بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو کچھ اور باتیں جو اب ہمیں پوچھنی ہے اور پھر اس ٹاپک کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے اس طرف بھی بڑھیں گے فی الحال دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں نمبر ہے 666-22-107 یہاں پر آپ جو ہے اپنا سوال ہمیں بھیج سکتے ہیں ابھی کے لیے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے اس پار
8: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تلاوت تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ پروگرام تحفیم القرآن اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: اس دنیاوی زندگی میں صبر، شکر اور محبت ہی سب کچھ ہے. صبر مصیبتوں اور پریشانیوں کو ٹالتا ہے، شکر نعمت بڑھاتا ہے، اور محبت خوشیوں کا خزانہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان تینوں نعمتوں سے مالا مال رکھے. خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے. یاد رکھیے، زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے. خوش رہا کیجیے. پریشان ہونے سے کل کی مشکل دور نہیں ہوتی، بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بری کھڑی، برے لوگوں اور بری نظر سے ہمیشہ محفوظ رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے. یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے. البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے. دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے، اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے. آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے. سامعین کرام، آج ہم ایک ایسی دعا پر بات کریں گے جو ہر مسلمان کی دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے. والدین کے حق اور ان کے عظیم قربانیوں کی یاد دہانی ہے اس دعا میں، اور اس دعا کا ذکر قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا ہے. ہمارے کرام، اس دعا کے دو پہلو ہیں. ایک تو ہمیں اپنے ماں باپ اور والدین کے لیے بھی اس طرح کی دعائیں ضرور کرنی چاہیے، ساتھ ساتھ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی وہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بڑے ہو کر مجھے یہی دعا کریں گے میرے لیے، تو مجھے بھی رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، صبر کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے. ویسے عمومی طور پر، فطری طور پر، ماں باپ ہر کوئی اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کا ہی معاملہ کرتا ہے، لیکن بعض اوقات ہم بھی کچھ زیادتی کر لیتے ہیں، تو اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو یاد رکھیں کہ بھائی، ہم جیسے ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے یہی دعا کریں گے. ربی، اے رب، اے میرے رب، یعنی وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا، پالا اور نعمتیں عطا فرمائی. ارحمہما، والدین پر اپنی خاص رحمت فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کما ربیانی صغیرہ، جیسے کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، میری ضروریات پوری کیں، میری تکلیفیں برداشت کی اور اپنی خواہشات قربان کر کے میری پرورش کی. تو سامعین کرام، والدین کے احسانات کا بدلہ دینا تو ممکن نہیں، تو ان کے لیے ہر وقت ہماری طرف سے سب سے بڑی خدمت یہی ہو سکتی ہے کہ ان کے لیے ہم رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہیں، صحت و عافیت کی دعا کریں، اور مغفرت کے حوالے سے والدین کے لیے کافی سارے ایسی دعائیں آئی ہیں قرآن میں، جہاں مختلف قصوں میں مختلف طریقے سے والدین کے لیے بالخصوص دعا کا ذکر ہے. تو سامعین کرام، اس دعا کا جو تربیتی پہلو ہے، اس پر میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں قرآن نے انسان کو اس کی طفولیت یاد دلائی کہ جب وہ بالکل بے بس تھا، والدین نے اس کی ہر ضرورت پوری کی، تو یہاں ہر ایک کے لیے بچپن کی یاد دہانی ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح معاملہ کریں. جب والدین ضعیف ہو جائے، ان کی طبیعت میں کمزوری یا چڑچڑاپن آ جائے، تو بھی ان کے ساتھ شفقت، احترام اور صبر کا معاملہ کرنا ضروری ہے.
4: آپ سن رہے ہیں ویمن ویلنس RJ نازیہ کے ساتھ صرف FM 107 پر. دل से देसी।
5: Right guys, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम इस शो में जिसका नाम है Women Wellness। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नाजिया, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समरीन। और आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक था या है PMOS। और अब हमारे पास बस बहुत ही टाइम कम बचा है, तो झटपट से कुछ और सवाल हैं जो हम डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे। अच्छा डॉक्टर, PMOS जो है वो सिर्फ फिजिकल हेल्थ का मसला है या आपको लगता है कि वेमेन की जो है मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी इससे मुतासर होती है?
6: बेसिकली डेफिनेटली PCOS जो है ये एक जैसे मैंने कहा कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रॉब्लम है जो ना सिर्फ ख्वातीन की फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। हो ये रहा है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बयान करूं, कि वज़न ज़्यादा होता चला जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं वज़न कम नहीं हो रहा, पीरियड्स इरेगुलरिटी हो रही है, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, बाल आ रहे हैं, दवाइयाँ ले रहे हैं, एक्ने ख़त्म नहीं हो रही, तो मिजाज में चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। चिड़चिड़ापन जब ये परसिस्टेंट रहता है आगे जाके एंग्जाइटी के बाद डिप्रेशन। ख्वातीन इस प्रॉब्लम की वजह से डिप्रेशन में भी जा सकती हैं कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम क्या है कि मैं ठीक हो ही नहीं पा रही, और वहाँ से फिर कॉन्सिक्वेंसेस ग्रेव होना शुरू हो जाते हैं। ख्वातीन में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आना शुरू हो जाती है अपनी अपीयरेंस को लेके, कि मोटापा है कि झड़ता चला जा रहा है, बाल आ रहे हैं, सर के बाल गिर रहे हैं, लुक्स इम्पेयर हो रही हैं, बहरहाल मतलब ये चीज़ें आपकी मेंटल हेल्थ को, सो ना सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि ख्वातीन की मेंटल हेल्थ भी इस प्रॉब्लम से मुतासिर होती है।
5: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, क्या PMOS जो है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी रिस्क बढ़ाती है?
6: बिल्कुल डेफिनेटली, जो हमने आपने पहले सवाल मुझसे पूछा था कि क्या हो अगर हम इसको ना मैनेज करें और इसको ट्रीट किए बगैर छोड़ दें, तो ये होगा अगर हम इसको निगलेक्ट करेंगे, अगर हम इसकी प्रॉपर केयर नहीं करेंगे और मैनेजमेंट प्रॉपर टाइम पे नहीं शुरू करेंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में लेवल बढ़ते बढ़ते बढ़ते वो इतना बढ़ जाएगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ का ख़तरा आ जाता है। और इन ख़वातीन जो कि PCOS से सफ़र करती हैं अर्ली यंग एजेस के अंदर, उनके अंदर डायबिटीज़ होने के चांसेस नॉर्मल ख़वातीन से कहीं ज़्यादा होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डेफिनेटली खून की नालियाँ तंग होनी शुरू हो जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल के जो प्लेक्स हैं वो नालियों के अंदर जमना शुरू हो जाते हैं, नतीजा निकलता है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ब्लड खुदा न खास्ता हार्ट अटैक के चांसेस हो सकते हैं, खुदा न खास्ता जिस्म के ऊपर जो कहते हैं फालिज पैरालिसिस अटैक्स होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। सो इसको हम इतना आसानी से लेके कि नहीं ये तो खुद ही ठीक हो जाएगा, ये एक मिसकंसेप्शन है मेरा ख्याल है। हमें इसके बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना हमारी अपनी जिम्मेदारी है।
5: बहुत सही, बहुत ज़बरदस्त बात। और बिल्कुल ही अब क्लोजिंग क्वेश्चन की तरफ डॉक्टर, अब मैं आपसे यही बस चाहूँगी जानना कि जो PMOS के साथ जो फीमेल्स जो हैं वो जी रही हैं या फिर वो इसको इनकाउंटर कर रही हैं, तो आप उन्हें एक मैसेज क्या देना चाहेंगी?
6: वेरी इम्पोर्टेंट, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई खातून PMOS का शिकार है तो इसकी गलती नहीं है। इट्स अ क्लिनिकल कंडीशन, इट्स अ फिजिकल कंडीशन जो कि किसी भी खातून के साथ हो सकती है। अगर हो गई, अगर हमने उस अगर हम डायग्नोज हो गए कि हमें ये प्रॉब्लम चल रही है, तो तशखीस अगर हो गई तो उसको मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है। और हम सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर अर्ली स्टेज के ऊपर है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और अपने सेल्फ कंट्रोल के थ्रू इसको बड़े आराम से मैनेज किया जा सकता है। आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं, आपकी कंसेप्शन नॉर्मल हो सकती है, आपका आपकी अपीयरेंस बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल रह सकती है। तो ये सिर्फ पीरियड्स की इरेगुलरिटी नहीं है बल्कि ये एक हार्मोनल और मेटाबॉलिक इशू है जिसको टाइमली एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और ये बिल्कुल हो सकता है अगर ख़वातीन अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी डाइट पे, अपनी एक्सरसाइज पे एम्फसाइज करें, मामूल बनाएं, और रेगुलरली जो है वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अपनी क्लिनिकल कंडीशंस को रीएवैल्यूएट कराती रहें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैनेज करना, इसके साथ ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। एक टाइम आएगा कि ये चैलेंजिंग भी नहीं रहेगा, तो मैं ये कह सकती हूं कि पीसीओएस के साथ जिंदगी मुश्किल जरूर हो सकती है लेकिन चैलेंजिंग नहीं हो सकती और आप अपने आप का ख्याल रख के हर मुश्किल से बड़ी आसानी के साथ जो है उसको एनकाउंटर कर सकते हैं
5: बिल्कुल सबसे पहले होता जैसे आपने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे आइडेंटिफाई करो
6: एग्जैक्टली
5: जैसे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन ढूंढ भी लेते हैं बहुत शुक्रिया डॉक्टर कि आपने वक्त निकाला और इतनी प्रैक्टिकल और इतनी कीमती मालूमात हमारे ऑडियंस के साथ शेयर की इस टॉपिक के हवाले से थैंक यू वंस अगेन
6: वेलकम नाज़िया मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आपके साथ प्रोग्राम करके आई होप के इन बातों से ख्वातीन अपने आप को वैल्यूएट करके उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस वक्त डॉक्टर से रुजू करना कितना ज़रूरी है
5: ज़रूरी है बिल्कुल बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं और आज दोस्तों हमने बात की थी PMOS पर और इस हवाले से हमने ये समझा और जाना कि ये सिर्फ इरेगुलर पीरियड्स का नाम नहीं है बल्कि हार्मोनल और मेटाबॉलिक कंडीशन है जो औरत की सेहत के हर तरीके पहलुओं को जो है वो कहीं ना कहीं मुतासर कर सकती है तो जैसा डॉक्टर ने कहा कि आप अपनी सेहत को टॉप प्रायोरिटी पर रखें अपना ख्याल रखें और आज जो बातें डॉक्टर ने हमारे साथ शेयर की हैं अगर आपको पसंद आई हैं और यूज़ है तो डेफिनेटली अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए जाते जाते बस यही कहूंगी याद रखिए सेहतमंद जिंदगी की बुनियाद जो है वो है अवेयरनेस और टाइमली केयर विद दिस मैं नाज़िया आपसे इजाजत लूंगी देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: हाँ जी हबीबी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे फजील के साथ हैं आप। 6:08 हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अब आ जाते हैं हल्के आज से सवाल पे। अच्छा, सवाल से आने से पहले आज मैं एक वीडियो देख रहा था और ये वीडियो थी भाई स्काई डाइविंग की। और मेरा एक सपना है जिंदगी में यार, कुछ भी हो स्काई डाइविंग करेंगे। तो कैसे ये स्काई डाइविंग का सपना धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फेड हो रहा है मैं वो बताऊं भाई। यार मैंने कभी सोचा नहीं था कि स्काई डाइविंग करूंगा और फिर उसके बाद ऐसी उम्र एक आ जाएगी जहां पर हालत जो है वो पतली होने लगे। क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि यार अरे स्काई डाइविंग भी करेंगे, बंजी जंपिंग करेंगे, आलाना करेंगे, फलाना करेंगे, और फिर वो एक रोप वाला होता है कि एक तरफ से दूसरी तरफ रोप पे लटक के जाएंगे, तो ये सारे सपने पहाड़ों पर पूरे होते हैं। तो सबसे पहले मैं वो रोप वाला मैंने करा, सबसे पहले जब मैंने वो करा था तो मज़ा आया। फिर थोड़ी और एज बढ़ी, फिर मैंने पैराग्लाइडिंग करी, उसमें भी मज़ा आया भाई साहब। फिर जब मैंने दोबारा पैराग्लाइडिंग करी तब तक एज और बढ़ गई थी। फिर मेरे को धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि भाई जैसे जैसे आपका आपकी उम्र बढ़ती है ना और आपका वज़न बढ़ता है, वैसे वैसे आपकी हट लेती है भाई, आपकी हालत जो है वो पतली होने लगती है। और ये मेरे को रियलाइज़ हुआ है स्काई डाइविंग तक पहुँचते पहुँचते मेरी बहुत पतली हो गई। जैसे अब देखो सिंपल सी चीज़ है, मैं अभी कुछ 1.5 साल पहले मनाली गया भाई, मेरे को दिखा बंजी जंपिंग। अब अंदर से क्या था, क्यूरियोसिटी की सालों से सोचा हुआ है कि हाँ सालों पहले जब सोचा था तो कर लेंगे यार, तो मैं तैयार हो गया। और जब दूर से दिख रहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनने पैरों में रस्सियाँ वाला कर वो सब बांधी, फिर उन्होंने शूज़ कहा टाइट कर लो, मैं शूज़ टाइट कर लिया। फिर उनने वो सारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं है ना, वो अट्टा पट्टा सब लगा दिया भाई ने। फिर उसके बाद वो तैयार होकर रैंप पे लेकर आया, रैंप पर जब तक आया तब तक ठीक था, उनने कहा नीचे मत देखना। अब भाई मैं अगर आपको ये कहूं कि अपने मन में हाथी को मत सोचना तो तुम क्या करोगे, तुम हाथी को ही सोचोगे ना। ये थोड़ी होता है कि ये कह दो कि नीचे मत देखना, भाई ने कहा नीचे मत देखना, मुझे लगा ये तो सबसे ज़रूरी काम है अब तो। मैंने फिर वही किया जो उसने मना किया था, अब मर्दों की आदत है, इंसान की आदत है। फिर मैंने नीचे देखा, मैंने उसको देखा, फिर मैंने नीचे देखा, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं अब तो करना पड़ेगा, पैसे दे दिए तुमने, मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं पैसे रख लो तुम। भाई मेरी इतनी चोक हुई थी उस दिन, इतनी चोक हुई थी मेरी आवाज़ नहीं, मैंने उसको ऐसे कहा था नहीं लेना आप, रहने दो आप, रख लो पैसे। उन्होंने कहा नहीं पैसे तो जाएंगे, आप कर भी नहीं पाओगे, वैसे अगर कोशिश करो तो हो जाता है। फिर मेरे दोस्तों ने पीछे से जो मेरे को पुश किया है, अरे कर लो। अच्छा मुझे दोस्तों का ये था कि ये अभी तो कह रहे हैं कर लो कोई मसले नहीं, बाद में मजाक बहुत उड़ाएंगे। तो मैं पीयर प्रेशर में भी नहीं गया, मैं इस प्रेशर में गया कि दोस्त बाद में मजाक उड़ाएंगे भाई। फिर मैंने उसकी शक्ल देखी, नीचे देखा और मैंने फाइनली छलांग लगाई। जो मेरा चेहरा उस दिन बना था वो ऐसा चेहरा 2-4-6 महीने का बच्चे का बनता, जब आप उसे हवा में उछाले और वो नीचे आ रहा उसका मुंह बन जाता ना, एकदम दांत निकल जाते हैं मसूड़े तो वो सीन हो जाता है भाई। मेरी वही हालत हुई थी, लेकिन वो सपना था तो बंजी जंपिंग अपन ने पूरा किया। अब स्काई डाइविंग ये तो और ऊंचा और ऊंचे से और ऊपर से छलांग लगाना पड़ता है, तो उसमें तो पैर कांप जाएंगे। तो मेरा ये सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा, मुझे ऐसा फील हुआ। क्योंकि आज मैंने जो स्टोरी देखी है, जो मैंने लोगों को देखा है स्काई यू नो डाइविंग करते हुए, तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि मैं शायद ये अब नहीं करूंगा। एक ये प्लान था, लेकिन हर किसी की जिंदगी में एक प्लान जो है वो होता है, एक ड्रीम एक सपना जो है वो होता है ना। किसी का स्काई डाइविंग का सपना होगा, किसी का नई कार खरीदने का सपना होगा, किसी का घर बनाने का सपना होगा, किसी का अपना पुराना जो घर है उसे रिनोवेट कराने का सपना होगा, किसी का घर के ऊपर एक घर बनाने का सपना होगा, किसी का बिजनेस का सपना होगा, किसी का स्टोर का सपना होगा, कोई ना कोई तो एक सपना होगा। लेकिन क्या आज के दौर में अगर मैं सवाल पूछूं कि आप अपने सपने को सोशल मीडिया पे सक्सेस होने के बाद अपने सपने को सोशल मीडिया पे या दोस्तों से बड़े ही खुशी से जाहिर करेंगे या नहीं करेंगे, क्या ये वो दौर है, क्या ये वो वक्त है, हाँ या ना में जवाब बताइए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 666-22107 है 666-22107। वैसे मैं अक्सर ऐसा करता हूँ कि अगर सक्सेस मिल भी गई है तो चुप्पे रहो भाई, ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं।

0: करें कोई फायदा नहीं है, चलो बता ही देते हैं लोगों को। तो आप सक्सेस होने के बाद सोशल मीडिया पे या दुनिया को बताएंगे अपना ड्रीम प्लान या फिर छुपा के रखेंगे? नंबर 666-22107। छुपाएंगे तो क्यों छुपाएंगे, और अगर बताएंगे तो क्या रीज़न है, कि ढिंडोरा पीटना है या फिर ये कि देखो कैसे मैंने तैयारी करी एक कमरे में बैठ के जमानों जमानों और आज मैं इस जगह पे पहुंच गया हूं। नंबर 666-22107 आपको जवाब बताना है और दिल खोल कर आप बिल्कुल बता सकते हैं। मैसेज है ये किस भाई का है, नहीं भाई कभी नहीं, रिजवान किस बात पे, सपना ना बताने पे, कभी भी नहीं बताना चाहते रिजवान? मतलब एक तो वक्त आएगा ना, जैसे मिसाल के तौर पे एक बिजनेस है, आपने सेटअप किया, आपने सेटअप कर लिया है ना, आपने लगा लिए 1.5-2 लाख कतरी रियाल, 10 लाख, 20 लाख, व्हाटएवर द अमाउंट इज, आपने लगा लिया, बिजनेस खोल लिया, अब क्या आप लोगों को नहीं बताएंगे? या फिर एक ऐसा मोमेंट आ गया कि अब आपने तो ऐसा सेटअप कर लिया कि अब तो पता चल गया कि हाँ यार फलाना ये बिजनेस जो है वो रिजवान का है और इतना बढ़िया सेटअप कर लिया यार फलाने उसी के, रिजवान कैसे लिया करो, सामान बहुत सही देता है। तो इतना ज्यादा माहौल बन गया है आपका कतर में, तो आप बताएंगे या नहीं, तब भी आप छुपाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है ऑब्वियसली। बाकी आगे लिखा है, सर इसलिए नहीं बताऊंगा कि अभी तक जो मेरा हाल हुआ है वो सब नजर में ही हुआ है। अरे हाँ, नजर भी एक बहुत अजीब चीज है भाई, कई बार ना वो आपके फेवर में काम कर जाती, कई बार उल्टा हो जाता है। अब ऐसे आप देखें, हमारे ज़माने में, हमारे दुनिया में अब तो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, लोग सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वो कमाते भी हैं, वो दिखाते भी और ज़्यादा है, और वो रेगुलर बेसिस पे ये काम कर रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा काम मिल रहा है कि अरे हाँ यार ये बंदा चल रहा है तो उसको काम दो। तो ये पता नहीं बड़ी अजीब चीज़ है कि किसी में काम कर जाता है, किसी में काम नहीं करता है, अपनी अपनी जगह चीज़ें हैं। लेकिन ये बात तो है कि कई बार मेरे भी बहुत काम बिगड़े हैं भाई, जब जब मैंने ये सोचा है मैं कार लूंगा, कार लिया है और इतनी बेकार, इतनी घटिया कार ली है मैंने यार, मेरी पहली ही कार इतनी बेकार निकली, पहली ही निकली, फिर फिर इतना ज्यादा सुधर गया हूं कि दूसरी कार अभी तक ठीक ही है, और अब मैं जिद्दी भी होगा, सही नहीं कराता हूं, जा पड़ी रहने दो ऐसे ही। नेवर शेयर विथ एनीवन, ये कहना है किन भाई का, फराज अहमद का, कहते हैं पीपल ऑलवेज गेट्स जेलस। हाँ, ये एक पता नहीं यार, अच्छा मैं आज मैंने एक बहुत बढ़िया लाइन मैंने सुनी थी, वो पूरी मुकम्मल लाइन तो नहीं है लेकिन उसका सार ये था कि भाई अगर तुम किसी की तरक्की से जल रहे हो तो अभी तुम मुकम्मल इंसान नहीं बने हो, अगर तुम किसी की तरक्की से खुश होते हो तो तुम मुबारक हो तुमको कि तुम एक मुकम्मल इंसान बन चुके हो। मुझे बहुत बहुत बेहतरीन लाइन लगी थी। तो मुकम्मल इंसान बनने के लिए, ये इंसानी फितरत है जेलस, लेकिन उस जेलस को दबाना भी आपके दिमाग में आपकी फितरत होनी चाहिए, और खुश हो जाना किसी के सक्सेस पे ये आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, ये अब आप पर निर्भर करता है। लेकिन फराज भाई ने ये बात तो काफी हद तक सही कही है कि लोग जेलस हो जाते हैं, और मैं वो आला आदमी हूँ कि जेलस हो तो मैं और ज़्यादा दिखाता हूँ भाई। मैं खास तौर पर रिलेटिव की हमेशा वो लाइन रहती थी, अरे पता नहीं बेचारा क्या करेगा, ये तो पढ़ने भी खराब है। हमारी अम्मी और कहती थी, हाँ बात तो सही है, पढ़ने भी खराब, अल्लाह जाने क्या होगा, कुछ नहीं इसको दुकान में बैठलवा देंगे। मैं, अरे अम्मी ऐसा ना हो, अब्बू तो और ज़्यादा खतरनाक कहती थी, बेटा ठेला चलाएगा मेरा। पापा आपने सही कहा था, ठेला तो नहीं, ठेला चार पहिया का होता है लेकिन चार पहिये पे सुनने वाले जरूर हैं। ओ माय गॉड, ये भैया पजील बाबू, मतलब वैसे ये वाली लाइन तो घटिया थी, मैं अगर कोई आसपास होता तो वो कहता,
1: ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड
0: यार, मजाक तो हो रहा है भाई। 6:18 और आगे बढ़ते हैं। एक और भाई ने कहा है, मोहम्मद अशफाक इनका नाम है, बिल्कुल भी नहीं भाई, जो भी काम है ना, डैश डैश डैश एच से शुरू हुआ है, एन पे खत्म हुआ है, बाकी आप बीच में स्टार जो है अपने हिसाब से फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल भी नहीं भाई, कभी भी शेयर नहीं करना, डैश को बताया वहां बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं हुआ, जो भी काम है ना, डैश डैश डैश को बताया वहां पर बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। ये बात तो है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके लिए ऐसे लफ्ज का निकलना बड़ा ही वाजिब हो जाता है या रिलेटिव होते जिनका वाजिब हो जाता है कि हाँ इनके लिए

0: एक्सेप्टेबल है कह लो. तौफीक साहब का कहना है, बेटर टू वर्क इन साइलेंट फॉर योर ड्रीम्स, योर सक्सेस विल टेल एवरीवन अबाउट योर ड्रीम. हाय हाय, ये होना भी चाहिए कि फजील ने इतना काम कर लिया. अरे फजील कहाँ है? अरे वो कतर में है. कतर में क्या कर रहा है? अरे वो कतर में आरजे है. अरे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, वाह भाई तरक्की कर ली आपकी लड़की ने. हे हाँ भाई वाह. उनको क्या बताया जो पहली गाड़ी ली थी वो खराब है. उनको क्या पता यहाँ पर बहुत परेशानी में एसी खराब हो गया, बेचारा गर्मी में रह रहा है. अरे लेकिन लड़का तरक्की कर रहा है भाई साहब. लेकिन ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है ठीक है. बाकी एसी सही है घर की भाई, देखो कुछ खराब नहीं है, एसी सही है. वरना तुम सोच लो अरे फैल भाई बताओ सही करवाने तो नहीं. बट तौफीक भाई की ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक बार आपने तरक्की पा ली तो खानदान में, दोस्तों के बीच, यारों के बीच, और फिर पहनने ओढ़ने में आपके एटीट्यूड में एक बदलाव तो आ जाता है. अब भाई देखो, मैं आपको ये बात, जब मेरी सैलरी, सबसे पहले जो काम किया था ना 9000 रुपया इंडिया में 2013-14 में, तब पता नहीं क्यों मैं पैर के ऊपर पैर रख के नहीं बैठ पाता था, कोई भी मेरे सामने आता था. तो अब यार मतलब बदल गया हूं मैं, अब मेरी मजबूरी है पैर के ऊपर पैर रखना, क्योंकि आराम मिलता है भाई. एटीट्यूड नहीं है बट पैर के ऊपर पैर रखने में आराम मिलता, और मैं सोचता भी नहीं. लेकिन पता नहीं क्यों 9000 जब थी तब नहीं रख पाता था भाई. क्या यही सक्सेस है? इट्स लाइक क्या यही प्यार है? क्या करूं भाई, अब मैं ऐसा ही हूं भाई. जब तक हो पाता था तब तक मैंने किया, अब कई कोई भी सामने हो, मतलब अब ऐसा बहुत ही बड़ा कोई आदमी हो जिसके, अब आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं कभी कभार नहीं रखता हूं, लेकिन आम तौर पे कई बार ऐसा होता था पहले के रिस्पेक्ट, या कोई बड़ा हो कोई छोटा हो कोई कैसा भी हो, पैर के ऊपर पैर रखना बड़ा अजीब लगता था. अब यार अब नहीं रहा जाता, अब रख लेता हूं बस. बाकी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ, बस वो ये कि अपने पैर को आराम मिलता है इसलिए कर रहा होता हूँ. फिर सलमान है, सलमान साहब कहते हैं, बट नज़र हो जाती है, लेकिन ये शेयर करेंगे. इन्होंने लिखा यस, बट नज़र हो जाती है. सलमान अहमद हामिद, सलमान हामिद आगे कहते हैं, आंसर यस बट नज़र हो जाती है. जाकिर हुसैन का शेयर है भाई. अच्छा शेयर है, हाँ वो बात वाली होगी बात, लेकिन बहुत ही कमाल की बात थी वो. इस्माइल खान कहते हैं, अल्लाह बख्शे काकी को, बहुत अच्छी मखलूक है, मखलूक थी. मैं बताऊंगा जब कोई नया करने जाऊं. छुपा ही नहीं सकता इस्माइल खान, छुपा नहीं सकते हैं अपने सक्सेस को, दुनिया से बताना मजबूरी है यार. और मैं तो कहता हूं भाई आपको ढिंढोरा पीट देना चाहिए. मैं सक्सेस होने पर मेरा दो सबसे बड़ी वजह है, और उसकी वजह यह है कि जब आपको बहुत ज्यादा कोई, और ऐसा भी नहीं कि जा जाकर बताओ कि ए सक्सेस हो गए, सोशल मीडिया पे अपडेट कर दिया कि हाँ आज मैंने घर खरीद लिया, हाँ मैंने घर बनवा दिया है, हाँ मैंने अब्बा का जो उधार था ना वो चुका दिया है, ऐसे बता के नहीं, बस ऐसे पता चल जाए, है ना, ऐसे हल्की हल्की बात ऐसी फैला दो, और उन फुप्पी को ये बात जाकर बताओ, जिन फुप्पी से रहा ही नहीं जाता वो पूरे खानदान में गा देती है.
1: रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना,
0: है ना, वो जो फुप्पियां होती जिनको तड़प होती कि इसकी बातें तो सब जगह, और बुराई तो वो बताती अच्छाई भी बता रही होती कि अरे बहुत पैसा है उसके पास, हाँ अरे शकील साहब का उसने पूरा का पूरा कर्जा उतार दिया, अल्लाह कितने कर्जे में डूबे हुए थे, अल्लाह बहन बहुत ज्यादा हनी मेहनत कर रहा है वो मेहनत, और बुराइयां तो और ज्यादा बताती. तो बस ऐसे लोगों को बताओ जो जाके खानदान में सोशल मीडिया बनी जाए, वो असल फुप्पी स्टेटस है हमारी, व्हाट्सएप की नई दुनिया है. लेकिन असली व्हाट्सएप एक जमाने में फुप्पियां या खालाएं हुआ करती थी. तो ये बात तो है कि मैं ऐसे लोगों को जानबूझ के बताऊंगा, क्योंकि एक जमाना था जब आपने बहुत ज्यादा इस घर के लिए ना नेगेटिव बातें फैलाई थी, आज हमारे पास मौका है नहीं. बाकी फिर ये मैसेज है, क्या लाइन मारा भजील भाई. कौन सी वाली लाइन, मैंने इतनी देर में बहुत ज्यादा मार दी है, आप बताए कौन सी वाली. फिर एक और मैसेज है, फजील जी बस अपनी फुप्पो आज भी हैं. अच्छा मुबीन साहब सलाम अलैकुम. मोहम्मद साहब का है, अनप्लग्ड का क्या मतलब है? अनप्लग्ड का मतलब अभी तक नहीं समझ में आया. गाने अनप्लग्ड, जो अभी आपने गाना सुना ना दूर दूर, वो गाना, और जितने भी आप गाने सुन रहे हैं वो अनप्लग्ड ही गाने हैं, ठीक है. बाकी और डिटेल्स मेरे पास भी नहीं. गाने आपको अलग और अनप्लग्ड वर्जन के

मिलते हैं बाकी डिटेल्स। एक सर्च इंजन जैसी चीज है, आप वहां पर कर सकते हैं। फिलहाल 6:24 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और जब वापस आएंगे तो बाकी लोगों के मैसेज भी हम लेंगे। फिर आप मैसेज कर सकते हैं 666-22107। अगर आपने कोई भी प्लान अपनी लाइफ में किया है, कोई एक ड्रीम प्लान है या नेक्स्ट, क्योंकि हर इंसान का ड्रीम प्लान कंप्लीट होने के बाद बदल जाता है। अगर आपने घर का सोचा है, घर खरीद लिया, तो अब नेक्स्ट क्या? एक मर्द की जिंदगी ऐसी चलती है भाई। आपने जो नेक्स्ट प्लान सोचा है, अगर वो सक्सेस हो जाएगा, तो क्या आप लोगों को, दुनिया को बताएंगे या फिर छुपा के रखेंगे और आप ऑटोमेटिक नेक्स्ट अपने ड्रीम प्लान की तरफ बढ़ जाएंगे? आप क्या करेंगे, बताएंगे या नहीं बताएंगे, और रीजन के साथ बताइए, हाँ या ना। अगर हाँ है तो क्यों, नहीं बताना चाहते दुनिया को तो क्यों नहीं बताना चाहते। नंबर है 666-22107। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ये खूबसूरत सा ट्रैक, मीठा सा इश्क, कैलाश खेर और सुजैन की आवाज में FM 107 पे, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: हमारे नए स्पोर्ट्स प्रोग्राम गेम चेंजर में हम उन मारूफ स्पोर्ट्स खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिनकी तकनीक और अंदाज ने उनके खेलों के रुख को बदल दिया. सुनिए गेम चेंजर हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट मोहम्मद अमीन के साथ एवरी थर्सडे फ्रॉम 7:15 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी
4: गेम चेंजर Season 2.
5: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है. इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है. अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं. रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है. हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से. अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है. रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए. महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें. सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है. ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है. ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो. ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती है. वजारत दाखला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.
6: कंसिस्टेंसी इज द की, ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी कंसिस्टेंसी के साथ

0: अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और एनर्जी को सस्टेन करने में आगे हाथ बढ़ाया तो यूं समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया। सो सस्टेन द फ्यूचर हर फ्राइडे दोपहर 2 बजे से आरजे सफा के साथ छोटे छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए। ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
2: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक, जनरेशन टॉक विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूजडे एट 3 PM एट 3 PM ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
4: ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: जलन खोरों के लिए आपने तो क्या क्या लिख दिया मेरा भाई। तो आज मैंने सोचा कि आज खत भी उन्हीं का लिखवाएंगे लेकिन कुछ ही देर में, उससे पहले कुछ लोगों के मैसेज। भाई है इनका नाम रजवान साहब, कहते हैं कि फजील भाई पाकिस्तान में मैं काफी सेट था, अपने रिश्तेदारों को भी काम पे रखा लेकिन कभी वो खुश नहीं हुए और मेरे ही काम में उन्होंने एंट्री ले ली। कभी अपने रिश्तेदारों को मत बताओ अपने सक्सेस के बारे में, ये रिजवान साहब ने लिखा है और कह रहे हैं सॉरी भाई मैं भरा हुआ हूँ इसलिए बस अपनी फैमिली यानी वाइफ बच्चे बस इनका सोचता हूँ। हाँ ये मैंने भी यही वाला नियम अपनाया है कि जिनको खुश रहना है उनका खुश रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड डायरेक्ट रिलेटेड कौन है ना, तो उनका खुश रहना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि अपने फुप्पियों को और खालाओं को जोड़ो भाई, उनको थोड़ा दूर रखो। बाकी अगर जल रहे हैं तो थोड़ा सा आप जो है किसान माचिस वो जिससे आप टॉस करते थे ना अपने बचपन में, जिसमें एक तरफ इंग्लिश में किसान लिखा होता था एक तरफ हिंदी में लिखा होता था, वही वाला किसान माचिस उन जलन खोरों के घर। और फिर थोड़ा सा पेट्रोल अगर मिल जाए तो दे आओ, थोड़ा महंगा है पेट्रोल लेकिन दे आओ, जाओ यहाँ थोड़ा सस्ता है वहाँ मैं कहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसे लोगों से थोड़े से दूरी बना कर रखो तो ज़्यादा बेहतर है। फिर एक और ये मैसेज है और बहुत सारा है, ये तो मैं ये वो वाला मैसेज है मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, ऐसे ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है माशाल्लाह। मुबीन साहब मुझे लग रहा था कि आपके पास अच्छे उर्दू लफ्ज़ हैं, आपके पास उर्दू के ऐसे लफ्ज़ भी हैं जिनके मायने बड़े ख़तरनाक हैं बस ये समझ लीजिए दोस्तों कि ये सिनोनिम्स हैं, इस्तेमाल किए हैं मुबीन भाई ने अपने खालाओं के लिए, है ना, बाकी आप समझदार हैं। फिर सलाम अलैकुम फजील भाई, वालेकुम अस्सलाम। काम खामोशी से करना चाहिए और ख्वाब को भूलना नहीं चाहिए, आए हाय क्या बात है, ख्वाब को भूलना नहीं चाहिए, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी में खुश होने वाले बहुत कम होते हैं, मेरे अपने बहुत कमाल के हैं, मुंतज़िर वो मेरे जवाल के हैं, आए हाय मेरा भाई क्या बात है, इस पे तो बनता है, भाई साहब छोटे मोटे तो आप भी शायर हैं, एक राहत इंदौरी थे एक हसन इंडियन हो गए या पाकिस्तानी, भाई मैं कह सकता हूँ यार बहुत ही उम्दा। फिर उसके बाद यूसुफ भाई का मैसेज है सलाम वालेकुम अस्सलाम हैप्पी मंडे इवनिंग। ओके तो बाकी मैसेज पर बढ़े उससे पहले क्योंकि 6:41 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में और वक्त आता है खत का। ये खत आज आपको लिखना है उनके नाम जो जेलेसी रखते हैं, आपके काम में अड़ंगा डालते हैं, तो नाम तो ऑब्वियसली हम ले नहीं सकते डियर जेलस आदमी या खाला खालू जो भी है आप जो भी लिखना चाहते हैं, डियर लिखने के बाद लिख दिए और फिर अपना एक खत, आप अपने दिल को खोलकर जो कहना चाहते हैं, मैं बहुत दिन हो गया मेरा भाई दिल को खोलकर लिखना जो है वो नहीं हुआ है, खत लिखना, आज आपको खत बिल्कुल दिल खोलकर लिखना है डियर फलाना फलाना, उसके बाद आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, बस ऐसा देखिएगा कि ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल ना करें जो हमारे मुबीन भाई ने करा है जिनके सिनोनिम बड़ा खतरनाक है जो मैं यहां पर पढ़ ना पाऊं, फिर आधी अधूरी बात रह जाती है, बाकी हल्के फुल्के लफ्ज चलेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, ठीक है। नंबर है 8666221107 8666221107 एक खत उन आज जेलस लोगों के नाम जो आपकी जिंदगी में अड़ंगा डालते हैं, जो आपके काम से जलते हैं, जो आपके सक्सेस से जलते हैं।

जो आपके प्लान से चलते हैं, जो आपके खानदान से चलते हैं। आया ये तो बात कहीं ना कहीं है भाई साहब। चल कुकड़ा, आ रहा है तुम्हारे लिए खत आज। फिलहाल एक छोटा सा ट्रैक अरिजीत सिंह अकाशा की आवाज में, दिल न जाने या FM 107 पे एंजॉय करें दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
2: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं अनप्लग्ड इवनिंग विद आरजे फजील
1: ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
2: भाईजान आप तो भरे बैठे हैं यार। अस्सलाम वालेकुम एफएम 107 पे इस्तकबाल है आप सभी का। और खत लिखने को कहा था आज, आज दिल खोल कर, बहुत हो गया यार सम्मान, बहुत कर लिया यार सब्र, आज दिल खोल कर आपको खत लिखना है। और ऐसे वाले खत लिख दिए कि मैं सही में मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बाकी अच्छे भी लगे, जिसमें आपको लिखना था दिल खोल कर उन लोगों के बारे में जो आपसे जलते हैं, जो आपके काम से जलते हैं, जो आपके सक्सेस हो जाने पर जलते हैं, आज दिल खोल कर लिखना था। लेकिन मोहसिन साहब ने जो लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा दिल खोल कर लिख दिया है और सीधा सिर्फ 3 लफ्ज़ों में मुकम्मल करा है, कहा है डीएल जल कुकड़े फिड्डे मुंह तुम्हारा। आज मुझे पता चल गया है कि मोहसिन साहब पंजाबी हैं, वरना इतने दिन से मुझे पता भी नहीं था।
3: क्या बात है,
2: मोहसिन साहब के दिल में इतनी ज़्यादा कोफ्त भरी हुई है, मुझे आज समझ में आ गया है। उसके अलावा एक और भाई ने लिखा है, उनने कुछ ज़्यादा ही लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर लिया है, सज्जाद उनका नाम है, सज्जाद साहब कहते हैं डियर जेलेसी पीपल, जलन वाले लोग, सिर्फ जलन लिखकर छोड़ दिया था तो मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। लिखते हैं कि अपने प्लान में सक्सेस हो रहे हैं, बर्नौल गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा नहीं, ये वाले अच्छे वाले हैं, सज्जाद भाई अच्छे वाले हैं, सॉरी। ऐसे हैं, अपने प्लान में सक्सेस हो रहे हैं ये, और गिफ्ट लेकर आए, बहुत ही उम्दा भाई, बहुत सही गिफ्ट लेकर आते हैं आप, ऐसे ही माशाल्लाह सक्सेस होते रहें। उम्मीद है किसी की शादी में आप नहीं जाएंगे, वरना अटपटा गिफ्ट लेकर चले जाएंगे तो बड़ा अजीब लगेगा। मैं तो कहता हूँ आप किसी शादी को ज्वाइन ना करें भाई, बहुत अटपटा गिफ्ट लेकर जाएंगे आप। बर्नौल लेकर जा रहे हैं बताइए, अपने सक्सेस होने पर किसी की शादी में जाएंगे, ऐसी चीज़ दे देंगे वो इनको वापस कर देगा, भाई साहब आप अपना गिफ्ट वापस लेकर जाएं, इनकी ज़रूरत नहीं, हम खरीद सकते। चलो इस पर ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और ये मैसेज एक और है, सलाम लिखा है, वालेकुम अस्सलाम, और नाम इनका है हमीद, इन्होंने लिखा है एक लफ्ज़ में जो बात अगर कोई मुकम्मल कर सकता है तो वो हामिद या हमीद, दोनों में से एक जो भी नाम है, उनने किया है डियर जेलस पीपल हट। क्या तरीका है ये कोई है, आप अपनी जबान पे भाई साहब बिल्कुल कंट्रोल ना रख के बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। कम लफ्जों में ज्यादा बातें अगर आप कह सकते हैं तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। लेकिन हमीद साहब थोड़ा तो यार हल्का हाथ रखो। फिर एक और है डियर, इन्हें बाका मैं डैश डैश ही लिख दिया इन्होंने, क्या बात है, मैं ऐसे लोगों पे वारी जाऊं। बहुत ही उम्दा, इनका नाम नाम क्या है भाई, नाम तो लिखा नहीं है, लेकिन वलीद इनका नाम है, वलीद साहब प्रोफाइल पर लिखते हैं डियर डैश डैश बड़े, मैं समझ नहीं पाया पहले, फिर मुझे समझ गया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो मैं पहले इनके लफ्ज़ को दहार पढ़ रहा, मैं क्या दहार क्या है यार, कुछ लिखना चाह रहे हैं, फिर मैं समझ गया डी ए एच ए आर दहर से मिलता जुलता भी, तो दहार लोग। टोटका लग जाता है, मेरी गुड़िया बनाए हैं तो फेंक दो। इस पर कुछ नहीं किया जा सकता, ये तो वो वाली बात है कि देखो ये खत उनको है जो जल रहे हैं, और उनका जो जलन कर, जलन निकालने का जो तरीका है वो पूरा हो रहा भाई, जिनने भी गुड़िया बनाई है भाई वरीद भाई की, प्लीज़ यार पिन मत लगाओ, फेंकना भी नहीं, उसका कुछ तो कर दो यार, कहीं फेंक वेक दिया पता चला इनके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है। बाकी एक और भाई है, 3 लफ्ज़ों में इन्होंने मूवी का नाम ही लिख दिया, फ़हीम साहब कहते हैं गेट वेल सून डियर जेलस पीपल गेट वेल सून। फ़हीम साहब ये 3 लफ्ज़ों में बहुत ही उम्दा आपने जवाब दे दिया है, बाकी और भी कुछ 2-4 और लफ्ज़ होते ना उल्टे सीधे तो मज़ा आता। बाकी एक और मैसेज किस बात का है, उसामा बिन शफीक साहब लिखते हैं डियर जेलस पीपल थैंक यू, आपकी वजह से सक्सेस की मोटिवेशन मिलती है। अरे क्या लाइन है मेरा।

भाई ये तो एकदम ही वाइब वाली लाइन है। ऐसा होता नहीं कि आपका जो बुरा चाह रहा हो और जितना ज्यादा वो बुरा चाह रहा है उतना ज्यादा बढ़िया हो रहा है आपके साथ, नहीं अकड़ जाते आप फिर वही करते हैं जैसे मैं करता हूं, पैर के ऊपर पैर अपने आप आ जाता, क्या करूं भाई साहब, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं लेकिन एटीट्यूड है है ना, तो फिड्डे मुंह टेढ़ा वही वाली बात, जलने वाले जलते रहो हम चल रहे हैं ठीक है। बाकी जितने भी हमें वो सुनने वाले लोग हैं जो दूसरों के सक्सेस से जलते हैं, भाई साहब देखिए आप अपना जलना बंद कर दें, आप अपने मुकम्मल इंसान तक अभी पहुंचे नहीं है, मुकम्मल इंसान वही है। बड़े एक शायर ने कहा है, मुझे नाम नहीं याद है, अगर जाकिर हुसैन का सही में ये शायर है तो फिर जाकिर भाई को थैंक यू सो मच, कि अगर आप जलते हैं लोगों से, लोगों की सक्सेस से, लोगों के काम से, लोगों के बेहतरीन होने से, तो अभी आप मुकम्मल नहीं हुए, मुकम्मल इंसान नहीं बने। मुकम्मल इंसान बनने के लिए अपने जलेसी को ढकना होता है, दबाना होता है और अपनी खुशी का इजहार करना होता है। बाकी सुनते रहे FM 107, उम्मीद है कि आज के इस खास टॉपिक से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बाकी एक बेहतरीन से गाने के साथ छोड़े जा रहा हूँ, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:54 और गाना है रोके ना रुके नैना। ये गाना स्पेशल उन लोगों के लिए जो सक्सेसफुल हो रहे हैं और स्पेशल उन लोगों के लिए भी जो जेलेसी रखते हैं। बाकी एक और ये मैसेज है अशफाक साहब का, डियर रिलेटिव्स तुम्हारे लिए तो वही मैं कहूं, ये मैसेज रिलेटिव्स के लिए अभी तक क्यों नहीं आया, जेलस वालों के लिए आ रहा था। एक शेर तुम सब के लिए, कोई क्या कोई इंजदा जादू दसवे धोला मैं शर्म लिखा तो अनु तनु आ जावे। अरे मेरा भाई थोड़ा और क्लियर लिख देते तो मैं पढ़ देता इसको गायकी में, बाकी मेरी पंजाबी बहुत ही हल्की है भाई साहब सॉरी फिर सलाम वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, बहुत लेट हो गया मेरा भाई अजहर साहब, लेकिन अब कल आइएगा आप, कल आपका मैसेज पढ़ेंगे। बाकी जेलस वालों जलते रहो दूसरों की सक्सेस से, और ये गाना तुम्हारे लिए डेडिकेटेड, अरमान मलिक की आवाज में FM 107, दिल से देसी।

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
2: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
3: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
4: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड वेलकम टू फ्यूचर करियर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे और मजे में होंगे। आपके लिए फ्यूचर करियर की एक और एपिसोड लेकर मैं हाजिर हो गई हूँ। ये वो शो है जहाँ हम बात करते हैं उन करियर्स की जो हमारी दुनिया का मुस्तकबिल शेप कर रही हैं, और साथ ही ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज से हम खुद को उन करियर्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं हूँ आपकी आरजे महावश। आज हम एक ऐसी फील्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, लेकिन अचानक पता चलता है कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। या फिर सोचिए कि आपके फोन में मौजूद पर्सनल फोटोग्राफ्स, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी और के हाथ लग जाए, और सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, एक पूरी कंपनी का कंप्यूटर नेटवर्क भी अचानक बंद हो सकता है। एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर सकते, कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन इनएक्सेसिबल हो सकती हैं, और साइबर क्रिमिनल्स कंपनी से पैसे का मुतालबा कर सकते हैं। ये सब सिर्फ मूवीज की कहानियां नहीं है, आज की डिजिटल दुनिया में साइबर थ्रेट्स एक रियल चैलेंज है। हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सोशल मीडिया यूज करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर स्टोर करते हैं। बिजनेसेस भी अपना बहुत सा डेटा कंप्यूटर्स और क्लाउड सिस्टम्स में रखते हैं। हॉस्पिटल्स के पास पेशेंट्स का सेंसिटिव डेटा मौजूद होता है, बैंक्स के पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास इम्पोर्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन होती है, और एनर्जी और टेलीकम्युनिकेशंस जैसे सेक्टर्स डिजिटल सिस्टम्स पर हैवीली डिपेंड करते हैं। जितनी ज्यादा हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करेगी, उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी उन प्रोफेशंस की जो इस टेक्नोलॉजी को सेफ रख सके, और यहीं से आता है हमारा आज का करियर, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम सिर्फ हैकर्स को रोकना नहीं होता, उनका असल काम डिजिटल सिस्टम्स, नेटवर्क्स, इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन सर्विसेज को थ्रेट से प्रोटेक्ट करना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि साइबर सिक्योरिटी एक सिंगल जॉब नहीं है, इस फील्ड में डिफरेंट टाइप्स के करियर्स हैं। आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, आप इथिकल हैकर या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर बन सकते हैं, आप सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर यानी SOC एनालिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी की फील्ड में जा सकते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट बनकर ऑर्गेनाइजेशंस को उनकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशंस, पजल्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी आपके लिए एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन हो सकती है। दुनिया भर में ऑर्गेनाइजेशंस

0: अपने डिजिटल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत महसूस कर रही हैं। और ये डिमांड सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज तक महदूद नहीं रही। बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, गवर्नमेंट, टेलीकम्युनिकेशन या फिर एनर्जी और ऑलमोस्ट हर डिजिटल इंडस्ट्री में साइबर सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन सर्विसेज और कनेक्टेड डिवाइसेस नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं, लेकिन साथ ही नए सिक्योरिटी चैलेंजेस भी सामने आ रहे हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा करियर फील्ड बन गया है जहां लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। आपको न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखना होता है, नए थ्रेट्स को समझना होता है और कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होती हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी की स्किल्स हों, तो क्या आप एक साइबर डिटेक्टिव बनना पसंद करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशंस को ऑनलाइन थ्रेट से प्रोटेक्ट करे? क्या आपको सस्पिशियस एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेट करना इंटरेस्टिंग लगेगा? क्या आप पजल्स सॉल्व करना और प्रॉब्लम्स की रूट कॉज फाइंड करना एंजॉय करते हैं? क्या आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पसंद है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप ऐसे करियर का हिस्सा बनना चाहेंगे जहां आपकी स्किल्स लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रोटेक्ट करने में डायरेक्टली काम आए? आज के एपिसोड के एंड तक शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। तो चलिए टेक्नोलॉजी की दुनिया में एंटर करते हैं और डिस्कवर करते हैं कि साइबर सिक्योरिटी करियर्स असल में क्या होती हैं, इन करियर्स के बारे में कौन सी एजुकेशन और स्किल्स जरूरी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस फील्ड को कैसे चेंज कर रही है और कतर में यंग लोगों के लिए इस फील्ड में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मेजर सेगमेंट, जॉब्स फॉर टुमारो। तो वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं एक ऐसे करियर फील्ड को जो हमारी इंक्रीजिंगली डिजिटल दुनिया में बहुत इम्पोर्टेंट होता जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी। और जैसे कि मैंने कहा, साइबर सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ हैकर्स को पकड़ना या कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉम्प्लिकेटेड कोड्स देखना नहीं है। इस फील्ड में बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रोफेशनल्स काम करते हैं। कुछ लोग साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करते हैं, कुछ अटैक्स को डिटेक्ट करते हैं, कुछ अटैक होने के बाद एविडेंस इन्वेस्टिगेट करते हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को पहले से प्रिपेयर करते हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आए तो उसका रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए। तो चलिए देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से एक्साइटिंग करियर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। आप इस प्रोफेशनल को किसी ऑर्गेनाइजेशन की डिजिटल सिक्योरिटी टीम का एक बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर समझ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का बेसिक काम ये होता है कि सिस्टम्स और नेटवर्क्स को मॉनिटर करना और देखना कि कहीं कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही। मिसाल के तौर पर, नॉर्मली एक एम्प्लॉय कतर से अपने ऑफिस सिस्टम में लॉगिन करता है, लेकिन अगर वही अकाउंट अचानक दुनिया के किसी और कोने से लॉगिन होने की कोशिश करे या एक ही अकाउंट से अनयूजुअल नंबर्स में फाइल्स एक्सेस की जा रही हो, तो सिक्योरिटी सिस्टम अलर्ट जनरेट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट का काम होता है कि वो इस अलर्ट को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करे। वो ये डिटरमाइन करने की कोशिश करता है कि क्या ये नॉर्मल एक्टिविटी है या किसी ने अकाउंट कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, क्या सिस्टम में मैलवेयर इंटर हुआ है, क्या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस की गई है और अगर थ्रेट रियल हो तो उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। इस करियर में ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डिटेल्स नोट करनी होती हैं, प्रॉब्लम्स को लॉजिकली ब्रेक डाउन करना होता है और प्रेशर के वक्त काम रहकर डिसीजन लेना होता है। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, रिस्क असेसमेंट और सिक्योरिटी प्रोसीजर्स को इम्प्रूव करना शामिल हो सकता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन. क्यों? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल सिर्फ कंप्यूटर्स के साथ काम नहीं करता, उसे मैनेजमेंट को भी तो समझना पड़ता है ना कि प्रॉब्लम क्या है, रिस्क कितना है और ऑर्गेनाइजेशन को क्या एक्शन लेना चाहिए. इसलिए अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ एनालिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन दोनों इंजॉय करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट एक स्ट्रॉन्ग करियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है. अब आ जाते हैं दूसरे करियर की तरफ. हमारा दूसरा जो करियर है वो एक ऐसे करियर पर जो स्टूडेंट्स को अक्सर सबसे ज्यादा एक्साइटिंग करता है और वो है एथिकल हैकर. नाम सुनकर शायद आपके जहन में हैकर का इमेज आए, एक डार्क रूम, कंप्यूटर स्क्रीन्स और सीक्रेट कोड्स. लेकिन एथिकल हैकर का काम बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है. एथिकल हैकर लीगली और ऑर्गेनाइजेशन की परमिशन के साथ सिक्योरिटी वीकनेसेस फाइंड करता है. सिंपल वर्ड्स में वो सिस्टम्स को तोड़ने की कोशिश करता है ताकि क्रिमिनल हैकर उसे बाद में ना तोड़ सके. इसे आप घर की सिक्योरिटी चेक करने वाले प्रोफेशनल की तरह समझ सकते हैं. अगर आप अपने घर के दरवाजे, विंडोज और लॉक चेक करते हैं कि कोई आसानी से अंदर तो नहीं आ सकता, तो एथिकल हैकर डिजिटल एनवायरनमेंट में कुछ इसी तरह का काम करता है. वो वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, नेटवर्क्स और सिस्टम्स को टेस्ट करता है. वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, फिर ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि वीकनेसेस कहाँ हैं और उसे कैसे फिक्स किया जा सकता है. इस फील्ड में क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको नेचुरली ये सोचना होता है कि सिस्टम में वीकनेस कहाँ हो सकती है, इस प्रोसेस को दूसरे तरीके से एक्सेस किया जा सकता है क्या, एक अटैकर इस सिस्टम को किस एंगल से टारगेट कर सकता है. एथिकल हैकर का गोल डैमेज करना नहीं होता, गोल होता है डैमेज से पहले वीकनेस आइडेंटिफाई करना. और इसीलिए इस प्रोफेशन में स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. आपके पास पावर स्किल्स होंगी, लेकिन उन स्किल्स का यूज लीगल और रिस्पॉन्सिबल वे में करना होगा. अगर आपको पजल्स, टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टिगेशन पसंद है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग आपके लिए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग फील्ड हो सकती है. और अब बात करते हैं एसओसी एनालिस्ट यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर एनालिस्ट की. सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स को आप एक ऑर्गेनाइजेशन का साइबर सिक्योरिटी कमांड सेंटर समझ सकते हैं. यहाँ सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स डिफरेंट सिस्टम से आने वाले अलर्ट्स को मॉनिटर करते हैं. सोचिए एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है जहां थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स, अकाउंट्स, सर्वर्स और डिजिटल सर्विसेज यूज हो रही हैं. हर वक्त बहुत सारा डिजिटल एक्टिविटी डेटा जनरेट हो रहा है. हर अलर्ट का मतलब साइबर अटैक नहीं होता, लेकिन अगर हंड्रेड्स या थाउजेंड्स अलर्ट आ रहे हों तो किसी ह्यूमन के लिए हर चीज मैनुअली चेक करना डिफिकल्ट हो सकता है. एसओसी टीम सिक्योरिटी टूल्स और टेक्नोलॉजीज की मदद से सस्पिशियस एक्टिविटी आइडेंटिफाई करती है. अगर कोई सीरियस थ्रेट डिटेक्ट हो, टीम इन्वेस्टिगेट करती है और जरूरत पड़ने पर इंसिडेंट रिस्पॉन्स करती है. एसओसी एनालिस्ट का काम कुछ हद तक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह समझा जा सकता है. जिस तरह एयरपोर्ट में कंट्रोलर्स मल्टीपल फ्लाइट्स के मूवमेंट मॉनिटर करते हैं और हर अनयूजुअल सिचुएशन पर एक्शन लेते हैं, इसी तरह एसओसी टीम्स डिजिटल एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती हैं और पॉसिबल सिक्योरिटी थ्रेट्स पर रिस्पॉन्स देती हैं. एसओसी एनवायरनमेंट्स में टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एक एनालिस्ट अलर्ट इन्वेस्टिगेट कर सकता है, दूसरा प्रोफेशनल टेक्निकल एविडेंस चेक कर सकता है और इंसिडेंट्स रिस्पॉन्स टीम थ्रेट को कंटेन करने में हेल्प कर सकती है. हेल्थ केयर, बैंकिंग, एनर्जी, टेलीकम्युनिकेशंस और गवर्नमेंट जैसे सेक्टर्स में सिक्योरिटी मॉनिटरिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट हो सकती है.
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है. तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं. अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
0: और अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगर साइबर अटैक हो चुका हो तो फिर क्या? अटैक होने के बाद साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का काम खत्म नहीं होता। यहाँ एंटर होता है डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट। डिजिटल फॉरेंसिक्स का मतलब है कि डिजिटल एविडेंस को साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट करना, बिल्कुल क्राइम इन्वेस्टिगेशन की तरह। लेकिन यहाँ क्राइम सीन डिजिटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि उसके सिस्टम से कॉन्फिडेंशली फाइल्स जो हैं वो एक्सेस हुई हैं, और अब इन्वेस्टिगेशन टीम को समझना है अटैक कब हुआ, सिस्टम में एंट्री किस तरह हुई, कौन सा अकाउंट यूज हुआ, कौन सी फाइल्स एक्सेस की गई, क्या इन्फॉर्मेशन कॉपी या ट्रांसफर हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट, फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। डिजिटल फॉरेंसिक्स स्पेशलिस्ट अवेलेबल डिजिटल एविडेंस को एग्जामिन करता है। इस करियर में टेक्नोलॉजी के साथ इन्वेस्टिगेशन स्किल्स भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मिस्ट्रीज सॉल्व करना पसंद है, डिटेल्स ऑब्जर्व करना पसंद है, और किसी इवेंट की सीक्वेंस रिकंस्ट्रक्ट करना इंटरेस्टिंग लगता है, तो डिजिटल फॉरेंसिक एक फैसिनेटिंग करियर हो सकता है। यहाँ पेशेंस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर क्लू ऑब्वियस नहीं होता, कभी छोटी सी डिजिटल डिटेल पूरी इन्वेस्टिगेशन को चेंज कर सकती है। अब टेक्नोलॉजी का एक और मेजर एरिया, क्लाउड कंप्यूटिंग। आज बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस अपना डेटा और एप्लीकेशंस ट्रेडिशनल फिजिकल सिस्टम्स के बजाय क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर यूज करती हैं। लेकिन क्लाउड पर डेटा होने का मतलब ये नहीं है कि सिक्योरिटी की जरूरत खत्म हो गई। एक्चुअली सिक्योरिटी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। यहाँ काम करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। इनका फोकस क्लाउड एनवायरनमेंट्स को सिक्योर रखना होता है। वो एक्सेस कंट्रोल्स चेक करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि राइट पर्सन को राइट इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिले। वो सिक्योरिटी रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के मेजर्स डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्लाउड सिस्टम में सेंसिटिव कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, तो हर एम्प्लॉय को उस इंफॉर्मेशन का कंप्लीट एक्सेस देना सेंसिबल नहीं होगा। क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये इंश्योर करने में हेल्प करता है कि एक्सेस प्रॉपरली कंट्रोल्ड हो। इस फील्ड में क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, नेटवर्किंग, आइडेंटिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग वैल्यूएबल होती हैं, क्योंकि क्लाउड टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट इंडस्ट्रीज में एक्सपैंड हो रहा है। क्लाउड सिक्योरिटी एक इम्पोर्टेंट स्पेशलाइजेशन बन रही है। और अब बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की। हर ऑर्गेनाइजेशन के पास नेसेसरीली अपनी लार्ज साइबर सिक्योरिटी टीम नहीं होती। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस एक्सटर्नल एक्सपर्ट से एडवाइस लेती हैं। साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को समझने में हेल्प करता है कि उसके सिक्योरिटी रिस्क क्या हैं और उन्हें रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और प्रोसेस का असेसमेंट कर सकता है। वो सिक्योरिटी स्ट्रेटजी रिकमेंड कर सकता है। एम्प्लॉयज के लिए सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग सजेस्ट कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करने में गाइड कर सकता है। इस करियर की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ टेक्निकल नॉलेज के साथ पीपल स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं करना, आपको क्लाइंट को ये भी समझाना है कि प्रॉब्लम क्यों इम्पॉर्टेंट है और सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशंस, टीम वर्क और बिजनेस अंडरस्टैंडिंग एंजॉय करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी कंसल्टिंग आपके लिए सूटेबल हो सकता है। तो अब तक हमने 6 डिफरेंट करियर पाथ्स देखे। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, SOC एनालिस्ट, डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। लेकिन साइबर सिक्योरिटी की दुनिया यहाँ खत्म नहीं होती। इस फील्ड में सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट, गवर्नेंस, रिस्क एंड कंप्लायंस, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और भी बहुत से स्पेशलाइज्ड रोल्स एग्जिस्ट करते हैं। यानी अगर आप साइबर सिक्योरिटी चूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरी जिंदगी एक ही टाइप का काम करें। आप एक्सपीरियंस के साथ स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हैं। आप टेक्निकल रोल से मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं या मैनेजमेंट और बिजनेसेस अंडरस्टैंडिंग के साथ साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में मूव कर सकते हैं। इसी वजह से साइबर सिक्योरिटी को सिर्फ कंप्यूटर जॉब कहना इस फील्ड को बहुत छोटा समझना होगा। ये टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, कम्युनिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट और प्रॉब्लम सॉल्विंग का कॉम्बिनेशन है। अब सवाल पैदा होता है, क्या साइबर सिक्योरिटी आपके लिए है? एक क्विक सेल्फ चेक। अगर आपको टेक्नोलॉजी इंटरेस्टिंग लगती है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, इंजॉय करते हैं, अगर आप व्हाई एंड हाउ क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, अगर आप डिटेल्स नोटिस करते हैं, अगर आप न्यू टेक्नोलॉजीज सीखने के लिए रेडी रहते हैं और अगर आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस में सॉल्यूशंस फाइंड करना पसंद है, तो साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लोर करना वर्थ कंसिडरिंग हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, साइबर सिक्योरिटी में सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्कूल से ही कंप्यूटर जीनियस होना जरूरी नहीं। आपके पास तजस्सुस होना चाहिए, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट, कंटिन्यूसली सीखने की विलिंगनेस चाहिए। टेक्नोलॉजी चेंज होगी, थ्रेट्स चेंज होंगे, टूल्स चेंज होंगे और साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स को भी अपने स्किल्स अपडेट करने होंगे। यही इस करियर का चैलेंज भी है और इसी में इसका एक्साइटमेंट भी है। तो अगर आप फ्यूचर के लिए एक ऐसा करियर एक्सप्लोर कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग और कंटिन्यूस लर्निंग हो, तो साइबर सिक्योरिटी को अपनी लिस्ट में जरूर रखिए। लेकिन अब सवाल ये है, अगर आप साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना चाहते हैं तो स्कूल के बाद आपको क्या पढ़ना चाहिए? क्या कंप्यूटर साइंस डिग्री जरूरी है? क्या साइबर सिक्योरिटी की स्पेशलाइज डिग्री बेटर है या क्या सर्टिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट होते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए चलिए मूव करते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, करियर टू कैंपस, प्रिपेयरिंग फॉर अ साइबर सिक्योरिटी करियर। करियर टू कैंपस, करियर टू कैंपस। तो वेलकम बैक टू फ्यूचर करियर। आपने अब तक सुना कि साइबर सिक्योरिटी में कितने डिफरेंट करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं। लेकिन अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, अगर एक स्टूडेंट आज डिसाइड करे कि मुझे फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी में करियर बनाना है, तो वो शुरू कहाँ से करे? क्या स्कूल में ही कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना जरूरी है? क्या यूनिवर्सिटी में सिर्फ साइबर सिक्योरिटी डिग्री ही करनी होगी? क्या प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? और क्या यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ सर्टिफिकेशंस भी जरूरी होती हैं? तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि साइबर सिक्योरिटी की प्रिपरेशन यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि स्कूल से ही शुरू हो सकती है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो अपने बेसिक कंप्यूटर स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करना होता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, डेटा क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस कैसे कम्युनिकेट करती हैं, ये सब बेसिक क्वेश्चंस समझना आपके फ्यूचर लर्निंग के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट कर सकता है। अगर स्कूल में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उन्हें सीरियसली कंसिडर करें। अगर आपके स्कूल में साइबर सिक्योरिटी का सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस करियर को परस्यू नहीं कर सकते। आप इंडिपेंडेंट लर्निंग के थ्रू बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी में एंटर करने का एक कॉमन पाथवे कंप्यूटर साइंस हो सकता है। कंप्यूटर साइंस डिग्री में स्टूडेंट्स प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम्स, डेटाबेसेस, कंप्यूटर नेटवर्क्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स साइबर सिक्योरिटी के लिए यूजफुल फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप नेटवर्क्स को समझते हैं, तो आपको ये समझने में आसानी होती है कि नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स किस तरह अफेक्ट करते हैं। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम्स को समझते हैं तो आप सिस्टम्स की सिक्योरिटी रिस्क को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर के वर्किंग प्रिंसिपल समझने में हेल्प करता है। इसीलिए कंप्यूटर साइंस सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने का पाथ पे नहीं, इसी फाउंडेशन के बाद आप साइबर सिक्योरिटी की डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस की तरफ मूव कर सकते हैं। आजकल यूनिवर्सिटीज में स्पेशलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी डिग्री प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। इन प्रोग्राम का फोकस डायरेक्टली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और डिजिटल प्रोटेक्शन पर होता है। स्टूडेंट्स नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर डिफेंस, डिजिटल फॉरेंसिक्स, सिक्योरिटी मैनेजमेंट और एथिकल हैकिंग जैसे एरियाज स्टडी कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी श्योर हैं कि साइबर सिक्योरिटी ही आपका करियर इंटरेस्ट है तो स्पेशलाइज्ड डिग्री एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी चूज करते वक्त सिर्फ डिग्री का नाम देखना इनफ नहीं, स्टूडेंट्स को कोर्स स्ट्रक्चर भी चेक करना चाहिए। क्या यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल लैब्स ऑफर करती है? क्या स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट मिलते हैं? क्या इंटर्नशिप अवेलेबल है? क्या यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप करती है? और क्या स्टूडेंट्स को करंट साइबर सिक्योरिटी टूल्स और टेक्नोलॉजी के साथ एक्सपोजर मिलता है? क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक प्रैक्टिकल फील्ड है, सिर्फ थ्योरी पढ़ना और रियल सिस्टम के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना दोनों एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं। एक और रूट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी। आईटी प्रोग्राम्स स्टूडेंट्स को सिस्टम्स, नेटवर्क्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। आईटी बैकग्राउंड के बाद स्टूडेंट साइबर सिक्योरिटी में स्पेशलाइज्ड कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि करियर पाथवे हमेशा एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता। हो सकता है कि एक स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करे, कोई आईटी से करे, कोई साइबर सिक्योरिटी की डिग्री ले। अगर कोई पहले नेटवर्किंग या सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस गेन करके बाद में सिक्योरिटी फील्ड में आए तो ये भी चलेगा। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ को समझकर अपना पाथवे चूज करे। अब एक कॉमन क्वेश्चन, क्या साइबर सिक्योरिटी के लिए प्रोग्रामिंग आनी जरूरी है? आंसर है, प्रोग्रामिंग की अंडरस्टैंडिंग बहुत यूजफुल हो सकती है, लेकिन साइबर सिक्योरिटी के हर रोल में प्रोग्रामिंग का लेवल सेम नहीं होगा। कुछ रोल्स में कोडिंग और स्क्रिप्टिंग का यूज ज्यादा होता है, कुछ रोल्स में नेटवर्किंग, मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगर आपको प्रोग्रामिंग अभी डिफिकल्ट लगती है तो साइबर सिक्योरिटी का आइडिया रिजेक्ट मत करें, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखना स्टार्ट करें। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिगनर्स के लिए एक यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट हो सकती है। गोल ये नहीं है कि आप स्कूल में ही प्रोफेशनल प्रोग्रामर बन जाएं। गोल ये होना चाहिए कि आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करें और समझें कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रोसेस करता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पॉसिबल हो तो इंटर्नशिप्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जरूर एक्सप्लोर करने चाहिए। टेक्नोलॉजी कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशंस, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स, ये सब। तो अगर हम आज के सेगमेंट को एक सिंपल रोड मैप में कन्वर्ट करें तो स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला कुछ इस तरह हो सकता है। स्कूल में टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स, फिर कंप्यूटर साइंस आईडी या फिर साइबर सिक्योरिटी जैसे एकेडमिक पाथवे, उसके साथ प्रोग्रामिंग और नेटवर्किंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल लैब्स, प्रोजेक्ट्स और कंपटीशन, इंटर्नशिप एंड रियल वर्ल्ड एक्सपोजर। अब आ जाते हैं इस तरफ कि कतर में साइबर सिक्योरिटी का करियर किस तरह से रेलिवेंट है। आप जानते हैं कि कतर एक रैपिडली डिजिटलाइजेशन इकोनॉमी है। ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, क्लाउड सिस्टम्स और कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर। टेक्नोलॉजी का यूज डिफरेंट सेक्टर्स में कंटिन्यूसली एक्सपेंड हो रहा है और जहां टेक्नोलॉजी होती है वहां सिक्योरिटी की जरूरत भी होती है। और साथ ही आ जाता है ये मामला कि अगर आप कतर में स्कूल या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं और साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करें, कंप्यूटिंग नेटवर्क्स को समझें, बेसिक प्रोग्रामिंग सीखें, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस डेवलप करें, ऑनलाइन लर्निंग रिसोर्सेज और प्रैक्टिकल लैब्स एक्सप्लोर करें। अगर स्कूल या यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशंस, कोडिंग क्लब्स या साइबर सिक्योरिटी एक्टिविटीज हैं तो उनमें जरूर पार्टिसिपेट करें। जी लिसनर्स, तो ये था हमारा आज का शो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इंजॉय किया होगा और आपको कुछ ना कुछ अपने करियर के हवाले से जरूर समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं आपसे लूंगी इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-888-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: وزارت داخلہ کے ادارہ تعلقات عامہ کے تعاون سے ریڈیو قطر پیش کرتا ہے پروگرام پولیس اور عوام۔

0: وتقدر تخدم فيه نفسك يعني حتى أنت وأنت عندك رغم شخصي، لكن هذا الفرق بين مطراش وبين الموقع.
1: حلو حلو، يعني الخدمات هناك أوسع في الموقع،
0: في تشابه لكن بنضيف عليها خدمات الاستعلام، نقدر نقول أوسع، بس يعني الاستعلام أنا نفسي ما شرحت لك، يعني تبي تستعلم عن شو اللي وصل عندك في الشركة، يعني شو الأوراق اللي طلبتها من وزارة الداخلية، شنو صار في البريد اللي طلبته برغم المنشأ ورغم الشخصي للشخص، وفي نفس الوقت في خدمات حق اللي ما عندهم رقم شخصي.
1: جميل جميل. سامي كرام، एक बहुत ही एक अहम नुक्ता जो हमारे साथ लेफ्टिनेंट जासिम हसन उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, और आप सब जानते हैं कि हमने प्रोग्राम के पहले में बताया कि इनका ताल्लुक है कनेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट से, वज़ारत दाखिला का बहुत ही अहम तरीन शोबा है। उन्होंने एक नुक्ते की वजाहत की, और वही कि जब यानी आप सब जानते हैं कि वज़ारत दाखिला की एक वेबसाइट भी है और साथ साथ मित्राश ऐप भी, तो कोई ये सवाल कर सकता है कि भाई दो यानी प्लेटफॉर्म किस वजह से है, ठीक है ना। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो वजाहत पेश की वो ये कि देखें मित्राश ऐप में आप अपनी शख्सी तौर पर आपकी जो मालूमात हैं वो आप सही से वो जानकारी ले सकते हैं और वो उन तक आपकी रसाई होती है, ठीक है ना। लेकिन जो वेबसाइट है उसमें आपकी ना हो किसी दूसरे की, जैसे कि आपने किसी की यानी वीज़ा वगैरह किसी का इशू हुआ हो तो आप उससे यानी उस रकम सीमा के ज़रिए उसका जो नंबर है वीज़ा नंबर उसके ज़रिए आप जान सकते हैं कि भाई उसका प्रोसीजर कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है ना। वो चीज़ तो आप अपने इससे नहीं जान सकेंगे, ठीक है ना। मज़ीद किसी गाड़ी के हवाले से कुछ आपको जानना है कि वहाँ क्या हालत है उस गाड़ी की, मुखालफा है क्या है नहीं है, तो इस सिलसिले में भी आप उधर से यानी उधर वेबसाइट की सकेंगे। तो ये कि जहाँ रकम शख्सी तौर पर आपकी जो मालूमात और फिर जो खिदमात हैं वो आपको मित्राश ऐप में मिल जाएंगी, और जैसे कि उन्होंने कहा कि 500 से ज़ायद 500 से अप यानी खिदमात अब डिजिटली यहाँ दस्तियाब हैं। तो ये कोई यानी कम यानी खिदमात नहीं, बल्कि ये 500 से ज़ायद यानी वक्त के साथ साथ काफ़ी सारी खिदमात में इजाफ़ा हो रहा है। मुझे याद है कि पिछली दफ़ा जब मैं सिलसिले में यानी इसी इदारे के एक दूसरे अफसर यहाँ तशरीफ़ लाए थे तब 400 की हदूद में बात हो रही थी, अब ये 500 तजावज़ कर गए। तो इस तरह जो है ना कतर एक डिजिटल मुल्क की तरफ यानी अपने आप को डिजिटलाइजेशन की तरफ ये कतर बढ़ रहा है रफ्ता बरफ्ता, और रफ्तार काफ़ी ज़्यादा ही है, और माशाल्लाह से अब इतनी सारी खिदमात हैं, आप घर बैठे ही अपनी अक्सर व बेशतर जो उमूर हैं पहले जहाँ आपको वज़ारत दाखिला में जाने की ज़रूरत पड़ती थी वो अब वो बात नहीं रही, बल्कि आप अपने वक्त को अपनी थकान सब कुछ आप इसको महफूज रखते हुए आप यानी आसानी से घर में बैठे ही 24 घंटे 7 यानी आप इन खिदमात को हासिल कर सक रहे हैं। तो ओवरऑल ये बहुत ही एक अहम नुक्ता था। अब मज़ीद हम अगले महवर की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है लेफ्टिनेंट जासिम हसन, उनका ताल्लुक़ है इदारतुल इत्तिसालात वनदुल मालूमात से, और कनेक्शन इसको कहते हैं कनेक्शन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के इदारे से, जो वज़ारत दाखिला का बहुत ही अहम तरीन इदारा है। अब हमारा ये सवाल रहेगा उनसे कि खुसूसी तौर पर मित्राश ऐप के ज़रिए जो खिदमात दस्तयाब हैं इस पर ज़रा वो रोशनी डालें। सियादतुल मुलाज़िम जासिम हसन मिन इदारतुल इत्तिसालात वनदुल मालूमात अत्तबा लवज़ारत दाखिलिय बदौलत क़तर سيادكم إذا انتقلنا إلى تطبيق متراش يعني فهو اليوم من أكثر المنصات استخداما في التعامل مع خدمات الوزارة، فما أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق؟ الله يسلمك.
0: سلمك. يعد تطبيق متراش نموذجا وطنيا رائدا للحلول الذكية حيث يخدم المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية والشبه حكومية والشركات، مقدما للمتعاملين منصة واحدة لإنجاز أكثر من 500 نوع من المعاملات على مدار الساعة ويغطي فئات المجتمع كافة. على سبيل المثال المواطنون والمقيمون منصات مخصصة تتيح إكمال الخدمات والوثائق الشخصية بمرونة فائقة، وفي الإقامات والسمات إدارة متكاملة للكفالات الشخصية وتجديد الإقامات والسمات للعمالة المنزلية والمستخدمين. الأمن العام والمرور مثل إدارة شاملة لملكية المركبات البلاغات الأمنية.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Hello and welcome to our segment called Smart Money. मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी होस्ट नासिया और आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे. अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस क्यों है. देखिए बहुत से लोग समझते हैं कि अगर किसी की सैलरी अच्छी है तो उसकी जिंदगी फाइनेंशियल स्ट्रेस से फ्री होगी, लेकिन हकीकत इससे मुख्तलिफ है. आजकल बहुत से लोग हाई इनकम अर्न करने के बावजूद परेशान रहते हैं, सेविंग्स नहीं कर पाते, हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं. इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इनकम से नहीं बल्कि मनी मैनेजमेंट से है. सबसे पहली वजह तो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन या फिर लाइफस्टाइल क्रीप, जो कि हमने आपको बताया कि जब सैलरी बढ़ती है तो लोग अपने एक्सपेंसेस भी बढ़ा लेते हैं और नए एक्सपेंसेस बढ़ाने के चक्कर में फिर उनका जो बजट है वो बिगड़ जाता है. वो हमने आपको मिसाल देकर भी समझाया कि मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 15,000 रियाल है और थोड़ी बढ़ गई तो आप जो है वो अब एक्सपेंसिव गाड़ी पर इन्वेस्ट करने लगे, इंस्टॉलमेंट्स आपके बढ़ गए, लग्जरी अपार्टमेंट आपने खरीद लिया, क्रेडिट बिल्स, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और इस तरह से आपका जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है. और दूसरी बड़ी वजह जो समझ में आती है वो है बजट का ना होना. बहुत से लोग अच्छी इनकम तो अर्न करते हैं लेकिन ये ट्रैक नहीं रखते कि पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं. छोटी छोटी परचेजेस, ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी या फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस धीरे धीरे कब बड़े हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. और एक और कॉमन रीजन है डेट और क्रेडिट कार्ड्स. जी हाँ, क्रेडिट कार्ड का यूज या इस्तेमाल आजकल बहुत कॉमन है, बड़ा आसान हो गया है. लोग सोचते हैं कि बाद में पेमेंट कर देंगे, लेकिन जब मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स और आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस जमा हो जाते हैं तो शुरू होता है स्ट्रेस. अब हाई सैलरी होने के बावजूद भी कर्ज का बोझ इंसान को मेंटली और फाइनेंशियली डिस्टर्ब करता है. वहीं सोशल मीडिया प्रेशर भी बढ़ गया है, फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक बड़ा हिडन फैक्टर है. चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपके हाई फाई फ्रेंड्स हैं, उनके एक्सपेंसिव ट्रिप्स, उनके एक्सपेंसिव गैजेट्स, उनके ब्रांडेड शॉपिंग, कपड़े, ना चाहकर भी हम अपने आप को उनसे कंपेयर करते हैं. वो जैसा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं हम भी कोशिश करते हैं कि शायद वैसा ही मेंटेन करें और हमारी फाइनेंशियल रियलिटी उनकी रियलिटी से बिल्कुल अलग है. और कहीं ना कहीं ये सब मेंटेन करने के चक्कर में हम फाइनेंशियल स्ट्रेस का शिकार होते हैं. और फिर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अचानक कोई मेडिकल इशू या कोई जॉब इशू या कुछ और अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो हम पैनिक सिचुएशन में चले जाते हैं. साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लोग अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहते हैं, जितनी उनकी हैसियत नहीं है उससे कहीं ज्यादा. वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो समझदारी से काम करते हैं, लेते हैं और अपने जो स्टेटस है उसको कम दिखाते हैं, चाहे उनकी इनकम अच्छी हो या फिर कम. मैं तो ये कहूंगी कि सबसे बड़ा सोल्यूशन अगर हमें कहीं से मिलता है वो है हमारी फाइनेंशियल हैबिट्स, जैसे बजट बनाना, अननेसेसरी स्पेंडिंग से बचना, डेट

कंट्रोल करना रेगुलर सेविंग्स करना और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि पहले अपने आप को पे करो यानी सैलरी मिलते ही सेविंग अकाउंट्स में कुछ अमाउंट ट्रांसफर कर दो और इस तरह से अगर आप करते रहे तो आप जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में नहीं आएंगे। आखिर में फाइनेंशियल स्ट्रेस का ताल्लुक सिर्फ इस बात से नहीं कि आप कितना कमाते हैं बल्कि इस बात से है कि आप अपने पैसे को कितनी समझदारी से मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल पीस दे सकती है और अगर हैबिट्स खराब हो तो बड़ी से बड़ी सैलरी भी स्ट्रेस का सबब बनती है। तभी तो कहते हैं गुड मनी हैबिट्स डू। तो बस आज इसी चीज का ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाएं अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है। बाकी और भी बातें करेंगे लेकिन आज नहीं कल। फिलहाल मुझे नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो

FM 107 presents Tech Update. Tech Update. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेलकम टू अनदर टेक अपडेट। मैं दुहा वाला कबीर और अब आपको बताऊंगा मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में एक वेबसाइट बीच में प्लग इन कर देता हूं, बहुत जरूरी। अच्छा, अगर आप चैट जीपीटी पे जाते हैं और आपको इमेजेस को लेकर कुछ ट्रिक्स चाहिए तो मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूँ। देखिए, आपने मान लीजिए अपना एक फोटो अपलोड किया, ठीक है। आपको फोटो अपलोड करने के बाद प्रॉम्प्ट में लिखना है /ID photo, तो आपकी फोटो क्या हो जाएगी, आईडी फोटो में कन्वर्ट हो जाएगी। आपने फॉरवर्ड स्लैश लिख के आगे लिख दिया ओल्ड मनी, तो आप ऐसे दिखेंगे जैसे आपने अपने बाप दादा की दौलत इनहेरिट कर ली है। सच में वाले कपड़े आपको पहना देगा वो। और ये कुछ बेसिक कोड्स हैं जो बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आजकल काफी फेमस हो रहा है /GTA 6, तो आपके फोटो को वो GTA 6 में तब्दील कर देगा। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई मेरी जॉ लाइन थोड़ी सी परफेक्ट दिखे तो उसके लिए भी कोड है। हाँ भाई, ये सब कुछ हो रहा है मार्केट में, तो आपको सिर्फ टाइप करना है फोटो अपलोड करने के बाद /jawline, तो आपकी जॉ लाइन को वो फिक्स कर देगा। एंड इट एक्चुअली फिक्सेस रियली रियली वेल, तो यू कैन ट्राई दिस वन। ठीक है, अब जरा वेबसाइट बता देता हूँ। तो वेबसाइट का नाम है, ये तो कतर में लोग जरूर यूज करें, 4x4builder.com। जैसे 4x4 लिखते हैं यानी न्यूमेरिकल 4, फिर वो एक्स वाला साइन, फिर 4builder.com। अब आपके सामने जो स्क्रीन आएगी उसमें आप अपनी गाड़ी 4x4 खुद बिल्ड कर सकते हैं भाई। उसमें ट्रक लीजिए, आप कोई क्रूजर लीजिए, आप जैसी मर्जी लीजिए, उस गाड़ी का एक एक पार्ट आप बदल के देख सकते हैं कैसी दिख सकती है, पूरा का पूरा चेंज कर सकते हैं आप। सस्पेंशन से लेकर लाइट से लेकर बॉडी पार्ट से लेकर एक एक चीज गाड़ी की आप बना सकते हैं, और फिर इसको आप सामने रेगिस्तान में दौड़ा भी सकते हैं। आप देख सकते हैं किधर कैसे आपकी लग रही है गाड़ी, भाई बहुत फन है। और स्पेशली कतर में जहां पर लोग कस्टमाइजेशन में इतना यकीन रखते हैं तो आपके तो बहुत ही काम आने वाली है भाई। तो ये जरूर जरूर ट्राई करें, एंड 4x4builder.com ये नाम है वेबसाइट का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली वेबसाइट का नाम है lightpdf.com, ये बहुत काम आएगी। लाइट LIGHTPDF.com। इस वेबसाइट पे जाके जब आप अपनी पीडीएफ फाइल को अपलोड करते हैं तो सुनिए, उस पीडीएफ फाइल को आप एडिट कर सकते हैं भाई, पूरा का पूरा एडिट कर सकते हैं आप। जैसे कि वर्ड में टाइप कर रहे हैं वैसे आप पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को एडिट कर सकते हैं विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी, एंड दिस इज मिरेकल, तो आपकी बहुत काम आएगी वेबसाइट। जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर ट्राई करें, हाईली रिकमेंडेड। चलो एक लगे हाथों एक और वेबसाइट बता देता हूं आपको। अगली वेबसाइट का नाम है image2prompt.org, image2prompt.org। मान लीजिए कोई इमेज आपको बड़ी अच्छी लगी, उसका आप एग्जैक्टली उसको रिक्रिएट करना चाहते हैं अपनी फोटो के साथ, तो उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट बना के दे देगा कि भैया ये रहा प्रॉम्प्ट, अब आप इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, ये आपके हवाले एंड यू विल गेट इट। ये है भाई सबसे सबसे खास बात, तो ये आप जरूर चेक कीजिएगा, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। एंड लास्ट में खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अभी क्या है कि गूगल वर्क कर रहा है अपने AI पे, एंड काफी डिलीजेंटली वर्क कर रहा है। तो न्यू जेमिनी मॉडल जो रिपोर्टली जिसके बारे में बात हो रही थी, वो गूगल कह रहा है कि ये खत्म कर देगा कोडिंग गैप को। भाई गूगल करंटली टेस्ट कर रहा है जेमिनी 3.8 फ्लैश, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफी कमाल के हैं। बताया जा रहा है कि इम्प्रूवमेंट इन कोडिंग परफॉर्मेंसेस जितने पिछले जेमिनी मॉडल रहे हैं उन सबको बीट करता है। साथ ही में गूगल ने भी कहा कि जेमिनी बहुत जल्दी गूगल असिस्टेंट्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा, ऑलरेडी कर चुका है बट और भी अच्छे तरीके से रिप्लेस कर देगा। गूगल ने यह भी कहा कि दे आर मूविंग फॉरवर्ड ताकि जेमिनी डिफॉल्ट मॉडल बन जाए, और जो ट्रेडिशनल गूगल असिस्टेंट है जो यूज हो रहा है एंड्रॉयड पर और जो उनके बाकी वेयरिंग OS है उस पे खत्म हो जाए, तो खत्म हो भी चुका है। और अगर आप ओल्ड मॉडल पे हैं तो यू कैन अपडेट एंड यू कैन गेट इट डन। तो ये थी कुछ टेक अपडेट्स। मैं दुहा वाला कबीर FM 107 पे, इसी तरह से और भी अपडेट्स आने वाले वक्त में आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिल से देश।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सामईन किराम, जिस तरह अहकाम खुदाबंदी से बेनियाजी नहीं हो सकती, उसी तरह उस्वे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत से बेपरवाही इख्तियार नहीं की जा सकती। सुन्नत रसूलुल्लाह की इताअत भी ऐसी ही जरूरी है जैसी किताबुल्लाह की, इसलिए कि दोनों की पैरवी हुक्म इलाही की पैरवी है। सामीने किराम, इन्हीं हिदायत की रोशनी में पेश किया जा रहा है प्रोग्राम रूह परवर सुन्नतें। इस प्रोग्राम के हर किस्त में हम एक सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उसके मानी पर गौर करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह ये सुन्नत हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रोशनी और सुकून का जरिया बन सकती है। इंसान से गलती हो जाती है, लग्जिश हो जाती है, गुनाह हो जाता है, लेकिन कभी अल्लाह ताला अपने बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि उसकी लग्जिश लोगों से छुपी रहती है, कोई नहीं।

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और हर रोज आपसे एक नए जमाने के फ्रॉड के बारे में मैं बात करता रहता हूँ। ये फ्रॉड इतने ज्यादा टैलेंटेड तरीके से किए जाते हैं कि कई बार स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी फंस जाता है। लेकिन आज जिस फ्रॉड के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये डायरेक्ट धमकी पर ही काम करता है। ये टेक थ्रेट है। जो टेक्निकल बंदे हैं उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। उसके अलावा ये डिमांड नहीं है, ये पैसे की डिमांड नहीं है, ये आपको धमकी होती है, जिसे कहते हैं फेक रैंसमवेयर और टेक थ्रेट। ये टेक थ्रेट डिजिटल दुनिया में चलने वाला एक साइकोलॉजिकल गेम है, जहां स्कैमर्स डर और झूठ का सहारा लेकर बिजनेस ओनर्स को डराते हैं। इसमें होता यह है कि जब आप कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो अचानक स्क्रीन पर एक बड़ा या स्केरी पॉपअप मैसेज आता है, या फिर आपको एक धमकी भरा ईमेल मिलता है। इस मैसेज में लिखा होता है कि आपका सिस्टम हैक हो चुका है, हमने आपकी कंपनी का सारा सेंसिटिव डेटा, बैंक रिकॉर्ड्स, प्राइवेट फाइल्स चुरा ली हैं और उन्हें लॉक कर दिया गया है, यानी कि इंक्रिप्ट कर दिया गया है। इंक्रिप्ट कंप्यूटर की लैंग्वेज है। स्कैमर आगे लिखता है कि अगर आपने अगले 24 घंटे में बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी में एक मोटी रकम नहीं दी तो आपका सारा डेटा हमेशा के लिए डिलीट कर दिया जाएगा या इंटरनेट पर लीक हो जाएगा। और ये डायरेक्ट धमकी होती है। यहां पर ऐसा नहीं होता कि आपको स्कैम करने की जरूरत पड़े इनको, ये धमकी देते हैं। लेकिन स्कैम एक्चुअली यही है कि ये धमकी झूठी होती है। यहां सबसे बड़ा कैच ये है कि बहुत सारे केसेस में ये थ्रेड बिल्कुल फेक होते हैं। स्कैमर के पास आपके सिस्टम का कोई एक्सेस नहीं होता है और ना ही उन्होंने कोई डेटा चुराया होता है। वो सिर्फ एक अजीब या जावास्क्रिप्ट कोड या पॉपअप वेबसाइट का यूज करते हैं जो स्क्रीन पर लॉक हो जाता है, जिससे लगता है कि कंप्यूटर हैक हो गया है। बिजनेस ओनर अपने रेपुटेशन और कस्टमर डेटा खोने के डर से पैनिक हो जाते हैं और स्कैमर को लाखों रुपए भेज देते हैं। ये स्कैमर्स सिर्फ डर का माहौल बनाकर बिना मेहनत के पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन भी इसके हैं। अगर इन सॉल्यूशन को ध्यान से सुने तो आप बच सकते हैं। सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो है अलग से बैकअप रखना। देखिए, आपके साथ कोई फेक थ्रेट करे, असली करे, कुछ भी हो, इवन हो सकता है कि आपका कभी कंप्यूटर ही खराब हो जाए, जरूरी है कि बैकअप आप अलग से रखे रहें। और ये बैकअप कैसा होना चाहिए? अपने बिजनेस का सारा इंपॉर्टेंट डेटा हर हफ्ते एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव या सिक्योर डिस्कनेक्टेड क्लाउड पर बैकअप करें, सेव करें। अगर आपका बैकअप मेन सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो भी जाए तो असली में आपसे कोई डिमांड भी करे, रैंसमवेयर आए भी अगर आपके पास, तो आपके पास असल में सेटअप तो है, आपके पास बैकअप तो है, तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको पैसा या पेमेंट करने की जरूरत तो नहीं है, किसी भी तरह की रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर आप बच जाते हैं। उसके अलावा पैनिक ना करें कभी भी। अगर ऐसा कोई पॉपअप स्क्रीन पर आए तो कंप्यूटर को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दें, वाईफाई बंद कर दें और टास्क मैनेजर खोलकर ब्राउजर को फोर्स क्लोज करें। अक्सर ब्राउजर बंद करते ही फेक पॉपअप्स गायब हो जाते हैं। उसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रखें। और एक चौथा तरीका है एड ब्लॉकर्स या साइबर हाइजीन। अपने ऑफिस के कंप्यूटर में एक अच्छा एड ब्लॉकर इंस्टॉल करें ताकि ऐसे मलिशियस और डराने वाले पॉपअप्स इंटरनेट ब्राउजिंग के दौरान सामने ही ना आए, किसी भी अनजान ईमेल अटैचमेंट या लिंक पर क्लिक करने से भी बचें। तो दोस्तों, ये था तरीका नए जमाने के नए फ्रॉड से बचने का और ये था आज का फेक रैंसमवेयर या टेक थ्रेट, जिससे आप आसानी से बच सकते हैं। मैंने सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। उम्मीद है कि आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल एक नए जमाने के नए फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। सुनते रहे FM 107 दिल से देसी। स्कैम अलर्ट।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं कल्चर मोमेंट। मैं हूं आपकी आरजे महावश। इस 5 मिनट के सफर में हम बात करेंगे कतर की खूबसूरत सकाफत, रिवायत और विरसे की। यहाँ हर रसम, हर लिबास, हर खाने और

हर मेहमान नवाजी के पीछे एक प्यारी सी कहानी होती है। आइए मिलकर कतर की सकाफत को समझें, महसूस करें और इस वर्षे को अगली नस्लों तक पहुंचाने का अहद करें। कतर की सकाफत में किसी से मिलना सिर्फ एक रस्मी अमल नहीं, बल्कि इज्जत, खुलूस और अपनायत का इजहार होता है। सलाम, मुस्कुराहट और खैरियत पूछने जैसे छोटे छोटे रवैये लोगों के दरमियान मोहब्बत, एतमाद पैदा करते हैं। इसीलिए मुलाकात के आदाब कतरी समाजी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा है। किसी से मिलते वक्त सलाम करना अच्छे अखलाक की अलामत है। सलाम के बाद हाल चाल पूछना, सामने वाले की खैरियत मालूम करना, ये बताता है कि उसकी कदर की जा रही है। अगर मुलाकात किसी मेहमान से हो तो उसका खैर मुकदम और ज्यादा तवज्जो के साथ किया जाता है। कतरी माशरे में बुजुर्गों और वालदैन का खास एहतराम किया जाता है, इसलिए मुलाकात के वक्त पहले बुजुर्गों को सलाम करना बेहतर अंदाज समझा जाता है। उनके पास अदब से बैठना, उनकी बात तवज्जो से सुनना और उनका ख्याल रखना अच्छी तरबियत की निशानी है। मुलाकात का एक अहम पहलू लहजा है। नरम आवाज, प्यारे अल्फाज और मुस्कुराहट बात को ज्यादा खुशगवार बना देती है। कतरी आदाब हमें सिखाते हैं कि गुफ्तगू में शोर, सख्ती या बेतौजी से बचना चाहिए। दूसरे शख्स को इज्जत देने के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रवैया भी अहम होता है। मजलिस में बैठने का भी अपना सलीका होता है। मेहमान को आम तौर पर इज्जत के साथ जगह दी जाती है। लोग एक दूसरे के करीब बैठते हैं, कहवा और खजूर से तवाजो करते हैं और पुरसकून गुफ्तगू का माहौल कायम रखते हैं। गुफ्तगू के दौरान सामने वाले की बात पूरी तवज्जो से सुनना जरूरी समझा जाता है। बात के दरमियान मुदाखलत करने के बजाय इंतजार करना और फिर अपनी राय देना अदब है। अगर किसी मौजू पर मुख्तलिफ सोच भी हो तो नरमी और एहतराम के साथ बात की जा सकती है। कतरी मुलाकातों में रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश नजर आती है। किसी से मिलकर उसकी सेहत, काम और घर वालों के बारे में पूछना आम रवैया है। ये सवालात सिर्फ बात शुरू करने का जरिया नहीं बल्कि दूसरे शख्स के लिए दिलचस्पी और फिक्र का इजहार होते हैं। मेहमान का भी अपना अदब होता है। जब कोई शख्स किसी के घर या मजलिस में जाए तो वक्त का लिहाज करे, सलाम करे और मेजबान की राहत का ख्याल रखे। जो पेश किया जाए उसकी कदर करे और जरूरत हो तो शुक्रिया भी अदा करे। ये रवैये मुलाकात को ज्यादा खुशी बख्शते हैं। कहवा पेश करने का अमल भी मुलाकात के अदाब से जुड़ा है। प्याला अदब से पेश किया जाता है और मेहमान अपनी पसंद के मुताबिक उसे कबूल करता है। कहवे के चंद लम्हों में लोग एक दूसरे के करीब आते हैं और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। किसी मुलाकात से रुखसत होते वक्त भी अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल खूबसूरत असर छोड़ता है। मेजबान का शुक्रिया अदा करना और उसके लिए खैर की दुआ देना शुक्रगुजारी का इजहार है। इसी तरह मेजबान अपने मेहमान को खुशी के साथ रुखसत करता है। आज के जदीद कतर में मुलाकात के तरीके नए भी हो गए हैं। लोग फोन, मुलाकात, पैगामात, ऑनलाइन राब्ते के जरिए भी हालचाल पूछते हैं। फिर भी आमने सामने मिलने, सलाम करने और दिल से बात करने की अपनी अहमियत है। मुलाकात के आदाब बचपन से सिखाए जाते हैं। घर के बड़े बच्चों को दिखाते हैं कि किस तरह मेहमान का इस्तकबाल करना है, किस तरह बैठना है और गुफ्तगू में किस तरह नरमी रखनी है। बच्चे देख कर सीखते हैं और फिर ये रिवायत आगे बढ़ती रहती है। कतर में मुख्तलिफ लोग रहते हैं, इसलिए एक दूसरे की रिवायत और रवैयों का एहतराम और भी अहम हो जाता है। सही तरीके से सलाम करना, नाम इज्जत से लेना, गुफ्तगू तवज्जो से सुनना और मुस्कुराहट के साथ जवाब देना, ऐसा रवैया है जो हर दिल को करीब ला सकता है। कतरी मुलाकात के आदाब का असल हुसन इखलास और सादगी में है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अच्छी महफिल महंगी चीजों से नहीं बल्कि अच्छे रवैयों से बनती है। एक सलाम, एक मुस्कुराहट, एक

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
3: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में हम लेकर आए हैं बहुत ही अहम सवाल, एक सवाल जो अक्सर लोगों के जहन में आता है। हम सुनते हैं कि कुरान मजीद क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए हिदायत की किताब है, हर ज़माने और हर जगह के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है, लेकिन जब बाज़ लोग कुरान को पढ़ते हैं तो उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि कुरान में तो गुज़श्ता कौमों अम्बिया अलैहिमुस्सलाम फ़िरऔन आद समूद और पुराने वाक़यात का जिक्र है, फिर ये हमारी आज की ज़िंदगी से कैसे मुतालिक है। आज के दौर के मसाइल तो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जदीद टेक्नोलॉजी, आलमी सियासत, मीडिया, सोशल नेटवर्क्स और नए फिक्री चैलेंजेस मौजूद हैं, तो फिर कुरान आज भी हमारी रहनुमाई कैसे कर सकता है। समझने के लिए यहाँ दरअसल हमें ये समझना है कि असल मसला कुरान में नहीं बल्कि तफहीमुल कुरान में है, हमारे कुरान को समझने के अंदाज में असल मसला है। अक्सर कुरान को मालूमात की किताब समझते हैं, जबकि कुरान सबसे पहले शऊर, फिक्र और सही तर्ज नज़र पैदा करने की किताब है। कुरान का मकसद ये नहीं कि वो आपको हर वाक़े की तमाम तारीखी तफसीलात बताए, उसका मकसद ये है कि वो आपके अंदर ऐसा शऊर पैदा करे जो हर दौर के हालात को समझने में आपकी रहनुमाई करे। मिसाल के तौर पर कुरान में फिरौन का जिक्र बार बार आता है, लेकिन कुरान हमें ये नहीं बताता कि फिरौन की उम्र कितनी थी, उसका महल कहाँ था, उसके वालिद का नाम क्या था या उसकी फ़ौज में कितने सिपाही थे। ये तमाम चीज़ें तारीख दानों के लिए अहम हो सकती हैं, लेकिन कुरान का मकसद तारीख की किताब बनना नहीं है। कुरान सिर्फ इतनी मालूमात देता है जितनी इंसान के शऊर और फिक्र की तामीर के लिए ज़रूरी हो। समीन किराम, इस हकीकत को समझने के लिए सूरतुल अहज़ाब का वाक़या बहुत अहम है। ग़ज़वा अहज़ाब या ग़ज़वा खंदक इस्लाम की तारीख के मुश्किल तरीन मराहिल में से एक था। मदीना मुनव्वरा का मुहासरा किया गया, दुश्मन हर तरफ से हमला आवर थे और बज़ाहिर मुसलमानों की शिकस्त के आसार नजर आ रहे थे। अगर कुरान सिर्फ मालूमात की किताब होता तो वो इस जंग की तफसीलात बयान करता, कितने लश्कर थे, कितने घोड़े थे, कौन से कबाइल शरीक थे, कौन से सिपा सालार थे, लेकिन कुरान ने इन तफसीलात को नज़रअंदाज कर दिया और उसके बजाय इंसानों के रवैयों और नफ्सियात पर वहाँ तवज्जो दी। कुरान ने हमें बताया किस मौके पर कुछ लोग ऐसे थे जो शक में मुब्तला हो गए। उन्होंने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे जो वादे किए थे वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोग ऐसे थे जो दूसरों के हौसले तोड़ रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ ठहरने का कोई फ़ायदा नहीं, वापस चलो। कुछ ऐसे थे जो

ने बनाकर मैदान छोड़ना चाहते थे। और फिर एक चौथा ग्रुप था अहले ईमान। कुरान फरमाता है वलम्मा रा अल मुमिनून अल अहज़ाब قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله और जब मोमिनों ने लश्करों को देखा तो उन्होंने कहा यही वो चीज़ है जिसका अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। सामने किराम और कीजिए, मंजर एक ही था, मुहासरा एक ही था, खतरात एक ही थे, लेकिन रद्दे अमल मुख्तलिफ था। क्यों? क्योंकि शोर मुख्तलिफ था, फिक्र मुख्तलिफ थी, ईमान के लेवल्स मुख्तलिफ थे। सामने किराम, यही वो मकाम है जहाँ कुरान हर ज़माने के लिए ज़िंदा साबित होता है। आज भी जब कोई आजमाइश आती है तो यही चार गुरु हमारे सामने आते हैं। कुछ लोग मायूस हो जाते हैं, कुछ लोग दूसरों के हौसले पस्त करते हैं, कुछ लोग जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर यकीन रखते हैं और साबित कदम रहते हैं। इसीलिए कुरान किसी ख़ास ज़माने की किताब नहीं। ज़माने बदलते हैं, लिबास बदलते हैं, ज़बानें बदलती हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, लेकिन इंसान के दिल, खौफ, उम्मीद, लालच, सब्र, ईमान और शक की कैफियतें नहीं बदलती। यानी इंसानियत के वो रवैये वही के वही बाकी रह जाते हैं। और कुरान इन हकीकतों की तरफ हमें रहनुमाई करता है। जब हम कुरान को सिर्फ मालूमात की किताब समझते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि शायद ये आज के दौर से मुतालिक नहीं। लेकिन हाँ, जब हम कुरान को मनहज हयात, फिक्र की तामीर और शऊर की तश्कील की किताब समझते हैं तो हमें मालूम होता है कि कुरान आज भी उतना ही जिंदा है जितना 1400 साल पहले था। कुरान हमें सिखाता है कि बहरानों में कैसे सोचना है, फितनों में कैसे साबित कदम रहना है, अक्सरियत के दबाव में हक पर कैसे कायम रहना है, शक व शुबहात के तूफान में यकीन को कैसे महफूज रखना है। और यही वो चीज़ है जिसकी हर दौर के इंसान को ज़रूरत है। सामने किराम, अगर आप चाहते हैं कि कुरान आपकी ज़िंदगी में ज़िंदा हो जाए तो उसे सिर्फ मालूमात हासिल करने के लिए न पढ़ें, उसे अपने शऊर की तामीर के लिए पढ़ें। अपने हालात को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि कुरान सिर्फ माजी की किताब नहीं बल्कि ये आज की किताब भी है और आने वाले कल की भी। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, उसमें तदब्बुर करने और उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, सवाल ये है कि ये कौन सी रुकावट है? ये रुकावट है कुरान पर मुकम्मल एतमाद का फुकदान। यानी कुरान पर ईमान तो रखते हैं लेकिन एतमाद की कमी है, पूरा यकीन नहीं है। ये बात सुनकर शायद कोई ताज्जुब करे, हम सब मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, उसे अल्लाह का कलाम मानते हैं, उसकी अजमत के कसीदे पढ़ते हैं, फिर एतमाद की कमी कहाँ से आ गई? समझ निकला, असल मसला ये है कि कभी कभी हमारे दावे और हमारे अमली रवैये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। हम जुबान से कहते हैं कि कुरान कामिल हिदायत है, लेकिन जब ज़िंदगी के मसाइल सामने आते हैं तो हम सबसे पहले हल कहीं और तलाश करते हैं। अच्छा, हर कोई अपने आप से ये सवाल करे, कुरान पर हमारा अमली एतमाद कितना है? समझ कराम, फ़र्ज़ कीजिए एक वज़ीर अपने किसी मुलाजम से कहे मैं तुम्हारी ज़हानत पर मुकम्मल एतमाद करता हूँ, लेकिन जब भी कोई अहम मसला पेश आए तो वो सब लोगों से मशवरा करे मगर उस मुलाजम के पास सबसे आखिर में जाए, तो क्या उसका दावा काबिल यकीन होगा? यकीनन नहीं। इसी तरह हम भी कभी कभी कुरान के साथ यही रवैया इख्तियार करते हैं।
ہم کہتے ہیں کہ قرآن کامل ہدایت ہے۔

0: मगर ईमान हमेशा जीतता है. स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं. आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें.
1: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी.
2: क्रिकेट हो
3: एंड ही इज हुक्ड दैट अवे, दैट्स 4 रन.
2: फुटबॉल हो या कोई और बड़ा स्पोर्टिंग एक्शन, हम लाते हैं आप तक हर एंगल, हर स्टोरी और हर हाईलाइट बिल्कुल सीधे सादे अंदाज में.
4: तो अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड और कनेक्टेड स्पोर्ट्स की दुनिया से,
2: ट्यून इन करें स्पोर्ट्स राउंडअप विद अवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन एवरी ट्यूसडे एट 1 PM.
4: क्योंकि यहाँ होगी बात सिर्फ स्पोर्ट्स की.
5: स्ट्रेस या टेंशन फील कर रहे हैं, चाहते हैं लाइफ में बैलेंस और ग्रोथ, तो सुनिए यू मैटर, आपके लिए प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटजीज ताकि आप खुश, हेल्दी और फुलफिल्ड लाइफ जी सके, क्योंकि आप मैटर करते हैं.
6: सुनिए हर संडे टू थर्सडे सुबह 10 से 11 बजे यू मैटर, आरजे सफा और आरजे महविश के साथ, जहां वो शेयर करेंगी प्रैक्टिकल टिप्स, इमोशनल इंटेलिजेंस टेक्निक्स और पर्सनल ग्रोथ हैक्स, जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्पफुल हो सकता है. Tune into FM 107, Dil Se Desi.
7: Maximum music, maximum fun.
8: On FM 107, Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107।
1: हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पैदाइश इंसानी तारीख के इब्तदाई दौर में हुई जब दुनिया अभी ताजा ताजा थी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल फैल रही थी। मौरखीन के मुताबिक उनकी विलादत इराक के शहर बाबुल में हुई जो उस वक्त तमद्दुन का मरकज था। बास रिवायात में ये भी कहा जाता है कि वो मिस्र के शहर मनव यानी मम्फस में पैदा हुए। ये इख्तलाफ इसलिए है कि उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बाबुल में

0: आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स आरजे महवेश के साथ ओनली ऑन एफएम 107.
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 पे द स्टोरीज ऑफ द प्रॉफिट. हजरत इदरीस अलैहि सलाम को इनोख और अखनुख भी कहा जाता है. जब हजरत इदरीस अलैहि सलाम सने शऊर को पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया. तब उन्होंने वहां उस वक्त के जो शरीर और मुफसिद लोग थे उनको हिदायत देने के लिए तबलीग का आगाज किया. लेकिन उस वक्त के लोगों ने, जो उसमें शरारत पसंद तबीयत के लोग थे, उन्होंने उनकी एक ना सुनी और हजरत आदम अलैहि सलाम और हजरत शेज अलैहि सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे. अलबत एक छोटी सी जमात जरूर मुशर्रफ पर सलाम हो गई. हजरत इदरीस अलैहि सलाम ने जब ये रंग देखा तो वहां से हिजरत का इरादा किया और जो उनके फॉलोअर्स थे उनको भी हिजरत की तलकीन फरमाई. इदरीस अलैहि सलाम के जब फॉलोअर्स ने ये बात सुनी कि उनको तर्के वतन करना पड़ेगा तो उनके ऊपर ये बात बहुत ही शाक गुजरी. वो कहने लगे कि बाबुल जैसा वतन हमें कहाँ नसीब हो सकता है. हजरत इदरीस अलैहि सलाम ने उनको तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर ये तकलीफ तुम अल्लाह की राह में उठाते हो तो अल्लाह की रहमत वसी है और वो उसका नेमल बदल जरूर अता करेगा. बस हिम्मत ना हारो और खुदा के हुक्म के सामने सर झुका दो. मुसलमानों की रजामंदी के बाद हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी जमात मिस्र की जानिब हिजरत कर गई. जमात ने जब नील की रवानी और उसकी सरजमीन की शादाबी देखी तो बेहद खुश हुए. बाबुल की तनहा शादाब मकाम एक बेहतरीन जगह मुंतखब करके नील के किनारे बस गए. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर ने जब मिस्र में सकूनत अख्तियार कर ली तो यहाँ भी उन्होंने पैगाम इलाही और अमल बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर का फर्ज अंजाम देना शुरू कर दिया. कहा जाता है कि उनके जमाने में 72 जबानें बोली जाती थी और खुदा ताला की अताव बख्शिश से ये वक्त की तमाम जबानों के जबानदान थे. हर एक जमात को उसी की जबान में तबलीग फरमाया करते थे. हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीने इलाही के पैगाम के अलावा सियासत, तमद्दुन, शहरी जिंदगी और रहने सहने के जो तरीके हैं उनकी तालीम और तलकीन भी की और इसके लिए उन्होंने हर जमात से कुछ तलबा जमा किए और उनको तमद्दुनी सियासत और उसके उसूल और कवायद सिखाए. जब ये तलबा कामिल माहिर बनके अपने कबाइल की तरफ लौटे तो उन्होंने शहर और बस्तियां आबाद की जिनको तमद्दुनी उसूल पर बसाया. इन शहरों की तादाद कमोबेश कुछ 200 के करीब थी जिनमें सबसे छोटा शहर रेहा था. हजरत इदरीस अलैहि सलाम वो पहली हस्ती हैं जिन्होंने इल्मे हिक्मत नुजूम की इब्तिदा की, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है आइए जुमे की रूहानी खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी
2: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا
3: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
4: وَإِذْ

संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए और वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कि कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा ने अपने खादिम से कहा, लाओ हमारा नाश्ता, आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए हैं। खादिम ने कहा, आपने देखा ये क्या हुआ? जब हम उस चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल न रहा और शैतान ने मुझको ऐसा गाफिल कर दिया कि मैं उसका जिक्र आपसे करना भूल गया। मछली तो अजीब तरीके से निकलकर दरिया में चली गई। मूसा ने कहा, इसी की तो हमें तलाश थी। चुनांचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए और वहां उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। मूसा ने उससे कहा, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि आप मुझे भी उस दानिश की तालीम दें जो आपको सिखाई गई है? उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज की आपको खबर ना हो आखिर आप उस पर सब्र कर भी कैसे सकते हैं? मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी ना करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात न पूछें जब तक कि मैं खुद उसका आपसे जिक्र न करूं।